0: तुम्हारे हाथ में है?
1: यह तो हमने सोचा ही नहीं था।
0: तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है? यहां सब परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा। जो कर रहा वो भी परमात्मा कर रहा, और जो करवा रहा वो भी परमात्मा करवा रहा। इसलिए मेरे पागलो, दुखी रहना है तो ये मानो हम कर रहे, और सुखी रहना है तो ये मानो परमात्मा करवा रहा है। हमसे सीखो कितने कॉन्फिडेंस में जीते हैं। अंग्रेजी आती नहीं पर जीते। हमसे सीखो जेब में भले ही फूटी कौड़ी नहीं होती पर चाल अपन सम्राटों जैसी चलते, बातें अपन बादशाहों जैसी बोलते, फूटी कौड़ी जेब में नहीं। अरे भैया, यह अपना क्या, जो है सब इनका है। और हम जब भी कथा पे बैठते या दरबार पे बैठते या भभूति बांटने बैठते, एक ही बात बोलते हैं, हमारे मुंह से जो निकले वो ठीक ठाक निकलवाना, क्योंकि नाक भी तुम्हारी कटनी है और जय भी तुम्हारी बुलनी। आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा तो तुम हो भैया। अपनी इज्जत बचाना, हम बैठे मंच पे, और सच में यही होता, वो दयालु है, लाज रख देते हैं, कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। मेरे पागलो, तुम्हें भी यदि दुखी रहना तो ये मानो तुम कर रहे, सुखी रहना ये मानो परमात्मा करवा रहा। हम भक्त ना बन पाए तो चलेगा, पर किसी भक्त के चरणों को पकड़ ले तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, गज और ग्राह की। एक हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, आपने ये कथा सुनी? भगवान बचाने आते हैं श्री हरि विष्णु, जब बचाने आते तो भगवान ऐसे ही भागते पैदल, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे से गरुड़ जी आते, प्रभु कहां भाग रहे? अरे भगवान बोले तुम्हें लेट हो जाता इसलिए हम स्वयं भागे। क्यों? बोले यहां नीचे पृथ्वी पर एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया हाथी का, हाथी डूब रहा, वो हमको पुकार रहा है, बुला रहा, तो उसको बचाने जा रहे। गरुड़ जी बोले महाराज हमें बता देते हम जल्दी ले चलते, आप अकेले अकेले आ गए। भगवान बोले क्या बताएं, इमरजेंसी थी, क्षमा क्षमा। गरुड़ जी बोले प्रभु कोई बात नहीं, पर अब आप रुक क्यों गए? भगवान बोले भैया हम ये सोच रहे पहले हाथी को बचाएं कि मगरमच्छ का उद्धार करें। गरुड़ बोले जय हो प्रभु, एक सेकंड का भी टाइम नहीं था, अब सोचने का टाइम मिल गया। भगवान बोले तुम ही बताओ। दो दुविधाएं आ गई, हाथी पुकार रहा उसको बचाना है, पर पहले क्या करें? गरुड़ जी बोले जो आपको बढ़िया लगे वो करो। भगवान बोले भैया पहले हम हाथी का उद्धार नहीं करेंगे, जिसने पैर पकड़ रखा उसका उद्धार करेंगे। वो कथा कहती भगवान ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन छोड़ा, मगरमच्छ का सिर काटकर उसका उद्धार किया। तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपको पुकारा हाथी ने, बुलाया हाथी ने, प्रार्थना हाथी ने की, और आपने उद्धार सबसे पहले मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान बोले जो हमारा भक्त है उसका तो भला होना ही है, जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका पहले भला कर देते। ये हमारा स्वभाव है, कोई हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता ना उसका हम पहले उद्धार कर देते। मेरे पागलो, मेरे प्रियजनों, लंदन वासियों, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो कोई बुराई नहीं, भगवान के भक्त के चरण पकड़ ले उसमें ही बेड़ा पार हो जाए। जब कभी उस पर भगवान की दया होगी तो तुम पर भी हो जाएगी, उस पर कभी भगवान की दृष्टि कृपा दृष्टि परसेगी तुम पर भी बरस जाएगी। और भगवान का स्वभाव तो कृपामय है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपामय स्वभाव है, उन्हें कृपा करनी पड़ेगी। यदि वो दया ना करेंगे, हम लोग दीनों पर दीनानाथ यदि कृपा ना करेंगे, कौन भगवान को भजेगा, कौन पुकारेगा, कौन आएगा इनके दर पर? इनका काम है कृपा करना, इनका काम है दया करना। इसलिए मेरे प्रियजनों, अब तक जो जिंदगी खोई सो खोई, अब व्यर्थ ना गवाना, अब हो जाना परमात्मा।

0: पकड़ लेना इनके चरणों को, यही सच्चा सुख है, यही सच्चा आनंद है। इसमें जितना आनंद है ना कहीं नहीं दुनिया में, उनके हो जाना जिनने तुम्हें बनाया है, उनको पुकारना जिनने तुम्हें बनाया है, आवाज दी उनको धन्यवाद देना, जिन्होंने तुम्हारे हाथ दिए उनकी सेवा कर लेना। उनकी ना सेवा कर पाओ ना चलेगा, परमात्मा की सेवा करना तो बड़ा कठिन है, पर परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करना भी उनकी सेवा है। सबको भगवान ने बनाया, दीनों की सेवा करना, भूखे को भोजन, विदेशों में बुरा ना मानना, तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी आ जाती सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, खुद के लिए भर जीते हो। आदमी वो नहीं है जो केवल खुद के लिए जीता, आदमी वो है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता है। मनुष्यता का मतलब ये, और ये भाव नहीं रखना चाहिए कि वो हमें धन्यवाद नहीं देते, हम अच्छा करते लोग बुरा करते, ये दुनिया का काम है, तुम अपना करो। कुत्ता का काम भौंकना है, मधुमक्खी का काम काटना है, पानी का काम बहना, हवा का काम चलना, सबके अपने अपने मूल तत्व, बर्फ का काम ठंडक, अग्नि का काम जलाना, तो तुम अपना करो, तुम्हारा काम सेवा। अब हम भारत में कुछ भी करते दोनों प्रकार के लोग मिलते, अच्छी बात करें, सनातन की बात करें, हिंदुत्व पर बोले, स्वाभाविक है विरोधी हमें गाली देते, पर इसका मतलब यह थोड़ी हम अपना काम छोड़ दें, हम अपनी सेवा छोड़ दें। कन्या विवाह कराते, जिन बेटियों का विवाह नहीं करा पाते वो बद्दुआ देते, क्योंकि इतनी व्यवस्था तो है नहीं, जितनी हो पाती उतनी कर पाते। 200-300 बेटियों के विवाह में ही कम से कम भारतीय अनुसार 10 से 12 करोड़ लग जाते, लगाना, लेकिन जिनका ना हो पाए वो बद्दुआ देती। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम काम छोड़ें, इसका मतलब ये थोड़ी हम सेवा छोड़ें। कोई गाली दे इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने काम को बंद कर दें, ना, हम अपने काम को क्या बंद करना, हम जो कर रहे वो करें, जमाने को अच्छा कहना बुरा कहना वो उसका काम, हमें भरोसा है वो जब कहेगा बेहतर ही कहेगा, भगवान तो अच्छा कहेगा, परमात्मा तो अच्छा कहेगा, ठाकुर तो अच्छा करेगा, और बुरा ना मानना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में जाके तुमने जल चढ़ा दिया तो तुम धार्मिक हो गए। महाराष्ट्र के एक संत हुए संत एकनाथ, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े प्रसिद्ध, गंगोत्री गए, गंगोत्री से जल लिया, जल लेकर के रामेश्वरम पैदल जा रहे थे, रामेश्वरम गंगोत्री से पैदल, पुराना जमाना, 6 माह लग गए पैदल चलते चलते, ना दिन देखी ना रात, गंगा जल हाथ में लिए रामेश्वरम में, जे रामेश्वर दर्शन करही, दर्शन जो करेगा जल चढ़ाएगा, जो गंगा जल आन चढ़ाही वह सायुज मुक्ति को पाता, ऐसी महिमा है वर्णन। गंगा जल लिए गंगोत्री से रामेश्वरम तक 6 महीने तक पैदल चले, क्या दिन और क्या रात, लेकिन पहुंचने ही वाले थे रामेश्वरम, कोई 5 माइल बचा होगा रामेश्वरम। एक पेड़ के नीचे तपती दोपहरी, दोपहर के 12 बजे एक बूढ़ा आदमी बैठा और एक गधा तड़प करके फड़फड़ा रहा था पैरों को, बेचारा फड़फड़ा रहा था, तड़प रहा था। संत एकनाथ की दृष्टि पड़ी, रास्ते से थोड़ा अंदर आए, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बूढ़े आदमी से पूछा, भैया भैया भैया क्या बात है, और ये गधा क्यों तड़प रहा, इस जीव को क्या हो गया। वो बूढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा था, बेचारे की आंखों में आंसू थे, उसने हाथ जोड़ के कहा, महात्मा आपका भेष देखकर लग रहा आप संत हैं, आप कोई साधु हैं, भगवान महात्मा क्या बताएं, हम बूढ़े हो गए, पास में कोई पानी का जलाशय नहीं है, ये प्यासा मर रहा है, इसने पानी नहीं पिया ना, तपती दोपहर है, प्यासा मर रहा है, आप यदि बुरा ना माने कहीं से जल ले आए, ये बच जाएगा। संत एकनाथ ने सोचा, हम तो 6 महीने पैदल चलकर आए, गंगा जल लेकर रामेश्वरम में जाकर चढ़ाना है, और ज्यादा दूर नहीं बचा, 5 माइल बचा, एक दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि अभी इसको ना पिलाया ना ये मर जाएगा, जल तो हम दोबारा भर लेंगे, दोबारा चढ़ा देंगे, पहले इसके प्राण बचाने। अपनी गंगा जल की पोटली निकाली, लो दादा पिलाओ। और जैसे ही पिलाया वो जीव वो गधा तुरंत खड़ा हो गया, भागने लगा। भागते ही भागते, देखते ही देखते उसी गधे के अंदर तुरंत भगवान रामेश्वरम नाथ महादेव प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट भए, भगवान शंकर त्रिभुवनपति त्रिपुरारी महादेव कराग्र में डमरू लिए त्रिशूल लिए त्रिपुंडधारी भगवान विश्वनाथ रामेश्वरम नाथ खड़े हो गए। बोले बाबा तुम जल चढ़ाते तो शायद हमारे दर्शन ना हो पाते, पर तुमने जीव में शिव देख लिया, हमारे दर्शन हो गए। ये धर्म है, ये सच्चा सनातन है, ये है सेवा। अब तुम शंकर जी को तो जल चढ़ा रहे और तुम्हारे मां बाप प्यासे मर रहे, भूखे मर रहे, और तुम कहते हम सनातनी हैं। तुम सनातनी ना हो भैया, जीवों पर दया करो, जीव की हिंसा मत करो। सब में ब्रह्म को देखो, ईशावास्मिदं सर्वम्। सब जगह परमात्मा के दर्शन करो, सब में भगवान है, चाहे वो इंग्लैंड वाले हों, अमेरिका वाले हों, अथवा यूरोप वाले हों, सब में परमात्मा है, सबके अंदर व्याप्त है। ये भाव रखो, ये मन में श्रद्धा रखो। आप जब सब में भगवान को देखने लगोगे ना, आपको भगवान महसूस होने लगेगा, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, फिर किसी से तुम्हारा बैर नहीं बचेगा। गालियां भी कोई देगा ना, यही लगेगा हमारा भगवान दे रहा है। भगवान तो दयालु है ही है, देखने का भाव है। आपके अंदर ये देखने का भाव आ जाए, परमात्मा कहीं भी प्रकट हो सकता। महाराष्ट्र के एक दूसरे संत हुए नामदेव जी, आपने सुना होगा संत नामदेव के बारे में। कुत्ते में भी परमात्मा को प्रकट कर दिया। रोज घी की रोटी बनाते, रोज रोटी बनाते, देखते कि जब वो ठाकुर जी को भोग लगाने जाते कोई रोटी रोज खा जाता, रोज यही हो रहा। एक दिन सोचा जरा छिपके।
1: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे हुए गजानन का वीडियो बनाएं और हमें शेयर करें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: देश भर में गणेश उत्सव की भव्य रौनक, सूरत में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा गणेश पंडाल, भिलाई में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा इको फ्रेंडली गणपति पंडाल। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होगी, एप्पल स्टोर के बाहर रात से लंबी कतार लगी है। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, HAL सौंपेगा तेजस FOC ट्विन सीटर ट्रेनर, HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। विमेंस एशियन गेम्स में आज भारत जापान के बीच T20 का हेड क्वार्टर फाइनल जापान में निसिन की कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच, सेमीफाइनल में रहेगी भारत की नजर। तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती, अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक।
7: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: सूरत के महेधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बापा का दिव्य श्रृंगार, करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स हैं जड़ित। गुजरात के सबसे महंगे गणेश रूप में प्रसिद्ध हैं यहाँ के बप्पा, करीब 30 साल पुरानी है बप्पा को राजसी गहनों से सजाने की परंपरा, बप्पा को राजा की तरह पूजते हैं भक्त। आभूषणों की कुल कीमत करोड़ों में, गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ छाई गणेश उत्सव के भव्य रौनक। पंडाल में रोजाना सुबह शाम हो रही है भव्य महाआरती, मन्नत पूरी होने पर बप्पा को अर्पित किए गए चांदी के मूषक श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं चांदी के छत्र और छोटे घर। महेधरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, पंडाल की नक्काशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा पंडाल, अनोखी थीम लोगों को आकर्षित कर रही है। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की खास पहल देखने को मिली, तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम पर पंडाल 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा गणपति पंडाल। 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण, प्रकृति और पक्षियों पर आधारित सजावट, पर्यावरण के अनुकूल चीजों से सजा पंडाल, सूखे पत्तों और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल। बांस से भी की गई है खास सजावट, मिट्टी की मटकियों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती, सूखे तालपत्र और कमल से सजी दीवारें, बेल फल के खोल भी सजावट में शामिल। कोलकाता के 50 कारीगरों ने तैयार किया भव्य पंडाल, आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यावरण का संदेश, भक्ति संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप, वारकरी रूप धारण किए हुए नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा और विठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप, दर्शनों के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्रन सादा फेटा यानी महाराष्ट्र की संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक माने जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं गणपति। वारकरी रूप में हाथ में सजा है मृदंग। चौबीस फीट ऊंची है गजानंद की ये प्रतिमा। पूजा अर्चना के लिए गणपति की एक छोटी मूर्त भी मौजूद है। इस बार अपना 80 साल मना रहा है ये मंडल। हर साल गजानन को अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करने के लिए मशहूर है परेल का ये गणेश मंडल। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति बाबा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़। गणेशोत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 120 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है ये भव्य पंडाल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं। अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिली। मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी बेहद खूबसूरती से ढाली गई है हर बारी की। पंडाल में देखने को मिल रहा है आस्था और कला का अद्भुत संगम। मुंबई में इसराइल की कौंसल जनरल यानी व्रेवाच ने लाल बाग चौराहा के दर्शन किए, लिया बप्पा का आशीर्वाद। पुणे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाने वाले छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया गणपति उत्सव। कॉलेज के आखिरी साल को यादगार बनाने के लिए बिठाए बप्पा। पिछले 3 सालों से एक ही बैचलर फ्लैट में रह रहे हैं सभी छात्र एक साथ कर रहे हैं पढ़ाई। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम, तो वहीं पजवकंडी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह का आयोजन। विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान महागणपति की होती है विशेष पूजा। लगाया जाता है अपम मोदक और गणपति होमम का भोग। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई जगह दीपोत्सव का आयोजन। महाकाल नगरी उज्जैन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमग हुई महाकाल नगरी उज्जैन। आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ आसमान। पीएम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजन रखवाया गया। पीएम की लंबी उम्र और राजनीतिक सफलता के लिए प्रार्थना की गई। महाकाल मंदिर के पंडितों ने पीएम की तस्वीर के साथ मंदिर के गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया। शाम को शिप्रा तट समेत महाकाल लोक में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु की आरती की। आरती में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ की आरती के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांकड़िया लेक परिसर में भारत माता की आरती की और आशीर्वाद का दिया जलाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में कोलकाता में भव्य दीपोत्सव का आयोजन। हजारों दीयों की रोशनी के साथ इलेक्ट्रिकल लाइटों से भी जबरदस्त सजावट की गई। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जलाया दिया। पीएम के जन्मदिन पर कोलकाता में की गई जबरदस्त आतिशबाजी। पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ आसमान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमग हुआ अयोध्या का सूर्य कुंड मंदिर। अयोध्या के सूर्यकुंड मंदिर में दीपदान और लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया। लेजर लाइट के जरिए रामायण के प्रसंगों का चित्रण किया गया। लोगों ने लेजर लाइट शो का आनंद लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के केवड़िया में जुलाई का 51,000 से ज्यादा दिए। केवड़िया में आयोजित दीपोत्सव में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम लोग और पर्यटक शामिल हुए।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जेएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की अमरावती से ये वीडियो आया है जहां श्री विघ्नहर्ता उत्सव मंडल में अपने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीरें जेएनटी के साथ शेयर की है। बप्पा का रंगों फुहारों के बीच स्वागत हुआ तो इस दौरान ड्रम की थाप पर खासकर बच्चे थिरकते हुए नजर आए। इसके बाद गजानन महाराज को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। सुखकर्ता की ये खूबसूरत तस्वीर अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर श्री विघ्नहर्ता उत्सव मंडल ने इसे हमें भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह से हमें मिली है। पवन रायकर ने इसे भेजा है और ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है जिसमें छोटे से प्यारे से बप्पा दिखाई दे रहे हैं, और इस प्यारे से वीडियो में गौरी पुत्र के प्रति पवन रायकर की आस्था भक्ति साफ नजर आ रही है। तो आप भी ऐसे ही वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो नंबर हमने टीवी स्क्रीन पर शेयर किया है उस पर। भारत में आईफोन के नए मॉडल्स की बिक्री आज से शुरू हो रही है। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होने से पहले ही स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग सुबह सुबह ही स्टोर के बाहर कतारों में खड़े हो गए। कई ग्राहक रात से ही कतार में खड़े थे ताकि नए मॉडल की सबसे पहले खरीदारी कर सकें। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में एप्पल स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और लोग स्टोर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आईफोन 18 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि नए मॉडल के प्रति लोगों का आकर्षण पहले ही जितना बना हुआ है। एप्पल ने 9 सितंबर को अपने नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च किए, जिनकी भारत में बिक्री आज से शुरू हो रही है, और इसके लिए लोगों की कतारें कैसे लगी हुई हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं। देखिए, ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं। आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं, तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खास तौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबर,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देश भर में गणेश उत्सव की भव्य रौनक, सूरत में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा गणेश पंडाल, भिलाई में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा इको फ्रेंडली गणपति पंडाल। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होगी। एप्पल स्टोर के बाहर रात से ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, HAL सौंपेगा तेजस FOC ट्विन सीटर ट्रेनर, HTT-40 और ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत।

0: भारत जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल। जापान में निसिन की कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल पर रहेगी भारत की नजर। तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया। सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में जड़ा तूफानी शतक।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपकी सांस दीपाली सिन्हा। मेरे सांस स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
3: जी। नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं आपके विचारों के बारे में। अपने विचारों में बदलाव करके आप जीवन में समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
3: अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी।
0: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पंडित जी, विचार हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं।
3: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं, देखिए ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते। अगर आपको ट्रिक पता है, तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल।
3: मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65

0: वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उससे लाभ या हानि कैसे होती है।
0: देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं।
1: आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी।

0: की काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न राहुल जी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। 26 जुलाई 1990 का जन्म है। 4:20 दोपहर में मुंबई, महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं आईटी के सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना चाहता हूं और उस क्षेत्र में मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? राहुल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। नौकरी आप अभी पा जाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, लेकिन अभी नौकरी आपको सामान्य मिलेगी। जो सामान्य नौकरी मिलेगी वो नौकरी कर लीजिएगा। 2028 के फरवरी के बाद आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तब तक आराम से सामान्य नौकरी करते रहिए। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपके विवाह होने का योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न अविनाश कुमार जी ने हमें लिखा है जहानाबाद बिहार से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 नवंबर 2002, 8:22 रात को पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी बीकॉम कर रही है, आगे किस करियर में जाना चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। अविनाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी बेटी को कहिए कि वो मेहनत करे, वो कोशिश करे, प्रयास करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में या आगे बढ़ने के लिए, उतना प्रयास नहीं करती हैं, आलस्य बहुत है और एफर्ट कम है। बीकॉम के बाद इनको बीएड करवा दीजिए और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इनको आगे बढ़ाइए, काफी बेहतर होगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए। और अपनी बेटी से कहिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेंगे कि अपने विचारों से खराब ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं।
0: देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें। ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उनसे छोटी छोटी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है।
0: देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खास तौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: मकर मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने हमें लिखा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 2006, 8:55 रात को, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है, आगे उसे एमटेक करना चाहिए या उसे नौकरी की तरफ जाना चाहिए? सत्येंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली है तुला लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप इनको बीटेक पूरा करवाने के बाद एमटेक की पढ़ाई करवाइएगा, क्योंकि अभी ये उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, आगे चल करके एमटेक कर पाना कठिन होगा, तो पहले एमटेक करवा लीजिए, उसके बाद ये नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अपने चौथे सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल आज किसका होने वाला है?
0: जी,

0: मुकुंदन कुमार जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखते हैं, 25 मार्च 1991 का जन्म है, 11 बजे रात में पटना बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा हूं, तो किस क्षेत्र में मेरा करियर बनेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मुकुंदन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जून 2027 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचना चाहिए। नौकरी पाने के लिए पटना से बाहर निकलिए, शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल में, लॉ में या किसी फैक्ट्री में आपको नौकरी मिलेगी इस साल के अंत में, लेकिन पटना से बाहर निकलना होगा। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का अगर नियमित जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर संतोषजनक बना रहेगा, इस साल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है और विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आगे बढ़ने का और पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन सा पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखिए, घर में कोई भी पौधा आप लगाते हैं वो अपनी तरंगों से पूरे घर को प्रभावित करता है। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, इसे घर के बीचों बीच में लगाएं या अपने सोने के कमरे के साथ वाली बालकनी में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: अब पंडित जी से जानेंगे कि शुभ पहर क्या होगा।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन की कमजोरी क्या है, जीवन की दिक्कत क्या है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है मन की चंचलता। इनको अपने मन की चंचलता पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह की दौड़ भाग से हमेशा बचना चाहिए।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने का महा उपाय क्या है।
0: अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे हुए गजानन का वीडियो बनाएं और हमें शेयर करें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: भारत में आईफोन के नए मॉडल्स की बिक्री आज से हो रही है और लोगों में इसके लिए जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होने से पहले ही स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग सुबह ही स्टोर के बाहर कतारों में खड़े हो गए। कई ग्राहक रात से ही कतार में खड़े थे ताकि नए मॉडल को सबसे पहले खरीद सकें। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में एप्पल स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों पहले से स्टोर खोलने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आईफोन 18 सीरीज के नए फोन को लेकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि नए मॉडल के प्रति लोगों का आकर्षण पहले जितना ही बना हुआ है। एप्पल ने 9 सितंबर को अपने नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च किए, जिनकी भारत में बिक्री आज से हो रही है। स्टोर्स में लोगों को नए आईफोन की डिलीवरी के लिए सुबह 8 बजे से ही स्लॉट दिए गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी कतारों में हैं जिन्होंने इसके लिए प्री बुकिंग नहीं की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सितंबर में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर और साच पास के पास के इलाकों में शानदार हिमपात हुआ है, जिसके कारण पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इन इलाकों में करीब 7 से 8 इंच बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन मशीनों के सहारे बर्फ हटाकर रास्ते खोलने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से कुछ समय के लिए मनी महेश यात्रा को रोकना भी पड़ा है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है और सैलानियों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित प्रशासन की टीमें भी इन इलाकों में तैनात हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत होने पर राहत सहायता पहुंचाई जा सके। हालांकि अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अब अयोध्या में अपने पिता और मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को एक खास अंदाज में सहेजने की तैयारी में हैं। अमिताभ बच्चन अयोध्या में अपने पिता के नाम पर एक मेमोरियल धर्मशाला बनवाने जा रहे हैं और इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि ADA में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। ये धर्मशाला दशरथ पथ के किनारे द सरयू प्रोजेक्ट में करीब 15 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन प्रस्तावित है। यानी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के साथ साथ ये जगह महान कवि हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को भी समर्पित होगी।
2: अमिताभ बच्चन वैसे तो कई तरह की सामाजिक सेवा करते हैं, लोगों की मदद भी वक्त वक्त पर करते रहते हैं, लेकिन अब हिंदी सिनेमा के महानायक भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो अपने पिता और मशहूर कवि स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में मेमोरियल धर्मशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने अयोध्या के दशरथ पथ के किनारे द सरयू प्रोजेक्ट में करीब 15 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, जो श्री राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ 20 से ज्यादा कमरों वाला मेमोरियल धर्मशाला के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में मेमोरियल के नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन किए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस आवेदन पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 15 दिन के अंदर लोगों से आपत्तियां मांगी है। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शे को स्वीकृति दे दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अक्टूबर से धर्मशाला बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण का कहना है कि अयोध्या भव्य स्वरूप को ग्रहण कर रही है और उसमें देश के सेलिब्रिटी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसी में से एक अमिताभ बच्चन भी हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस धर्मशाला के बनने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
3: हमारी अयोध्या इस समय भव्य स्वरूप को ग्रहण कर रही है, उसमें देश के विख्यात लोगों ने भी यहाँ पर अपना उसमें पार्ट अदा कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर जो हमारे प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा भी यहाँ पर एक धर्मशाला का नक्शा अप्लाई किया गया है, जो 20 कमरों के ऊपर है। वर्तमान में उसकी आपत्ति सुनवाई के क्रम में पेपर में उसको प्रकाशित कराया है। जैसे ही उसका समय पूर्ण होगा उसको हम लोग नियमानुसार परीक्षण करते हुए उसको स्वीकृति देंगे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी और व्यवस्थित फैसिलिटी उनको उपलब्ध हो जाए।
2: अमिताभ बच्चन के पास अयोध्या में जमीन के कई प्लॉट्स हैं, जिनमें द सरयू लग्जरी प्रोजेक्ट्स के पास 35 करोड़ रुपए में खरीदी गई 2.67 एकड़ जमीन और 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया 15,000 वर्ग फुट का प्लॉट शामिल है। राम मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर भी अमिताभ बच्चन पूरी आस्था के साथ अयोध्या पहुंचे थे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: ओडिशा के बालासोर के जंगल से 5 ओरंगुटान की रेस्क्यू ने सभी को हैरान कर दिया। आखिर ये 5 ओरंगुटान जंगल के बीच पहुंचे कैसे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 8 सितंबर को रेस्क्यू किए गए इन 5 ओरंगुटान को फिलहाल नंदकानन जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। यहां इनकी सेहत और खान पान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओडिशा के जंगल में ये 5 आखिर पहुंचे कैसे। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब इनके डीएनए टेस्ट भी किए जा रहे हैं। डीएनए जांच से इनके मूल और आपसी संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

0: ओडिशा के जंगलों से रेस्क्यू कराकर लाए गए इन पांचों ओरंगुटान की दुनिया फिलहाल यही नंदन कानन जू है। यहाँ ये कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी कुछ खाने की कोशिश करते हैं, तो कभी चुपचाप बैठे आसपास के नजारे लेते हैं, तो कभी अपनी शरारतों से ध्यान खींचते हैं। लेकिन इनकी इस हरकतों से अलग एक ऐसा रहस्य है जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। 8 सितंबर को ओडिशा के बालासोर के जंगल से इन पांचों ओरंगुटान को रेस्क्यू किया गया था। तभी से ये सवाल इनके सामने है कि ये पांचों आखिर ओडिशा के जंगल में पहुंचे कैसे। दरअसल ओरंगुटान मुख्य तौर पर बोर्निया और सुमात्रा के वर्षा वाले जंगलों में पाए जाते हैं, यानी इन पांचों का भारत में ओडिशा के जंगलों में मिलना खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी नजरें पांचों ओरंगुटान की सेहत को लेकर हैं। पांचों ओरंगुटान को लेकर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक सभी के छाती, पेट और सिर के एक्सरे किए गए हैं। जांच के लिए ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। सभी सैंपलों की लैब जांच अभी जारी है। शुरुआती ब्लड रिपोर्ट में एक ओरंगुटान में गंभीर एनीमिया पाया गया है और दो ओरंगुटान बच्चों में हल्का एनीमिया मिला है। टेक्निकल कमेटी की सलाह पर ओरंगुटान के बच्चों को जरूरी सपोर्टिव सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया गया है। देखभाल के बीच टास्क फोर्स ने पांचों ओरंगुटान के असल ठिकानों की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए इनके डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ब्लड सैंपल से ये पता चल सके कि इन ओरंगुटानों की असली पहचान और मूल जगह क्या है। लेकिन इसके लिए ऐसी लैब चाहिए जहां ओरंगुटान के डीएनए की तुलना करने के लिए सही सैंपल मौजूद हों। इसीलिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जांच की जंजाल से दूर इन पांचों की दुनिया फिलहाल नंदन कानन जू के इस छोटे से कमरे में सिमट गई है। समय पर दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, दवा मिल जाए और कोई इनका ख्याल रखने वाला पास हो, बस इनके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिससे पता चलेगा कि दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय सेना किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। वैसे तो भारतीय सेना हाईटेक उपकरणों और हथियारों के जरिए अपनी सामर्थ्य को बढ़ा रही है, वहीं साथ ही कुछ और भी तरीकों से अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में सेना के सेंट्रल कमान की ओर से अब कॉम्बैट डॉग्स को अहम ऑपरेशंस में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करने की नई तैयारी की गई है। इसके तहत मिलिट्री डॉग्स को और सुदूर इलाकों में भेजने के लिए पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी तस्वीरें हाल ही में जारी की गई हैं। देखिए रिपोर्ट में।

0: हजारों फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से पैरा जंपिंग की ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को नहीं मिलती। ये पैरा जंपिंग इस मायने में बेहद खास है कि यहाँ पर एक साथ तीन प्राणियों ने सेना के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाए। इनमें से दो इंसान हैं और तीसरा प्राणी एक डॉगी है। असल में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय सेना के एक कॉम्बैट डॉग ने अपने हैंडलर और पैराशूट के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने के बाद जमीन से काफी ऊपर एक पैराशूट खुलता है। उसके नीचे सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि एक कुत्ता भी है जो एक कॉम्बैट डॉग है। उसे हवा में नीचे उतरने की ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया है। ये कोई साधारण पैरा जंपिंग नहीं है, वास्तव में ये सेना की ओर से किया गया एक खास अभ्यास है। इसे मध्य भारत के बहट ड्रॉप जोन में अंजाम दिया गया। ये अभ्यास फौज के डॉगी के साथ किसी मिशन को पूरा करने की तैयारी के मकसद से किया गया। इसका उद्देश्य एयरबोन और दुश्मन वाले इलाकों में होने वाले ऑपरेशन के लिए सेना की ओर से मिलिट्री डॉग्स के इस्तेमाल को बढ़ाना है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमान सूर्य कमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस अनोखी पैरा जंपिंग का वीडियो जारी किया है, जिसमें फौजी डॉग अपने हैंडलर और पैरा ट्रूपर्स के साथ हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर रहा है। इस वीडियो और तस्वीर के साथ दिए गए संदेश में बताया गया है, हिम्मत सटीकता लड़ाई के साथ पूरी तरह तैयार रहने का शानदार उदाहरण पेश करते हुए #सूर्यवॉरियर के एक पैरा ट्रूपर ने लड़ाई का पूरा साजो सामान लेकर एक डॉग हैंडलर और उसके कॉम्बैट डॉग के साथ बेहद DZ पर टैंडम पैराशूट जंप किया। माना जा रहा है कि ये डॉग हैंडलर और उसके कुत्ते के साथ पहला टैंडम जंप है। इससे पहले कुत्ते के साथ फ्री फॉल जंप किए जा चुके हैं। ये जंप कुत्ते के साथ पहले किए गए फ्री फॉल जंप का ही एक अगला कदम है। ये सैनिक और कुत्ते के बीच के भरोसे, टीम वर्क और अटूट रिश्ते का एक शानदार सबूत है, जिसका मतलब है मिशन के लिए एक साथ पूरी तरह से तैयार। मिलिट्री डॉग्स और उनके हैंडलर्स और सैनिकों के बीच जो तालमेल अक्सर धरती पर चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में दिखता है, उसी को अब इस तरह से आसमान में भी दिखाया गया है, ताकि भविष्य में चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में सैनिकों के साथ कॉम्बैट डॉग्स का पुख्ता इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि कुत्ते लंबे समय से सेना की मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, खासकर आतंकवाद विरोधी और सर्च मिशन में इनका शानदार इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से सूंघने की क्षमता के कारण ये कुत्ते बड़े काम के होते हैं। मिलिट्री डॉग्स को विस्फोटक हथियार और इंसानों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही इन्हें मुश्किल इलाकों में लोगों को ट्रैक करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये इमारतों और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी में भी शामिल होते हैं और सैनिकों को खतरनाक इलाकों में घुसने से पहले आगाह करते हैं। जब सैनिकों को दुश्मन के इलाके में जाना पड़ता है, तब कॉम्बैट डॉग्स की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अमेरिका और भारत सहित कई देशों में सेनाओं की पैरा स्पेशल फोर्सेस पहले से ही कॉम्बैट डॉग्स का इस्तेमाल करती हैं। अब भारत में हुए हवाई अभ्यास के जरिए मिलिट्री डॉग्स को सेना के ऑपरेशंस में और भी पुख्ता तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
2: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बाप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुँच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त।
5: अमरावती में जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल, गजानन के साथ रथ पर सवार नजर आए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा।
4: आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें।
5: आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, HAL सौंपेगा तेजस FOC ट्विन सीटर ट्रेनर, HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना की बढ़ाएगा ताकत।
4: लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्ला फील, गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार।
5: हिमाचल प्रदेश के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी हुई, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
5: तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: शुभ समाचार की शुरुआत गणपति उत्सव के साथ करेंगे, मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की रौनक देखने लायक है, पंडाल भी शानदार भव्य तरीके से सजे हैं, सूरत और राजकोट में भी गणेश पंडाल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ गोल्डन गणेश लोगों पर शुभता का आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरे पंडाल को काशी विश्वनाथ की थीम पर सजाया गया है। ऐसे ही तमाम रंग दूसरे शहरों में भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरे रंग आगे आपको दिखाएंगे।
5: तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम बदल गया है, कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फ का सफेद श्रृंगार हो गया है और चंबा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिखरी हुई है, तो पहाड़ों का ये श्वेत श्रृंगार भी आपको दिखाएंगे।
4: इस बीच रक्षा क्षेत्र से अच्छी खबर है, आज भारत को आसमान की त्रिशक्ति मिलेगी, वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर का पहला बैच मिलेगा, पहले बैच में कुल 3 HTT-40 ट्रेनर विमान शामिल है, तो

0: 13 प्रो और प्रो मैक्स को सबसे पहले खरीद पाएं तो ग्राहकों का ये उत्साह भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: इसके अलावा बात क्रिकेट के मैदान की भी होगी। भारत ने अफगानिस्तान से T20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। इस मैच में अभिषेक शर्मा सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 बॉल में सेंचुरी जमा कर ये उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली है। अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी पारी से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी मैच में और भी रिकॉर्ड टूटे हैं, क्या है वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है सुबह 9 बजे की नौगन न्यूज का।
0: हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ गणेशोत्सव की भव्य रौनक छाई है। गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैसूर पैलेस की थीम पर सजे भव्य गणेश पंडाल में 25 से 30 किलो सोना और चांदी से बप्पा का दिव्य श्रृंगार किया गया है। करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स भी जड़े हैं। गणेश रूप में प्रसिद्ध है यहाँ के बप्पा गुजरात के सबसे महंगे। बप्पा को राजसी गहनों से सजाने की परंपरा करीब 30 साल पुरानी है। बप्पा को राजा की तरह पूजा जाता है।
1: भिलाई में भव्य इको फ्रेंडली गणपति पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की खास पहल पर तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम पर पंडाल सजा है। ये पंडाल 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। गणेश प्रतिमा 21 फीट ऊंची है। यहाँ प्रकृति और पक्षियों पर आधारित सजावट की गई है। पर्यावरण के अनुकूल चीजों से पंडाल को सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप देखने को मिला। बप्पा वारकारी रूप धारण किए हुए नजर आई। महाराष्ट्र की समृद्ध वारकारी परंपरा और विठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप, जिनके दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
1: रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज आई है। आज भारत को आसमान की त्रिशक्ति मिलेगी। भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर का पहला बैच मिलेगा। पहले बैच में कुल 3 HTT-40 ट्रेनर विमान शामिल है। दूसरा प्लेटफॉर्म LCA FOC ट्विन सिटर ट्रेनर वायुसेना को सौंपा जाएगा। पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में ध्रुव एनर्जी सिविल हेलीकॉप्टर शामिल होगा।
0: वुमेन्स एशियन गेम्स, आज भारत और जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। जापान में निसिन की कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होगा। ये पहला मौका है जो भारत और जापान आमने सामने होंगे। कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ओपनिंग करेंगी।
1: अभिषेक शर्मा सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 बॉल में सेंचुरी जमा कर उपलब्धि अपने नाम की है। अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी पारी से भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 बॉल में शतक लगाया था।
0: महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। प्रोड्यूसर प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। फिल्म में देव शर्मा श्री राम के किरदार में और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आने वाली है। शील वर्मा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
1: आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू हो गई है। इसके लिए एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही ग्राहकों की कतार लगी थी ताकि नए आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को सबसे पहले खरीद सके। इनमें से टेक रिव्यूअर, कंटेंट क्रिएटर और एप्पल के पुराने ग्राहक भी शामिल हैं। ग्राहकों का कहना है कि वो नए फीचर्स, कैमरा अपग्रेड और बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड है।
0: बीजिंग में चल रही 14वीं चाइना इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी में बिना पायलट वाले काउंटर अनमैन सिस्टम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। करीब 300 प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में शामिल हुए और सूचना आधारित रक्षा उपकरणों की लगभग 1000 नई उपलब्धियां दिखाई गई हैं। प्रदर्शनी में तेज रफ्तार बिना पायलट वाली नाव भी नजर आई, जिसके डिजाइन और टेस्ट की गई गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसे आपातकालीन बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शुभ समाचार की शुभ शुरुआत गणपति के साथ। पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और प्रयागराज तक गणपति उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सूरत में सोने और चांदी से सजे बप्पा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं मुंबई में हर गली, हर मोहल्ले और हर इलाके में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पंडालों की भव्यता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं पुणे में गणपति उत्सव का नजारा बच्चों को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। यहां बप्पा के लिए तैयार किया गया एक खास बाल पंडाल, जहां बाल गणपति के लिए आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट तक तमाम चीजों से इसको सजाया गया है। यानी बप्पा की भक्ति के साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ खास इंतजाम है, और यही वजह है कि इस बाल पंडाल में बच्चों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। तो देखिए किस तरह से बप्पा के तमाम रंग आपको दिख रहे हैं। शहर शहर बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है। गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, और हर घर, हर पंडाल और हर मंदिर में सिर्फ एक ही जयकारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से बप्पा को रिझाने में लगा हुआ है। बच्चों का भी खास ख्याल रखते हुए चॉकलेट से कहीं बप्पा को सजाया गया है, तो कहीं इको फ्रेंडली संदेश देते हुए पेन से, फूलों से, दालों से भी बप्पा की सजावट की गई है। देखिए देश भर में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बेहद सुंदर तरीके से गणपति बप्पा को सजाया गया है, पंडाल सजाए गए हैं। हमने भी गणपति बप्पा का विसर्जन किया है, उनकी स्थापना की थी। बेहद शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया था इस त्योहार को। और इसी बीच मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धि विनायक के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, जहाँ पर गणपति बप्पा की आरती की जा रही है। दिव्य पंडालों के दर्शन हम आपको GNT के माध्यम से करवा रहे हैं। आप घर बैठे दर्शन कीजिए सिद्धि विनायक मंदिर के, गणपति बप्पा की सुबह आरती के दर्शन आप कर सकते हैं।

0: तो गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन है। शहर शहर गणपति बप्पा की धूम है। हर शहर से हम आपको तमाम रंग दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय साबले जुड़ रहे हैं अकोला से। तो धनंजय जी, जरा दिखाइए आज आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह के रंग हैं, कितना जोश है गणपति बप्पा के भक्तों में।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मैं फिलहाल अमरावती में हूँ और अमरावती के इस पंडाल में जो गौरक्षण संस्था के अंदर आता है क्रांति विद्यालय मराठी माध्यम से, जिस तरीके से बाप्पा की मूर्ति या छोटी जरूर है लेकिन संदेश इतना बड़ा है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये संदेश बताया जा रहा है। क्योंकि इन दिनों जो है मराठी शालाओं को जो है बचाने की मुहिम को लेकर जो है इस पंडाल ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये संदेश महज अमरावती, अकोला या विदर्भ या इसके लिए नहीं है, तो संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए ये संदेश है। क्योंकि इन दिनों जो है मराठी शालाओं की घटती संख्या को देखते हुए मराठी लोग जो है वो बड़े चिंतित है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटी सी झांकी भी की है जहाँ पर टीचर एक वर्ग एक क्लासरूम में जो है बच्चों को एक दो सिखा रही है। और सबसे अहम बात यह कि इतना ही नहीं है, ये तो मराठी शाला बचाओ की मुहिम जरूर की है लेकिन साथ ही इन्होंने जो है जिस तरीके से भ्रूण हत्या है, गर्भलिंग का निदान ना करे, इस तरीके की भी जो बातें है, जो स्लोगन्स है यहाँ पर लिखे गए है, पानी बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर पंडाल ये बहुत छोटा जरूर है लेकिन संदेश पूरे महाराष्ट्र के लिए है। गीतिका जी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यहाँ के सेक्रेटरी है उमेश भाऊ, वो हमारे साथ है। हमेशा से ही तुम अलग अलग जो है थीम पर जो है पूरे महाराष्ट्र को अमरावती के गणेश के माध्यम से संदेश देते हैं, क्या कहेंगे?
2: मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी जो मातृभाषा है मराठी, महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वो टिकी रहे। अमरावती के शहर में ही यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अमरावती नहीं, पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा कम होते जा रही है और दूसरे वर्ग की भाषा ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम अगर मराठी देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जिला परिषद और केड़ेपाड़े में मराठी है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य रहता है कि पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मंडल कैसे मनाया जाए, गणेशोत्सव कैसे मनाया जाए। लोकमान्य तिलक ने जो कहा था कि सब मिलजुल के ये गणेशोत्सव होना चाहिए, जीरो बजट में कैसे गणेशोत्सव होना चाहिए। अभी जो कारपोरेट लुक सारे गणेशोत्सव में लिया है उससे हम थोड़ा दूर है, पॉलिटिकल टच हमारे मंडल में नहीं है। और हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा एक ऐसा देखा वाला आते हैं जो अमरावती की जनता को पसंद आए।
1: तो देखिए, उमेश जी ने जरूर कहा है कि जो हम थीम बनाते हैं वो थीम महज अमरावती पर सीमित नहीं होती, पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए होती। देखिए आप, दूसरी ओर यहाँ पर गौरक्षण संस्था है, सुबह ये गौ माता की यहाँ पर सेवा की जाती है और साथ ही जो गौरक्षक यहाँ पर आते हैं गौ माता को नैवेद्य खिलाने के लिए, वो जो लोग है वो इस थीम को जो है देखकर जो है
0: जी वो
1: बिल्कुल ये होते कि ये संदेश जो है, ये संदेश जो है
0: और बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। और बहुत अच्छी बात है ये कि ना सिर्फ सजावट की गई है, ना सिर्फ त्योहार मनाया जा रहा है बल्कि समाज में भी योगदान दिया जा रहा है एक सुंदर संदेश के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि गुजरात में भी गणेशोत्सव की रौनक देखने लायक है। खासकर सूरत और राजकोट में गणेश पंडाल हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। यहां पर एक तरफ डालिया शोरी गणपति पंडाल के गोल्डन गणेश लोगों पर शुभता का आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो वहीं राजकोट के जेके चौक राजा गणेश पंडाल को काशी विश्वनाथ की थीम पर सजाया गया है। बप्पा के इन दोनों ही पंडालों पर आस्था उमड़ी हुई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: गणेशोत्सव में कहीं भव्य दिव्य पंडाल सजे हैं जिनमें बप्पा के अद्भुत स्वरूप विराजमान हैं, तो कहीं अनोखी थीम से गणपति उत्सव को खास बनाया गया है। गजानन एक हैं, मगर उनके रूप अनेक, जिनकी दिव्य आभा पूरे देश में इन दिनों बिखरी हुई है। ऐसे ही एक खूबसूरत गणपति पधारे हैं सूरत के महिधरपुरा में। मैसूर पैलेस की थीम पर बने इस डालिया शेरी गणपति पंडाल में ये गोल्डन गणेश हैं, जिनके सुनहरे रूप को देखने उन्हें निहारने अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
1: ये आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं।
0: डालिया शेरी के गणपति बप्पा को सूरत के राजा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल करीब 25 से 30 किलो के सोना चांदी और अमेरिकी डायमंड से भगवान गजानन सजाए जाते हैं। बप्पा का मुकुट, हाथ, पैर, ये सभी सोने चांदी से बनाया गया है। यहाँ तक कि उनके नीचे लगाया गया गणपति महाराज का छोटा स्वरूप भी सोना चांदी और हीरे से तैयार किया गया है।
2: ये पिछले 30 साल से लगाए थे, ये जो सनगार आप देख रहे हैं वो पिछले 30 साल से है, तो इसकी जो कीमत है वो आप अंदाज लगा सकते हैं, पिछले 30 साल से और इस साल बहुत कंपेयर हो सकता है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल करने की वजह से ही डालिया शेरी के बप्पा को गुजरात के सबसे महंगे यानी कीमती गणपति माना गया है। सूरत के इस फेमस गणपति पंडाल में देर रात भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हर कोई बप्पा के इस मनोहारी और सुनहरे स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हो रहा है।
1: यहाँ आप देखेंगे भक्त भी यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी फोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति भाव के साथ साथ फोटोबाजी भी यहाँ पे लोग करते हैं, जैसा कि हर जगह धार्मिक स्थलों पे होता है। और ये सूरत की तस्वीरें हैं जो आपको हम बता रहे थे। मैसूर जो महल है, मैसूर महल से उससे प्रेरणा लेकर के यहाँ पर गणेश पंडाल बनाया गया है और भगवान गणेश की मूर्ति को यहाँ पर ज्वेलरी से सजाया गया है।
0: कुछ ऐसे ही बप्पा के दर्शनों की आस लिए लोग पहुंच रहे हैं राजकोट के जेके चौक राजा गणेश पंडाल में, जिसे काशी विश्वनाथ की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की खूबसूरत प्रतिमा के साथ मुख्य आकर्षण उनके वाहन चूहे भी है, और ये सफेद चूहे असली है। मोदकों को खाते ये सफेद चूहे यहाँ आ रहे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
3: शिव शक्ति युवा ग्रुप द्वारा गणेश महोत्सव हम 18 साल से कर रहे हैं, ये हमारा 19वां साल है, और इस साल हमने काशी विश्वनाथ की एक पूरी थीम बनाई है, उसमें काशी विश्वनाथ का पूरा मंदिर बनाया है, और बनारस घाट जो देख सकते हैं आप, एक ही साथ 500 से 700 लोग बैठकर दादा का दर्शन कर सके, ये हमारा इस साल नया है। और हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्मप्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेशोत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच भी रही है।
4: बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर साल अलग अलग होता है, और इस साल तो बहुत अच्छा है, बनारस के थीम ऊपर से है ये।
0: तो राजकोट हो या सूरत, शहर दर शहर देश भर गणपति बप्पा के पंडाल सजे हैं। बप्पा एक हैं, लेकिन उनका रूप और अंदाज ऐसा कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस एक टक उनके मनोहारी रूप को देखते ही रह जा रहे हैं। राजकोट से रौनक योगेश कुमार मजीठिया और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो गणेशोत्सव के रंग चारों ओर फैले हुए हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर सिर्फ एक ही गूंज है, गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। आज बप्पा को घर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं और इसी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चलिए चलते हैं धनंजय जी के पास। धनंजय जी, जो लोग गणेश को लेकर आते हैं, गणपति को लेकर आते हैं, वो लोग पांचवें दिन जो है, चौथे दिन भी कई लोग, पांचवें दिन भी गौरा भी आती है घर में और उन्हें भी विराजमान किया जाता है, तो जरा उसके बारे में बताइए कि ये पूरी कहानी क्या है।
6: देखिए, गणपति के स्थापना के बाद, गणपति बाप्पा के स्थापना के बाद जो है गौरी गणेश का भी आगमन होता है पांचवें दिन। आज घर घर जो है, मानो कल ही घर घर जो है वो गौरी गणेश की स्थापना की गई है। आज जो है, आज महाराष्ट्र में गौरी गणेश को लेकर जो है वो कलेक्ट्रेट छुट्टी होती है और सबसे अहम बात हुई कि आज गौरी गणेश जो है वो घर घर जो है, जिनके घर पर विराजमान होती है, जिनके घर पर स्थापना होती है, वहां पर जो है आज भोज का कार्यक्रम रहता है। मानो आज महाराष्ट्र में जो है लगभग जिनके लगभग कई घरों में जो है आज चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि गौरी गणेश का प्रसाद लेने के लिए जो है वो लोग बहुत पैमाने पर आते हैं। और इस गौरी गणेश को जो है घर में स्थापना करने का महत्व ये है कि गौरी गणेश आने के बाद जो है गौरी मानो गणपति बप्पा की जो है माँ, जो पार्वती माँ है, वो वहां पर आती है। क्योंकि देखिए, पुत्र तो उनका 4 दिन पहले उनकी स्थापना हुई है गणेश जी की, लेकिन गौरी माँ जो है वो 3 दिन के लिए उनकी स्थापना घर घर की जाती है। और सबसे अहम बात यही है कि इस दौरान जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट की जाती है। और इस पंडाल में जो, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहां पर भी एक बहुत अच्छी थीम जो है, मैं स्कूल बचाओ वाली नहीं है गीतिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इस स्कूल में, ये जो पंडाल में जो है, उस स्कूल में जो है अंधश्रद्धा जो है नहीं होने को ना, और जिस तरीके से विज्ञान है, विज्ञान के अलग अलग जो है यहाँ पर थीम भी बताए गए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे भी देखने आते हैं तो उनको ये थीम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से।
5: जी धनंजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303400992। ये नंबर कॉल के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो या तस्वीरों को शेयर करने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजिए तो उसमें अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखकर भेजिए। तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। ऐसे ही एक दर्शक शीतल भाटिया ने अहमदाबाद से अपने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीर गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर की है। नीली पगड़ी पहने बप्पा का यह स्वरूप बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइट से सजे विघ्नहर्ता की यह शानदार तस्वीर देखने वालों को एक नजर में ही भा जाएगी। तो वहीं बप्पा की प्यारी सी वीडियो में महाराष्ट्र के अकोला से संतोष पार्वती ने भेजी है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए
14: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या? अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धि विनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त।
17: मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति का दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से श्रृंगार किया गया। पंडाल का 703 करोड़ में हुआ बीमा।
5: अमरावती में जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल, गजानन के साथ रथ पर सवार दिखे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा।
17: आईफोन के शौकीनों के लिए आई गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शेयर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें।
5: लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड, गार्डन में दिखी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार।
17: हिमाचल प्रदेश के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से शुरू हो गई है। नए आईफोन की दीवानगी इस कदर छाई है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। स्टोर खोलने के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। हालांकि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में तो सुबह एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया। आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। हालांकि यंग जनरेशन में इसका खास क्रेज दिख रहा है। एप्पल के इन नए मॉडल्स में एडवांस कैमरा और दमदार प्रोसेसर युवाओं का खासा आकर्षण बन रहे हैं। और चलिए अब आपको दिल्ली के आईफोन की दीवानगी की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में देर शाम से ही ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। रात होते होते लोगों ने एप्पल स्टोर के बाहर कतार लगा ली। एप्पल स्टोर ने बाहर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम भी कर रखा था। तो देखिए किस तरह से लोगों के अंदर एप्पल फोन को लेकर जबरदस्त दीवानगी है कि वो रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए। और यही सिलसिला आपको हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल भी यही सिलसिला देखने को मिला था और इस बार भी यही तस्वीरें सामने आ रही
1: हैं। फोनों में बहुत इंटरेस्ट है। हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है जो 40,000 रूपए बढ़ाए हैं।
2: बस ये कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा फोन मिल जाए, बरगंडी कलर प्रो मैक्स, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
3: मैं तो एक बजे से आ रहा हूँ और मैं हर साल आता हूँ। मैं 70 प्रो लेने भी आया था और आज 18 प्रो लेने आया हूँ। मेरी पार्टी 18 प्रो मैक्स लेना है बर्गंडी कलर, बिकॉज उसका कलर काफ़ी नया कलर है और अच्छा कलर है। प्लस क्या कुछ नए फीचर भी आए हैं उसमें, आप उसमें AI का अपग्रेड वर्जन आया है। प्लस क्या है कैमरा का जो क्वालिटी है थोड़ी अपग्रेड की गई है और बैटरी भी थोड़ी पहले से बढ़ी है, तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि मैं तो अपने लिए अपनी बहन के लिए दोनों के लिए फ़ोन लूँगा।
0: तो दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल नजर आया। स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार थी और अंदर कर्मचारियों ने ग्राहकों के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। स्टोर खुलते ही कर्मचारियों ने तालियों के साथ ग्राहकों का स्वागत किया। स्टोर में सबसे पहले एंट्री करने वाले खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे।
4: मैं पंजाब से हूँ, सुबह 6 बजे से लेन लगा हूँ। दो लिते हैं फोन, 18 प्रो मैक्स दो लिते। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। पहली बुकिंग हमारी हुई थी, हमारे को पहले फोन मिला है।
5: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है। ये
6: बढ़िया लग रहा है, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 ले गए, एक नंबर का फोन। तो
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें बेंगलुरु से। बेंगलुरु में भी नए आईफोन की कुछ ऐसी दीवानगी देखने को मिली। यहाँ के मॉल ऑफ एशिया में एप्पल स्टोर पर रात से ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा थी। एप्पल स्टोर ने भी भीड़ को संभालने का खास इंतजाम कर रखा था। स्टोर के बाहर ग्राहक कतार में खड़े थे। स्टोर खुलते ही ग्राहक नया आईफोन खरीदने के लिए उमड़ पड़े। स्टोर के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया।
7: Just opened it, so definitely explored enough to know what are the features and all.
8: जी, मदरे से आगे परचेज किया है। मैंने 12 तारीख को बुकिंग किया था, जब ही उसका प्री बुकिंग स्टार्ट है उसी टाइम कर दिया था।
9: हम मैसूर से हैं सर। हाँ, हमारे टोटल 12 फोन हैं, 12 फोन हैं, सारे दोस्त आए हैं उनके साथ।
10: 12 फोन?
9: हाँ, 12 फोन खरीदे हैं, पूरे फ्रेंड्स सभी साथ हैं।
0: और अब माया नगरी मुंबई की तस्वीरों को देखिए, जहां पर जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले से आईफोन यूज करने वाले युवा अपना फोन अपग्रेड करने के लिए जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं और एप्पल स्टोर के यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं तालियां बजाकर, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो चुका है और इसका क्रेज हर शहर में देखने को मिल रहा है। मुंबई की तस्वीर आपके सामने।
6: 18 प्रो में अपग्रेड किया हुआ है. मेरा पहला वाला फ़ोन जो है वो 17 प्रो मैक्स था. अभी मैं 18 प्रो पे अपग्रेड हुआ हूँ. इसके iOS 27 इसमें लॉन्च हुआ हुआ है और ये iOS बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है कम्पेयर टू फोन के. इसमें बैटरी लाइफ इसमें अच्छा दिया हुआ है, कैमरा अच्छा दिया हुआ है, AI अपग्रेड किया हुआ है सीरी के साथ, प्लस सिक्योरिटी इसमें बहुत ही अपग्रेड किया हुआ है और इको फ्रेंडली फ़ोन है. इसलिए मैंने इसको प्री बुक करके इसको मैंने अभी मुझे 8:30 बजे डिलीवर.
0: सोचिए जरा, क्लासरूम में बच्चे सवाल पूछे और सामने से जवाब मिले, लेकिन जवाब देने वाला शिक्षक इंसान नहीं बल्कि एक AI ह्यूमनॉइड रोबोट हो. महाराष्ट्र के अकोला में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित रोबो शो 2026 में छात्रों के सामने AI रोबोट टीचर IRIS एरिस पेश किया गया. एरिस ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए, उनसे बातचीत की और बहुभाषी संवाद के जरिए दिखाई शिक्षा के भविष्य की एक अनोखी झलक. देखिए रिपोर्ट.
10: ये कोई फिल्मी किरदार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह सामने वाले की बात सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है और जवाब भी देता है. अकोला के रोबो शो 2026 में आयरिस AI रोबोट टीचर छात्रों और शिक्षकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
11: AI के वजह से एजुकेशन में काफी बेहतर पॉसिबिलिटीज आ रही है. पहले AI ट्यूटर्स जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं वो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ और इफेक्टिव बना देते हैं. इसके साथ AI अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स के थ्रू कंटेंट और पेस वो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेगा.
10: खास बात यह है कि आयरिस सिर्फ सवालों का जवाब देने तक सीमित नहीं है. AI बेस्ड तकनीक के जरिए ये छात्रों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा लचीला और रोचक बनाने में मदद कर सकती है. यानी क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाली बातचीत अब मशीन और इंसान के बीच भी संभव है.
11: AI बेस्ड टूल्स टाइम सेविंग होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, फॉर्मेटिव फीडबैक और लर्निंग एनालिटिक्स जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं. नेक्स्ट, वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशन से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सेफ इंटरैक्टिव वे में समझ सकते हैं. AI बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म से पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवेज मिलती है जो एंगेजमेंट को बढ़ाता है.
10: आयरिस की एक बड़ी खासियत है इसका इंटरेक्टिव नेचर. छात्र सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं और रोबोट फौरन प्रतिक्रिया देकर बातचीत को आगे बढ़ाता है. इससे बच्चों के लिए सीखने का अनुभव सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रहता बल्कि तकनीक के साथ एक लाइव इंटरेक्शन में तब्दील हो जाता है.
12: हमें अगर आगे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन करने हैं तो AI टीचर सबसे ज्यादा नेसेसरी है. अगर हमको AI नहीं आता तो हमारा कोई भविष्य ही नहीं है. आगे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन में AI नेसेसिटी है.
10: बहुभाषी संवाद इसकी एक और खासियत है. यानी भाषा की दीवार को कम करते हुए अलग भाषाओं में छात्रों से बातचीत करने की क्षमता. शिक्षा के क्षेत्र में यही तकनीक आगे चलकर उन बच्चों के लिए भी मददगार हो सकती है जिन्हें पारंपरिक तरीके से किसी विषय को समझने में मुश्किल होती है. रोबो शो में आयरिस ने सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि एक सवाल भी सामने रखा. क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स क्लासरूम का हिस्सा बन सकते हैं? फिलहाल आयरिस को इंसानी शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि शिक्षा में तकनीकी सहयोग की एक संभावित दिशा के तौर पर ही देखा जा रहा है.
13: और ये भारतीय बनावट का टीचर, ये रोल मॉडल, ये हमारे बच्चों के सामने रखा है ताकि आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक बड़ी मजाल हासिल करेंगे.
10: कल तक जिस AI को हम सिर्फ स्क्रीन के अंदर देखते थे अब वही AI इंसानी शक्ल में हमारे सामने खड़ा है, बातचीत कर रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है. अकोला का ये रोबो शो शायद भविष्य की उस क्लास का ट्रेलर है जहाँ किताब, शिक्षक और तकनीक तीनों मिलकर सीखने का एक नया अनुभव तैयार करेंगे. अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
0: और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर मां गंगा का मायका कहलाता है मुखबा गांव। ये गांव मां गंगा का शीतकालीन प्रवास भी है और इसी जगह पर समेश्वर देवता का पारंपरिक सेलकू मेला लगता है, जिसके तहत ध्यानी समारोह इस बार भी बेहद धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी ध्यानियों यानी कि विवाहित महिलाओं और पुरुषों ने रासो तांदी नृत्य कर मेले में पहाड़ी संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। तो वहीं इसी दौरान ग्रामीणों के साथ दूर दराज के गांवों से पहुंचे लोगों ने देव डोलियों का भी स्वागत किया। प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में व्यापार करने के बाद जब ग्रामीण अपने गांव वापस लौटते थे, तब इस खुशी में छिलको यानी कि मशाल की रोशनी में पारंपरिक नृत्य ये पर्व मनाते थे। मुखबा समेत करीब 8 गांव हैं, जिनमें रहने वाले लोगों का ये विश्वास है कि देवताओं की पूजा अर्चना और आशीर्वाद से क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली और नई फसल का आशीर्वाद मिलता है।
14: जो शिल्प मिला है, इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि जब यहाँ परिश्रमण हुआ था सीमा का, उस समय जो हमारे कुछ लोग गए थे और उन्होंने अपने भारत का जो हमारा कोर है वहां तक उनको दिखाया, उन्हें सब लेट हो गई थी आते हुए। कुछ लोग यहाँ से गए कि अभी बहुत लेट हो गई और लोग आए नहीं, कोई उनके साथ ऐसी भी घटना न घट जाए। समेश्वर देवता ने कहा सब ठीक होगा, तो जब लोग गए तो उनके पास जगे हुए कुछ झुलके थे हाथ में लेकर के, जब उन्हें सब लोग संपन्न मिले उसके बाद इन लोगों ने जो है उससे आग से खेलने लगे और आग के वो गोले बना करके उस दिन से वे घूमते परंपरा पड़ी है, ऐसा भी हमने सुना।
15: और चलिए अब बात T20 की कर लेते हैं। टीम इंडिया ने एक बार फिर से कमाल कर दिया, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 में 127 रनों से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 15वें ओवर में 94 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत ने सीरीज 3-0 से सीरीज अपनी झोली में डाल ली। मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक तो संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाया। वहीं गेंदबाजों में नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झटके, तो अक्षर पटेल को 2 विकेट जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को 1-1 विकेट मिला।
0: तो वहीं आपको बता दें अभिषेक शर्मा सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 बॉल्स में सेंचुरी जमा कर ये उपलब्धि अपने नाम की है। अभिषेक शर्मा ने अपनी इस तूफानी पारी से भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 बॉल में शतक लगाया था और अब अभिषेक शर्मा ने ये पारी 30 बॉल्स में खेली है।
15: तो वही विमेंस एशियन गेम्स, आज भारत और जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल खेल खेला जाएगा। ये मैच जापान में निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। ये पहला मौका है जो भारत और जापान की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मैदान में उतरेंगी। तो देखिए किस तरह से विमेंस एशियन गेम जापान में होने वाला है और सबको इंतजार है कि इस बार फिर से भारत जीत कर लौटेगा। ये मैच जापान में निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। ये पहला मौका है जब भारत और जापान की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में ये मैच खेला जाएगा।
0: और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों में मौसम ने अचानक से बदलाव लाया है और फिर बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह पर सफेद चादर सी बिछ गई है। इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। इस बर्फबारी का लोगों ने लुत्फ भी उठाया और इसको लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई इस बर्फबारी से तापमान में अच्छी खासी कमी आई है।

0: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
1: सीजन का पहला स्नोफॉल है, ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ है हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
0: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
2: हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है, ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है, वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहां पे मिलती है वो यहां पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहां पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
0: हिमाचल प्रदेश
3: और चलिए इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही अपने सोशल मीडिया पर फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए दीपिका चिखलिया की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ।
5: जरा सा गाना, पे सबको बात करनी है।
4: ओके
5: जल्दी।
4: गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई।
3: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणेशोत्सव का आज 5वां दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्ध विनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से हुआ श्रृंगार, पंडाल का 703 करोड़ में हुआ बीमा। अमरावती में जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल, गजानन के साथ रथ पर सवार दिखे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड, गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। तीसरे T20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, 30 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, भारत ने 127 रनों से हराकर सीरीज पर किया कब्जा।

आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे भाग्य बढ़ाने का एक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं। देखिए, ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि,
तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात कर

तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं, तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह

व्यवस्था चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें। ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खासतौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है,
आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: संसारिक सिनेमा है। सिनेमा हॉल में जब आप कभी गए हों, आपने एक पर्दा देखा होगा, व्हाइट कलर के पर्दे के ऊपर फिल्म चलती, आग भी लगती पिक्चर में, पानी भी बरसता, मारपीट भी होती, पर आप देखेंगे कि जैसी पिक्चर पूरी हो जाती, पर्दा में ना आग होती है ना पानी होता, वो व्हाइट का व्हाइट होता। उसमें आग लगी पिक्चर में पानी भी बरसता, पर्दे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपनिषद कहते संसार भी वैसा ही, ये थिएटर है, जगत भी एक थिएटर है, परमात्मा इसका डायरेक्शन कर रहा है, यहां होने वाली घटनाएं होती रहती, संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा का ये प्रोजेक्शन हाउस है, इस प्रोजेक्शन हाउस में, इस सिनेमा में, इस पिक्चर में हम लोग नाटक कर रहे हैं। छोटे छोटे रोल होते हैं, आप कर रहे हैं, एक हीरो है एक विलन है, परमात्मा इस पिक्चर का हीरो है, भगवान इस पिक्चर का हीरो है और शैतान इस पिक्चर का विलन है। बाकी हम लोग रोल कर रहे हैं, कुछ शैतान की तरफ से, कुछ परमात्मा की तरफ से। संसार को सत्य ना मानो, यहां तो ये नाटक खत्म होता है, पिक्चर खत्म होती है, ना हीरो विलन का दुश्मन होता, ना विलन हीरो का दुश्मन होता। कितनी फिल्मों में हीरो ने विलन को नहीं मारा और हर फिल्म में वही विलन मिलता, ऐसे तो कई विलन मर जाते अब तक, विलन की कमी हो जाती गद्दारों की। पर देखो तुम, गद्दार भरे पड़े निजी जिंदगी में, पिक्चर की जिंदगी में खत्म नहीं होते। नाटक है, नाटक चल रहा, नाटक खत्म, ना कोई हीरो ना कोई विलन। ऐसे ये संसार है, संसार का ये नाटक चल रहा है, यहां ना कोई अपना है ना कोई पराया है, अपना तो केवल परमात्मा है। दूसरी बात, हम सब परमात्मा के नाटक करने वाले परमात्मा के अंशज, परमात्मा के साथी। परमात्मा का नाम परमानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद से परिपूर्ण है, उन्हीं सच्चिदानंद परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, हम उसी परमात्मा के अंशी और अंशज। जैसे समुद्र की एक बूंद उचट जाए बाहर गिरे, होती बूंद है पर है समुद्र की, वैसे ही हम लोग भी परमात्मा की एक बूंद है, परमात्मा से उचट करके बाहर आ गए पर हैं परमात्मा की। अब बूंद दुखी कब हो सकती और हम दुखी क्यों हैं? बूंद ये माने मैं बड़ी कमजोर हूं, अकेली हूं, टूट जाऊंगी, सूख जाऊंगी, कोई मुझको उठा लेगा, कोई मुझको खत्म कर देगा, तो वो दुखी रहेगी। और बूंद ये माने मैं कहां खत्म होऊंगी, मुझे कौन ले पाएगा, अरे मैं तो परमात्मा की बूंद हूं, वो बूंद सागर, जो सागर की बूंद होती वो यदि कहे मैं सागर की बूंद हूं, वैसे ये जीव कहे मैं परमात्मा का जीव हूं, तो हम कभी दुखी नहीं रह सकते, हमेशा सुखी रह सकते। परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का, ये जान लिया जाए, मान लिया जाए, तो आदमी दुखी नहीं रह सकता। पर हमारी एक आदत है, जानते हैं मानते नहीं, मानते तो हम पड़ोसी का, पड़ोसन के हैं, पत्नी के हैं, लुगाई के, पति के हैं, प्रेमिका के हैं या प्रेमी के हैं, अथवा इस घर के हैं, इस जगह के हैं, है? अरे पागलो, यहां कोई किसी का है, कोई किसी का रहा, अरे तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे हाथ में, कई लोग हमें मिलते, हमारे हाथ में तो सब कुछ है, आप आज्ञा करो हम सब कर देंगे, उनसे पूछा जाए तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है? यहां सब परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा। जो कर रहा वो भी परमात्मा कर रहा, और जो करवा रहा वो भी परमात्मा करवा रहा। इसलिए मेरे पागलो, दुखी रहना है तो ये मानो हम कर रहे, और सुखी रहना है तो ये मानो परमात्मा करवा रहा है। हमसे सीखो कितने कॉन्फिडेंस में जीते हैं। अंग्रेजी आती नहीं पर जीते। हमसे सीखो जेब में भले ही फूटी कौड़ी नहीं होती पर चाल अपन सम्राटों जैसी चलते, बातें अपन बादशाहों जैसी बोलते, फूटी कौड़ी जेब में नहीं। अरे भैया, यह अपना क्या, जो है सब इनका है। और हम जब भी कथा पे बैठते या दरबार पे बैठते या भभूति बांटने बैठते, एक ही बात बोलते हैं, हमारे मुंह से जो निकले वो ठीक ठाक निकलवाना, क्योंकि नाक भी तुम्हारी कटनी है और जय भी तुम्हारी बुल्ली। आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा तो तुम हो भैया। अपनी इज्जत बचाना, हम बैठे मंच पे, और सच में यही होता, वो दयालु है, लाज रख देते हैं, कृपालु है, कृपा कर देते हैं। मेरे पागलो, तुम्हें भी यदि दुखी रहना तो ये मानो तुम कर रहे, सुखी रहना ये मानो परमात्मा करवा रहा। हम भक्त ना बन पाए तो चलेगा, पर किसी भक्त के चरणों को पकड़ ले तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, गज और ग्राह की। एक हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, आपने ये कथा सुनी। भगवान बचाने आते हैं श्री हरि विष्णु, जब बचाने आते तो भगवान ऐसे ही भागते पैदल, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे से गरुड़ जी आते, प्रभु कहां भाग रहे? अरे भगवान बोले तुम्हें लेट हो जाता इसलिए हम स्वयं भागे। क्यों? बोले यहां नीचे पृथ्वी पर एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया हाथी का, हाथी डूब रहा, वो हमको पुकार रहा है, बुला रहा, तो उसको बचाने जा रहे। गरुड़ जी बोले महाराज हमें बता देते हम जल्दी ले चलते, आप अकेले अकेले आ गए। भगवान बोले क्या बताएं, इमरजेंसी थी, क्षमा क्षमा। गरुड़ जी बोले प्रभु कोई बात नहीं, पर अब आप रुक क्यों गए? भगवान बोले भैया हम ये सोच रहे पहले हाथी को बचाएं कि मगरमच्छ का उद्धार करें। गरुड़ बोले जय हो प्रभु, एक सेकंड का भी टाइम नहीं था, अब सोचने का टाइम मिल गया। भगवान बोले तुम ही बताओ। दो दुविधाएं आ गई, हाथी पुकार रहा उसको बचाना है, पर पहले क्या करें? गरुड़ जी बोले जो आपको बढ़िया लगे वो करो। भगवान बोले भैया पहले हम हाथी का उद्धार नहीं करेंगे, जिसने पैर पकड़ रखा उसका उद्धार करेंगे। वो कथा कहती भगवान ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन छोड़ा, मगरमच्छ का सिर काट कर उसका उद्धार किया। तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपको पुकारा हाथी ने, बुलाया हाथी ने, प्रार्थना हाथी ने की, और आपने उद्धार सबसे पहले मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान बोले जो हमारा भक्त है उसका तो भला होना ही है, जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका पहले भला कर देते। ये हमारा स्वभाव है, कोई हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता ना उसका हम पहले उद्धार कर देते। मेरे पागलो, मेरे प्रियजनों, लंदन वासियों, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो कोई बुराई नहीं, भगवान के भक्त के चरण पकड़ ले उसमें ही बेड़ा पार हो जाए। जब कभी उस पर भगवान की दया होगी तो तुम पर भी हो जाएगी, उस पर कभी भगवान की दृष्टि कृपा दृष्टि परसेगी तुम पर भी बरस जाएगी। तो भगवान का स्वभाव तो कृपामय है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपामय स्वभाव है, उन्हें कृपा करनी पड़ेगी, यदि वो दया ना करेंगे, हम लोग दीनों पर दीनानाथ यदि कृपा ना करेंगे कौन भगवान को भजेगा, कौन पुकारेगा, कौन आएगा इनके दर पर? इनका काम है कृपा करना, इनका काम है दया करना। इसलिए मेरे प्रियजनों, अब तक जो जिंदगी खोई सो खोई, अब व्यर्थ ना गवाना, अब हो जाना परमात्मा के, पकड़ लेना इनके चरणों को, यही सच्चा सुख है। यही सच्चा आनंद है। इसमें जितना आनंद है ना कहीं नहीं दुनिया में, उनके हो जाना जिनने तुम्हें बनाया है, उनको पुकारना जिनने तुम्हें बनाया है, आवाज दी उनको धन्यवाद देना, जिन्होंने तुम्हारे हाथ दिए उनकी सेवा कर लेना, उनकी ना सेवा कर पाओ ना चलेगा, परमात्मा की सेवा करना तो बड़ा कठिन है पर परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करना भी उनकी सेवा है। सबको भगवान ने बनाया, दीनों की सेवा करना, भूखे को भोजन, विदेशों में बुरा ना मानना, तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी आ जाती सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, खुद के लिए भर जीते हो। आदमी वो नहीं है जो केवल खुद के लिए जीता, आदमी वो है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता है। मनुष्यता का मतलब ये, और ये भाव नहीं रखना चाहिए कि वो हमें धन्यवाद नहीं देते, हम अच्छा करते लोग बुरा करते, ये दुनिया का काम है तुम अपना करो। कुत्ता का काम भौंकना है, मधुमक्खी का काम काटना है, पानी का काम बहना, हवा का काम चलना, सबके अपने अपने मूल तत्व, बर्फ का काम ठंडक, अग्नि का काम जलाना, तो तुम अपना करो, तुम्हारा काम सेवा। अब हम भारत में कुछ भी करते दोनों प्रकार के लोग मिलते, अच्छी बात करें, सनातन की बात करें, हिंदुत्व पर बोले, स्वाभाविक है विरोधी हमें गाली देते, पर इसका मतलब यह थोड़ी हम अपना काम छोड़ दें, हम अपनी सेवा छोड़ दें। कन्या विवाह कराते, जिन बेटियों का विवाह नहीं करा पाते वो बद्दुआ देते, क्योंकि इतनी व्यवस्था तो है नहीं, जितनी हो पाती उतनी कर पाते, 200-300 बेटियों के विवाह में ही कम से कम भारतीय अनुसार 10 से 12 करोड़ लग जाते लगाना, लेकिन जिनका ना हो पाए वो बद्दुआ देती। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम काम छोड़ें, इसका मतलब ये थोड़ी हम सेवा छोड़ें, कोई गाली दे इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने काम को बंद कर दें, ना और मैं अपने काम को क्या बंद करना, हम जो कर रहे वो करें, जमाने को अच्छा कहना बुरा कहना वो उसका काम, हमें भरोसा है वो जब कहेगा बेहतर ही कहेगा, भगवान तो अच्छा कहेगा, परमात्मा तो अच्छा कहेगा, ठाकुर तो अच्छा करेगा, और बुरा ना मानना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में जाके तुमने जल चढ़ा दिया तो तुम धार्मिक हो गए। महाराष्ट्र के एक संत हुए संत एकनाथ, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े प्रसिद्ध, गंगोत्री गए, गंगोत्री से जल लिया, जल लेकर के रामेश्वरम पैदल जा रहे थे, रामेश्वरम गंगोत्री से पैदल, पुराना जमाना, 6 माह लग गए पैदल चलते चलते, ना दिन देखी ना रात, गंगा जल हाथ में लिए रामेश्वरम में, जे रामेश्वर दर्शन करी, दर्शन जो करेगा जल चढ़ाएगा, जो गंगा जल आन चढ़ाही वह सायुज मुक्ति को पाता, ऐसी महिमा है वर्णन। गंगा जल लिए गंगोत्री से रामेश्वरम तक 6 महीने तक पैदल चले, क्या दिन और क्या रात, लेकिन पहुंचने ही वाले थे रामेश्वरम, कोई 5 माइल बचा होगा रामेश्वरम, एक पेड़ के नीचे तपती दोपहरी, दोपहर के 12 बजे एक बूढ़ा आदमी बैठा और एक गधा तड़प करके फड़फड़ा रहा था पैरों को, बेचारा फड़फड़ा रहा था, तड़प रहा था। संत एकनाथ की दृष्टि पड़ी, रास्ते से थोड़ा अंदर आए, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बूढ़े आदमी से पूछा, भैया भैया भैया क्या बात है, और ये गधा क्यों तड़प रहा, इस जीव को क्या हो गया। वो बूढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा था, बेचारे की आंखों में आंसू थे, उसने हाथ जोड़ के कहा, महात्मा आपका भेष देखकर लग रहा आप संत हैं, आप कोई साधु हैं, भगवान महात्मा क्या बताएं, हम बूढ़े हो गए, पास में कोई पानी का जलाशय नहीं है, ये प्यासा मर रहा है, इसने पानी नहीं पिया ना, तपती दोपहर है, प्यासा मर रहा है, आप यदि बुरा ना माने कहीं से जल ले आए, ये बच जाएगा। संत एकनाथ ने सोचा, हम तो 6 महीने पैदल चलकर आए, गंगा जल लेकर रामेश्वरम में जाकर चढ़ाना है, और ज्यादा दूर नहीं बचा, 5 माइल बचा, एक दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि अभी इसको ना पिलाया ना ये मर जाएगा, जल तो हम दोबारा भर लेंगे, दोबारा चढ़ा देंगे, पहले इसके प्राण बचाने हैं। अपनी गंगा जल की पोटली निकाली, लो दादा पिलाओ, और जैसे ही पिलाया वो जीव वो गधा तुरंत खड़ा हो गया, भागने लगा। भागते ही भागते, देखते ही देखते, उसी गधे के अंदर तुरंत भगवान रामेश्वरम नाथ महादेव प्रकट हो गए।
1: भोलेनाथ प्रकट भए।
0: भगवान शंकर त्रिभुवनपति त्रिपुरारी महादेव कराग्र में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, त्रिपुंडधारी भगवान विश्वनाथ रामेश्वरम नाथ खड़े हो गए। बोले, बाबा तुम जल चढ़ाते तो शायद हमारे दर्शन ना हो पाते, पर तुमने जीव में शिव देख लिया, हमारे दर्शन हो गए। ये धर्म है, ये सच्चा सनातन है, ये है सेवा। अब तुम शंकर जी को तो जल चढ़ा रहे, और तुम्हारे मां बाप प्यासे मर रहे, भूखे मर रहे, और तुम कहते हम सनातनी हैं। तुम सनातनी ना हो भैया, जीवों पर दया करो, जीव की हिंसा मत करो। सब में ब्रह्म को देखो, ईशावास्मिदं सर्वम्। सब जगह परमात्मा के दर्शन करो, सब में भगवान है। चाहे वो इंग्लैंड वाले हों, अमेरिका वाले हों, अथवा यूरोप वाले हों, सब में परमात्मा है, सबके अंदर व्याप्त है। ये भाव रखो, ये मन में श्रद्धा रखो। आप जब सब में भगवान को देखने लगोगे ना, आपको भगवान महसूस होने लगेगा, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, फिर किसी से तुम्हारा बैर नहीं बचेगा। गालियां भी कोई देगा ना, यही लगेगा हमारा भगवान दे रहा है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणेश उत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग राजा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धि विनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति का दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से हुआ श्रृंगार, पंडाल का 703 करोड़ में हुआ बीमा। अमरावती में जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल, गजानन के साथ रथ पर सवार दिखे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लोर फील्ड गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे दो संतों का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुंबई के किंग सर्कल स्थित जीएसबी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है जीएसबी सेवा मंडल। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानन, 703 करोड़ रुपए का कराया है बीमा। गणपति के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़, बच्चे जगह जगह बना रहे हैं रंग बिरंगी रंगोली। गजानन के दर्शन के लिए भक्तों के लिए यहां पर भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, इस बार अपना 72वां साल मना रहे हैं ये मंडल। नवसा पावनदरा विश्वचा राजा के रूप में की जाने वाली ये परंपरा है और यहां पर महागणपति इसी रूप में सजाए गए हैं, भक्तों के हर मनोकामना पूरी करते हैं। सूरत के महेदरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बप्पा का दिव्य श्रृंगार, जड़े हैं करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स। गुजरात के सबसे महंगे गणेश रूप में प्रसिद्ध है यहां के बप्पा, करीब 30 साल पुरानी है बप्पा को राजसी गहनों से सजाने की परंपरा। आभूषणों की कुल कीमत करोड़ों में, गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ छाई गणेश उत्सव की भव्य रौनक। पंडाल में रोजाना सुबह शाम हो रही है भव्य महाआरती, मन्नत पूरी होने पर भक्त ने बप्पा को अर्पित किए चांदी के मूषक, श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे चांदी के छत्र और छोटे घर। महेदरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, पंडाल की नक्काशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक, बप्पा के मुकुट बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद खास। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ धाम। 21 फीट ऊंची चंद्रपुर के राजा की सुंदर प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल। विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप किया गया साकार, मंदिर की नक्काशी सजावट और भव्यता भक्तों को करा रही है जगन्नाथ धाम का एहसास।

भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है पंडाल, अनोखी थीम लोगों को कर रही है आकर्षित। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की खास पहल, तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम पर पंडाल, 140 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा गणपति पंडाल। इक्कीस फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, प्रकृति और पक्षियों पर आधारित सजावट, पर्यावरण के अनुकूल चीजों से सजा पंडाल, सूखे पत्तों और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल। बांस से भी की गई है खास सजावट, मिट्टी की मटकियों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती, सूखे तालपत्र और कमल से सजी दीवारें, बेल फल के खोल भी सजावट में शामिल है। कोलकाता के 50 कारीगरों ने तैयार किया भव्य पंडाल, आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यावरण का संदेश, भक्ति संस्कृति और प्राकृतिक का अनोखा संगम। अमरावती में दिखा भव्य आध्यात्मिक नजारा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। रथ यात्रा की झांकी के दोनों ओर बनाई गई मंदिर नुमा रचनाएं, एक मंदिर में गणपति बप्पा तो दूसरे में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित। भक्तों को एक ही जगह पर हो रहे गणपति बप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन, अनोखे पंडाल को देखने के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। पुणे में भक्तों और पर्यटकों का मन मोह रही है बप्पा की अनोखी मूर्ति, 21,000 पानीपुरी से हुआ है प्रतिमा का निर्माण। इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीर खींचने के लिए भक्तों की भीड़, इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति की श्रेणी में ये नायाब प्रयोग। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़, गणेश उत्सव पर तैयार की गई वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति, करीब 120 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है भव्य पंडाल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं, विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम, मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया, पुणे के आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी बेहद ही खूबसूरती से ढाली गई है, हर बारी की पंडाल में देखने के लिए मिल रही है आस्था और कला का अद्भुत संगम। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए दर्शन, भस्म आरती में शामिल हुए। तिरुपति पहुंचे राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तिरुमाला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रार्थना की। राज्यपाल ने ब्रह्मोत्सव के दौरान आयोजित प्रसिद्ध मुथुप्पु पंदिरी वाहन सेवा में भाग लिया, भगवान का लिया आशीर्वाद। अलवर में उज्जैन के महाराज और राजस्थान के लोक देवता भृतहरि बाबा मेला शुरू हुआ, आसपास के राज्य से आए लाखों श्रद्धालु। धार्मिक मेले के शुरू होते ही भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधाओं का रखा जा रहा है खास ख्याल, मान्यता है कि अरावली की वादियों के बीच महाराज भृतहरि ने की थी तपस्या और यहां पर ली थी समाधि। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, देश के पहले और दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन फ्लावर फील्ड्स का हुआ उद्घाटन। 10,600 फीट पर खुला है ये ट्विन फ्लावर फील्ड, 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है सुंदर गार्डन। गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार, जिनमें 24 लाख लिली और 1 लाख ग्लेडियोलस शामिल है। रिकॉर्ड 2 महीने में तैयार किया गया है यह उद्यान। चोगलमसर में 16 जुलाई को शुरू हुआ पौधे लगाने का काम और सितंबर के पहले हफ्ते में पहली बार फूल खिले। फूलों की खेती के जरिए कृषि में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश, लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना इस पहल का मुख्य उद्देश्य। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू, देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लाइन। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में सुबह एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हुई, आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली ही नहीं एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का

0: क्रेज देखने को मिला। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर भी सुबह से ग्राहकों की भीड़, लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में भी देखने को मिल रही है आईफोन की दीवानगी, भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने भी किए थे खास इंतजाम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: गणेश उत्सव का आज 5वां दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति का दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से हुआ श्रृंगार, पंडाल का 703 करोड़ में हुआ बीमा। जालना में भक्तों को मिल रहा है बप्पा के स्वर्ण चरण के दर्शन का सौभाग्य, लालबाग के राजा की तरह ही की गई व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड, गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। राजस्थान के बारां में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे दो संतों का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश में जगह जगह गणेश उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार भी हो रहा है और अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान से विराजे हुए हैं। पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। ऐसे में मुंबई में गणपति उत्सव के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग थीम पर बनाए गए पंडालों के साथ बप्पा की प्रतिमाओं को भी अद्भुत और अलौकिक रूप से सजाया गया है।

0: विघ्नहर्ता के पधारने के बाद से पूरे देश में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हर दिन भक्तों का रेला उमड़ रहा है। यूं तो बप्पा के 32 स्वरूप हैं, लेकिन सबसे अलग और मनोहारी रूप हैं लालबाग के राजा, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए हर रोज लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर आम और खास पापा के इस रूप के दर्शन के लिए उमड़ता है। एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक लालबाग चौराजा के दर्शन में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं है, चर्चा परेल के राजा की भी है, क्योंकि इस बार पापा ने वारकरी विठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ पापा सबसे अलग, सबसे निराली नजर आते हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस बार प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दिया गया है।
1: मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नई अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत रही है। इस साल भी भक्त बप्पा को देखकर गदगद हैं। अब आपको घाट कोपर लिए चलते हैं, जहां भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है, जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम में बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
1: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूं। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय, और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं, और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
2: बस ठीक है सर।
1: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है, थोड़ा बताओ।
2: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है, और साथ में है नव ग्रह, जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं, और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
0: 52 साल के वक्त से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आस्था गहरी है।
3: तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतने मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने, वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति
4: है। और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं, लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोगों से मिलते हैं और ना खुशियां बांटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है, ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: गणेश उत्सव में बप्पा को अलग अलग थीम वाले पंडालों और रूपों में विराजित किया गया है। मुंबई में एक बेटे ने अपने पिता के पेशे और उनके संघर्ष को समर्पित एक गणेश पंडाल सजाया है। ऑटो रिक्शा मॉडल में भगवान गणपति की स्थापना की है और साथ में पिता का कटआउट लगा दिया है।
5: 2021 में जैसे हम लोग ने मुंबई लोकल ट्रेन बनाया था मिनिएचर कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद हर साल के जैसे मुंबई लोकल हुआ, बस ट्राम हुआ, फिर BST हो गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मुंबई के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूटिलाइज करके हम लोग गणपति को फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। तो ये साल मुझे कॉन्सेप्ट था कि ये साल मुझे डेकोरेशन मेरे डैडी को डेडिकेट करना है, तो मुंबई का जो रिक्शा है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये साल बापा को मैं मुंबई रिक्शा में बैठाता हूँ, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट उसमें बन सकता है।
0: ऑटो रिक्शा मॉडल के अंदर बप्पा और बाहर चश्मा लगाए खड़े उनके पिता का ये कटआउट न सिर्फ गणपति इंस्टॉलेशन की एक अनोखी मिसाल है, बल्कि पिता पुत्र के बीच मजबूत रिश्ते की इमोशनल कहानी भी बयां कर रही है। मुंबई के किंग सर्कल की GSB महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है, यहाँ इस साल 66 किलो से ज्यादा सोना, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से बप्पा का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। महागणपति के गणेशोत्सव को 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है, लेकिन GSB महागणपति की पहचान सिर्फ सोने और चांदी की चमक नहीं, बल्कि यहाँ की वैदिक परंपरा, पूजा, सेवा और हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए होने वाला अन्नदान भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों अलग ही रौनक है। बप्पा की भक्ति में हर कोई लीन है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। पुणे और नागपुर में भी गजानन के एक से बढ़कर एक पंडाल और प्रतिमाएं तैयार की गई हैं।

0: देश भर में अनोखी थीम पर गणपति पंडाल सजे हैं और गजानन एक से बढ़कर एक स्वरूप इन पंडालों में विराजमान है। मैसूर पैलेस की थीम पर बने इस डालिया शहरी गणपति पंडाल में गोल्डन गणेश स्वरूप दिख रहा है। यहाँ करीब 25 से 30 किलो के सोने चांदी और अमेरिकी डायमंड से भगवान गजानन सजाए गए हैं। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर, ये सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि उनके नीचे लगाई गई गणपति महाराज का छोटा स्वरूप भी सोने चांदी और हीरे से तैयार किया गया है।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं।
0: डालिया शहरी के गणपति बापा को सूरत का राजा भी कहा जाता है। बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल करने की वजह से डालिया शहरी के बापा को गुजरात के सबसे महंगे गणपति माना गया है।
2: ये पिछले 30 साल से लगाए थे, ये जो शनगार आप देख रहे हैं वो पिछले 30 साल से है, तो इसकी जो कीमत है वो आप अंदाज लगा सकते हैं, पिछले 30 साल से और इस साल बहुत कंपेयर हो सकता है।
0: अब ओझर के विघ्नहर बाप्पा का शाही अंदाज देखिए। यहाँ 200 साल पुराने करोड़ों के गहनों से विघ्नेश्वर का श्रृंगार किया गया है। पेशवाकालीन ठाट बाट में बाप्पा के स्वर्ण रूप की झलक पाने के लिए यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुणे से 85 किलोमीटर दूर कुकड़ी नदी के किनारे बसा है ओझर का श्री विघ्नहर मंदिर। यहाँ गणेशोत्सव पर बाप्पा का सबसे शाही श्रृंगार किया गया है। सिंदूर लेपित स्वरूप मूर्ति, बाईं ओर घूमी हुई सून और आंखों नाभि में जड़े हीरे, यहाँ बाप्पा को पेशवा काल के 200 साल पुराने सोने के गहने पहनाए गए हैं। माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदूरा। हर हार की कीमत लाखों में, पूरा श्रृंगार करोड़ों का।
3: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंठीहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उस पे भी पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
0: बाप्पा का ये इकलौता मंदिर है जहाँ सोने का कलश और शिखर है। खास बात तो ये है कि आभूषण से सजे बाप्पा के इस अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन भक्त सिर्फ साल में दो बार ही कर पाते हैं, एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और दूसरा माँ शुक्ल चतुर्थी के मौके पर।
4: 1785 को बनाया गया है, तभी से पुरानी अलंकार तो है और देवस्थान ट्रस्ट ने नया अलंकार भी बनाया, सब सोने का अलंकार इधर रहते और वो सब पहनाए जाते
0: हैं। पुणे में गणपति बाप्पा का एक ऐसा मंडप तैयार किया गया है जिसे देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान रह गए। चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजे इस अनोखे बंगले में गणपति बाप्पा विराजमान है। थर्माकोल की मदद से चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी और बिस्किट की आकर्षक आकृतियां तैयार की गई हैं। ये तस्वीरें पुणे के FC रोड की है जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर तैनात है। आयोजकों का मानना है कि 21,000 पानीपुरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने के बजाय इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। ये है पुणे का सबसे प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो गणेशोत्सव के दौरान इन दिनों सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
5: दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में है, इस बार इसे प्रेम मंदिर कहा जा रहा है। आप देख सकते हो भीड़ जुटी है भक्तों की, और गणपति मेरे महादेव का जो उनका मुकुट है वो पहने हुए हैं, गणेश जी है हाथ में मोदक है, और पुणे का सबसे बड़ा गणेशोत्सव यहाँ किया जाता है। पुणे में 5 मानाचे गणपति, यानी कि पहले 5 रेपुटेड गणपति है, उनके अलावा ये अहम गणेश है जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है।
0: इस पंडाल की थीम वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को भी बेहद करीने से उकेरा गया है, जो इस पंडाल में खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
6: ये सब गणेश जी जो विराजमान हुए हैं उनके द्वारा ये पूरा चैतन्यमय प्रेम मंदिर हो गया है, नहीं तो वो एक सेट हो सकता था, लेकिन गणेश जी के स्थापना से यहाँ चैतन्य
5: जिंदा दिल बनाया गया है।
6: यहाँ चैतन्य की लकीर ये भक्तों की श्रद्धा से ये बढ़ गई है।
0: ये नजारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां एक ही पंडाल में भक्तों को लालबाग के राजा और साई बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त बाबा के दर्शन के साथ साथ साई बाबा के भी दर्शन कर पा रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु दोनों भगवानों के दरबार में माथा टेक रहे हैं।
7: भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साई बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साई बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे, और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साई बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है, और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साई बाबा की बनाई गई है।
0: नागपुर में गणेशोत्सव की भव्य धूम है। शहर में मशहूर दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई गई है, यानी नागपुर में ही श्रद्धालुओं को आलंदी तीर्थ की झलक मिल रही है। नागपुर के महल इलाके में बने इस पंडाल में भक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। कारीगरों ने महीनों की मेहनत के बाद आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर को यहां साकार किया है। हर छोटी बड़ी बारीकी का खास ख्याल रखा गया है। दक्षिणा मूर्ति मंडल की ये पहल श्रद्धालुओं को भक्ति से जोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा की झलक भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फेहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है, जो कि इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है। 42 फीट ऊंची बप्पा की इस प्रतिमा को सजाने के लिए अलग अलग रंगों के पेन का प्रयोग किया गया है, और इसे बनाने के लिए 2 महीने से अधिक का समय भी लिया गया। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई। खास बात यह है कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे।

चलिए अगला नाम इसी फेहरिस्त में आपको बताते हैं, वो जो की है आंध्र प्रदेश के अना कापली का, जहां पर विराजे 21,000 बड़े भरे पौधों से तैयार किए गए गणपति। गजानन की इस प्रतिमा को सिर्फ पेड़ से तैयार किया गया है। श्री चिंतामणि गणपति क्षेत्रम मंडल ने यह अनोखी पहल की है।

अब अगला नंबर है उड़ीसा के गणपति के इस पंडाल का, जो इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बप्पा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और च्युइंगम से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। तीन मुख वाले बप्पा की इस प्रतिमा में एक मुख सिक्कों से सुशोभित है, जबकि बाकी के दो मुख च्युइंगम से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। मूर्तिकार अरुण ने बताया है कि उन्हें इस मूर्ति को बनाने में 5 दिन लगभग लगे हैं।

अब आपको महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गणपति बप्पा का अनोखा रूप देखने के लिए हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यहां एक गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग इलायची से बप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है। भक्ति के साथ साथ इस प्रतिमा में भारतीय मसालों और पूजा सामग्री की अनोखी कलाकारी देखने को मिल रही है। बेहद आकर्षक दिखने वाली बप्पा की इस अनोखी प्रतिमा का वजन करीब 70 से 80 किलो है। सबसे खास बात यह है कि इसे तैयार करने में 25 से 20 दिनों का वक्त भी लगा है।

तो वहीं हरिद्वार में अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की स्थापना की गई। यहां पर महामाया गणपति संगठन ने भगवान के इस विशेष स्वरूप को स्थापित किया। साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए ही गीता भवन में अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बप्पा का स्वागत पारंपरिक विधि से किया गया है। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्गम और समुद्र मंथन की जैसे सनातन प्रसंगों को इस भव्य झांकी के माध्यम से बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: लद्दाख के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच अब रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने गार्डन का शुभारंभ हो गया है। 10,600 फीट की ऊंचाई पर बने इन गार्डन में 25 लाख से अधिक फूल लगाए गए हैं, जिनमें की 24 लाख से ज्यादा लिली और करीब 1 लाख ग्लैडियोलस शामिल है। ये फ्लावर गार्डन ले के चोगल मसर और सटकाना में करीब 40 एकड़ में तैयार किए गए हैं और अब आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। गार्डन में एंट्री के लिए बड़ों के लिए 25 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट भी रखा गया है। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर अगर आपके घर गणपति बप्पा पधारे हैं तो हम चाहते हैं कि आप GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखकर भेजें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणेश उत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति का दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से हुआ श्रृंगार, पंडाल का 703 करोड़ में हुआ बीमा। जालना में भक्तों को मिल रहा है बप्पा के स्वर्ण चरण के दर्शन का सौभाग्य, लालबाग के राजा की तरह की गई है व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दो दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज हुआ है, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई सामने, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री की हुई शुरुआत, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। लद्दाख घूमने वालों के लिए आई खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे दो संतों का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सच गई है खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर के बारे में दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुंबई के किंग सर्कल स्थित जेएसपी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजावट, 703 करोड़ रुपए का है बीमा। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बप्पा का दिव्य श्रृंगार, जड़े हैं करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ था। अमरावती में दिखा भव्य आध्यात्मिक नजारा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर सजाया गया गणपति पंडाल। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम, 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा गणपति पंडाल। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने किए दर्शन, भस्म आरती में भी हुए शामिल। लद्दाख में देश के पहले और दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन फ्लावर फील्ड्स का हुआ उद्घाटन, 10,600 फीट पर खुला है ये सुंदर गार्डन। कल से उत्तर प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों के महाअभियान की शुरुआत होगी, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू, स्टोर के बाहर लंबी कतार लगी, आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल। एचएएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। एचएएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। राजस्थान के बारह में देवदूत बने ग्रामीणों। पुलिस के जवान बरसाती नाले में फंसे दो संतों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए गुड न्यूज आई सामने। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर जीती सीरीज। T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने अभिषेक। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों में कोहली के बराबरी की। वुमेन्स एशियन गेम्स के तहत भारत जापान के बीच T20 का क्वार्टर फाइनल मैच। टीम इंडिया के सामने महज 58 रन का लक्ष्य। जीतने में सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है ये फिल्म। प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी किया गया। 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म।

0: 2022 रह चुकी कलाकार देविदा राय आएंगी नजर। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार निभाएंगी रश्मिका मंधाना। भारतीय सिनेमा की महान सिंगर एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में अम्मा बनेंगी। पेरिस में कैरी जेम्स मार्शल की कला का हुआ प्रदर्शन, द हिस्ट्रीज एग्जीबिशन का होगा शुभारंभ। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सजेगी प्रदर्शनी। 4 दशक के करीब 70 कलाकृतियां इसमें शामिल है। सभी कृतियों में अश्वेत किरदारों की मौजूदगी। फ्रांस में मार्शल की पहली प्रमुख प्रदर्शनी। दुबई का म्यूजिक स्कूल बना टैलेंट का मंच, द म्यूजिक पद से ग्लोबल पहचान की राह, स्कूल स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचाता है। लंदन फैशन वीक में एग्रो स्टूडियो का जलवा पहले दिन पेश हुआ, ग्लास बॉडी कलेक्शन, कलेक्शन में दिखा ग्लास का शानदार इस्तेमाल। चीन में घाटे से लाखों की बिक्री तक पहुंचा ऊंट फार्म, इनर मंगोलिया में दंपति ने खड़ा किया अनोखा कारोबार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: तो 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। आईफोन के शौकीनों के लिए आई गुड न्यूज। भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री होगी शुरू। शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। गणेश उत्सव का आज 5वां दिन, मुंबई में लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। लद्दाख घूमने वालों के लिए आई खुशखबरी, 10,600 फीट पर खुला दुनिया में सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील, गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की पहाड़। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति, एचएएल सौंपेगा तेजस FOC, ट्विन सीटर ट्रेनर HTT-40 और ध्रुव NG हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे, भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे।

0: तो चलिए लंच टाइम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में बात उस आईफोन की जिसका जमाना दीवाना है। और इससे पहले आगे की खबर आपको बताएं, दीपाली, आर यू एन आईफोन फैन? आपको आईफोन पसंद है?
1: नॉट रियली, आईफोन मैं यूज करती हूँ उसके फीचर्स के लिए, बट ऐसा कोई क्रेज नहीं है कि 18 आ गया तो वो खरीदना ही है।
0: शायद आपने फिर ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी क्योंकि लोग इसके डाई हार्ट फैन है। और देखिए आज जिसने एक बार फिर आईफोन की चाहत रखने वालों को क्रेजी कर दिया है, ऐसा दिन आ गया है।
1: बिल्कुल, और एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से शुरू हो गई है। नए आईफोन की दीवानगी इस कदर छाई है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। तस्वीरें आप देखिए, स्टोर खोलने के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली, नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में तो सुबह से ही एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
0: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में क्रेज है आईफोन को खरीदने का। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजा के ग्राहकों को स्वागत भी किया और आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग जो हैं वो शामिल हैं। हालांकि यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेज देखने को मिलता है। एप्पल के नए मॉडल्स में एडवांस्ड कैमरा और दमदार प्रोसेसर युवाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
1: स्मार्टफोन डुओ को लेकर जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, डुओ एक फोल्डेबल फोन है। इसका साइज और आकार पासपोर्ट जैसा है और इसके किनारे पर एक गोल है और यही वजह है, यही फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोग इसके दीवाने नजर आ रहे हैं। सुबह से ही कतारों में खड़े हुए हैं आईफोन लेने के लिए, स्टोर्स खुल चुके हैं और किस तरह भीड़ है वो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं।

0: देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं डाई हार्ट फैंस हैं आईफोन के, और उनकी जो दीवानगी है इन तस्वीरों से साफ देखने को मिलती है। बहुत पहले ही ये ऐलान हो गया था कि आज ये लॉन्च होने वाला है, और इसे देखते हुए लोगों ने लंबी कतारें जो है स्टोर्स के बाहर लगानी शुरू कर दी हैं। लोग रात से लाइनों में बैठे हैं कि आखिरकार सुबह जब दुकान खुले तो सबसे पहले वो आईफोन खरीदें।
1: और चलिए अब आपको दिल्ली में आईफोन की दीवानगी की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में देर शाम से ही ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। रात होते होते लोगों ने एप्पल स्टोर के बाहर कतार लगा ली। एप्पल स्टोर ने के बाहर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम भी रखा गया था।
2: मेरे को फोनों में बहुत इंटरेस्ट है। हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है जो 40,000 रुपये बढ़ाए हैं।
3: वैसे ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मिल जाए, बरगंडी कलर प्रो मैक्स, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
4: मैं तो एक बजे से आ रहा हूँ और मैं हर साल आता हूँ। मैं 70 प्रो लेने भी आया था और आज 18 प्रो लेने आया हूँ। मेरी प्रायोरिटी 18 प्रो मैक्स लेना है बरगंडी कलर, बिकॉज उसका कलर काफ़ी नया कलर है और अच्छा कलर है। प्लस क्या कुछ नए फीचर भी आए हैं उसमें, आप उसमें AI का अपग्रेड वर्जन आया है। प्लस क्या है कैमरा का जो क्वालिटी है थोड़ी अपग्रेड की गई है, और बैटरी भी थोड़ी पहले से बढ़ी है, तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि मैं तो अपने लिए अपनी बहन के लिए दोनों के लिए फ़ोन लूँगा।
0: तो दिवाली किसी को नया कलर पसंद आ रहा है, किसी को नया प्रोसेसर और किसी को एडवांस कैमरा, तो हर किसी की अपनी पसंद है। और आपको बता दें कि दिल्ली ही नहीं NCR के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टोर के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें थी और अंदर कर्मचारियों ने ग्राहकों के स्वागत की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। स्टोर खुलते ही कर्मचारियों ने तालियों के साथ ग्राहकों का स्वागत किया। स्टोर में सबसे पहले एंट्री करने वाले खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे।
1: और देखिए लोगों का क्रेज कितना है आईफोन को लेकर वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से आईफोन 18 प्रो प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, फोल्डेबल फोन लॉन्च हुआ है, और इसके लिए लोग पहले ही दिन कतारों में खड़े हो गए और जैसे ही स्टोर खुले तुरंत यहाँ पर फोन खरीदारी शुरू कर दी।
5: मैं पंजाब से हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ। दो लेते हैं फोन, 18 प्रो मैक्स दो लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। पहली बुकिंग हमारी हुई थी, हमारे को पहले फोन मिला है।
6: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है। ये
5: बढ़िया लग रहा है, अच्छा अच्छा फील लग रहा है। आईफोन 18 ले गए, एक नंबर का फोन।
0: तो देखिए एप्पल के क्रेज के बारे में तो दीपाली हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्रेज शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप देखें, एक ग्राहक बता रहा है कि वो 2 बजे से बाहर खड़ा हुआ है कि कब जब सुबह दुकान खुले तो सबसे पहला फोन जो है उन्हीं को मिले। तो आपने ऐसी दीवानी की देखी है आईफोन के लिए?
1: बिल्कुल, एप्पल का जब भी कोई नया मॉडल आता है तो इस तरह का क्रेज तो देखने को मिलता ही है। और एप्पल अब सिर्फ एक फोन नहीं है, एप्पल अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है।
0: ये बहुत बड़ी बात है दीपाली। और इस बार देखिए सबसे खास बात यह है कि एप्पल ने अपनी कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा किया है दीपाली, और उसके बावजूद भी लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। इस बार नए नए रेंज भी आए हैं, इस बार फोल्डेबल फोन जो कि एप्पल ने पहले लॉन्च नहीं किया था वो भी इस बार लॉन्च हो गया है। और आपको बता दें कि एप्पल के प्रीमियम डिवाइसेस कई बड़े अपग्रेड के साथ इस बार पेश किए गए हैं, जिसके बारे में मैं और दीपाली अभी बात कर रहे थे। कई चीजें इस बार पहले से काफी ज्यादा अलग है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और पहली बार लॉन्च किए गए फोल्डेबल आईफोन डुओ, जिसका भी अभी हमने जिक्र किया, इन फोनों में क्या खास फीचर्स हैं
1: जी। तो आपको बता दें आईफोन 18 के ये दोनों मॉडल्स पिछले साल के आईफोन 17 प्रो मॉडल के मुकाबले बेहतर हार्डवेयर अपग्रेड के साथ लॉन्च किए गए हैं। ये एप्पल की लेटेस्ट जनरेशन 820 प्रो चिपसेट से लैस हैं, और इसमें कंपनी का नया इनहाउस C2 मॉडम भी है।
0: बिल्कुल, देखिए इस बार के प्रो मॉडल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रो मॉडल्स में बेहतर बैटरी लाइफ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आईफोन में अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, जहां आईफोन 18 प्रो में इस बार 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है जो वाकई शानदार है। वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स में 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप है दीपाली।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी बता दें कि दोनों ही डिवाइसेस में गर्मी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नए वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे हेवी टास्क के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल रखने में मदद मिलने वाली है।
0: आईफोन 18 प्रो में 6.3 3 इंच की डिस्प्ले है, तो काफी बड़ी डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का डिस्प्ले है। ये दोनों फोन 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, डीप ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर ब्लू और बर्गंडी कलर। ये तमाम ऑप्शंस हैं जो इस बार कंपनी ने अपने ग्राहकों को दिए हैं।
1: जी, और दोनों ही डिवाइसेस 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध करवाए गए हैं। इस बार ये खासियत है इसकी। और कीमत की बात करें तो आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू होती है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 रुपए से शुरू होती है।
0: इसके अलावा एप्पल ने पहली बार फोल्डेबल फोन भी लॉन्च किया है, जिसे लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है बहुत लंबे समय से, जिसे आईफोन डुओ नाम दिया गया है और ये फोन एक बड़े वॉलेट जैसा दिखता है।
1: और एप्पल ने अपने फोल्डेबल फोन को नए 820 प्रो चिपसेट के साथ पेश किया है, जिसमें केवल ई सिम की सुविधा दी गई है और इसे दुनिया भर में ई सिम के साथ ही बेचा जाने वाला है।
0: यहाँ तक कि आईफोन डुओ में 7.6 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको मिलेगा। एप्पल के मुताबिक ये जो स्क्रीन है आईफोन 18 प्रो मैक्स से 50% बड़ी और आईफोन 18 प्रो से 80% बड़ी है।
1: और भारत में आईफोन डुओ के बेस 256GB मॉडल की कीमत 2,99,900 से शुरू होती है, जबकि फोन के 512GB मॉडल की कीमत 3,24,900 है। 1TB मॉडल की कीमत की बात की जाए तो 3,74,900 रुपए और 2TB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपए है। और चलिए अब आपको माया नगरी मुंबई लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले से आईफोन यूज करने वाले युवा अपना फोन अपग्रेड करने में जुटे हुए दिखाई दिए।
7: 18 प्रो में अपग्रेड किया हुआ है। मेरा पहला वाला फ़ोन जो है वो 17 प्रो मैक्स था, अभी मैं 18 प्रो पे अपग्रेड हुआ हूँ। इसके iOS 27 इसमें लॉन्च हुआ हुआ है और ये iOS बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है कंपेयर टू फोन के। इसमें बैटरी लाइफ इसमें अच्छा दिया हुआ है, कैमरा अच्छा दिया हुआ है, AI अपग्रेड किया हुआ है सीरी के साथ, प्लस सिक्योरिटी इसमें बहुत ही अपग्रेड किया हुआ है और इको फ्रेंडली फ़ोन है, इसलिए मैंने इसको प्री बुक करके इसको मैंने अभी मुझे 8:30 बजे डिलीवर।
0: तो देखिए, हर साल की तरह इस बार भी एप्पल ने धमाकेदार अंदाज में अपने नए आईफोन्स तो लॉन्च किए हैं और पहली बार फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च कर दिया है। एप्पल के फोन्स के लिए दुनिया भर में लोगों की जो दीवानगी है वो देखी जाती है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं क्यों दुनिया भर में एप्पल के फोन को लेकर इतनी दीवानगी है। तो देखिए, आईफोन को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है, महंगे आईफोन को लोग लग्जरी एक्सेसरी की तरह देखते हैं, इससे समाज में खास पहचान और रुतबा उन्हें महसूस होता है। जहां तक 4 लाख के फोन की बात है, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, तो ये अनोखी खूबियों, अद्भुत और नई तकनीक से लैस है।
1: तो वहीं आपको बता दें, ये अद्भुत तकनीक के साथ लैस तो है ही, 4 लाख रुपए तक के फोन फोल्डेबल डिजाइन, एडवांस डिस्प्ले और बेहतरीन AI फीचर्स के साथ भी लैस है। और तकनीक के शौकीन लोग इन नए प्रयोगों को सबसे पहले आजमा लेना चाहते हैं और इसके अलावा वीडियोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स के लिए ये फोन प्रोफेशनल कैमरे का काम करते हैं। इनकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और प्रोसेसर लंबे समय तक बिना लैग के चलते हैं। जिन लोगों के पास पहले से मैकबुक है, iPad है और अन्य एप्पल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अपने काम को आसान बनाने के लिए इसी ब्रांड का टॉप एंड फोन चुनते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए, महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के समान आईफोन को भी आसान फाइनेंस और EMI पर खरीदना आसान कर देते हैं, इसलिए अब ज्यादा लोग इसे खरीद पा रहे हैं। और यही कुछ कारण है, यही कुछ वजह है जिसके वजह से आईफोन की डिमांड भारत में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जब भी नए आईफोन लॉन्च होते हैं तो लोगों में इन्हें खरीदने के लिए होड़ सी लग जाती है और ऐसी ही तस्वीरें जो है देश के अलग अलग कोने से सामने भी आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं बेंगलुरु में आईफोन लवर्स की दीवानगी कैसी है। यहाँ के मॉल ऑफ एशिया में एप्पल स्टोर पर रात से ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा थी। एप्पल स्टोर ने भी भीड़ को संभालने का काफी ज्यादा इंतजाम जो है, काफी सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। स्टोर के बाहर ग्राहक कतार में खड़े हुए थे और स्टोर खुलते ही ग्राहक नया आईफोन खरीदने के लिए उमड़ पड़े। स्टोर के कर्मचारियों ने ताली बजाकर ग्राहकों का स्वागत भी किया।
1: बिल्कुल,
8: Just opened it, so definitely explored enough to know what are the features and all.
9: जी मदरे से आगे परचेस किया है. मैंने 12 तारीख को बुकिंग किया था. जब तो इसका प्री बुकिंग स्टार्ट है उसी टाइम कर दिया था.
10: हम मैसूर से हैं सर. हाँ हमारे टोटल 12 फोन हैं, 12 फोन हैं. सारे दोस्त आए उनके साथ.
11: 12 फोन.
10: हाँ 12 फोन खरीदे हैं. पूरे फ्रेंड्स सभी साथ हैं.
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति उत्सव के रंग.

0: गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और प्रयागराज तक गणपति उत्सव के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। जगह जगह पर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सूरत में सोने और चांदी से सजे बप्पा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं मुंबई में हर गली, हर मोहल्ले और हर इलाके में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
1: देखिए, पंडालों की जो भव्यता है, ये देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस बार अलग अलग थीम पर जो है वो पंडाल सजाए गए हैं। बड़ी रचनात्मकता और क्रिएटिविटी जो है इस बार देखने को मिल रही है। पुणे की अगर बात करें तो पुणे में गणपति उत्सव का जो नज़ारा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा आ रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ बप्पा के लिए तैयार किया गया है खास बाल पंडाल, जहाँ बाल गणपति के लिए आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट तक तमाम चीज़ों से इसे सजाया गया है। यानी बप्पा की भक्ति के साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और यही वजह है कि इस साल पंडाल में बच्चों की खूब चहल पहल भी देखने को मिल रही है। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र के पास यहाँ पर चलते हैं। धर्मेंद्र, पिछले कुछ दिनों से आप हमें जो है तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस बार जो पंडाल है बहुत ही अलग तरीके से सजाए गए हैं। कहीं गोलगप्पे के शेल से सजाया गया है तो कहीं सिक्कों से सजाया गया है। जी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हम। तब तक आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। देखिए, गणपति उत्सव के जो रंग है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं। बप्पा का आगमन हो गया है और कई पंडालों में बप्पा को लोगों ने विदाई भी दे दी है, लेकिन इसी वादे के साथ कि बप्पा जब अगले साल आए तो जल्दी आए।
0: तो देखिए, सात तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से गणपति बप्पा का यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, किस तरह से धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। बात करें अमरावती की तो यहाँ पर भी महोत्सव जारी है। आपको बता दें, अमरावती में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर बना गणपति पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में पहुंचते ही सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की झांकी पर नजर पड़ती है। रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं।
1: रथ के आसपास तैयार किया गया पूरा सेटअप पुरी की रथ यात्रा महोत्सव की याद दिलाता है। झांकी के दोनों ओर मंदिर नुमा रचनाएं जो हैं वो खास तौर पर यहाँ पर बनाई गई हैं। एक मंदिर में गणपति बप्पा विराजमान है तो दूसरे में बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित की गई है। गणपति पंडाल का ये भव्य आध्यात्मिक नजारा श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति का एहसास करा रहा है। गौरी पुत्र गणेश संग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करा रहा ये पंडाल बता रहा है कि भक्ति की राह अलग हो सकती है, लेकिन आस्था का जो भाव है वो सभी का एक है। और आस्था के ऐसे ही बयार जो है तमाम गणपति पंडालों में देखने को मिल रही है और जयंती भी लगातार आपको गणपति उत्सव के ये तमाम रंग दिखा रहा है।
2: गणेश पंडाल जो है अलग अलग तरह की झांकियां करने के लिए जो है प्रसिद्ध है। हम फिलहाल है अमरावती के जो है नीलकंठ गणेश मंडल में, जहाँ पर जो है यहाँ पर इस वक्त जो है वो जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा का महोत्सव यहाँ पर उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है भगवान जगन्नाथ जी है, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और गणपति की जो इस ओर जो है गणपति बप्पा की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी जैसे रथ को यहाँ पर तैयार कर यहाँ पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की है। और इस वक्त जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है, उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी जैसा माहौल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हर कोई जो है भक्त हाथ जोड़कर अपने मोबाइल में जो है फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है। और एक भक्त हमारे साथ है, ताई क्या लगा ये सब कुछ देखकर, जैसा जगन्नाथपुरी में आया ऐसा लग रहा है?
3: अच्छा लग रहा है।
2: क्या किस तरह का जगन्नाथ पुरी में रथ होता है यहाँ पर
3: हुआ है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
2: ओके,
3: अभी तक देखा नहीं जगन्नाथ पुरी, अभी यहाँ पे देख रहे हैं।
2: हाँ, तो टीवी वगैरह में देखा होगा?
3: हाँ, वैसा देखा है।
2: तो किस तरह का लगा है?
3: लगभग वैसा ही है।
2: वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पर जो है भक्त भी बड़े खुश है, क्योंकि भक्त ने खुद कहा कि हम जगन्नाथ पुरी तो नहीं गई है, लेकिन जिस वक्त हम जगन्नाथ पुरी की जो है यहाँ पर झांकी टीवी और व्हाट्सएप या और सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसी तर्क पर जो है यहाँ पर ये झांकी बनाई गई है और गणपति बप्पा मोरिया के साथ यहाँ पर जो है जगन्नाथ बाबा की जय की यहाँ पर घोषणाएं दी जा रही है। धनंजय साबले।
1: तो देखिए अभी आपने अमरावती की तस्वीरें देखी और नागपुर में भी कई गणपति पंडाल इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हीं में एक पंडाल प्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की है, जिसने एक साल भक्तों के लिए पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू रेप्लिका तैयार की है, जिसमें लोगों को आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

0: खूबसूरत पंडाल और पंडाल में विराजे गौरी पुत्र गणेश, जिनकी मनोहारी छवि ने भक्तों को अभिभूत कर दिया है। ये तस्वीर नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की है, जिसने परंपरा के अनुसार इस साल भी थीम आधारित गणपति पंडाल सजाया है। इस बार मंडल ने पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू रेप्लिका तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुंबद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से सजाया और संवारा गया है।
1: हमारा क्या बोलते हैं 107वां साल है और हमारी जो मंडल की स्थापना है 1920 में हुई है। इस बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, गतिविधि वो बनाई है, ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, उसके ऊपर हमने प्रकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति के बैक साइड जो है, हमने वहाँ जो बाकी जो संजीवन समाधि है, सेम वैसी प्रकृति हमने वहाँ पर बनाई है।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम गणेशोत्सव पर नागपुर में साकार हुआ है, जहां लोगों को एक तरफ बप्पा की मनोहारी प्रतिमा तो दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के दौरान रोजाना यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पंडाल की इस भव्यता और थीम को पसंद भी कर रहे हैं।
1: सभी गणेश भक्तों को मैं विनती करता हूँ कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ये कोशिश न केवल भक्तिभाव को बढ़ा रही है, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा को भी शहर के केंद्र में जीवंत कर दे रही है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, वहां पर गणेशोत्सव के किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं वो दिखाते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, धनंजय हमारे साथ अमरावती से जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। धनंजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सबसे शानदार तरीके से महाराष्ट्र में धूमधाम से गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाता है, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तस्वीरें इतनी मनमोहक है कि इसे देखने से मन नहीं भरता है।
3: बिल्कुल सरगम जी और दिगाली जी, सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरिया, हम फिलहाल बुधवारा अमरावती के बुधवारा में जो है वो आजाद हिंद मंडल जो 99 साल से अपनी जो परंपरा है वो बहुत खूबी से निभाती है, क्योंकि ये 10 दिन जो होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। और इस वक्त इन्होंने जो है खाटू श्याम का जो है वो यहाँ पर भव्य पंडाल बनाया है, और अंदर जो है हम अंदर जाकर बताएंगे कि खाटू श्याम का जो ये पूरा पंडाल बनाया है, ये पंडाल जो है वो देखने वाले के लिए ऐसा है कि मानो हम खाटू श्याम के दरबार में यहाँ पर आए हैं। और खाटू श्याम जी की जो सुंदर मंदिर है, देखिए आप जिस तरीके से खाटू श्याम में पूरा दृश्य होता है, बस उसी धरती पर जो है ये खाटू श्याम जी का दर्शन आपने किया है। सरगम जी, दीपिका जी, देखिए खाटू श्याम जी कैसे यहाँ पर जो है लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता जो है हमारे साथ, जो पिछले 98 साल से जो है वो इन पर सभी पर मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त किस तरीके की बप्पा की जो झांकी की गई है अपनी।
4: आजाद हिंद मंडल को 99 साल हुए हैं और ये अमरावती का सबसे पुरातन मंडल है। इस साल हमने खाटू श्याम बाबा का भव्य दिखावा यहाँ आयोजित
2: किया है। जी बिल्कुल धनंजय, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए यूं तो पूरे महाराष्ट्र में ही गणपति उत्सव की धूम देखने को मिलती है। अभी धनंजय भी हमें दिखा रहे थे किस तरीके से बड़ी अलग थीम पर इस बार जो है पंडाल सजाया गया है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी आप जहां मौजूद हैं वहां से पहले तो हमारे दर्शकों को गणपति बप्पा के दर्शन करवा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए मुंबई की बात अलग है, मुझे लगता है जब बात गणपति उत्सव की हो तो मुंबई का किसी से कंपटीशन नहीं है।
5: बिल्कुल, देखिए जो भी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं टाउन मुंबई में वो सीधे गिरगांव ले जाया जाते हैं, वहां पर जाकर के उन प्रतिमाओं के गणेश जी का विसर्जन होता है। तो गिरगांव के ही नाम से गिरगांव का महाराजा के दरबार में हम हैं, और देखिए कितने विशाल इस समय गणपति बप्पा यहां पर स्थापित किए गए हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें तो 33 फीट इनकी ऊंचाई है, और खास बात यह है कि राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है, गहनों से लदे पड़े हैं, 3.5 करोड़ रुपए के गहने पहने हुए हैं। इन बड़े बप्पा के ठीक समीप छोटे से भी बप्पा यहाँ पर देखिए स्थापित किए गए हैं, और
6: बप्पा का ये जो मुकुट है ये एक मात्र बस एक गोल्ड नहीं है बल्कि रियल है, रियल में सोना है, उनके हथेली भी जो है सोना है। लेकिन खास बात क्या है कि गणेश उत्सव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
2: तस्वीरें आपने दिखाई, धन्यवाद आपका हमारे दर्शन करवाने के लिए गणपति बप्पा के, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धनंजय और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणपति बप्पा की 25 तस्वीरें जो देश भर से सामने आ रही है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गणेश उत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त।
3: मुंबई में सजा सबसे भव्य गणपति का दरबार, 66 किलो सोना और 335 किलो चांदी से हुआ श्रृंगार, पंडाल का 703 करोड़ से हुआ बीमा।
2: जालना में भक्तों को मिल रहा है बप्पा के स्वर्ण चरण के दर्शन का सौभाग्य, लालबाग के राजा की तरह की गई हैं व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु।
3: जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 2 दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज हुआ, एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ।
2: आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें।
3: राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे 2 संतों का रेस्क्यू किया, भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी।

0: और अब आपको दिखाते हैं गणपति की 25 तस्वीरें। गणपति उत्सव का आज पांचवा दिन है और हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में गणेश उत्सव की दिव्य तस्वीरें। इस कड़ी में सबसे पहले देखिए मुंबई की प्रतिष्ठित जीएसबी पंडाल की गणपति के दर्शन। इस बार जीएसबी सेवा मंडल के गणेश जी को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी के गहनों से विशेष तौर पर सजाया गया है। इससे गणपति की शोभा नृत्य ही बन रही है और साथ ही इस बार पंडाल का 703 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी कराया गया है।
1: तो देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महागणपति की छटा। दूसरी तस्वीर की ओर बढ़ते हैं जो है मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल के गणपति पंडाल से। पंडाल में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं बप्पा की आराधना के लिए फूल तो कहीं दीपों की थालियां सजाई जा रही हैं। जीएसबी सेवा मंडल के गणपति उत्सव का इस बार 72वां साल है और इस मंडल को देश का सबसे अमीर गणपति मंडल माना जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं मुंबई का राजा गणेश गली के गणपति की तस्वीर। मुंबई का राजा यानी गणेश गली गणेश उत्सव मंडल में इस बार गणेश उत्सव का 99वां साल है। इस बार यहां पर वैष्णव संप्रदाय के संतों के योगदान के कथाओं वाली थीम पर पंडाल को विशेष तौर पर सजाया गया है। यहां पर 22 फीट ऊंचे अष्टबुधाधारी बाल गणेश विराजमान हैं, साथ ही भव्य गरुड़ पर संत तुकाराम भी विराजमान हैं। इस मंडल को मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है। लालबाग की तरह यहां भी रोजाना लाखों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंडल का नाम ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है।
1: और चलिए अब आपको बेहद खास तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के लालबाग चा राजा के पंडाल की तस्वीरें। गणेश उत्सव के पांचवें दिन भी लालबाग चा राजा के पंडाल के मुख दर्शन और चरण दर्शन के लिए काफी लंबी कतार लगी है। दूर दूर से लोग लालबाग चा राजा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला गणेश उत्सव के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक जारी रहने वाला है। पंडाल में भक्तिभाव का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है।
0: अब आपको दिखाते हैं लालबाग के राजा के पंडाल की एक और खास तस्वीर। ये देखिए आज लालबाग के राजा के पंडाल में पूरा अंबानी परिवार भी पहुंचा, जिसमें मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी, उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी साथ शुमार।

0: गणेशोत्सव चल रहा है तो देश ही नहीं विदेशों के श्रद्धालु भी मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई में इजराइल के कौंसल जनरल यानिव रेवाज भी पहुंचे। लालबाग चौराहा के दरबार में वो पहुंचे हुए दिखे और भारी भीड़ के बीच कतार में लगे बापा के दर्शन किए और बापा के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी आस्था जाहिर की। अब आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें। गणपति उत्सव के पांचवें दिन भी सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा की भव्य दिव्य आरती की गई। तड़के से ही श्रद्धालु मंदिर में बप्पा के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह हुई आरती में भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हुए। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में वैसे तो हर दिन साल भर दर्शन के लिए भीड़ रहती ही है, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान खासतौर से यहाँ लोग बप्पा की पूजा के लिए पहुँचते हैं। और मुंबई के पंडालों में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। अब आपको घाटकोपर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा हुआ दिखा, जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम में बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है।
1: महाराष्ट्र के कोने कोने में गणेश उत्सव की धूम है। तो अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर में नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की।
0: अब आपको अमरावती से आई तस्वीर दिखा रहे हैं। अमरावती में गणेश उत्सव के दौरान इस बार भक्तों को एक ही जगह पर गणपति बप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनुभव हुआ है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु यहां पर आप पहुंच रहे हैं, गणपति के साथ सेल्फी ले रहे हैं।
1: और देखिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर में आकर्षण का केंद्र बने चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस साल भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम के भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह है।
0: और चलिए अब आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं चंद्रपुर के राजा पंडाल की। कुछ और तस्वीरें हैं ये। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इन दिनों आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा रही है। इसकी नक्काशी सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम का एहसास करा रही है।
1: अब आपको करवाते हैं पुणे के एक शानदार गणपति पंडाल के दर्शन। पुणे में गणपति बापा को लेकर भक्तों की आस्था के साथ साथ अब क्रिएटिविटी भी देखने को मिल रही है। पानी पूरी से तैयार किए गए ये गणपति पंडाल जो है लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है।
0: अब आपको दिखाते हैं पुणे के एक ही गणपति पंडाल की झलक। पुणे में गणपति बप्पा का ऐसा मंडप तैयार किया गया जिसे देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान रह गए। चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजे इस अनोखे बंगले में गणपति बप्पा का विराजमान किया गया है। इसे देखने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक की भीड़ उमड़ रही है।
1: पुणे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्र भी बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। ये सभी छात्र एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। कॉलेज का ये आखिरी साल है, इसलिए इन दोस्तों ने अपनी यादों को हमेशा के लिए संजोने के लिए अपने ही फ्लैट में गणपति बप्पा की स्थापना की है।
0: और चलिए अब एक और तस्वीर पुणे की आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के यहां गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी यहां पर शामिल हुए, गणपति की आरती की और सबको गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी।
1: अब आपको करवाते हैं महाराष्ट्र के जालना के राजा गणपति के दिव्य दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के तर्ज पर जालना में भी श्रद्धालु को जालना के राजा के स्वर्ण चरणों में दर्शन का अवसर मिल रहा है।
0: अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जालना शहर के बड़ी सड़क के इलाके में बजरंग गणेश मंडल की ओर से जालना के राजा की हर साल की तरह इस साल भी भव्य स्थापना की गई। बजरंग गणेश मंडल के गणेश उत्सव का इस साल 77वां वर्ष है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए।
1: और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात की हीरा नगरी सूरत में सबसे महंगे गणेश जी की तस्वीरें। इस पंडाल में विराजित प्रतिमा को गुजरात के सबसे महंगे गणेश जी के रूप में जाना जाता है।
0: और अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं सूरत शहर के ही महिधरपुरा इलाके में गणेश पंडाल मैसूर पैलेस की थीम पर बनाए गए गणपति बप्पा की। मैसूर पैलेस की शाही भव्यता और यहां पर विराजित गोल्डन गणेश की अलौकिक दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। सुबह और शाम होने वाली महाआरती में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होकर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: अब आपको करवाते हैं राजकोट के राजा के दर्शन। यहाँ के गणेश पंडाल में श्रद्धालुओं को गणपति बप्पा की विशेष प्रतिमा के साथ साथ सफेद रंग के जीवित मूषकों के भी दर्शन हो रहे हैं। इस पंडाल में गणपति प्रतिमा का भव्य श्रृंगार भी किया गया है, जो लोगों को खासा पसंद आ रहा है।
0: राजकोट में जेके चौक का राजा गणेश पंडाल लोगों के आकर्षण का खास केंद्र बना हुआ है। जेके चौक राजा गणेश उत्सव का आयोजन पिछले 19 सालों में शिव भक्ति युवा समूह की ओर से किया जा रहा है। यहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
1: तो देखिए अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के भिलाई शहर में स्थापित गणपति की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ बनाए गए पंडाल में भगवान गणेश की 21 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं।
0: अब छत्तीसगढ़ के भिलाई में गणेश उत्सव समिति की ओर से मन्नत मंदिर की थीम पर बेहद अनोखा और पर्यावरण अनुकूल वातानुकूलित गणेश पंडाल बनाया गया है, जिसकी छटा देखते ही बनती है।
1: अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक और अनोखा रूप। यहाँ बप्पा विराजमान है, लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने के रूप में नहीं, बल्कि एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूप में। तो ये जो क्रिएटिविटी है वो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। तो देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानंद का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे।
0: तो देखिए मुंबई के कांदिवली के रहने वाले डॉक्टर संजय शर्मा ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जो तस्वीर आपके सामने है। पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। चाहे बप्पा की पोशाक हो या फिर भव्य सजावट, दोनों ही बेहतरीन नजर आ रही।
1: वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है, जिसे डॉक्टर स्वाति पंत ने हमें भेजा है। यहाँ कई स्वरूप में बप्पा विराजे हैं। बप्पा के आसन से लेके पूरी सजावट बेहद आकर्षक लग रही है। और देखिए खास बात यह है कि फूलों के साथ साथ बप्पा को सजाने के लिए मोर पंखों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी भव्य और दिव्य एहसास दे रहा है।
0: और चलिए अब बात करते हैं एशियन गेम्स से आई एक शानदार खबर की। आपको बता दें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुकाबले के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। बेहद शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एशियन गेम 2026 के महिला क्रिकेट कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है।
1: बिल्कुल देखिए मैच में पहले खेलते हुए जापान की पूरी टीम से 57 रनों पर ही सिमट गई थी। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 5 ओवर में 8 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया। शिफाली वर्मा की अगर हम बात करें तो शिफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाकर मैच को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच श्री चरणी को मिला, जिन्होंने 4 विकेट निकाले। भारतीय टीम का अब अगला जो मुकाबला है वो 20 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है।
0: तो देखिए सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच चुकी है। अब
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अब बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान का पहला बैच जो है वो मिल गया है। HAL भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पहला बैच सौंपेगा। इस बैच में कुल 3 विमान शामिल हैं, इसमें 2 विमान बेंगलुरु में और 1 विमान नासिक में तैयार किया गया है।
10: जी आपको बता दें HTT-40 में आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाया गया है, इसके अलावा इसमें 00 इजेक्शन सीट भी दी गई है जो किसी भी ऊंचाई और गति पर पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने की सुविधा देती है। बेंगलुरु में मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
11: भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब देश में बने हुए स्वदेशी बेसिक ट्रेनर HTT-40 पर ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। अभी तक वो विदेश में बने प्लेटस ट्रेनर पर ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद भी मेरा जो बाकी जुड़ा विमान है वो उड़ाते थे, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पीड़े में HTT-40 जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे HAL ने तैयार किया है, इसके 3 एयरक्राफ्ट पहले बैच के तौर पर शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा बात करें HAL ने यहाँ बेंगलुरु में जो फैसिलिटी है HAL की, वहां पर ये 2 बेसिक ट्रेनर तैयार किए हैं। इसके अलावा नासिक फैसिलिटी में भी HAL ने HTT-40 जो बेसिक ट्रेनर है उसको तैयार किया है। इसके अलावा LCA तेजस Mk-1 का भी ट्रेनर भारतीय वायुसेना ने तैयार किया है जो भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। तो इस तरह से न सिर्फ जो लड़ाकू विमान LCA तेजस Mk-1 HAL बना रहा है, बल्कि उसके साथ ही तेजी के साथ पायलट ट्रेनिंग करें उसको लेकर भी ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। कैमरन प्रदीप गुप्ता के साथ मुझने बेंगलुरु। इस वक्त मैं ध्रुव के कॉकपिट पर हूँ, और अभी तक ध्रुव हेलीकॉप्टर सेनाओं के लिए बनाया जाता है, मिलिट्री सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पहली बार ग्रुप का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविल फील्ड में किया जा रहा है। एचएएल ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसे पवन हंस को दिया जा रहा है। ऐसे पहले 4 हेलीकॉप्टर पवन हंस को दिए जाएंगे जिनका सिविल इस्तेमाल होगा, यानी कि वीआईपी मूवमेंट के लिए, चुनावी दौरों के लिए। उसके अलावा जो यात्राएं होती हैं, चाहे चार धाम यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा में, उड़ान स्कीम में जो इस्तेमाल होता है हेलीकॉप्टर का, उसमें इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो सकता है, जो कि भारत में एक बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक भारत ऐसे हेलीकॉप्टर, सिविल हेलीकॉप्टर विदेशों से खरीदता था, अब ये एचएएल स्कीम को तैयार कर रहा है। इसकी अगर क्षमता को आप देखें तो इसमें 11 सीटर हेलीकॉप्टर है जिसमें 11 यात्री एक बार में सवार हो सकते हैं। उसके अलावा 2 सीट पायलट को पायलट के लिए है, एक आधुनिक कॉकपिट इसमें बनाया गया है, ग्लास माउंटेड है, और ये पूरी तरह से सिविल इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। ऐसे 4 हेलीकॉप्टर पहली बार पवन हंस को दिए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भारत में जिस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए, नेताओं के लिए, बल्कि उड़ान स्कीम में, ऐसे में सिविल जो एनजी है, ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, उसकी वो बहुत संभावनाएं हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितने की बेंगलुरु।
10: और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेश उत्सव का आज 5वां दिन, मुंबई में लालबाग से राज्य के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए था। जालना में भक्तों को मिल रहा है बप्पा के स्वर्ण चरण के दर्शन का सौभाग्य, लालबाग के राजा की तरह की गई व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 2 दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई सामने, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री की हुई शुरुआत, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के कोना नेशनल पार्क से सामने आई गुड न्यूज, मादा चीता केजीपी 12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, तस्वीरें सामने आई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: मुंबई के किंग सर्कल स्थित जीएसबी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है जीएसबी सेवा मंडल। छियासठ किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है गजानन, 703 करोड़ रुपए का कराया गया है बीमा। गणपति के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़, बच्चे जगह जगह बना रहे रंग बिरंगी रंगोली। गजानन के दर्शनों के बाद भक्तों के लिए यहां भंडारे की भी की गई है व्यवस्था। इस बार अपना 72वां साल मना रहा है ये मंडल। नवसा पावंदरा विच्छला राजा के रूप में भी जाने जाते हैं महागणपति, भक्तों की हर मनोकामना को करते हैं पूरा। सूरत के महीधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोने चांदी से हुआ बप्पा का भव्य दिव्य श्रृंगार, जुड़े हैं करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स। गुजरात के सबसे महंगे गणेश रूप में प्रसिद्ध है यहाँ के बप्पा, करीब 30 साल पुरानी है। बप्पा को राजसी गहनों से सजाने की परंपरा, बप्पा को राजा की तरह पूछते हैं भक्त। आभूषणों की कुल कीमत करोड़ों में गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु, हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ छाई गणेशोत्सव के भव्य रौनक। पंडाल में रोजाना सुबह शाम हो रही है भव्य महाआरती, मन्नत पूरी होने पर भक्त ने बप्पा को अर्पित किए चांदी के मूषक, श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे चांदी के छत्र और छोटे घर। महीधरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, पंडाल की नकाशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक, बप्पा के मुकुट बाजू बंद और हार की कारीगरी बेहद खास और आकर्षक। जालना में सजा विघ्नहर्ता का भव्य दिव्य दरबार, मुंबई के लालबाग के राजा की तरफ पे जालना के राजा के स्वर्ण चरण दर्शन का मिल रहा भक्तों को अवसर। नवसाला पावनाला गणपति यानी मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में भी जालना के राजा की विशेष पहचान है, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्त। चंद्रपुर के एक पंडाल में सिर पर सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गम बूट्स और हाथों में औजार लिए नजर आए बप्पा का रूप, कोयला खदान कामगार को समर्पित ये पंडाल। वडगांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने कोयला खदान में होने वाले उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य किया है साकार, दे रहे रूप बिजली बचाने का खास संदेश। बप्पा के इस अनोखे दरबार में भक्तों की उमड़ रही है भारी भीड़, गणपति का अनोखा रूप बना है आकर्षण का मुख्य केंद्र। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ धाम। इक्कीस फीट ऊंची चंद्रपुर के राजा की सुंदर प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का हुआ है इस्तेमाल। विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप किया गया है साकार, मंदिर की नकाशी सजावट और भव्यता भक्तों को करा रही है जगन्नाथ धाम का एहसास। भगवान गणेश की प्रतिमा के ठीक ऊपर बनाई गई है भगवान जगन्नाथ की झांकी, जबकि बप्पा के दोनों ओर भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल, बप्पा की मनमोहक प्रतिमा और आकर्षक सजावट को देखने के लिए जुट रहे भक्तों की अपार भीड़। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा पंडाल, अनोखी थीम लोगों को कर रही आकर्षक।

बांस से भी की गई है खास सजावट। मिट्टी की मटकियों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती। सूखे तालपत्र और कमल से सजी दीवारें, बेलफल के खोल भी सजावट में किए गए हैं शामिल। कोलकाता में 50 कारीगरों ने तैयार किया है भव्य पंडाल। आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यावरण का भी दिया जा रहा है संदेश। भक्ति संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम। अमरावती में दिखा भव्य आध्यात्मिक नजारा। जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। रथ यात्रा की झांकी के दोनों ओर बनाई गई है मंदिर नुमा रचना। एक मंदिर में गणपति बप्पा तो दूसरे में बजरंग बली की प्रतिमा की गई है स्थापित। भक्तों को एक ही जगह पर हो रहे गणपति बप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन। उस अनोखे पंडाल को देखने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। पुणे के भक्तों और पर्यटकों का मन मोह रही है बप्पा की अनोखी मूर्ति। 21,000 पानीपुरी से हुआ है प्रतिमा का निर्माण। इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीर खींचने के लिए भक्तों की लगी है लंबी कतारें। इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति की श्रेणी में ये एक नया प्रयोग। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंद डगरू शेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़। गणेश उत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 120 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है भव्य पंडाल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं। विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी इस पर खास तौर पर उकेरी गई हैं। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम। मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया है पुणे के आनंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी बेहद खूबसूरती से ढाली गई है। हर बारी के पंडाल में देखने को मिल रहा है आस्था और कला का अद्भुत संगम। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दर्शन। भस्म आरती में हुए शामिल। तिरुपति पहुंचे राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तिरुमला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रार्थना की। राज्यपाल ने ब्रह्मोत्सव के दौरान आयोजित प्रसिद्ध मत्स्यपी पंदेवे वाहन सेवा में भी हिस्सा लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। अलवर में उज्जैन के महाराज और राजस्थान के लोक देवता का मेला शुरू। आसपास के राज्य से आए लाखों श्रद्धालु शामिल। धार्मिक मेले के शुरू होते ही भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। मान्यता है कि अरावली की वादियों के बीच महाराजा ने की थी तपस्या और यही ली थी समाधि। सेंट्रल कश्मीर के गंदरबल जिले में आज दो दिन की हरमुख गंगबल यात्रा की शुरुआत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा में यात्रा की सुविधा के लिए रेलवे चला रही स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार के लोगों को घर आने जाने में होगी इससे आसानी। रेलवे का 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला। इन ट्रेनों से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की तरफ से यूपी बिहार आने वाले यात्रियों को होगी सहूलियत। रेलवे की तरफ से सैलानियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। IRCTC लॉन्च कर रहा है हिमालयन ब्लिस धर्मशाला, खजियार विद गोल्डन टेम्पल हवाई टूर पैकेज। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा 6 रात और 7 दिन का यह खास पैकेज। 53,500 प्रति व्यक्ति से शुरू है इसकी कीमत। लद्दाख घूमने वालों के लिए ये खुशखबरी आई सामने। देश के पहले और दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन फ्लावर फील्ड का हुआ उद्घाटन। 10,600 फीट पे खुला है ट्विन फ्लावर फील्ड। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है ये सुंदर गार्डन। गार्डन में देखी गई 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार, जिनमें 24 लाख लिली और 1 लाख ग्लैडियोलस शामिल। रिकॉर्ड 2 महीनों में तैयार किया गया है ये उद्यान। चोगल मलसर में 16 जुलाई को शुरू हुआ पौधे लगाने का काम, सितंबर के पहले हफ्ते में पहली बार के लिए। फूलों की खेती के जरिए कृषि में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू। देर रात से ही स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में सुबह एप्पल स्टोर खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा। आईफोन स्टोर के कर्मचारियों ने ताली बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली नहीं, NCR के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का क्रेज देखने को मिला। नोएडा में

0: नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर भी सुबह से ही ग्राहकों की लगी लंबी कतारें, लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में भी देखने को मिले नए आईफोन के लिए दीवानगी, भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने किए थे कई खास इंतजाम। उत्तर प्रदेश में कल से नौकरियों का महाअभियान, 19 सितंबर से 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कल बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 4 विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है लक्ष्य, शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवा के बीच आज लखनऊ में बड़ी बैठक, केंद्र और यूपी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर करेगी समीक्षा। मेरठ के आसमान में 19 से 20 सितंबर को दिखेगा सूर्य किरण का रोमांच, 9 हॉक विमानों के साथ होगा एयर शो। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे से शानदार खबर आई सामने, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज, आज भारत को मिलेगी आसमान की त्रिशक्ति। एचएएल सौंपेगा तेजस ट्रेनर HTT-40 और ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना को मिलेगा HTT-40 बेसिक ट्रेनर का पहला बैच। पहले बैच में शामिल है कुल 3 HTT-40 ट्रेनर विमान, 70 HTT-40 विमानों के कुल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा है ये सप्लाई। दूसरा प्लेटफॉर्म LCA ASOC ट्विन सीटर ट्रेनर वायुसेना को सौंपा जाएगा, पुराने 40 तेजस MK-1 विमानों का पूरा ऑर्डर अब होने जा रहा है पूरा। पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में शामिल होगा ध्रुव एनजी सिविल हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी रहेंगे मौजूद। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में की एंट्री, जापान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में खत्म किया मैच। जापान के 57 रनों के जवाब में महज 5 ओवर में बनाए 59 रन, शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में खेली नाबाद 40 रनों की धुआंधार पारी। श्री चन्नी ने झटके 4 विकेट, टॉस जीत के भारत ने दिया था जापान को पहले बल्लेबाजी का न्योता। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रन से हरा के टीम इंडिया ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप, अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में जड़ा सबसे तेज शतक। संजू सैमसन ने भी खेली धमाकेदार अर्धशतकीय पारी, बनाए शानदार 50 रन, अभिषेक संजू ने खेली 142 रनों की ओपनिंग साझेदारी। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है ये फिल्म। प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। लव रंजन की नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। म्यूजिकल लव स्टोरी मैं ना रहा मेरा का टीजर रिलीज हुआ, फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दीवा 2022 रह चुकी नई कलाकार दिव्यता राय नजर आई। पर्दे पे पहली बार महान गायिका का किरदार निभाएंगे रश्मिका मंदाना, भारतीय सिनेमा की महान सिंगर SS सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में बनेंगी अम्मा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर आपको हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। तो ऐसे में यूपी के प्रयागराज की रहने वाली रीता गुप्ता ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जिन्होंने पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। चाहे बप्पा की पोशाक हो या फिर भव्य सजावट, दोनों ही काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर नवी मुंबई के घनसोली से सामने आई है, जिसे वैभव शर्मा ने हमें भेजा है। यहाँ कई स्वरूप में बप्पा जो हैं वो विराजमान हैं। बप्पा के आसन से लेकर पूरी सजावट बेहद आकर्षक लग रही है। और देखिए सबसे खास बात यह है कि फूलों के साथ साथ बप्पा को सजाने के लिए मोर पंखों का भी खास तौर पर इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। दादा के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच अब रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने गार्डन का शुभारंभ हो गया है। 10,600 फीट की ऊंचाई पर बने इस गार्डन में 25 लाख से अधिक फूल जो है विशेष तौर पर लगाए गए हैं, जिसमें 24 लाख से ज्यादा लिली और करीब 1 लाख ग्लैडियोलस शामिल हैं। ये फ्लावर गार्डन लेह के चोगर मसर और स्टकलाना में करीब 40 एकड़ में तैयार किए गए हैं, और अब आम लोगों के लिए इसे खोल भी दिया गया है। गार्डन में एंट्री के लिए बड़ों के लिए 25 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट रखा गया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेश उत्सव का आज 5वां दिन, मुंबई में लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सिद्धि विनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। जालना में भक्तों को मिल रहा है बप्पा के स्वर्ण चरण के दर्शन का सौभाग्य, लालबाग के राजा की तरह की गई हैं व्यवस्थाएं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 2 दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई सामने, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की लंबी कतार। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से सामने आई गुड न्यूज, मादा चीता केजीपी 12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, तस्वीरें सामने आई।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, होगा चंदू का स्वयंवर, ताई जी होगी परेशान। फेरे के लिए मायके आएंगी आराध्या और अपराजिता, मोहल्ले में शुरू होगा तमाशा। सीरियल वसुधा में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। दिल में संजय के सामने आएगा सच, रिश्ते में पड़ेगी दरार।
6: मेरी दुनिया।
5: जल्द ही मम्मी बनने वाली है ऋतु चौहान, ऐसे में होगी उनकी गोद भराई की रस्म।

अयोध्या की राशि यानी कि रचा हसन में संग जाएंगे पुणे के दगड़ूशेठ गणपति बापा के दर्शन के लिए, मिलेंगे उनके परिवार से सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है नया ड्रामा, जहां चंदू के बच्चों ने शुरू कर दिया है अपने पापा का स्वयंवर, क्योंकि बच्चे किसी भी हाल में चंदू की शादी ताई मां से नहीं होने देना चाहते। अब ऐसे में ईशा इस नई मुसीबत को कैसे हल करेगी और कैसे होगी चंदू और ताई मां की शादी, देखना काफी मजेदार होगा।
1: चंदू का स्वयंवर, बच्चों ने की ताई मां की इंसल्ट, शादी को लेकर शुरू हुआ बवाल, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में चंदू के बच्चे नहीं चाहते कि चंदू की शादी ताई जी से हो, और इसीलिए आज उन्होंने अपने आप ही रखा है मोहल्ले में स्वयंवर, जहां वो करेंगे अपनी नई माँ को सिलेक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चंदू ताई जी से शादी करे। इसीलिए तो बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि मोनिका और बाकी के सभी घर वाले, चाहे फिर वो ईशा हो, इन पर भड़क रही है।
2: क्या हो रहा है?
3: हमारे पापा का स्वयंवर, कोई प्रॉब्लम है आपको?
2: पापा को शादी करनी है तो कर ले, और हम ऐसे ही किसी को अपनी माँ बना के घर में घुसने क्यों दें? एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हम खुद देंगे, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर हम फाइनल राउंड में भेजेंगे। अगर माँ लानी है तो ऐसी लाइए ना कि जो कुछ कमाती हो, जैसे कि ये मंथली 30,000 30,000 रुपए कमाती है, डिवोर्स ही है, बच्चे भी नहीं है, तो पापा को शादी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए ये स्वयंवर रखा है हमने।
4: देख रही हैं जरूर ये सब ना इनके पापा की मर्जी से हो रहा है।
2: ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
3: यार छोटे, मुझे समझ नहीं आ कि हमें सबको जवाब क्यों देना पड़ रहा है।
2: इट्स ओके ब्रो, नेबर्स है, बताओ बेचारे को।
4: छुई मुई जी, ये छोटे और ये छोटे का भाई स्वयंवर का चॉकलेट अपने लिए मम्मी ढूंढ रहे हैं।
5: मतलब ऋषि और कृति मतलब एकदम क्रेजी हो गए हैं, क्योंकि मतलब यू नो अब वो चाहते नहीं है कि सरला जी और पापा की शादी हो, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम स्वयंवर रचाएंगे यहाँ पे मोहल्ले में। तो यहाँ पे हमने ये जो स्वयंवर का पूरा सेटअप किया है, हम दो चार लेडीज भी ढूंढ के लाए हैं कि जो स्वयंवर में इन हो, तो फिर हम लोग पूरा सेटअप यहाँ पे अपना करके बैठे हैं। उतनी देर में आप देखते हैं कि मतलब क्या क्या हंगामा हो जाता है। तो मतलब अच्छी दिख रही थी, कमा रही थी, तो मेन हमारा क्राइटेरिया कमाने का था कि भाई पैसे कमाती हो, हम उसको माँ के तौर पे ला रहे हैं, तो भाई पैसे वैसे भी तो कमानी चाहिए ना, वरना हम तो है ही ऐसे लुक्के लोग। तो लाइक बेसिकली पैसों की उस क्राइटेरिया पे ही हम लेके, एक 10 लाख की जॉब कर रही है, एक मंथली 30,000 कमा रही है, तो अमीर लोग लेके आए हैं।
1: इससे पहले की बात आगे बढ़ती, सही समय पर वहाँ चंदू आ जाते हैं, जो अपने दोनों बच्चों को डांट लगाते हैं और इन औरतों में से किसी से भी शादी करने को इनकार कर देते हैं, क्योंकि चंदू को तो ताई जी से ही शादी करनी है। लेकिन चंदू का बेटा देखिए कैसे ताई माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है।
6: ऋषि, ये सब किससे पूछकर कर रहे हैं? बंद करो अभी कभी ये ड्रामा। माफ करना देवियों, मेरे बच्चों ने आपको परेशान किया।
3: एक मिनट पापा, हमने बड़ी मेहनत से नया इकट्ठा किया, अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो इन्हीं में से किसी के साथ कीजिए।
2: हाँ पापा, ये देखिए, ये कैंडिडेट नंबर 3, ये डिवोर्सी भी है, बच्चे भी नहीं है, 10 पैकेज में जॉब करती है।
3: और पापा, ये लेडी नंबर 2, वैनी त्रिपाठी, इनका ना एक बड़ा सा बंगला है यहाँ पर, आपको पता भी नहीं है कितना।
6: बस करो ऋषि, शर्म नहीं आती? और तो कैसे मोहल्ले में बुलाकर उनको परेशान कर रहे हो?
3: अगर आपको इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करनी है, मत कीजिए, मगर ये औरत हमारी माँ बनकर इस घर में नहीं आएगी। बस
1: इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, वहाँ सूरज पहुँच जाता है, जो ऋषि को ये सब करने से मना करता है। भाई इतना ही नहीं, सूरज का गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो ऋषि पर हाथ उठाने जाता है कि चंदू उन्हें रोक देते हैं।
3: तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई माँ की? हिम्मत छोड़ो और ये पूछो कि इन सब की जरूरत क्यों पड़ी। पूछो इनसे कि हमारे पापा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है।
6: एक मिनट सूरज,
5: तो बेसिकली ऐसा ही हो जाता है कि लास्ट में मैं और ऋषि रह जाते हैं और बाकी सब एक साइड हो जाते हैं, फिर हमारा प्लान जो होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो बट ठीक है, कोशिश जारी रखेंगे, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होंगे ही। बट वो भी बात है कि ऋषि और कृति के प्लान थोड़े ऐसे होते हैं, तो मतलब ठीक है।
1: तो भाई चंदू के बच्चे तो नहीं चाहते कि चंदू और ताई जी की शादी हो, तो भाई अब देखना होगा कि ये शादी संपन्न हो पाएगी या फिर होंगे कई और ड्रामे।
7: माना कि माँ भगवान होती है, क्या हम अपनी माँ को खुशी के बदले खुशी देने के बारे में नहीं सोच सकते?
8: पर मुझे माफ करना ताई माँ, मैं ना इस शादी के फैसले से सहमत हूँ और ना ही मैं आपके साथ हूँ।
1: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल तू ही रे दिल में आ गया है एक बड़ा मोड़, जहाँ संजय के सामने एक बहुत बड़ा सच आने वाला है, और ये सच किसी और ने नहीं बल्कि स्वाति की मां ने उसे बताया है। सच सामने आते ही संजय बुरी तरह परेशान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा भी लगातार आंसू बहा रही है और बेहद डरी हुई है। आखिर ये माजरा क्या है और वृंदा किस बात से इतनी सहमी हुई है, आइए देखते हैं।
1: संजय के सामने आया सच। बुरी फंसी वृंदा।

सिर्फ ये धमकी। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज वृंदा के आंसू बह रहे हैं, उसका दिल तड़प रहा है। असल में उसे पता चल गया है कि संजय स्वाति का होने वाला पति है। ऐसे में चाहकर भी वो स्वाति की खुशियों के चलते संजय को कुछ बता नहीं सकती। ऐसे में संजय भी वृंदा को लेकर पहुंच गया है माधवी से मिलने। हालांकि वृंदा इस बात से अनजान है, इसीलिए वृंदा चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई है और संजय पहुंच जाता है स्वाति की माँ माधवी से मिलने, क्योंकि माधवी ने संजय को बुलाया है सच बताने के लिए। फिलहाल तो संजय सच से अनजान था, लेकिन माधवी ने सच बता दिया है कि पूजा के दौरान स्वाति संजय के साथ नहीं बल्कि अम्मू उसके साथ थी। ऐसे में संजय भी परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आ रहा है। खैर उस समय तो वो गुस्सा दिखाता नहीं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वृंदा जो कार में बैठी हुई है तड़प रही है। उसकी नजरें पड़ जाती हैं साइड मिरर पर, जहाँ पर वो देख लेती है माधवी को और उसे लगने लगता है डर कि कहीं संजय के सामने सच ना आ जाए।

वहीं दूसरी ओर वृंदा वहाँ से चुपचाप बिना बताए ही निकल जाती है और बीच रास्ते में उसे मिल जाता है नीरव। और देखिए कैसे वृंदा को सामने देखकर नीरव उसे रोक लेता है और देने लगता है धमकी, जिसके चलते वृंदा डरी सहमी सी है। हालांकि वो अपनी हिम्मत बांधकर उसे अपना टशन दिखाती तो है, लेकिन चाहकर भी नीरव को वो हरा नहीं सकती। खैर नीरव तो अगली चाल चलेगा ही वृंदा को नीचा दिखाने में, लेकिन वहाँ जैसे ही संजय अपनी कार की तरफ जाता है तो उसे वृंदा नजर नहीं आती। ऐसे में वो परेशान हो जाता है और वृंदा को इधर उधर ढूंढने लगता है। देखना होगा क्या संजय वृंदा को ढूंढ पाएगा।

अब बात करें ऑफ स्क्रीन की, तो ऑफ स्क्रीन संजय और वृंदा कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। जरा देखिए कैसे कभी कार के अंदर बैठकर दोनों बना रहे हैं वीडियो।

0: खैर, फन के साथ शूटिंग करने का एक अलग ही मजा है, जो मजा संजय और वृंदा हमेशा लेते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: गणेशोत्सव के रंग में टीवी जगत भी पूरी तरह रंग चुका है। टीवी एक्ट्रेस रचना मिस्त्री और मिताली नाग अपने अपने घर बप्पा को लेकर आई हैं और पूरे दिल से उनकी सेवा में जुटी हैं। सास बहू और बेटियां की टीम भी पहुंची इनके घर इस खास जश्न में शामिल होने के लिए।
2: मिताली नाग के घर आए पापा। देखिए परिवार की बापा भक्ति। चारों ओर गणेशोत्सव की धूम।

एक्ट्रेस मिताली नाग के घर बापा बिराजे हैं और उनका पूरा परिवार साथ मिलकर बापा की आरती कर रहा है। सभी लोग हो गए हैं विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन। मिताली ने इस बार अपने घर के लिए चुने हैं व्हाइट कलर के पापा और डेकोरेशन भी उसी हिसाब से किया है जिसमें उनके बच्चे ने उनकी काफी हेल्प की है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनके भक्ति के ये नज़ारे, कैसे ये पापा की आरती उतार रहे हैं और ले रहे हैं उनका आशीर्वाद।

0: मिताली से ही जानते हैं इस साल क्या है खास।
1: पाप किया लिया लाख कभी ज्योति ना हारी तेरी।
2: तो वैसे तो यूजुअली ना हम जब भी गणपति बापा को हम मतलब गणपति बापा को हम क्या चूज करते हैं, वही हमें चूज करते हैं, पर हम हमेशा उनकी आईज देखते हैं, जो आईज में हमें ऐसा लगता है कि वो लाइफ दिख रही है, जिन आईज में वो बापा हमारे घर आते हैं। और अब की बार के बापा जो है वो रुद्रांश ने सिलेक्ट किया था,
3: मैंने सिलेक्ट किया था,
2: यस। तो उसने बोला कि नहीं ऑल वाइट और ये बहुत प्यारे लैशेज वैशेज लगा के बड़े प्यारे लग रहे थे, तो फिर अब की बार के पापा रुद्रांश ने सिलेक्ट किया। ये फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था, तो अभी आई थिंक अराउंड 44-45 years से, आई थिंक व्हेन ही वाज यंग, और शायद जब वो मुंबई आए या जब उनकी शादी हुई, ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट
3: 43rd year of Ganpati
2: है मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था, और उनके बाद अब हमने कंटिन्यू किया है इसको। तो हमारे यहाँ वैसे पापा बड़े ही आते हैं। तो आइडिया ना बेसिकली देखिए मतलब वो लोटस फ्लावर तो करना ही था मुझे, मेरा बहुत मन था लोटस फ्लावर करने का, और फिर देखिए मैं मेरा था कि लोटस फ्लावर करेंगे, तो मैंने और रुद्रांश ने मिलके पीछे वाला डेकोर बनाया, और रुद्रांश की कजिन्स हैं सिस्टर्स बड़ी, उन मतलब हम चारों ने मिलके बनाया ये, और फिर क्योंकि हमें साइड कवर करने के भी कुछ चाहिए था, तो फिर रुद्रांश मैं और संकल्प आइडिया तीन लोगों के चॉइसेस है, और तीन लोगों के चॉइसेस मिलके पापा का डेकोरेशन हुआ है अब की बार।
3: मुझे तो ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी थी, मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही मुझे चाहिए थी एक मस्त गणपति बापा।
2: देखिए वो तो होता है ना हर साल, और अकेले शायद मैं नहीं हूँ, बट आई एम श्योर जो लोग के घर बापा आते हैं वो लोग एक चेंज नोटिस करते ही हैं। अभी तो आप देखिए लाइफ ऐसे होते जा रही है, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, तो ओवरऑल अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे लिए मांगने के साथ साथ ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए मांगना चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड बहुत ही मैसी और बहुत ही मतलब गड़बड़ी चल रहा है सब कुछ, तो पापा का बेसिकली अब हमें हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए और सबके लिए मांगना चाहिए। एंड आई एम श्योर जैसे मैंने आपको बोला कि जो लोग के घर पे पापा आते हैं वो सब पापा के जाने के बाद वो चेंज नोटिस करते ही हैं, हम तो करते ही हैं, एंड आई एम श्योर पापा आपकी बार जब आए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारी फैमिली में ना तो दिवाली से ज़्यादा बड़े पापा के 5 days होते हैं, तो मतलब वो नाश्ता प्रिपेयर करना, मेरी मदर इन लॉ जब थे तो वो तो सब कुछ घर पे ही प्रिपेयर करते थे, वो चिवड़ा एंड बेसन के लड्डू ये सारी चीज़ें, अब हमें इतना आदत नहीं है, आई एम नॉट ऑनेस्टली केपेबल ऑल्सो टू डू ऑल दैट, तो हम तो ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, बट एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, और 5 days मतलब एवरी डे अराउंड देर आर 30-35 पीपल मिनिमम एट अ हाउस हैविंग बापाज प्रसाद एंड आरती में और ये सारी चीज़ें, एंड फिर ऐसे हम प्लान करते हैं कि कई बार हो भी जाता है ऐसे कि किसी दिन मेरे सर्कल के लोग आते हैं, फैमिली तो होती है एवरी डे, बट के अलावा किसी दिन मेरे सर्कल के लोग आते हैं, किसी दिन हस्बैंड के सर्कल के लोग आते हैं, सो ये 5 days यस, किसी दिन रुद्रांश के फ्रेंड्स भी आते हैं अब, तो एवरी डे मतलब 5 days तो एकदम हलचल होता है, मतलब सिक्स डे जब होता है ना सुबह जब हम उठते हैं तो लिटरली ऐसे लगता है सन्नाटा है और एकदम खाली खाली लगता है, मतलब कि यार यस यस। और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जो जो लोग जितने भी लोगों ने अपने घर पे एक आस्था से बापा को अपने घर लेकर आए हैं उनकी सेवा की है, मैं हमारे बापा से ये विश करती हूँ कि उन सब की जो भी विशेज है वो सब पूरी हो। गणपति बापा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।

0: तो भाई हम तो यही कहेंगे कि बापा अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
2: महादेव अंसारी,
3: के सीरियल महादेव एंड सन्स में बुरी फंस गई है रज्जी। असल में रज्जी ने जिस बदमाश से पंगे लिए थे, उस बदमाश ने रज्जी को बाथरूम में घेर लिया है, और देखिए कैसे वो रज्जी के साथ जोर जबरदस्ती पर उतर आया है। रज्जी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उस बदमाश ने तो दरवाजे पर कुंडी लगा ली है और पूरी कोशिश कर रहा है रज्जी के साथ बदतमीजी करने की।
4: हम रज्जी को देख कर आते हैं, है ना? परफेक्ट।
5: अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो डांस करते हैं।
4: अरे हमें नहीं
5: ना।
6: चलो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी?
3: यहाँ रज्जी की इज्जत खतरे में है तो वहाँ नर्मदा अपने पति के साथ डांस कर रही है, और तो और धीरज भी अनजान है कि रज्जी मुसीबत में है। हालांकि रज्जी अपने आप को यहाँ पर बाथरूम में बचाने की कोशिश में लगी हुई है, और उसी कोशिश में गलती से उस बदमाश का हाथ छूट जाता है, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो जाता है।

0: भाई रज्जी का ये हाल देखकर तो धीरज हैरान है, और तो वो बाथरूम में उस बदमाश को बेहोश देखता है तो सबसे पहले यही चेक करता है कि वो सही सलामत है या नहीं। लेकिन अगले ही पल उसे लगता है जोरदार झटका, क्योंकि उस बदमाश की मौत हो चुकी है, यानी अब रज्जी और धीरज बुरे फंसने वाले हैं।
1: हेलो यार, ये मोंटी फोन ही नहीं उठा रहा है। लास्ट टाइम वॉशरूम के पास दिखा था ना, मैं वहीं जा रहा हूँ।

0: а не Тамара.
1: अरे
2: सर सुनो हाँ, तो
3: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा इन दिनों भागदौड़ कर रही है अपने घर के लिए जो अब मुश्किल में है और उसकी इस भागदौड़ को देखकर दिग्विजय हैरान है और तो और दिग्विजय उसका ख्याल रखने की कोशिश भी कर रहा है तभी तो वो पानी का ग्लास दे रहा है लेकिन अनुपमा रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पर दिग्विजय अनुपमा पर नाराजगी जताता है और अनुपमा को अपना ख्याल रखने का आदेश देता है।
2: पनीर मटर की सब्जी भी कही है वो तो बन जाएगी उसमें कोई प्रॉब्लम
1: नहीं। और अब ऐसी रही है।
2: हाँ?
1: मैंने क्या कहा स्टैच्यू मतलब हिलना नहीं। रुक के सांस लेने की आदत ही नहीं किसी की सुनती नहीं अपनी फिक्र ही नहीं है जरा सी। अब बताइए बात सुनेंगी बात मानेंगी पानी पियेंगी। बैठिए।
2: थैंक यू।
1: अनुपमा जी इन चौल पे बस
2: बंगाली भाषा बॉस दादा के साथ रहने का असर है।
1: ये उनके साथ रहने का असर नहीं है आपके साथ रहने का असर है। हर वक्त आपको ऐसे देखता हूँ आपकी फिक्र हो गई है परेशान हो जाता हूँ देखकर आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अरे सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है ना खाना खाती है ना पानी पीती है कुछ करती नहीं है। अरे हद करती है आप।
2: आपको भी रुक के सांस लेने की आदत नहीं है आप भी शांति से बैठ ही नहीं सकते किसी की बात सुनते ही नहीं है। बताइए आप मेरी बात मानेंगे शांति से बैठेंगे। पानी पिएंगे लीजिए बैठ के पीजिए।
1: मेरा पैंतरा आप मुझे पे चला रही है। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आराम की जरूरत है
2: और आपको चिल करने की जरूरत है बॉस।
1: चिल करने की
2: जब मंजिल तक पहुँचने की उत्सुकता हो चलती हो घाई हो तो चलने में आराम मिलता है बैठने में नहीं। देखिए सपना और उम्मीद इन दोनों में बस कोशिश का अंतर है। अगर कोशिश ना करो तो हर उम्मीद एक सपना लगती है और अगर कोशिश करो तो हर सपना उम्मीद बन जाता है।
3: भाई दिग्विजय को ही नहीं बल्कि अनुपमा को भी पता है कि इन दिनों दिग्विजय भी भागदौड़ में लगे हुए हैं और अनुपमा के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। खैर दोनों आपस में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए प्लानिंग करते हैं इनके बीच बातचीत भी होती है लेकिन अनुपमा जैसे ही उठकर चलने के लिए तैयार होती है तो उसे आ जाते हैं चक्कर जिसके चलते धीरज परेशान हो जाता है और बा दौड़ी हुई आती है जो अनुपमा पर अपनी नाराजगी भी जताती है।
2: चक्कर आ गए क्या? हाँ चक्कर तो आना ही था दिन रात जो एक कर दिया है बस पूरा दिन काम काम और काम। चुप एक बार भी बोली ना कि करना है तो कान के नीचे ऐसा सितार बजाऊंगी ना। अरे ऐसे कौन सा महान काम है जो तू रोक नहीं सकती और रुका नहीं जाता है। तू क्या वो सरहद पे लड़ने जा रही है या कोई दर्दी का इलाज कर रही है या खेत में वो गेहूं उगा रही है? नहीं ना सिर्फ घर बना रही है। वो कोई इतना महान सपना नहीं है कि उसके लिए अपनी और हमारी सबकी जान ऐसे आग में डाल रही है। और एक पूरा दिन क्या है ये घर घर घर। तू क्या सड़क पे पड़ी है? अरे मेरे घर में सालों से तू रह रही है ना आगे भी रह सकती है।
4: बस सामने
2: नहीं पर तुझे तो बस अपना घर बनाना है और वहाँ जाके बड़े बड़े भाषण देने दुनिया को बताना है कि देखो
3: भाई एक घर के लिए अनुपमा का ये हाल है और बा पूरा मौके का फायदा उठा रही है अनुपमा पर अपनी नाराजगी जताने के। लेकिन जल्द ही अनुपमा की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प।
2: एक बार तो तूने आग में हाथ डाल के अपना हाथ जला है दूसरी बार क्यों डालता है?

0: शादी
1: अनुपमा आंटी केम छो बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन जीते हो तो बड़ा चंदा हो जाए
2: 51,000
3: ले बेटे 1100
0: थोड़ा कम कर देते 21,000
4: लेकिन एक शर्त है मैं तुम लोगों से सिंपल 3 सवाल पूछूंगी अगर तुम लोगों ने उन सवालों को जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे 21,000 दूंगी
5: सीरियल साथ निभाना साथिया में राशि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रुचा इन दिनों भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है रुचा अपने पूरे परिवार के साथ पुणे पहुंची जहां उन्होंने प्रसिद्ध दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में बप्पा के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से आशीर्वाद लिया सास बहू और बेटियां भी रुचा के इस भक्ति भरे सफर का हमसफर बना तो चलिए रुचा संग करते हैं बप्पा के दर्शन

राशि रसोड़े में नहीं बल्कि पहुंची है बाप्पा के द्वार।

0: संग दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सातिया फेम एक्ट्रेस राशि यानी कि रुचा हसबनेस। भाई गणेशोत्सव चल रहा है, ऐसे में रुचा के घर पर तो गणपति आते ही हैं, लेकिन आज खास वो निकली है इस भक्ति भरे सफर पर। वो जा रही हैं पुणे करने दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बापा के दर्शन, और इनके इस भक्ति भरे सफर के हम सफर हैं सास बहू और बेटियां।
1: गणपति बप्पा
2: मोरिया, मंगल मूर्ति
3: मोरिया,

0: ही आज रुचा करेंगी बाबा के दर्शन। लेंगी दगुशेठ हलवाई गणपति का आशीर्वाद। मिलवाएंगी अपने परिवार से। सफर में होगी ढेर सारी बातें। फिर रियल लाइफ में अब रुचा मम्मी बन चुकी है, उनके दो छोटे बच्चे हैं। आज हम सभी से मुलाकात भी करेंगे और पापा के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत।
1: और इस भक्ति भरे सफर में आज हमारे साथ आपके लिए एक सरप्राइज है, जो कि है सातिया की राशि सो मच। तो आपको सोलो गणेश उत्सव चल रहा है, तो क्या प्लान है?
2: पर आई एम वेरी एक्साइटेड, काफी टाइम हो गया मैं गणपति के यहाँ नहीं गई थी। तो इस बार मुझे पता, मैंने ठान लिया था कि मैं जाऊंगी इस साल, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम साथ में जा सकते हैं। मैं और पूजा, हमने पहले 2015-14 में हम गए थे लास्ट, एंड अभी वापस जा रहे थे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जा रहा है। आई विल शो यू ऑल हु ऑल आर कमिंग। माय मॉम इज कमिंग। Hello. And that's Ruby. And that's baby boy. Ronit is coming. Kushli P. And Rahul is coming.
3: Hello.
0: तो भाई शुरू हो चुका है पुणे का ये सफर, और इस सफर में है ढेर सारी मस्ती, भक्ति और ढेर सारी बातें।

0: पर सफर अभी लंबा है, ऐसे में राशि ने मिलवाया अपनी फैमिली से। आज वो पुणे के डगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जा रही हैं और साथ है इनके दोनों बच्चे, इनके हस्बैंड राहुल और मम्मी। तो चलिए मिलते हैं इनकी ये हैप्पी फैमिली से और रुचा से भी जानते हैं ढेर सारी बातें, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आज सास बहू और बेटिया में रुचा नजर आएगी। इन्होंने शादी के बाद ब्रेक लिया है, तो आइए जानते हैं कि क्या है इनकी तैयारी वापसी की और मिलते हैं इनके परिवार से।
1: तो सबसे पहले तो गणपति बप्पा के घर हम जाने वाले हैं, तो गणपति बप्पा
2: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरिया,
1: जोरात बोल
2: गणपति बप्पा।
1: तो आज हमारे साथ रुचा तो है ही, उनका पूरा परिवार है, तो सबसे पहले उनके दोनों बच्चों से मिलते हैं, बाद में एक एक कर हस्बैंड से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे। सो हियर टू गो।
3: हाय, सो ये है रौनक, माय स्वीट बेबी बॉय। दिस इज रूही, शी इज माय फेवरेट, माय फर्स्ट बॉर्न, दैट्स मम्मी, एंड दिस इज राहुल।
4: हेलो।
1: ओके, सो कितनी एक्साइटमेंट है पापा के द्वार जाने की, सबसे पहले ये बताइए।
3: बहुत ज्यादा, बिकॉज काफी टाइम हो गया था दैट मैं डगड़ूशेठ जी के दर्शन नहीं मैंने किए थे, और लास्ट ईयर मैंने लालबाग का राजा मतलब दर्शन किए थे लास्ट ईयर, एंड ये साल मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डगड़ूशेठ जी के दर्शन करने हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मतलब टाइम निकाल के डिसाइड करके मैं जा रही हूँ पुणे, बिकॉज हमारे घर पे भी गणपति बापा होते हैं, तो उनको छोड़ के जाना जरा ऐसे मुश्किल हो जाता है, बट दिस ईयर वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ quick visit and then you're going to go back.
5: I am going to just I'm here. I am going to Pune.
3: You're going to Pune.
1: And you?
3: And where are you going, baby?
5: With Darshan, I'm even getting to go with, I don't know.
3: Arohi. She's going to meet her cousin, Arohi. So you're very excited?
5: Yeah. Sadi.
3: Lehenga Choli. She's wearing lehenga choli. And what is this? What is this called?
5: Kurta.
1: And mom,
5: give me that kurta.
3: Kurta. This is also a kurta. And Aji is wearing. Aji is also wearing a kurta. Everybody is wearing Indian clothes.
5: And this is Sudan. I am wearing
3: Indian.
1: Indian.
5: But I am wearing a lehenga.
3: You are wearing a lehenga. That's
5: and
3: good.
5: I am wearing Indian shoes.
3: He's wearing Indian shoes. You guys were not there when we were there. First time we are going in Bappa ke darshan karne. Yes, we've never been to this temple. Yes. I know thoda break to thoda lamba ho gaya hai, but it's been very busy. Yaar. I feel ki once I got married, to wo time मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, एंड देन व्हेन आई हैड किड्स, सो आई वाज वेरी क्लियर कि एटलीस्ट कुछ सालों तक आई वॉन्ट टू बी विद देम टिल द टाइम they really get busy and then फिर उनके पास टाइम नहीं है, बट राइट नाउ ही स्टिल वेरी वेरी स्मॉल एंड आई एब्सोल्युटली लव बीइंग विद देम, सो राइट नाउ आई एम अ वेरी हैप्पी हैंड्स ऑन मम, एंड हाँ फिलहाल तो मैं एकदम हैंड्स ऑन मम हूँ, आई एम अ हैंड्स ऑन मम एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस फेज, सो एंड आई रियली बिलीव कि ये टाइम बहुत जल्दी जाने वाला है, इट्स रियली सैड जब ये इतने जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, इनके फोटोज ही देख के हम खुश हो जाते हैं कि यार ये इतने छोटे से थे, बट या आई मीन एवरी मम एंड पेरेंट हैज टू डील विद दिस, या यू स्लीपी। अगर कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तो आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। नाउ आई थिंक अभी टाइम बना सकते हैं, यू नो विद माई किड्स बीइंग ग्रोन अप आई थिंक टाइम बन सकता है, बट इट हैज टू बी समथिंग वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्वीट एंड समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आना जरूरी। यार रियलिटी शोज आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई वुड बी इंटरेस्टेड, आई वुड बी कीन, बट आई थिंक समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट वुड बी फन।
5: डोंट गो,
3: सी मैंने सिर्फ काम पे जाने की बात की कि डोंट गो,
5: बट पापा मोरिया मंडा मारती
1: नीट नीट
3: लो का करता मंडा है तो का
5: दादू दादा वास्ता में हसी नूरी पूरी पे पुपाजी।

0: ओज मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति जय देव जय देव।
1: तो देखा आपने कैसे गाने गुनगुनाते गुनगुनाते बच्चे इस सफर को कर रहे हैं काफी एंजॉय। वैसे यहाँ पर है तीन जनरेशन, यानी कि रुचा, उनकी मम्मी और रुचा की बेटी, जो आज साथ में इस ट्रिप पर निकल पड़ी है।
2: जेन अल्फास के साथ डील करना इतना इजी नहीं, पर अभी तक इनका जेन अल्फा नेस मुझे कम दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक छोटे हैं, बट अभी ये काफी सारी चीजें ले आती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, समझता भी नहीं है। दैट इज 6 है, व्हेन यू जस्ट सॉ
0: 6 है, यू गॉट टू हैव
2: इट। मम्मी हाउ आर यू डीलिंग?
3: रुचा का बचपन तो मैं नौकरी कर रही थी इसलिए ज्यादा मैंने देखा ही नहीं, तो मैं इतना बहुत अच्छे से इनको फील कर रही हूँ कि बचपन कितना अच्छा रहता है, होता और होती, उनके साथ मैं इतना टाइम बिताती हूँ, उनसे खेलती हूँ, उनसे कुछ सीखती हूँ। आजकल के बच्चों से सीखना भी बहुत मिलता है सीखने को, और बहुत मजा मस्ती करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं दोनों से सीखा है। मीन्स ऐसे कि अभी तो इंग्लिश मीडियम है, तो उनसे वो स्कूल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं कि दादी ऐसे नहीं है, ऐसे करने का है, तो एक अपने को भी नया मिलता है ना उनसे तरीका सीखने का।
2: मैं कभी कभी मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी प्लीज तुम मेरी पहली हो फिर बाद में इनकी, तो मतलब मुझे हमेशा बताना पड़ता है कि ये बाद में आ रहा है, पहले मैं आ रही हूँ। लाइक लुक एट मी, मुझे पहली रोटी दो, इनको बाद में दो, या समथिंग लाइक।

0: रसोड़े का आई थिंक ड्यूरिंग कोविड वो वापस पॉपुलर हो गया था. आई थिंक यशराज मुखाटे हैड मेड दैट फन गिग एंड इट वाज रियली रियली क्यूट.
1: राशि
0: एंड मतलब आपको तो पता ही है कि साथिया का मतलब ये हमेशा एक दौर रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीन्स या कुछ ऐसे क्लिप्स हमारे पॉपुलर हो जाते थे, तो ये तो अभी भी चल ही रहा है. एंड इट्स लवली टू सी कि लोग आज भी देख रहे हैं, बिकॉज हमारे रीरन्स आज भी हो रहे हैं. सो पीपल आर जस्ट सो स्वीट. अभी भी जैसे हम रुके थे, सो पीपल आर स्टिल टेलिंग मी कि हम आपको देख रहे हैं. सो विच इज वेरी नाइस, यू नो, लाइक बहुत अच्छा लगता है जब लोग आज भी इस तरीके से देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं. इट्स प्रीटी, इट्स वी फील ब्लेस्ड. थैंकफुली वी आर स्टिल कनेक्टेड. बट अभी सब सबके बच्चे हो रहे हैं, शादियां हो रही है,
1: गोपी बहू भी मम्मी बन गई है,
0: डी मम्मी बन गई है. एंड अभी बच्चे सारे छोटे हैं, सो अभी हम ना हमारा मिलना इतना नहीं होता है. बट फोन पे एंड वी आर स्टिल लाइक वेरी मच कनेक्टेड. अभी भी सारे साथ में है.
2: तो आइए रुचा से जानते हैं कि क्या है उनकी टीवी पर वापसी करने की प्लानिंग.
0: आई थिंक फॉर मी मतलब मेरा तो हमेशा यही मानना है कि मैं मानने में बिलीव नहीं करती, मैं थैंक यू बोलने में बिलीव करती हूँ. सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब मुझे जो मिलने वाला है वो मेरी मेहनत से और पापा ने जो डिसाइड किया है वो मुझे मिलने ही वाला है. तो उसके लिए जो काम करना है वो मैं करूँगी. और फिलहाल तो आई थिंक बच्चे होने के बाद तो मैंने हमेशा मतलब ये सुना था और अब तो एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ कि ऑल यू वॉन्ट इज कि तुम्हारे बच्चे हेल्थी रहे, फैमिली हेल्थी रहे, दैट्स ऑल यू वॉन्ट. बाकी सब तो बाकी सब चीजों के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं, बट जस्ट कीप अस हैप्पी एंड हेल्थी.
2: बाकी परिवार वालों से तो मिलिए, अब बारी मिलने की रुचा के हस्बैंड राहुल से. तो आइए देखते हैं कैसी है इनकी बॉन्डिंग.
0: इट्स अमेजिंग, वी बीन टुगेदर फॉर 16 इयर्स एंड शादी को हो गए हमारे 11 साल. सो एंड नाउ वी हैव टू ब्यूटीफुल किड्स. सो बहुत आई थिंक चीजें तो कुछ भी चेंज नहीं हुई है. आई थिंक अभी भी सेम ही हमें फील होता है, लाइक इट्स द सेम, लाइक मी एंड राहुल स्टिल बीन द सेम. नाउ अभी हम पेरेंट्स बन गए हैं तो वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. बट अदरवाइज वी हैव ऑलवेज बीन लाइक फ्रेंड्स एंड ही इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, लाइक एवरीथिंग. कुछ भी मुझे अपडेट करना है, कुछ भी बताना है, तो राहुल इज द फर्स्ट वन. सो उसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए वो भी उसको मिलती रहती है. सो इट्स जस्ट लॉट ऑफ फन. माय पेरेंट्स एंड लाइक माय फैमिली सेज कि वो कितना शांत नहीं है, बट इट्स लॉट ऑफ फन. लाइक सो आई थिंक फाइंडिंग अ कंपेनियन जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, इट्स जस्ट द बेस्ट वे टू बी. इट इज क्रेजी समटाइम्स, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे बच्चे भी है. कभी हम लाइक जैसे फैमिली के पास छोड़ के दादा नानी एंजॉय कर रहे हैं जो भी है, एंड हम हमारे कॉफी डेट पे चले गए या कुछ डिनर करने चले गए, सो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि ओ गॉड इट्स अ बच्चे है, वी हैव टू किड्स नाउ, यू नो. सो इट्स प्रीटी क्यूट.
3: मोस्ट ऑफ द स्टोरी तो सही है.
1: स्टोरी
3: मोस्ट ऑफ द स्टोरी तो सही है. हम चाइल्ड मैरिज से चिल्ड्रन तक पहुंच गए. वैसे तो पप्पा हमारा फेवरेट है. एवरी ट्यूजडे एवरी सुबह पप्पा ही हमारे सेंट्रल, हमारे पावर सोर्स है. आज फर्स्ट टाइम पुणे आ रहे हैं. डब्लू शेट बच्चों का भी फर्स्ट टाइम है.
2: तो भाई बातों में और मस्ती में सफर का पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए हैं पुणे के डगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, जिसके लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं।
0: ओ अभी ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं. सभी अंदर जाने की बस देर है, सो चलो लेट्स गो. चलो अब हम पहुंच गए हैं
2: मन. तो भाई बापा का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो चलिए विघ्नहर्ता के लिए पूजा की थाली ले ली जाए.

तो काफी लंबे इंतजार के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा के द्वार और देखिए कैसे ऋचा और उसका पूरा परिवार विघ्नहर्ता के दर्शन कर रहा है और उन्हें मिला बाबा का आशीर्वाद, जहां उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें प्रसाद मिला और ऋचा हो गई है काफी इमोशनल।

0: तो गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ पूरे हुए रुचा और उसके परिवार के दर्शन। लेकिन इतनी दूर आए हैं तो अपने साथ रुचा ले जा रही है दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की ये मूर्ति।
1: गणू बप्पा, इट्स आल्सो वेरी क्यूट। ये मेरी सबसे फेवरेट मूर्ति है।

0: तो भाई इन्हें गणेश जी का आशीर्वाद तो मिल गया है और दर्शन भी काफी अच्छे से हो गए हैं, लेकिन अब बारी जूस पीने की। और यहाँ पर देखिए रुचा को उनके फैंस मिल गए जो खिंचा रहे हैं रुचा के साथ तस्वीरें। भाई अब भी राशि काफी पॉपुलर है, तभी तो झट से फैंस ने उन्हें पहचान लिया।
1: लंबा सफर हम जो करकर आए हैं वो वर्थ रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ी इमोशनल भी होगी रुचा पापा को देखकर।
2: आई थिंक एक तो मैं इतने साल से वेट कर रही थी कि मतलब आज इसके साथ जाऊंगी एंड फाइनली इस साल मतलब मैंने ठान के इस बार मैंने कंप्लीट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड ऑफकोर्स पापा को देख के मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, सो इट्स जस्ट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी।
1: सो क्या मन में चल रहा था जो आंसू निकल आए?
2: नो आई थिंक हमेशा मतलब एवरी टाइम मैं पापा को कोई भी टेम्पल में जाती हूँ तो मुझे हमेशा मतलब आई एम ऑलवेज ओवरवेलम्ड, बट इस बार मतलब बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और पूरी फैमिली के साथ दर्शन किए दोनों बच्चों के साथ, वो फीलिंग
2: एब्सोल्युटली एंड फर्स्ट टाइम था हमारा पूरा परिवार राधा कृष्ण जी का दर्शन करने आया था, सो इट्स जस्ट वेरी वेरी स्पेशल।
1: सो अब वक्त हो गया है बाय बाय कहने का हमें।
2: हाँ बाय बाय।
1: सो लास्ट में जाते जाते गणपति बप्पा
2: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरिया।
0: तो भाई हम तो यही कहेंगे कि गणपति बाप्पा का आशीर्वाद सब पर यूं ही बना रहे। पुणे से नुपुर माउची और पूजा त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
4: इसकी आवाज सुनकर कानों से खून निकल आता है,
5: जब उसकी लड़ाई होती है तो फिर वो रुकती नहीं।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस की, नजर डाल लीजिए इसकी ये खास झलक पर, जहां पर बिग बॉस के सवालों का देना होगा गुल्लू को जवाब।
5: खत्म हो जाती तो वो उस पॉइंट को दोबारा स्टार्ट कर देती है।
4: कौन है बुली गैंग के सदस्य?
5: मुझे लगता है
6: मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आएगी जिसके लिए जिंदगी प्यार का नगमा हो, जो गमों की पॉकेट से खुशी।
0: दंगल टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया शो जिसका नाम है सोनी और नहीं कोई होनी, जिसमें नजर आएंगे सुमित भारद्वाज और इंद्राक्षी। देख लीजिए इसकी पहली झलक।
6: इश्क हो जाएगा,
7: क्या होगा तब जिस दिन सोनी से कबीर को मिलाएगा रब। सोनी
0: गणेशोत्सव के मौके पर लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंचे रणवीर सिंह, जहां फैंस का उन्हें ढेर सारा प्यार मिला। यहां देखा इनका धुरंधर अंदाज।

0: मन्नत फेम एक्टर अदनान खान पहुंच गए हैं मक्का अपनी मम्मी संग, जहां से उन्होंने शेयर किए हैं ये नज़ारे।
1: कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए ये गॉड गिफ्ट है। गॉड अपना गिफ्ट वापस लो। ऋत्विक और मेरे को ना फर्स्ट वीक से बोल रहा है, अरे भाई बड़े तो आप हो ही गए हो, हम बड़े नहीं है तेरे से, तेरे को फेम लेट मिला।
0: खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर हो रही है रोस्टिंग और मस्ती अनलिमिटेड।
2: करके मैं कॉलेज जाता हूं। ईस्ट और वेस्ट, हर्ष भाई इज नॉर्थ।
3: हर्ष को नहीं रोस्ट कर सकते कि लोगों बोलेगी ओरी तुम गरीबों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं।

बीती शाम हुई फिल्म दायरा की स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए कई सितारे जैसे कि रेखा जी, जावेद अख्तर, अर्शी खान, मेघना गुलजार और कई और सितारे जो स्क्रीनिंग में हुए शामिल।

0: गणेश उत्सव की रौनक के बीच वसुधा के घर पधारे हैं बप्पा, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। वसुधा को उम्मीद है कि इस पावन मौके पर रिश्तों में आई हर दरार और गलतफहमी हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन क्या सच में पूरी होगी उसकी यह मनोकामना? चलिए देखते हैं।
1: वसुधा के घर गणपति बप्पा का आगमन। शुरू हुआ लाजवंती और सारिका के बीच ड्रामा।
2: यो आरती की थाली लेकर उधर कहाँ जा रही है? जी हमारे घर पधारे और पहली पूजा का मान घर की टीम नहीं मतलब और तुम भी ले को।
1: चौहान परिवार और लाजवंती का टशन।

जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज चौहान हाउस में खुशियों की एंट्री हो रही है और हो भी क्यों ना, गणपति बप्पा का त्योहार है, बप्पा का आगमन हो रहा है। ऐसे में देखिए किसी बिरजू और उसका पूरा परिवार बप्पा का स्वागत कर रहा है और चौहान परिवार भी कहीं न कहीं इसमें शामिल है। भाई फूल के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती है और वसुधा ये सब देख कर बहुत खुश है। ऐसे में फूल बप्पा की आव भगत में लग जाती है और वसुधा उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसी मदद के चलते घर में सारी का ड्रामा शुरू कर देती है।

0: लाडो जल्दी आ, कठे रह गई थारी दादी सा आ गई। फूल
1: यो आरती की थाली लेकर उधर कहां जा रही है? मेरे जी हमारे घर पधारे और पहली पूजा का मान घर की बीन नहीं मतलब। और ये तुम भी ले को,
0: सारा दिमाग खराब है के?
1: जब मैंने कल से बोल दिया कि यो गणपति हमारे हैं तो इसके सारा विधि विधान हम करेंगे। चौहान परिवार 10 कदम की दूरी पर ही रहेगा।
2: थारे को तो मैं
1: संगा। चलो हमारे साथ।
3: भाई चंद्रिका ने तो सारिका को रोक लिया, लेकिन सारिका अब भी मुंह बना रही है। इन सब की परवाह किए बिना लाजवंती अपनी बिटिया रानी फूल को गणपति बप्पा की आरती करने को कहती है। ऐसे में फूल खुश होकर बप्पा की साज सजावट करती है, उनकी आरती करती है। पूरा परिवार उस आरती में शामिल भी है।

ऐसे में प्रसाद बांटने की बारी आती है तो जरा देखिए कैसे लाजवंती नाटक करना शुरू कर देती है और वो अपने हाथों से प्रसाद उन्हीं लोगों को बांटती है जिनको वो बांटना चाहती है और बाकी नौकरों को बांटने के बाद वो चौहान परिवार को छेंक देती है और अपना टशन दिखाते हुए वहाँ से चली भी जाती है। ये सब वसुधा चुपचाप देख रही है और चाह कर भी कुछ कर नहीं पाई, लेकिन लाजवंती के जाते ही जो प्रसाद वसुधा को मिला था वसुधा ने वही प्रसाद पूरे परिवार को बांटना शुरू कर दिया, लेकिन सारिका वहाँ पर भी अपने तेवर दिखा रही है।

0: ना ना ना, इतनी कृपा करने की जरूरत ना है।
1: मैं भिखारी हूँ जो थारे को मिले हुए प्रचार में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर मैं खुश जाऊंगी।
2: सही कहा, प्रसाद तो प्रसाद, चाहे किसी से भी मिले कितना भी, तो गणपति जी का आशीर्वाद सिर टुकड़ा कर तुम पाप हो।
3: फिलहाल तो सारिका का गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, जिसे चंद्रिका बार बार संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं चंद्रिका उसका मन उदास है। ऐसे में जब चौहान परिवार की बारी आती है तो देखिए कैसे वसुधा दौड़कर जाकर चंद्रिका को बुलाने जाती है, लेकिन जैसे ही वसुधा जाने लगती है तो चंद्रिका को वो आते नहीं देखती और वो रुक जाती है। इस पर चंद्रिका भी अपना जवाब देती है।
2: हम कभी भी किसी से डर के या किसी से छुपकर दर्शन अगर भगवान को हमारी सेवा चाहिए तो वो खुद को रास्ता दिखाएंगे।
3: भाई चंद्रिका ने तो मन बना लिया है कि बप्पा अगर उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगी, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए वो अपने मन से नहीं जाएंगी। देखना होगा कि अब वसुधा ऐसा क्या करेगी कि दोनों परिवार के बीच एकता बढ़ेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सीरियल तुम देना साथ मेरा में मौका है अपराजिता और आराध्या की पगफेरे की रस्म का। मायके लौटते ही एक तरफ जहां आराध्या अपने ससुराल की अमीरी का रौब दिखा रही है, वहीं अपराजिता अपने उसी सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही है। चलते हैं सीरियल के सेट पर।

0: और आराध्या के पगफेरे की रस्म। शुरू हुए आराध्या के नखरे। देवरानी जिठानी में दर्शन। स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता के पापा पहुंच गए हैं अपराजिता के ससुराल में अपराजिता और आराध्या को वापस अपने घर ले जाने के लिए। असल में शादी के बाद उनके पग फेरे की रस्म अदा करनी है। ऐसे में दोनों अपने पापा के साथ चलने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन तभी आराध्या नखरे दिखाना शुरू कर देती है और अपराजिता से वो कार ले चलने के लिए कहती है जो रक्षित ने उसे मुंह दिखाई के तोहफे पर दी थी। ऐसे में अपराजिता अपने परिवार के साथ मोहल्ले में आ तो जाती है, लेकिन आते के साथ ही मोहल्ले वाले करने लगते हैं कार की तारीफ। बस फिर क्या, आराध्या आगे बढ़कर शुरू कर देती है अपने नखरे दिखाना।
1: ये गाड़ी इतनी महंगी है कि आपके इनकम से ज़्यादा महंगी है।
2: तू ये तो रक्षित जी के मुंह देखा क्या गिफ्ट है? अब तक यहाँ से आज ये लो, आज तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक गई थी गाड़ी इसकी। तो क्या किस्मत है तेरी, और ये आरत बेगाने शादी में पूरा दिमाग बढ़ रही थी।
3: मुझे ऐसा लगता है मालती का टेक ये रहेगा इस पर कि आरू पहले से ही अटेंशन सीकर है। मैं, मेरा, सब सही, मुझे पहले और सबसे अच्छा मुझे चाहिए, जो वैसा उसकी शादी में हुआ नहीं। सो उसका कहीं ना कहीं वो रिवेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी भरपाई वो खुद ही करेंगी। यू नो, मेरी बात सुनो, मेरे लिए ये करो, ये सब होने वाला है, ये मालती को एक्सपेक्टेड है और वही हम शायद देख रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कोई स्टेप नहीं ले रही हूँ, ना ही बहुत बड़ा रिएक्ट कर रही हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम टेलिंग हर कि अच्छा ऐसा इतना ही है।
0: भाई आराध्या को तो यहाँ पर बेइज्जती सी फील हो रही है। फिलहाल तो कार देखकर अपराजिता की मम्मी भी बहुत खुश है। तभी तो देखिए कैसे वो सभी मोहल्ले वालों के सामने कार की पूजा कर रही है और तो और नारियल भी फोड़ रही है। हालांकि वो नारियल के जरिए कार ही तोड़ देती, लेकिन उनके पति ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में उन्होंने कार के सामने नारियल फोड़ा और अपनी दोनों बेटियों को अंदर ले गई। अंदर जाते वक्त भी आराध्या ने अपने नखरे दिखाए जब उसका पैर गोबर पर रख गया। खैर ये तो आराध्या के नखरे हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी तो देखिए कैसे मालती ने दोनों बेटियों के लिए खाना बनाया और आराध्या को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। तो डाइनिंग टेबल पर आते ही आराध्या ने अपनी नौटंकी करनी शुरू कर दी और अपना रौब दिखा दिया।
4: आपके सामने मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझे हंसते रहे, ये बोलते ये तो अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, आपने एक बार नहीं रोका उन्हें, छोटा प्रूफ है।
3: अब मालती बहुत खुश है क्योंकि पगभेरे के लिए अप्पू और आरू दोनों आए हैं और अप्पू अपनी मर्सिडीज कार लेकर आई है, जो रक्षित ने गिफ्ट करी है। सो मालती खुश है, ये दोनों घर में आते हैं और पता चलता है कि आरू का रूप थोड़ा बदल गया है। आरू बोल रही है कि अरे एसी लगवा दो, ये तेल वाला खाना क्यों है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं आऊँगी। सो हम सब, मतलब जीजी, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब लोग थोड़े सरप्राइज है कि ये क्या चल रहा है। रश्मि भी कि ये क्या है, पंखा नहीं। सो थोड़े से पैसे का रंग चढ़ा हुआ है आरू पर और यही सीन में हो रहा है।
0: वही आराध्या ने तो अपनी बहन अपराजिता को ही अपने ताव दिखा दिए और वहाँ से चली गई, लेकिन बुआ जी को ये बात रास नहीं आई क्योंकि अब अपराजिता उसकी जेठानी है और अब उसे बहन के साथ साथ एक जेठानी के रूप में आराध्या को समझाना होगा। हालांकि अपराजिता इन सब बातों को हल्के में ले रही है, अब उसे क्या पता कि उसकी बहन आगे चलकर उसके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाली है। फिलहाल तो बता दें कि ससुराल में सिर्फ अपराजिता की बहन ही नहीं बल्कि अपराजिता की सासू माँ भी है, जो अपराजिता से हमेशा नाराज रहती है। जब वो अपनी बहू रानियों को वापस लेने आएंगी तब भी नखरे दिखाएंगी, लेकिन अपराजिता का साथ देने के लिए पहुंचेगा रक्षित, जो लाएगा कहानी में रोमांटिक ट्विस्ट।
5: अपराजिता की कार तो रिपेयर के लिए गई है, ड्राइवर को मिलाकर हम 5 लोग हैं गाड़ी में, एक कार में कैसे जाएंगे?
6: तुम कैसे जाओगी अप्पू,

0: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ट्रेस ऋतु चौहान के घर गूंजने वाली है किलकारी, क्योंकि वो जल्द ही मां बनने वाली है। ऐसे में उनकी गोद भराई की रस्म में परिवार के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के करीबी दोस्त भी शामिल हुए, जिससे इस सेलिब्रेशन की खुशी डबल हो गई। तो चलते हैं ऋतु चौहान के घर और देखते हैं इस खास रस्म की खूबसूरत झलकियां।
2: ऋतु चौहान की गोद भराई की रस्म।
3: मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात
2: शामिल हुए परिवार और फ्रेंड्स।
3: सजदे करूं दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए।
2: घर आएगा नन्हा मेहमान।

एक्ट्रेस रितु चौहान, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, बड़े घर की छोटी बहू, वो जल्द ही मम्मी बनने वाली है, यानी कि रितु और उनके हस्बैंड अंकुर के घर जल्द ही खुशियां आने वाली है। और ऐसे में आज हो रही है इनकी गोद भराई की रस्म, जिसमें होने वाली मम्मी यानी कि रितु देखिए कैसे सजी धजी है। इसी के साथ शामिल है उनके पति अंकुर और साथ है पूरा परिवार, जो मिलकर ये खुशियां मना रहा है।

0: आज तो ऋतु और अंकुर की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि वो नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए कितने एक्साइटेड हैं।
1: ये है कि मतलब बहुत अलग लेवल की खुशी थी और मेरे तो आंसू ही आ गए थे जब पता चला था। एंड बहुत ज़्यादा एक घबराहट भी थी, डर डर के साथ खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि बस सब ठीक हो, सब ठीक हो, सब ठीक हो। एंड अंकुर इज़ द वन जिसने शुरू में बोल दिया था कि इवन हम किसी को भी नहीं बताने वाले हैं, नॉट इवन आर पेरेंट्स, जब तक 3 महीने नहीं हो जाएंगे हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और बिटवीन अस रहना चाहिए ये। हम इतने डरे से भी हुए थे कि भाई सब ठीक ठीक ठीक ठीक रहे, अच्छी सी खबर आई है और हमारी शादी के काफ़ी समय बाद वो खबर भी आई, तो ओवरवाउम तो हम लोग दोनों ही थे।
2: ऑब्वियसली थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा डर हेल्थ की वजह से भी था, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा डर ज़्यादा था।
1: अच्छा,
2: थोड़ा ज़्यादा था तो रिस्पॉन्सिबल होना, अभी खुद हम बच्चे जैसे हैं, अब रिस्पॉन्सिबल होना है तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है। बाकी ऑब्वियसली हैप्पीनेस का तो कोई मतलब कोई रेंज ही नहीं है इसमें, इतना है या उतना है, कोई रेंज ही नहीं है। हैप्पीनेस इज मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक फीलिंग है। हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है, तो हम देख देख के सीख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और कईयों से पूछ रहे हैं जिनको 10-10 साल पहले का एक्सपीरियंस है वो खुद भूल रहे हैं। तो
1: वीडियोस में हम दोनों ऐसी वाली दूसरों को शेयर भी करते रहते हैं, ऐसी वाली वीडियो आती है ना टिप्स वाली, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है, तो वो भी एक चलता रहता है पूरे दिन।
2: हाँ इंस्टाग्राम के टिप्स आते हैं,
1: तुम क्या कर रही हो, तुम बैठ क्यों कर रही हो, तुम जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ उठा के, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं घर में, नोकझोंक भी चलती रहती है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं लेटना है।
2: कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो दो बच्चे संभालने,
1: बच्चा आने से पहले ही एक बच्चे को संभाल रहा है, वो वाली बात मैं कह,
2: देख लो दो एक जैसे होने वाले हैं, तुम हैंडल कर लोगी।
1: हाँ
2: हैंडल कर लेना भाई।
1: हाँ हैंडल तो तुम कर रहे हो अभी मुझे।
0: ऋतु ने हमसे शेयर किया उनके प्रेगनेंसी का ये सफर, साथ ही वो खुद का और होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रख रही हैं और अंकुर उन्हें कितनी केयर दे रहे हैं ये भी बताया।
1: यार मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला है ना ये भुक्खड़ बच्चा नहीं है जैसे मैंने लोगों को देखा है ऊट पटांग खाना भी है ये भी है। ही लाइक्स ओनली फ्रूट्स। मैंने इतने फ्रूट्स कभी लाइफ में नहीं खाए होंगे जो मैंने इस ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड में खाए हैं, तो ही इज़ वेरी चूजी। और मैं जितना हेल्दी खाती हूँ उतना ही मैं फिट रहती हूँ और ठीक रहती हूँ। जहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की, कोई मिर्ची विर्ची खा लिया, बाहर का खा लिया, तो मेरी तो वो पूरी रात बर्बाद हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बींग एन एक्टर मैंने इतने साल अपनी हेल्थ को वो दिया है, तवज्जो दिया है, इम्पोर्टेंस दी है, तो शायद वही जीन्स इसके भी अंदर है ये भी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है ऐसा लगता है मुझे। कैसा सुनना तो मैंने पता नहीं क्यों नेचुरली ये जब से बेबी आने वाला है ना तब से मुझे कृष्णा के सॉन्ग्स और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ही नोज हिम कि मैं बहुत ज़्यादा कृष्ण वाली साइड पे, पता नहीं कैसे मेरा इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है कि मैं सुबह उठते ही कृष्ण के ही भजन लगाती हूँ और कभी कभी कृष्णा के वो कार्टून भी देख लेती हूँ। और जो अभी हमने कौन सा बड़ा क्यूट सा एक वो भी देखी सीरीज, कौन सी सीरीज थी, कोरियन
2: आर
1: यूनिवर्स, तो मुझे ऐसी वाली चीज़ें आजकल सच में अट्रैक्ट कर रही हैं जब जिसमें छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं।
0: ऋतु के इन खास पलों में शामिल हुई है एक्ट्रेस ज्योति गाबा जो इनके साथ काम कर चुकी है और आज वो इन्हें ढेर सारी बधाइयां देने यहां पहुंची है।
3: मैं मतलब बहुत बहुत खुश हूँ ऋतु के लिए, क्योंकि मैं ऋतु को जानती हूँ जब से हमने राजश्री का शो किया था। मैं उसके वेडिंग में आई थी एंड उस समय मतलब मुझे पता चला था कि मैंने अंकुर के साथ में भी एक छोटा सा शो किया था, से प्रॉबेबली कुछ एपिसोड ही किया था जो मुझे याद नहीं था। तो दोनों अंकुर एंड ऋतु आर वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड उस शो के बाद में, शो ख़त्म हो गया लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा चलता रहा। एंड इतने सालों के बाद में मतलब जो खुशियां ऋतु के परिवार में आ रही है, जब उसने शेयर किया मेरे साथ में, आई वाज सो एक्साइटेड एंड यू नो आई फील कि लाइफ में एक पेरेंटहुड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश हर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। एंड जो नया मेहमान आने वाला है उसके घर में, बस हम बस वेट कर रहे हैं उसे मिलने के लिए। देखो जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे ना तब बेबी शावर नहीं हुआ था और मेरे दो जुड़वा लड़के हैं सो मेरे टाइम पे प्रिकॉशन जो थे वो बहुत अलग थे, बिकॉज यू नो उस टाइम पे दो बेबीज हेल्दी होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए थे. लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जो डॉक्टर्स हैं वो जैसे ही प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं उसी टाइम से वो आपको एक्सरसाइज बता देते हैं, डाइट में क्या आपको इनकलकेट करना है वो सारी बातें बता देते हैं. सो आई थिंक कि नाउ लाइफ इज़ मोर सॉर्टेड, यू नो,

0: मनोरंजन की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज।
1: मटका किंग सीजन 1 की सक्सेस के बाद अब आ रही है मटका किंग सीजन 2 और इसमें भी विजय वर्मा ही नजर आएंगे। देख लीजिए पहली झलक, जहां पर विजय वर्मा ने ये पोस्ट डाला है।

शबाना आजमी का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जहां पर नजर आए उनके फ्रेंड्स और फैमिली और कई बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अनिल कपूर, फरहान अख्तर, दिया मिर्जा, दिव्या दत्ता और कई और सितारे जिन्होंने शबाना आजमी की प्री बर्थडे पार्टी अटेंड की।

के बाद मोहित सूरी फिर एक बार लेकर आ रहे हैं उनकी पॉपुलर जोड़ी आहान पांडे और अनीत पड्डा की, जो नजर आएंगे अनोखी लव स्टोरी में

बॉलीवुड फिल्म द इंटर्न का रीमेक होने वाला है बॉलीवुड में, जिसमें नजर आ सकते हैं अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: अरे देखो निरंतर भाग गई।
1: मैं हीर को कुछ नहीं होने दूंगा।
0: हीर मैं आ रहा हूँ।
2: देख लीजिए तो जूलियट जर्दी की एक खास झलक, जहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा और हीर को बचाने के लिए नवाब की जान खतरे में पड़ेगी। शर्मा के शो में खास मेहमान बनकर आएंगी टीम वाइब। देख लीजिए ये खास झलक

जल्द आने वाली है फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा, जिसके ट्रेलर लॉन्च पर नजर आए अंजलि अरोरा, शील वर्मा, देव शर्मा और कई और सितारे

सास बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दीमा, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडप, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों से की गई सजावट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2 दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, मादा चीता केजीपी 12 ने 4 शावकों को दिया जन्म, तस्वीरें आई सामने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: देशभर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है जनसैलाब, पांचवे दिन लालबाग चौराहा के दर्शन की अनोखी छटा, दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी साथ लिया बप्पा का आशीर्वाद। गणेश गली के मुंबई के राजा के दरबार में भी दर्शन, अभिलाषियों की भीड़, पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई सजावट, इस बार अपना 99 साल मना रहा है गणेश गली गणेश उत्सव मंडल। प्रवेश द्वार पर विशाल गरुड़ किया गया है स्थापित, उसके ऊपर विराजमान है संत तुकाराम की प्रतिमा, वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है इस बार का पंडाल। मुंबई के किंग सर्कल से जेएसबी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है जेएसबी सेवा मंडल। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानन, 703 करोड़ रुपए का कराया गया है बीमा। गणपति के दर्शन के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़, बच्चे जगह जगह बना रहे हैं रंग बिरंगी रंगोलियां। गजानन के दर्शन के लिए भक्तों के भंडारे की भी की गई व्यवस्था, इस बार अपना 72वां साल मना रहा है ये मंडल। नवसा पावंदरा विश्वचा राजा के रूप में भी जाने जाते हैं महागणपति, भक्तों की हर मनोकामना करते हैं पूर्ण। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बना गजानन का भव्य पंडाल, गणेश मंडप में नव वानर थीम से रामायण की झलक। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण के कई पहलुओं का भी सुंदर प्रदर्शन, इसमें भगवान राम, भगवान हनुमान और वानर सेना को भी किया गया है शामिल। इस मंडप को टीआरटी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने किया है डिजाइन, भगवान गणेश को राम अवतार में दिखाने की है इस पंडाल निर्माण की मुख्य सोच। शानदार सजावट में राम सेतु, लंका और वानर सेना के साथ भगवान राम की सेवा का सुंदर चित्रण, पंडाल की भव्यता देखकर दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। पंडाल की सजावट को तैयार करने में लगभग 50 से 70 कलाकार हुए शामिल, दिन रात मिलकर करीब 15 दिनों तक चला ये काम। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल। 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बप्पा का दिव्य श्रृंगार। जड़े हैं करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स। गुजरात के सबसे महंगे गणेश रूप में प्रसिद्ध है यहाँ के बप्पा। करीब 30 साल पुरानी है बप्पा को राशि गहनों से सजाने की ये परंपरा। बप्पा को राजा की तरह पूछते हैं यहाँ भक्त। आभूषणों की कुल कीमत करोड़ों में। गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देश भर से यहां पहुंच रहे श्रद्धालु। हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ छाई गणेशोत्सव की भव्य रौनक। पंडाल में रोजाना सुबह शाम हो रही भव्य महाआरती। मन्नत पूरी होने पर भक्त ने बप्पा को अर्पित किए चांदी के मूषक। श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं चांदी के छत्र। महिधरपुर का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पंडाल की नकाशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक। बप्पा के मुकुट बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद खास। जालना में सजा विघ्नहर्ता का भव्य दरबार। मुंबई के लालबाग से राजा की तर्ज पर जालना के राजा के स्वर्ण चरण दर्शन का अवसर लोगों को मिला। नवसाला पावनारा गणपति यानी मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में भी जालना के राजा की विशेष पहचान। बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं यहां भक्त। चंद्रपुर के एक पंडाल में सर पर सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गमबूट्स और हाथों में औजार लिए नजर आए बप्पा। कोयला खदान कामगार को समर्पित है ये पंडाल। वड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने कोयला खदान में होने वाले उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य किया है साकार। दे रहे हैं रूप बिजली बचाने का खास संदेश। बप्पा के इस अनोखे दरबार में भक्तों की उमड़ रही है भीड़। गणपति का ये अनोखा रूप बना आकर्षण का केंद्र। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ धाम। 21 फीट ऊंची चंद्रपुर के राजा की सुंदर प्रतिमा। भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल। विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप किया गया साकार। मंदिर की नकाशी सजावट और भव्यता भक्तों को करा रही है जगन्नाथ धाम का एहसास। भगवान गणेश की प्रतिमा के ठीक ऊपर बनाई गई है भगवान जगन्नाथ की झांकी, जबकि बप्पा के दोनों ओर भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाएं हैं विराजमान। चंद्रपुर के राजा गणेश पंडाल का ये 52वां वर्ष बप्पा की मनमोहक प्रतिमा का आकर्षण। सजावट को देखने के लिए जुट रही है भक्तों की अपार भीड़। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है पंडाल। अनोखी थीम लोगों को कर रही है आकर्षित। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की खास पहल। तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम पर पंडाल। 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा गणपति पंडाल। 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। प्रकृति और पक्षियों पर आधारित है ये सजावट। पर्यावरण के अनुकूल चीजों से सजा है ये पंडाल। बांस से भी की गई है खास सजावट। मिट्टी की मटकियों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती। सूखे तालपत्रों और कमल से सजी है दीवारें। कोलकाता के 50 कारीगरों ने तैयार किया ये भव्य पंडाल। आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यावरण का संदेश। भक्ति संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम। अमरावती में देखा भव्य आध्यात्मिक नजारा। जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। रथ यात्रा की झांकी के दोनों ओर बनाई गई है मंदिर नुमा रचनाएं। एक मंदिर में गणपति बप्पा तो दूसरे में बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित। भक्तों को एक ही जगह पर हो रहे हैं गणपति बप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन। इस अनोखे पंडाल को देखने उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। पुणे के भक्तों और पर्यटकों का मन मोह रही बप्पा की अनोखी मूर्ति। 21,000 पानीपुरी से हुआ प्रतिमा का निर्माण। इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीर खींचने के लिए भक्तों की भीड़। इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति की श्रेणी में ये एक नया प्रयोग। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने किए दर्शन। भस्म आरती में भी हुए शामिल। तिरुपति पहुंचे राज्यपाल अब्दुल नजीर। तिरुमाला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रार्थना की। राज्यपाल ने ब्रह्मोत्सव के दौरान आज प्रसिद्ध मुथुयु पंदिरी वाहन सेवा में भी लिया हिस्सा। भगवान का आशीर्वाद लिया। अलवर में उज्जैन के महाराज और राजस्थान के लोक देवता भरतरी बाबा मेला शुरू। आसपास के राज्यों से आए लाखों श्रद्धालु। धार्मिक मेले के शुरू होते ही भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधाओं का खास रखा जा रहा है ख्याल। मान्यता है कि अरावली की वादियों के बीच महाराजा भरतरी ने की थी तपस्या और यहां ली थी समाधि। सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले में आज दो दिन की हरमुख गंग बल यात्रा शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। यूपी बिहार के लोगों को घर जाने में आसानी होगी। रेलवे का 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला।

0: टूर पैकेज। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा 6 रात और 7 दिन का यह पैकेज। 53,500 प्रति व्यक्ति से शुरू है इसकी कीमत। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए खुला देश का पहला और दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड्स। 10,600 फीट पर खुला है ये ट्विन फ्लावर फील्ड, 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है ये सुंदर गार्डन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के

0: बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी दृढ़ पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में ये है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धिविनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडप, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों से की गई है सजावट। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 2 दिवसीय हरमो गंगबल यात्रा का आगाज, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था हुआ रवाना। आईफोन के शौकीन के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को दिया जन्म, तस्वीरें आई सामने।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। ब्रज की आस्था है कि वो आठों पहर कान्हा के संग रहती हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि राधा के बिना अधूरा है शाम, आने वाला है श्री कृष्ण का प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव, जिसे भक्त राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, और मान्यता है कि जो भी राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसे जन्माष्टमी की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो आज हम आपको राधा अष्टमी की महिमा बताने जा रहे हैं, कैसे करनी है आपको राधा जी की पूजा और किन बातों का रखना है ध्यान, चलिए जानते हैं हमारी इस खास पेशकश में।

0: जल में बहते।
1: कहते हैं कि वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, जब श्री कृष्ण की शक्ति माने जाने वाली राधा रानी का प्राकट्य हुआ।
0: रहना शाम तुम्हें मिल जाएंगे।
1: जिनके प्राकट्य को ही संसार राधा अष्टमी के रूप में मनाता है।
0: राधे राधे।
1: उन्हें श्री जी कहें या किशोरी, ब्रज भानुजा कहें या माधवी, संसार जब भी राधा रानी का स्मरण करता है, उनके साथ योग योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके लीला स्थली के कण कण में राधा को ही पाता है। माना जाता है कि श्री राधा जी भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपिणी देवी हैं, जिन्हें प्रेम करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि श्री राधा रानी को गोपियों का मूल स्रोत माना जाता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि राधा बिना श्याम है आधा, और जहाँ कृष्ण है वही है राधा।
2: राधा अष्टमी का उनका भौतिक स्वरूप का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ ऐसा माना जाता है। तो जिस दिन हुआ उस दिन उनको राधा अष्टमी मनाने से, जिस प्रकार से भगवान लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, उतना ही फलदायी और उतना ही सुंदर ये फल बताया गया है। राधा अष्टमी से व्रतों की भी आरंभ हो जाता है और माता की कृपा प्राप्त करने का भी सुंदर समय है।
1: ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का प्रादुर्भाव हुआ था। जितनी फलदायी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उतनी ही फलदायी है राधा अष्टमी। माना जाता है कि ये माता से कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर है। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक ही नाम है, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी तो संसार के हर मंदिर में श्री कृष्ण के संग पूजी जाती है श्री जी। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। श्री राधा रानी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उन्हें श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली शक्ति माना जाता है। कहते हैं राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई, कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं जो राधा के प्राकट्य से जुड़ी है, जो हर ब्रजवासी के दिलों में समाई है। माना जाता है कि श्री राधा का जन्म भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। कथा है कि एक दिन गोप वृषभानु नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने नदी किनारे एक कमल के फूल पर नन्ही बच्ची को देखा। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री की तरह पाला। एक दूसरी कथा कहती है कि राधा वायु रूप में वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में प्रवेश कर गई और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ वो अब रावल के मंदिर का गर्भगृह है। कथा है कि अपने जन्म के कई महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली। कहते हैं कि वो कान्हा जी के जन्म की प्रतीक्षा में थी और सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। जब बाल रूप में राधा जी की भेंट कान्हा जी से हुई, तब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जबकि कन्या कथा कहती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, जिस पर सभी देवता मोहित हो गए। कथा है कि सूर्य देव ने मोहिनी रूप को अपनी पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जताई, तब विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो राधा के रूप में सूर्य देव की पुत्री बनकर जन्म लेंगे। कालांतर में जब सूर्य देव ने ब्रजभूमि में वृषभानु महाराज के रूप में जन्म लिया और उनके यहाँ पुत्री के रूप में राधा जी का जन्म हुआ। श्री राधा के जन्मोत्सव से जुड़े कई प्रसंग हैं, कई कथाएं हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि राधा ही त्रिशक्ति है।
2: ऐसा सुंदर स्वरूप माता का बताया गया है कि ये शब्द आया है कि भगवान का द्विभुज रूप भी माता राधा के प्राप्त करने के लिए ही हुआ। प्रेम का स्वरूप ऐसा कि वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं करती, और श्री कृष्ण जो मूल प्रकृति है राधा, उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं करते। देवी भागवत में वर्णन आता है, हैं उन्हीं में से कंधे से उत्पन्न लक्ष्मी है, उन्हीं का जो है प्रतीक स्वरूप सरस्वती है और मूल प्रकृति राधा ही कहलाती है।
1: माना जाता है कि राधा नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी है। वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का यह दरबार श्रीजी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यानी लक्ष्मी। कहते हैं कि इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती है। जब राधा अष्टमी की तिथि आती है तो राधा के भक्त राधे की धुन में सराबोर हो जाते हैं। राधा अष्टमी ही वो दिन होता है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर ढके रहते हैं। कौन है श्री राधा जी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है।
2: सबसे पहले तो लोकापचार नहीं, माता के प्रति शाश्वत समर्पण आवश्यक है और भाव आवश्यक है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग से ही प्राप्त होने वाले देव हैं। राधा अष्टमी इतना ही सुंदर दिन है जिस दिन माता राधा की कृपा तुरंत व्यक्ति के ऊपर आने लगती है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका पूजन करने से ऐसा कोई सुख नहीं जीवन में जिसकी कामना चाहते हो ना प्राप्त हो।
1: माना जाता है कि राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत और पूजन से घर पर सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। आगे हम आपको राधाष्टमी की पूजन विधि बताएंगे, साथ ही जानेंगे प्रेम में सफलता के लिए आप कौन से विशेष उपाय करें। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार।
3: राधा रानी बरसाने समेत पूरे ब्रज मंडल की दुलारी हैं, निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा हैं राधा कृष्ण। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से मिलता है, और माना जाता है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा जी को मनाना होगा।
4: राधा वो नाम जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं। योगेश्वर कृष्ण की प्रेरणा और आराध्य शक्ति है राधा, जिसमें भक्ति का संपूर्ण योग समाहित है, जिसके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है, जिनसे कृष्ण होते हैं पूर्ण। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी। माना जाता है कि राधाष्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। ब्रज की गलियों के कण कण में बसी है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां। राधाष्टमी के महापर्व पर कैसे करनी है आपको श्री राधा की पूजा, आइए जानते हैं।
2: राधाष्टमी के दिन सबसे पहले माता के जन्मोत्सव मनाने का प्रयास करें। अपने घर में उनकी प्रतिमा यदि हो सके और आप पश्चिमामुख होके उनकी ओर बैठे, और राधा जी अकेली नहीं उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना करें, तभी वो फल देती है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त राधा जी किसी और को चाहती ही नहीं है। तो इन दोनों के स्वरूपों का जो वर्णन करे, जो उन दोनों स्वरूपों का पूजन करे, उसी को इसका फल मिलता है। सबसे पहले एक सुंदर आसन पे इनको स्थापित करके उनका पूजन करें पंचोपचार या लब्धोपचार से, और इनके प्रति जो इनके भोग हैं अर्थात अलग अलग प्रकार के फल और मिठाई, वो लेकर सभी भक्तों में बांटेंगे तो यकीनन आपको उनके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
4: राधा जी की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएं, पंचामृत से स्नान करा के उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। मध्यान्ह में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर दो वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें, राधा जी की आरती करें, संभव हो तो उपवास भी करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें, तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण कर व्रत का पारायण करें। इस साल राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि राधा नाम जाप से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण। ब्रजमंडल की रज को माथे पर लगाने वाले संत महात्मा मानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम परमार्थ की वो अविरल धारा है जो युगों युगों से भक्तों के मन में बह रही है।
2: राधा का नाम ही लेने से भगवान श्री कृष्ण आप पे कृपा प्राप्त करने लगते हैं। जैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए राम जी को भजना जरूरी है, तुमको भजे राम को भजे तो हनुमान जी को कृपा प्राप्त करता है, ऐसे ही श्री कृष्ण का जाप करने वाले पे राधा तुरंत रीझ जाती है और ये माता तुरंत फल देती है।
4: एक ऐसा प्रेम जो जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटिल और निर्मम भी। इस अधूरी कहानी में फिर भी एक संपूर्णता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। यानी राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। शास्त्रों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वो प्रेम और सौंदर्य का रूप है। मान्यता है जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार ले रहे थे तब महालक्ष्मी ने स्वयं को दो रूपों में बांट लिया था, एक भक्ति स्वरूप में राधा और दूसरा शक्ति स्वरूप में रुक्मणी। देवी भागवत में राधा मूल प्रकृति के पांच मुख्य रूपों में से एक हैं, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हैं। श्री राधा स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण का वाम अंग है जो ब्रह्म के समान ही गुणों और तेज से संपन्न है। श्री राधा रानी को गोलोक की रानी और कृष्ण की आंतरिक शक्ति का स्वरूप माना गया है। उन्हें राधिका, राशेश्वरी, वृंदावनेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है कि राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। तो इस बार राधाष्टमी पर कीजिए ज्योतिष में बताए महाप्रयोग, जिनसे अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी बाधाएं हैं तो वो दूर हो सकती हैं। राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। राधा वल्लभाय नमः का जाप करें। इसके अलावा विवाह संबंधी बाधाओं का निदान भी इस दिन की उपासना से संभव है। देखिए क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार।
2: राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को राधा जी श्री जी के स्थान पर जाकर दर्शन करना व्यक्ति को बहुत अधिक फलदायी होता है। किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में यदि कलेश चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं आपस में, तो पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति भी राधा अष्टमी का उपवास रखते पूजन करके उनको प्रसन्न कर ले तो उसको शाश्वत प्रेम प्राप्त होने लगता है और पति पत्नी के बीच के सारे विवाद समाप्त हो जाते।
4: भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम की लोग आज भी मिसाल देते हैं। शायद इसी वजह से ये संयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो वही ठीक 15 दिन बाद इसी महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी। इस दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो अब जानिए वो महा उपाय जिससे आपको मिल सकता है अखंड भक्ति का महावरदान। राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, तुलसी दल और मिश्री समर्पित करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस दोहे का 108 बार जप करें। राधाष्टमी पर ये विशेष प्रयोग अगर आप करेंगे तो पाएंगे राधा रानी की असीम कृपा। लेकिन श्री राधा जी की ऐसी स्तुति भी है जो शिव जी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाई थी। ब्रज भक्तों में इस स्तुति को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। राधा जी की इसी स्तुति की महिमा हम अब आपको आगे बताने जा रहे हैं।
3: मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है। राधा कृष्ण के प्रेम में सर्वस्व समर्पण का भाव है और अब आपको उस स्त्रोत के बारे में बताते हैं जिससे की जाती है राधा जी की आराधना।

0: ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं, तो वही राधा रानी में उनके प्राण बसते हैं। माना जाता है कि राधा अष्टमी पर राधा संग श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी संकट दूर होते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि राधा अष्टमी की तिथि पर एक पाठ को करने से कृपा बरसाते हैं माधव। माना जाता है कि राधा रानी की अनुकंपा पाने के लिए राम बाण है राधा कृपा कटाक्ष। कहते हैं कि इस पाठ की महिमा का बखान स्वयं महादेव ने नारद जी के समक्ष किया था।
1: इतना सुंदर स्वरूप भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं अपने मुंह से नारद जी को बताते हुए कि उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि मैं क्या सबको मोहने वाले कृष्ण भी जिनके प्रति मोहित रहते हैं ऐसा सुंदर स्वरूप है, और उनके बारे में वर्णन करने का मेरा ज्ञान या मेरा वर्णन ही नहीं हो सकता। मेरी वाणी स्थिर हो जाती है जब मैं राधा जी के रूप सौंदर्य और उनकी ऊर्जा के बारे में बताने लगता हूँ। आप इसी बात से बता सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप माता राधा का है।
0: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि श्री राधा जी की स्तुति श्री राधा कृपा कटाक्ष से की जाती है। मान्यता है कि इसे भगवान शिव ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाया था। जानकार बताते हैं कि इस पाठ में राधा जी की स्तुति में उनके श्रृंगार रूप और करुणा का वर्णन है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस पाठ का कथन और श्रवण करता है राधा कृष्ण वहाँ अपनी कृपा बरसाने के लिए जरूर आते हैं।
1: भगवान शिव ने माता के स्वरूप और कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं रचना की है इसकी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। आप ये समझिए कि नाम से ही परिलक्षित होता है कि यदि इसका पाठ व्यक्ति प्रतिदिन करे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुग्ध होकर उस व्यक्ति के मुख से सुनने के लिए उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, और जब इसका पाठ होता है तो जहाँ श्री कृष्ण वहीं स्वयं राधा कृपा देने के लिए उपस्थित हो जाती है।
0: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि श्री राधा कृपा कटाक्ष में भक्त स्वयं बार बार पूछता है कि राधा रानी जी अपने भक्त पर कब कृपा करेंगी। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति या देवी देवता आपस में संवाद नहीं करते, बल्कि भक्त की आत्मा राधा रानी की कृपा पाने के लिए खुद ये विनती करती है। मान्यता है कि वृंदावन और ब्रज के सभी मंदिरों में इसी स्तोत्र से राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। उरु नाभि हिय कंठ तक राधा कुंड मंझार, अंग डुबाए सलील में पढ़ता जो सौ बार, हो सब इच्छा पूर्ण हो वचन सिद्धि तत्काल, विभव मिले दे राधिका दर्शन करे निहाल, रीज तुरत देती अतुल वर राधिका कृपाल, हो जाते सम्मुख प्रकट प्रिय उनके नंदलाल। श्री राधा जी की स्तुतियों में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का स्थान सर्वोपरि है, इसीलिए इसे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्वराज नाम दिया गया है, यानी स्तोत्रों का राजा। ब्रज भक्तों में स्तुति को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। अगर आप इसका पाठ रोजाना नहीं कर सकते तो विशेष तिथियों जैसे अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा पर इसका पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी आप पर कृपा बरसाएंगी।
2: और इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
4: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। मुंबई के कांदिवली के रहने वाले डॉक्टर संजय शर्मा ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जिन्होंने पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। चाहे बप्पा की पोशाक हो या फिर भव्य सजावट, दोनों ही बेहतरीन नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई है, जिसे डॉक्टर स्वाति कांडपाल ने हमें भेजा है। यहां कई स्वरूप में बप्पा विराजे हुए हैं, बप्पा के आसन से लेकर पूरी सजावट बेहद आकर्षक लग रही है। खास बात यह है कि फूलों के साथ साथ बप्पा को सजाने के लिए मोर पंखों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
11: आज तक ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बाप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है, लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया, जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेशोत्सव का आज पांचवा दिन, मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सिद्धि विनायक मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। हैदराबाद में नववानर थीम पर भव्य गणेश मंडप पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों की गई सजावट। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में दो दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का आगाज, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, मादा चीता केजीपी 12 ने 4 शावकों को दिया जन्म, तस्वीरें आई सामने।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। एक चमत्कार खुले दिव्य फिल्मों के नए द्वार, इसी पर आज हम करने वाले हैं बात। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है हनुमान अंश। दर्शकों का जो प्यार इस फिल्म को मिल रहा है उसने मिर्जापुर द मूवी, धुरंधर 3 और टॉक्सिक जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है और नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो हनुमान अंश का उपहार 300 करोड़ पार, सातवें हफ्ते भी दहाड़ रही है, बड़ों को पछाड़ रही है। बाबा नीब करौली भर दी बॉलीवुड की झोली, दर्शकों का विश्वास, फिल्म ने रच दिया है इतिहास। एक चमत्कार खुले दिव्य फिल्मों के नए द्वार और इसी पर करेंगे हम बात। हमारे साथ फिल्म के जानकार और धर्मगुरु भी रहेंगे मौजूद।

0: तो फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि फिल्म की दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ के पार हो गई है। इसने भारत में ग्रॉस 280 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। वहीं छठे हफ्ते में भी रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि रिलीज के पहले दिन फिल्म की 10 लाख की कमाई से ओपनिंग हुई थी। शुरुआती दो हफ्ते में महज 1.5 करोड़ कमाए थे, तीसरे हफ्ते में 10 करोड़ की कमाई की, चौथे हफ्ते में 59 करोड़ का कलेक्शन किया, फिर पांचवें हफ्ते में 83 करोड़ कमाए, अब छठे हफ्ते में 76 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म हनुमान जी और बाबा नीप करौली पर बनी हुई है। बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। फिल्म में बाबा की आध्यात्मिक यात्रा दिखाई गई है। ये फिल्म महज 2 करोड़ में बनी थी, जिसने कमाल कर दिया है। अब ये फिल्म हनुमान अंश विदेश में भी छा गई है। 11 सितंबर को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। बाबा नीप करौली पर लोगों की काफी आस्था है और इसी आस्था के बीच ये चमत्कार है जो कि इस फिल्म को रिकॉर्ड स्तर पर ले गया है। वैसे हाल ही में हमने फिल्म की टीम से खास बातचीत भी की थी। उनका कहना था कि ये फिल्म युवाओं को भी जोड़ती है। ये आस्थामय कनेक्शन युवाओं को बाबा नीप करौली की ओर भी ले जाता है।
1: अभी यूथ बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है आजकल का, और वो क्या है कि वो जो एक्चुअल बात है ना उस पर बहुत बिलीव करता है। तो जैसे हमारे बाबा जी हैं, अगर उनके पास में कोई, हमारी फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि कोई बीमार इंसान आता था तो बाबा जी उससे ये नहीं कहते थे कि अगड़म बगड़म छू, ऐसा नहीं करते थे। बोलते थे वैद्य के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, उनको दिखाओ जाके, बाकी राम जी कृपा करेंगे। तो क्या है कि वो इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं ना कि आप भक्ति कैसे करते करते अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बाबा जी ने अपनी शिक्षाओं से, मतलब आप ये समझिए कि आज का यूथ या मतलब टेक हो चुका है, और उसको पूरा किसने बदल के रखा हुआ है, हमारे बाबा जी ने। फेसबुक, गूगल, एप्पल, हर जगह हमारे बाबा जी हैं। तो क्या है कि अगर वो इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं तो उनके ऊपर बनी हुई फिल्म में जो शिक्षाएं हैं और उनका जो जीवन हम देखेंगे तो उससे यूथ जो सीखेगा और उसका जो जीवन परिवर्तन होने वाला है, तो वो तो बस केवल मैं बयान ही कर सकता हूं, लेकिन सबके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है।
2: समय इस बार चल रहा है कि एक बड़ा चंक ऑफ यूथ वो भजन ट्रैवलिंग कर रहा है।
3: हाँ,
2: दिल्ली के अंदर ही जो है ना कुछ कैफेज हैं जहाँ पे कॉफी और हनुमान चालीसा हो
3: गया।
2: तो पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि यूथ जो है वो जितना वो डिसइल्यूजन था वो उतना ही तेजी से डिसइल्यूजन भी हो रहा है। सारा जो हम सोशल मीडिया वगैरह पे जो भी हम चीज देखते हैं, जो हमारा ट्रेंड्स जिस तरफ जा रहे थे, उससे बहुत तेजी से डिसइल्यूजन भी हो रहा है। अब वो डिसइल्यूजन तो हुआ है, पर उसके पास में अभी वो किस चीज को पकड़े, वो उसके पास में बहुत क्लियर वो नहीं है कि किस बात को पकड़े। फॉर्चुनेटली महाराज जी हैज बीन सो पॉपुलर अमंग द यूथ्स के अब उनके पास में एक गुरु हैं जो कि आदर्श गुरु हैं, जिनको पकड़ सकते हैं। ये फिल्म वो उस आदर्श गुरु के बारे में एक 2.5 घंटे का इंट्रोडक्शन है। मैं एक्चुअली महाराज जी की कहानी को 0.5% उनकी कहानी नहीं बोल सकता, उनके किरदार को ये निभा नहीं सकता, मैं उसको बोल नहीं सकता, लिखना तो इम्पॉसिबल है। वो एक अपने आप में रामायण अपने आप में एक बहुत बड़ा महात्म्य है जिसको मैं नहीं बोल सकता।
0: देखिए, फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद से धार्मिक फिल्मों का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मेकर्स ने हनुमान अंश के दूसरे भाग का ऐलान किया है। दूसरे भाग के बाद तीसरा भाग बनाने की भी योजना है। हनुमान अंश के डायरेक्टर राम बोला बनाएंगे। ये फिल्म गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। वहीं प्रशांत वर्मा के निर्देशन में फिल्म जय हनुमान बन रही है। इसमें ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि संजय मिश्रा की 13 साई फरवरी में रिलीज होगी। ये साईं बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है। साथ ही बाबा खाटू श्याम जी पर भी फिल्म बन रही है। इस फिल्म में खाटू श्याम जी में अटूट आस्था को दिखाया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में धार्मिक फिल्में बड़े पर्दे पर दिखेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस चर्चा की चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवा देते हैं हमारे मेहमानों से। आपको बता दें रामकिशोर प्राचा जो कि फिल्म क्रिटिक हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप सरदाना हमारे साथ जो फिल्म क्रिटिक हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नलिन सिंह फिल्म डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। नलिन आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आते हुए आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फिल्म, मतलब 2 करोड़ की फिल्म 300 करोड़ पार कर जाना, मतलब ये असंभव सा लगता है, ये कैलकुलेशन भी बड़ा असंभव लगता है। एज अ फिल्म क्रिटिक आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का कमाल है या फिर दर्शकों की जो आस्था है उसने इस फिल्म को इतना बड़ा बना दिया?
4: देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें आस्था ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आस्था की बात करें तो कुछ समय पहले मई में भी इन्हीं नीम करोली महाराज पे फिल्म आई थी, लेकिन चल नहीं पाई बिल्कुल भी। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये फिल्म शुरू में नहीं चली जिस तरह, शुरू में सिर्फ 10 लाख का बिजनेस किया, पूरे वीक में 90 लाख का किया, दूसरे वीक में तो और भी डाउन हो गई। पहले वीक में 250 स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, उसके बाद अगले वीक में तो 40 स्क्रीन पर आ गई, 40 से भी उसी सेकंड वीक में 25-27 स्क्रीन रह गए, यानी कोई आई रहता हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर, तो उसके स्क्रीन और कम करते गए। और उसके बाद तो और भी कमाई 40 लाख हो गई, जो पहले 90 हुई थी उसके बाद कम हो गई। लेकिन जो तीसरे हफ्ते से जोर पकड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उसकी पूरी टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत करी। उन्होंने सोचा कि ये फिल्म चल नहीं पा रही थी, एक लास्ट एफर्ट करते हैं, लोगों का कहना शुरू किया कि ये फिल्म अब शायद थिएटर पे नहीं मिलेगी, अभी आप जाके देख लीजिए अगर आपकी बाबा में आस्था है। और ये जो लोग हैं, इनके डायरेक्टर हैं, इनकी जो और प्रोड्यूसर हैं, टीम है इनकी, ये जगह जगह एक गाड़ी पे निकल पड़े राजस्थान।

0: इसका चल के देखिए, हालांकि मैं इतने सालों से, 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री
1: बिल्कुल प्रदीप जी,
0: के
1: आपकी
0: अंदर
1: आप
0: देखते हुए फिल्म ब्यूटी के रूप में, लेकिन ये चमत्कार
1: हाँ
0: अद्भुत है,
1: बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी
0: ये
1: आवाज में भी थोड़ी
0: चमत्कार
1: प्रॉब्लम
0: अद्भुत
1: आ
0: है।
1: रही है, हम उसे ठीक कराने की कोशिश करेंगे। इस बीच नलिन के पास चलते हैं। नलिन, आपसे जानना चाहेंगे, एज ए फिल्म डायरेक्टर, इस तरह की फिल्म जो कि एक आध्यात्मिक किरदार पर बनती है, इसमें आपको क्या लगता है एज ए डायरेक्टर किन किन बातों का खास तरह से ख्याल रखना पड़ता है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं?
2: देखिए, जब फिल्म बनती है या फिल्म इनिशियल स्टेज पर उसकी क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थीम है वो हमें चूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नीम करौली बाबा पर ये पहली फिल्म बनी है, इसके पहले भी फिल्म बनी है और धार्मिक फिल्म भी बहुत इंडिया में बनती आई है। इस तरीके से कोई सुपरहिट नहीं हुई है, तो हम उस फॉर्मूला रिटर्न पर ना जाएं कि धार्मिक फिल्म इसलिए चल जाएगी। नहीं, ये फिल्म अच्छी बनी है, यानी पहला आपने डिसीजन लिया कि हमने धार्मिक फिल्म बनाना है, नीम करौली बाबा के ऊपर बनाना है, वहां तक ठीक है। उसके बाद जो स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रीन प्ले होता है, डायरेक्शन होता है, उसमें वो पकड़ है, तभी ये फिल्म चली है। जहां तक है स्लो स्टार्टिंग की बात है, डेफिनेटली आपने एडवर्टाइजमेंट, शायद बजट लो होगा इसीलिए आपने प्रचार थोड़ा कम किया है, और इसलिए ओपनिंग जो है, बॉक्स ऑफिस ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत स्लो रहा, बहुत धीमा रहा। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म की पब्लिसिटी हुई और फिर लोग, दर्शक उमड़ पड़े। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी का जो ट्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा धार्मिक किस्म के जो फिल्में हैं उसको लोग पसंद करना चाह रहे हैं। आई मीन, बहुत दिनों के बाद इस तरह की फिल्म आई है जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट थी और वो
1: लेकिन
2: सही
1: नलिन,
2: जगह पर फिट हुई
1: यहां
2: है।
1: पर एक बात थोड़ी सी वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों बाद लोग, ऐसा लग रहा है कि धार्मिक फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी अभी हमने धुरंधर 3 जैसी फिल्में देखी, विच इज जस्ट ऑपोजिट, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। एक तरफ वो करोड़ों कमा रही है, उसको देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रही, वर्ल्ड वाइड भी उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन उसी दौरान आगे ही पीछे थोड़ी दूरी पर कुछ ही समय के इंटरवल में इस तरह की फिल्म का आना और छा जाना, इसे कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल, और दोनों डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन हाउस को आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ये कोई बहुत करण जौहर प्रोडक्शन या शाहरुख खान प्रोडक्शन या आमिर खान प्रोडक्शन नहीं है। इनफैक्ट आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आई थी जिसमें पीटी जिंता ने रोल किया था, मैं भूल रहा हूँ, सनी देओल भी थे, वो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए, सही चीज राइट समय पर सही सब कुछ ठीक ठाक होता है तो ही ये फिल्म चलती है, ठीक है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और सही वक्त का भी होना बहुत जरूरी है। ये अभी जो ये फिल्म है, ये सब कुछ इसके लिए सही रहा है, इसलिए ये फिल्म चली। यानी इसको सिर्फ ये कहना भी ठीक नहीं रहा कि ठीक है, रिलीजियस पसंद अभी ज्यादा हो गया है तो कुछ भी रिलीजियस कंटेंट अगर आप
1: बिल्कुल
2: ले आए तो वो चल जाएगी, ठीक है, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एज ए फिल्म मेकर हम लोग है ना, हर हर समय एक फॉर्मूला की तलाश में रहते हैं यार। अभी जो है ना, लोग रिलीजियस माइंडेड हैं, क्या पता बीजेपी का गवर्नमेंट है, ज्यादा हिंदुत्व चल रहा है, क्या पता ये भी चल जाए। तो अभी अधिकतर फिल्म मेकर्स के, अगर आप ग्रुप्स में बैठेंगे हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म, तो यही यही
1: जी,
2: डिस्कशन चल, नहीं यार मुझे ये करना चाहिए। और
1: लेकिन अभी
2: अभी
1: जैसा
2: और
1: प्रदीप
2: आपने,
1: जी ने भी कहा कि हनुमान अंश, जैसे बाबा दीप करौली पर अभी कुछ दिन पहले और एक मूवी आई थी, लेकिन वो फिल्म नहीं चली, ये फिल्म चल गई, कंटेंट वही था लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चल पाई और ये चल गई, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, उस पर मूवी बनना, करोड़ों का उसका कलेक्शन हो जाना, इतने लोग आ गए उसे देखने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ कहें या क्या कहें, आप इसे कैसे देखेंगे? क्या ये सनातन परंपरा और हमारी संस्कृति और उसकी आस्था का एक नए सिरे से प्रसार के तौर पर आप देखते हैं इसे?
3: बिल्कुल श्वेता जी, बहुत बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। ऐसा ही कुछ है, कुछ समय से चाहे राम मंदिर का बनना और इस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हम अयोध्या रहते हैं, उसके बाद में भी बीच बीच में टाइम मिलता है तब नीम करौली बाबा के पास हम लोग अपने खुद ही पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं। वो बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके प्रति बहुत बड़ी आस्था लोगों की बहुत बड़े वर्ग में जुड़ी हुई है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात अभी डायरेक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी शानदार उनकी बातें हैं कि अच्छा था, देखिए जनता जनार्दन होती है, जो जनता है वो भगवान के रूप में ही होती है कहीं।

0: कहीं अंतरात्मा में परमात्मा होते हैं, इस तरह से बातें हम लोग सुनते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम पहली बार लगता है कि गए ही थिएटर में जाकर के, हमने नीम करोली बाबा की फिल्म जाकर के देखा, तो जिस तरीके से जैसे वो फकीर थे और जिस तरह से उनका जीवन था, ऐसा लगता है कि जीवंत दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने का परिणाम ये रहा कि इतनी गई। एक दूसरी बात भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन लोगों ने, इनकी टीम ने। अभी कह रहे थे भैया कि ऐसा नहीं है कि बहुत धार्मिक हो गए, चल रही सही कहते, बहुत धार्मिक होने से बहुत कुछ नहीं चल जाता, पर भगवत कृपा और संतों की महिमा देश में पहले भी रही है। और आपने इसमें बीच में देखा, हमारे देश के महापुरुषों को श्रेय देना भी बहुत जरूरी है, चाहे हमारे वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी हों, चाहे बागेश्वर धाम हो, ऐसे तमाम जितने बड़े संत हैं, सब लोग भी कहीं ना कहीं उसके एक हिस्सा बने। सब लोगों ने अपनी तरफ से कहा, और इस विषय को इस तरह से देखना चाहिए कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य से जब हार जाता है, संतों की शरण में जाता है, तो कहीं भगवान की कृपा होती ही है। सीता जी की खोज में हनुमान जी गए लंका में, रात भर खोजा, आप सब जानती है, नहीं मिले कोई, सीता जी का पता उनको नहीं मिला। सुबह विभीषण जी से उनकी मुलाकात हो जाती है और विभीषण जी फिर उनको कहते हैं कि चिंता मत करिए, जुगत विभीषण सकल बताई, उन्होंने कहा इस रास्ते से जाइए तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। हनुमान जी और विभीषण जी की मित्रता हुई, सीता जी उनको मिल गई। इसी तरीके से इनका जो प्रयास था, डायरेक्टर कहो प्रोड्यूसर कहो, इनकी अच्छी जो सद्भावना थी उसके अनुसार 10 दिन तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवी कर ही रही थी। जब आगे इनको लगा कि नहीं जाना है, नहीं चल पा रही ठीक से, तो कहीं ना कहीं संतों का शरण लिया, लगातार गए और महापुरुषों की कृपा, कहीं ना कहीं बाबा की कृपा इन पर बरसी, और जो इतिहास रच रहा उसका ही कहीं ना कहीं एक रूप सामने दिखाई पड़ रहा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इस बात को कह देना, एक चीज श्वेता जी और भी, ये चीज ये कह देना कि अपने सामर्थ्य से सब कुछ हो जाता है, ये नहीं कहना। जैसे ये सच बात है कि ये पहले पहले एक्टर होंगे या डायरेक्टर होंगे प्रोड्यूसर होंगे जो जगह जगह गए, सब लोगों से मिले, पर इस बात को कहना तो संयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों से मिल रहे हैं, श्वेता जी हम व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को जानते हैं, इनको तब लोग मिलना शुरू किए, तब बुलाना शुरू किए जब ये फिट हिट होना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि बहुत अच्छा देखा, तब इनको स्वीकार किया कहीं ना कहीं। तो इनका परिश्रम भी है, इनकी विनम्रता सराहनीय है, पर महापुरुषों का बाबा की कृपा और सनातन के प्रति बढ़ती हुई जो रुचि है, लोगों का रुझान है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता जनार्दन ने कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आशीर्वाद दिया है और बाबा के चरित्र से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए।
1: बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन प्रदीप जी आप इसे एज अ क्रिटिक कैसे, फिल्म क्रिटिक कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, हमने भी ना जाने कितनी ही फिल्में देखी हैं, जब वो आती हैं रिलीज से पहले जो उसका प्रचार प्रसार होता है, ज्यादातर जो एक्टर्स डायरेक्टर्स होते हैं वो मॉल जाना प्रेफर करते हैं या फिर कॉलेजेस जाना पसंद करते हैं जहां युवा पीढ़ी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर हो, ताकि एक जगह पे वो जाके या फिर किसी ऐसे फेस्टिवल को टारगेट करते हैं, अगर वो किसी फेस्टिवल के आसपास रही है जहां पे ज्यादा लोग हों और उस क्राउड को वो टारगेट करते हैं, सो दैट कि लोग फिल्म देखने आए। लेकिन इसका जो प्रचार हुआ है इस मूवी का, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ। जैसे हमने देखा, इन लोगों ने भंडारे लगाए थे, ये लोग धार्मिक आयोजन कर रहे थे, इस तरह की चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, बजट एक कॉन्स्ट्रेंट था, लेकिन यह भी चीज एक है।
2: जाहिर है, असल में इसलिए मैं किया क्योंकि बजट नहीं था पब्लिसिटी के लिए। आज जो भी फिल्में बनती है, बड़ी बड़ी ब्रह्मांड फिल्म बन रही है, 4,000 करोड़ उसका बजट है 2 पार्ट के अंदर, तो एक पार्ट का भी 2,000 करोड़ लगा ले, देखिए कितना बड़ा बजट है। और जो जितनी भी इस तरह आजकल बड़ी फिल्में बनती हैं, वो अपने बजट के लिए 10% 15% 20% जो टोटल कॉस्ट होती है, उतना बजट के लिए पब्लिसिटी के लिए रखते हैं उतना बजट। तो जो टोटल बजट है उसका पब्लिसिटी के 10-15-20% तक बजट रखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनके पास फिल्म बनाने में जो पैसे थे, मिलजुल के 4 लोगों ने फिल्म बनाई, 2 करोड़ के करीब कॉस्ट आई और सारा उसी पे लग गया, तो पैसे बचे नहीं थे, ना ही किसी टीवी शो में जा पाए, कोई बुलाता भी नहीं, क्योंकि टीवी शो में भी उन्हीं लोगों को बुलाते जो मशहूर चेहरे हों जहाँ पब्लिसिटी होती है, और चैनल भी उन्हीं को बुलाते, हर कोई वही चाहेगा उसी को बुलाएगा जो मशहूर चेहरे हैं। तो बिल्कुल नए चेहरे थे, नई टीम थी, इसलिए इन्होंने अपना अपना अलग रास्ता अपनाया कि हम अलग जाके प्रचार करें, तो वो कारगर सिद्ध हुआ। तो ये देखिए, इसमें आस्था भी है, चमत्कार भी है, चमत्कार से बना नहीं कर सकते, चमत्कार खाली धार्मिक चमत्कार, भगवान का चमत्कार नहीं होता, मैं इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आस्था अगर नहीं होती तो लोग नहीं जाते। जब लेकिन जो फिल्म बनने की बात है, जाते मैं समझता हूँ ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी है, लेकिन उसकी कमियां भी दूर हो गई, इसलिए क्योंकि जब एक आस्था आती है तो कमियां दूर हो जाती है। नहीं तो जो उससे पहले फिल्म बनी थी उसका बजट ज्यादा था, जो मई के अंदर आपको मैंने बताया जो इसी बाबा में बनी थी, लेकिन बाबा नीम करोली पर, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चल पाई। और ये कहां से कहां पहुंच गई, अब देखिए 11 तारीख को ये विदेशों में पहुंची और आज 18 को और नए देशों में लग रही है, तो ये जिस तरह जो इसकी पूरी विश्वव्यापी धूम मच गई है ये बिल्कुल अद्भुत है। और ऐसे चमत्कार कभी कभी होते रहते हैं, लेकिन ऐसे चमत्कार कभी कभी होते हैं।
1: बिल्कुल नालिन, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे एक एक समय, क्योंकि अक्सर अब चूंकि बाबा नीम करौली के ऊपर जो ये फिल्म बनी है उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, तो बार बार एक फिल्म याद आती है जय संतोषी माँ, वो जब आई थी तो इसी तरह से एक आध्यात्मिक लहर हमने पूरे समाज में पूरे देश में एक तरह से हमने देखा था, लोगों ने शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया था और कई लोग तो बाद में आरती की थाल लेकर के हॉल जाने लगे थे, पिक्चर हॉल जाने लगे थे, तो इस तरह की चीजें हमने देखी है। ये फेनोमेना एक तरह से उस समय वो फेनोमेना था वो फिल्म, आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ ये फिल्म बल्कि आने वाले समय में कई सारी ऐसी फिल्में लाइंड अप है जिसमें तेरे साईं से लेकर तमाम तरह की और खाटू श्याम पर फिल्म बन रही है और बाकी रामायण और वो फिल्में तो आ ही रही है।
3: देखिए बॉलीवुड और थिएटर खासकर बहुत एक कठिन दौर से गुजर रहा है, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं वो भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो थिएटर के लिए फिल्में बना सके और हॉल खाली पड़ा हुआ है, ये हकीकत है। जितना जल्दी इस चीज को हम लोग समझ लें उतना अच्छा है। OTT प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा हमें पैसा नहीं देता है जितना हम सिनेमा हॉल से कमा सकते थे, वो भी फिर नेगोशिएट करता है। बड़े बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म दो ही हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ट्रेंड अगर आया है रिलीजियस फिल्म का तो ये बहुत अच्छी बात है, अभी माहौल भी है, वैसी सरकार भी है भारत का देश में, वो थोड़ा सा एक यूथ को जो है अपने अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने कल्चर के बारे में एक जिज्ञासा भी है। इसी बहाने अगर हम दर्शकों को ले आए कुछ ढंग का सिनेमा दिखाने के लिए, ठीक है सिनेमा हॉल्स में तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती है। सिनेमा विल बी अलाइव, फिलहाल अगर आप मुझसे पूछेगा तो सिनेमा इज ऑन वेंटिलेटर राइट नाउ, उसे अभी अभी पानी चढ़ रहा है उसके ऊपर। अच्छे अच्छे फिल्मकार, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी फ्लॉप कर गए हैं।
1: बिल्कुल, रामकिशोर प्राचा फिल्म क्रिटिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकिशोर जी, आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, अभी अभी नलिन ने यह कहा कि ऐसा लग रहा है कि सिनेमा इज ऑन वेंटिलेटर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, लेकिन हाँ फिल्म इंडस्ट्री से चूंकि आप लोग जुड़े हुए हैं इसकी हकीकत आप लोग बेहतर जानते हैं, तो आपको क्या लगता है, यही सवाल आपसे आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी कि सिनेमा को फिल्म को वेंटिलेटर से हटाने के लिए क्या इस तरह के फिल्में जो आध्यात्मिक फिल्में अब बन रही हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है?
4: ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जो फिल्म का कंटेंट और ग्रामर है ना और उसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो ठीक से ग्रिप किया है और जो जनमानस के साथ वो सीधे जाके जुड़ रहा है तो हम कोई भी फिल्म जो है वो अच्छी बना सकते हैं। लेकिन वो क्या रहा है कि हम लार्जर देन लाइफ सिनेमा बना रहे हैं और ये जो फिल्म है हनुमान अंश जो है, आपको आपने जिक्र किया अभी 1975 का शोले और जय संतोषी माँ एक साथ रिलीज हुई थी और इस बार भी यही हुआ है कि टॉक्सिक और हनुमान अंश जो है वो सेम डे रिलीज हुई है, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो नीचे है और इसका ऊपर है। तो मैंने फिल्म देखी है ये, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त एक खास चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये कि सिर्फ हमें रामायण या किसी धार्मिक विषय पर फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट जो सपनों से दूर दुनिया चली जाए, लार्जर देन लाइफ या स्पेशल इफेक्ट या ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। आपको उसके अंदर जो ग्रामर होता है, जो उसका कंटेंट होता है, उसका बेसिक जो एक थॉट होता है, एलिमेंट होता है, वो आप अगर लेकर आते हैं तो फिल्म सीधे जाके जुड़ जाती है। धुरंधर भी एक ऐसी फिल्म थी और अब ये हनुमान जो है आस्था एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी स्ट्रांग है और स्ट्रांगनेस जो है वो सीधे जाके आस्था और आपकी एक अच्छी फिल्म देखने की जो भावना है उससे जाके जुड़ गई। तो जो वेंटिलेशन की बात जो कर रहे हैं मेरे भाई वो सही है कि वेंटिलेटर पर है, नलिन ने सही कहा और नलिन अच्छे से जानते हैं, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं और देखा है उन्होंने सिनेमा को, ये वेंटिलेटर पर तो सिनेमा है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमें वेंटिलेटर पर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ ऑक्सीजन लाने की जरूरत है और जिसे हम ला सकते हैं अगर हमारे फिल्म मेकर चाहें तो।
1: बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर जो नलिन भी अभी कह रहे थे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने की यहाँ कोशिश है और जो फिल्म के खुद डायरेक्टर हैं हनुमान अंश के वो भी ये कह रहे थे कि युवा जो है आज के यूथ वो भी कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भजन क्लबिंग अब शुरू हो गई है, लोग कॉफी पीते हैं और साथ में रामायण भी सुनते हैं, इस तरह की चीजें अब खूब होने लगी है मेट्रोज में। तो वाकई जिस तरह का डिस्ट्रेस हमें आजकल देखने को मिल रहा है, जिस तरह का जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में मेट्रोज में खास करके हम जी रहे हैं, वहां पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, टेंशन स्ट्रेस इतनी ज्यादा है, बात करने के लिए कोई रियल इंसान नहीं है आपके पास, अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसे में इस तरह की मूवी जो है उससे वाकई आपको लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अगर जाकर देखे या वो कनेक्ट कर रही है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में जो एक सुकून एक शांति की तलाश वो कर रहे हैं वो उसे वहां मिलेगी?
0: बिल्कुल श्वेता जी, निश्चित तौर पर। अभी क्या है कि भौतिकवाद और आध्यात्म में यही फर्क है, भौतिकवाद में कहीं सुकून नहीं है, सुख नहीं है, थोड़ी देर के क्षणिक सुख लगता है पर कहीं ना कहीं उसका परिणाम दुख में ही परिणित होता है। आध्यात्म में शांति है, सुकून है, कहीं ना कहीं एक अंतर आत्मा में एक अलग सी शांति सुकून महसूस होता है व्यक्ति के अंदर। अगर इस तरह से कहें कि हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए भौतिक विकास करके, और मंगल ग्रह तक पहुंचने के बाद अगर देखते हैं जीवन में मंगल कैसे आएगा, तो विज्ञान के द्वारा बनाए हुए किसी भी प्रकार के जो भौतिक विज्ञान बना रहे हैं लगातार, उसमें कहीं अंतर आत्मा को सुकून का कोई विषय नहीं है। अगर कहीं सुकून के लिए शांति का कोई मार्ग है, वह केवल एकमात्र आध्यात्म में है। हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जैसे पूज्य निम करोली बाबा हैं हुए हैं, ऐसे पूज्य देवराहा बाबा जी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए, ऐसे तमाम महापुरुष समय समय पर हुए हैं, और जिन लोगों ने लगातार परिश्रम करके एक ऐसा मार्ग दिया है जिससे व्यक्ति को सुकून महसूस हो, शांति से रह सके। तो अब यूथ क्या है, यंग जनरेशन काम बहुत करता है, दूसरी बात वह बहुत समझदार हुआ है, अब ऐसा कोई रूढ़वादी परंपरा को लेकर के नहीं चलता है। अगर उसको लगता है, उसके विचार पटल पर लगता है कि बिल्कुल ये ठीक है, उसको समझ में आती है तो तुरंत स्वीकार कर लेता है, कोई जबरदस्ती करके उसको घुमा फिरा के कुछ समझाना बुझाना चाहता है तो फिर उसको नहीं सुनता, नहीं समझता, वो उसमें प्रश्न तर्क वितर्क में फंसता है। ये जो फिल्म आई अभी, इसमें बहुत न चकाचौंध है, न बहुत कोई डायरेक्टर की अलग से कुछ दिखाई पड़ी गई, जैसा सामान्य जीवन नीम करोली बाबा जीते थे वैसा कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रहा है। और जो नेचुरल चीज होती है कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करती ही करती है किसी को भी हो, तो वही सादगी वही सब कुछ जो अंतरात्मा लोगों की है वह कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई, और उसी कारण अभी यूथ भी जुड़ा हुआ है और देश नहीं जहां तक फिल्में जा रही है वो एक छाप छोड़ रही है। मैं पहली बार फिल्म देखने के बाद में मेरे आंखों में आंसू था, बहुत से ऐसे सीन है कि देखने के बाद आंखों में आंसू भर जाता था, रोए खड़े हो जाते थे, ऐसे दृश्य हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई अच्छा करता है तो कनेक्ट करता है, और लगभग हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो भी संपर्क में आता है उसको कहते हैं कि एक बार जा करके देखो जरूर। तो ये करने करने जपन जना जो लोग आपस में बातें करने लगे, इस नीम करोली फिल्म को, हनुमान अंश को लोगों ने अपनी फिल्म मान लिया और वही कहीं ना कहीं जनता जनार्दन प्रचारक बनकर के काम कर रही है, ये सफलता का मेन कारण यह रहा।
1: बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह की फिल्में खास करके बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ कहानी आप कह रहे होते हैं बल्कि करोड़ों लोगों की इसमें आस्था जुड़ी होती है।
2: बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। रामायण को भी देखें, आपको बताऊं जब रामायण सीरियल पहली बार दूरदर्शन पर आया था 1987 में, रामानंद सागर ने इसको बनाया तो उसके अंदर इतने ऑब्जेक्शन थे कि उसके कम से कम 10 बार 20 बार को रिजेक्ट करके वापस कर दिया कि आप ये सीता को ऐसे कैसे कपड़े पहनाए हुए हैं, जो कट स्लीव्स हैं ये ऐसे क्यों है, ये रोल ऐसे कैसे है। ये फिल्मों में भी होता है, आप देखिए बायोपिक बनती है उनके साथ में ये होता है। तो इस तरह की जो बायोपिक बनती है, धार्मिक बनती है फिल्में या ऐतिहासिक फिल्में बनती है तो उनके साथ ऐसी चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं कि उसके अंदर जो पात्र हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो वो उनके ऊपर आपत्ति उठती है कि ये सीन ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। ये चुनौती तो था, और इनके लिए अब अगली जो फिल्म बनाएंगे, अब जैसे इन्होंने राम बोला अनाउंस किया है तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक कोई जानता नहीं था। इन्होंने 2 करोड़ की फिल्म बनाई और चमत्कार हुआ, आस्था हुई, या उसका कंटेंट के अंदर भी मैं कहूंगा जो चलने का कारण है वो एक ये भी था कि इसमें जो पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्य दिखाए हैं वो भी अंदर बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वो उसके अंदर उसको पूरा बूस्ट हुआ है उससे, धार्मिक आस्था के साथ पारिवारिक जो सांस्कृतिक मूल्य है वो भी आए हैं। लेकिन अब जो अगली फिल्म जब भी बनाएंगे तो बहुत चुनौती हो जाएगी और भी ज्यादा। वो राम बोला जैसे उन्होंने अनाउंस की है कि तुलसीदास जी का घर का नाम था पुराना, और तुलसीदास जी पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है अब तक, बाबा नीम करोली पे तो ये दूसरी फिल्म थी, जो पहली वाली बनी वो ज्यादातर लोगों के सामने आई नहीं, अभी ज्यादातर लोगों के सामने आ गई है। इसलिए अब जब कोई अगली फिल्म बनेगी बाबा नीम कॉलोनी पर तो वो उसके लिए चुनौती होगी, और खासतौर से ये टीम है इसके लिए जिन्होंने अपनी रामलीला फिल्म अनाउंस किया, आगे जो भी फिल्म बनाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा
1: बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पैरामीटर बहुत हाई सेट कर दिया है, वो बार बहुत ऑलरेडी हाई सेट कर दिया है, इसीलिए इन लोगों को और ज्यादा सतर्कता से और बहुत कुछ ध्यान में रखकर बनाना होगा। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता की बात है या फिर दर्शकों के बदलती मानसिकता से जुड़ी ये कहानी है, जहां दर्शक फिल्म के साथ साथ आध्यात्मिक एंगल भी देखना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: तो वाकई एक चमत्कार की हम बात कर रहे हैं। एक चमत्कार उस समय हुआ था जब खुद बाबा जीवित थे। न जाने उनसे जुड़ी कितनी ही चमत्कार की कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जबकि वो फिल्म सामने आ गई है, अब उसने जो चमत्कार किया है, 2 करोड़ से 300+ करोड़ तक का सफर अब जो तय कर लिया है, उसको लेकर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप सरदाना फिल्म क्रिटिक है हमारे साथ अभी भी। प्रदीप जी से खैर आपसे हमने बात की थी, लेकिन नलिन आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो दौर है, अब दर्शकों की बदलती मानसिकता भी बता रहा है, दर्शक क्या वाकई अब ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ बस ऐसे ही कोई कंटेंट मत दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक एंगल है और प्लस लॉजिक के साथ वो भी हमें बताइए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, जो जेन जी है या फिर जो जेन अल्फा है, वो बिना लॉजिक के चीजों को समझने को तैयार नहीं।
1: जेन जी और जेन अल्फा क्या है मेरे समझ में नहीं आता, बिकॉज अभी जो हम लोगों ने देखा वो मीडिया में एक अंश को देखा और दूसरे अंश को हम लोगों ने नहीं देखा। अभी का जो ट्रेंड है, डेफिनेटली रिलीजन जो है आफ्टर, मेरा ये मानना है और हो सकता है मैं गलत भी हूं और ये डिबेटेबल भी हो सकता है, राम मंदिर के बनने के बाद जो आस्था जगी है लोगों में, खासकर एक एक मेजॉरिटी समुदाय में, वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर एक ईमानदार फिल्म बनाया जाए, ईमानदार, अब रामायण में स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत थी, अभी एक श्रोता वो बोल रहे थे तीर चलती थी लगती थी, तो स्पेशल इफेक्ट हल्के फुल्के हैं, लेकिन ईमानदार फिल्म बनाया जाए जो बहुत ज्यादा उसको ये ना कर दिया जाए, तो दर्शकों को ये पसंद आएगी। रिलीजियस फिल्म्स कमबैक हुआ है, इसका मतलब है कि परिवार सिनेमा हॉल में जा रहा है। याद रखिएगा 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या मोबाइल पर जब आप कंटेंट देखते हैं तो आप खुद देखते हैं, अकेले देखते हैं, ठीक है, और लेकिन सिनेमा हॉल में बहुत पहले शोले शायद एक मूवी था, या मेरी मूवी गांधी टू हिटलर जब रिलीज हुई थी तो हम लोग पूरा परिवार के साथ गए थे, नहीं चलो ये फिल्म को देखने के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्म अभी जो आ रही थी वो परिवार के साथ देखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो धार्मिक फिल्मों का डेफिनेटली कमबैक हुआ है, ये मानसिकता है लोगों में, अच्छी बात है, और मेरा ये मानना है कि शायद अब परिवार के साथ इस तरह की फिल्में लोग देखना चाहेंगे। शायद मेरा बेटा, मेरी दादी या मेरे पापा के साथ ये फिल्म को देखना चाहेगा, सब लोग के साथ में, और इंजॉय करना चाहेंगे। पॉजिटिव साइन है सिनेमा की।
0: बिल्कुल रामकिशोर जी, आपको क्या लगता है, वाकई पॉजिटिव साइन है? नलिन, आपने वाकई बहुत सही बात कही, और इस फिल्म में जैसा कि हम भी अगर घर में सोचते हैं वीकेंड है और किसी मूवी को देखने के लिए जाना है, तो इस तरह की मूवी अगर लगी है तो हम बेधड़क या बेझिझक कहते हैं कि हाँ भाई पूरा परिवार जा सकता है, या फिर कोई भी देखने के लिए जा सकता है, एक साथ सोचने की बात नहीं होती है। रामकिशोर जी, आपको क्या लगता है, कमाई कि अगर हम बात करें, शुरुआत जो ओपनिंग हुई, जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही धीमी ओपनिंग हुई, ऐसा लगा कि पता नहीं फिल्म कितने दिन ही रह पाएगी, पर्दे से उतर जाएगी, एक समय वो भी हम सुन रहे थे जब ये ओटीटी भी, कोई भी प्लेटफॉर्म इसे लेने को तैयार नहीं था, और अब कतारें लगी हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो इस फिल्म को लेना चाह रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कॉन्टेंट और आस्था ये यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़ी हो गई है, बशर्ते जो हम देखा करते थे कि स्टारडम होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं और हजारों करोड़ में वो बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वर्सेस अगर आप देखें इन दोनों के, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जीत रहा है, या हु इज द जिसका अपर हैंड है किसका?
2: एक चीज बहुत कटोरी नलिन भाई बात कर रहे थे, धार्मिक फिल्मों का एक चलन शुरू हुआ है, लेकिन ये जो फिल्म है ये कोई धार्मिक फिल्म नहीं है, ये आस्था फिल्म। जो करौली बाबा है वो किसी खास धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, तो धार्मिक फिल्म इसको कहना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि जो हमारी आस्था का एक प्रतीक है करौली बाबा नाम के जो संत हुए हैं, ये उन पर आधारित फिल्म है, और संतों की जीवनी पर फिल्म बनाना और धार्मिक फिल्म बनाना लाइक द रामायण या महाभारत वो अलग चीज है। पर एक चीज जो बार बार यहाँ काउंट हो रही है वो ये है कि आप अगर इस फिल्म की शुरुआत से देखें तो फिल्म का एक शॉट है जिसमें एक ट्रेन है और ट्रेन में जो ये नायक हैं बाबा, उनको उतार दिया जाता है और वो पूरा ग्राफिक और स्पेशल इफेक्ट के साथ जो है शूट किया गया है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, आप उसके आसपास का एरिया देखिए, कैमरे का इस्तेमाल है या डायलॉग्स है, वो बहुत ही साधारण और बहुत ही खिलंदड़ी स्वभाव से जो है उसको शूट किया गया है। और इस कैरेक्टर को भी आप देखें, जो बाबा करौली का जो अभिनेता ने कैरेक्टर निभाया है, आप देखिए ये हर वक्त उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, वो डायलॉग भी बोलते हैं तो बहुत साधारण तरीके से, जैसे वो एक आम आदमी जो है आपसे बात कर रहा है, वो कहीं कोई संत महात्मा या कोई धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति नजर नहीं आते हैं। तो ये जो एक जुड़ाव है आम आदमी का कि जो सामने कैरेक्टर डिस्प्ले किया जा रहा है वो मेरे साथ का एक कैरेक्टर है, वो किसी बहुत बड़े लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बाजार है हमारा, बाजार में जो बहुत बड़ी फिल्में हैं, धुरंधर को अगर आप छोड़ दें
1: तो उसके अलावा बड़ी से बड़ी फिल्में धाराशाही हुई है। एक बहुत छोटी सी फिल्म है, 2 करोड़ रुपए में फिल्म बनाना, मतलब ये भी छोटे फिल्म मेकर के लिए चुनौती होता है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाकर आप उसमें जो स्टोरी है, उसका जो कॉन्टेंट है, उसके जो एलिमेंट है जो आपके देखने वालों को टच करें जाकर, वो चाहे धर्म से जुड़ी हुई फिल्म हो, चाहे वो आस्था वाली फिल्म हो, चाहे वो कोई देशभक्ति पर बनी हुई फिल्म हो, वो बहुत काउंट होती है। तो डायरेक्टर ने उस जो काउंटनेस है, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है अपनी कहानी का, उसको पकड़ा है, और अगर आप उसको ढंग से डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो कोई भी उससे आगे जुड़ेगा। इस फिल्म की खास बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो ओटीटी का जो मामला है, ओटीटी जो है वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, और जो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है ओटीटी उसके लेने के लिए भागते हैं, लेकिन अगर सही कंटेंट और सही कहानी वाली फिल्में आप बनाते हैं तो ओटीटी उसको भी दिखाते हैं। ये अलग बात है कि 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने के बाद 300 करोड़ की कमाई फिल्में की है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी ही फिल्मों का एक दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का एक भाव होता है कि कोई एक फिल्म आती है जो आपको हिट करती है, कोई एक फिल्म आती है जो आपको प्रभावित करती है और मार्केट पकड़ती है, लेकिन उसके साथ वैसी ही बनने वाली दूसरी फिल्में जरूरी नहीं है कि बाजार पकड़े। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह की फिल्मों का एक दौर चलता है तो अब ये पहला वाला जो 70s 60s का दौर था जय संतोषी माता वाला, उससे अलग है। अब आप अपनी कहानी को ढंग से कह सकते हैं, अपने जो कैनवास है आपके सिनेमा का उसको ढंग से दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च करने के लिए धर्म और आस्था के प्रति या इतिहास के प्रति आपके पास अब इतना सारा मटेरियल है कि आप कोई भी बात अगर गलत तरीके से कहते हैं तो वो तुरंत सोशल मीडिया पर किया जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत
1: तो
0: सही कहा आपने।
1: एक समय है जब
0: और ये बात आप ये आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि ये फिल्म चल गई तो इसके बाद जितनी भी इस तरह की मूवीज अगर बनती है तो सभी चल जाएगी, ये कहना अब यहाँ पर सही नहीं होगा। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है वाकई इस बात को, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि प्रभास की जो फिल्म आई थी बाहुबली, वो ऐसी फिल्म आई थी जिसमें लार्जर देन लाइफ भी हमने देखा था, VFX का इस्तेमाल देखा था, ऐसा लग रहा था कि पहली बार इंडियन सिनेमा में हम देख रहे हैं जिस तरह से VFX का इस्तेमाल किया गया था, ग्राफिक्स, तमाम चीजें, और उसके बाद उसी को कह लीजिए कॉपी करते हुए या फिर आप कह लीजिए इंस्पायर होते हुए उस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की गई, हमारे निर्माताओं ने बनाया लेकिन फिर वो नहीं चली, खुद प्रभास की ही दूसरी फिल्में नहीं चली जिस तरह से बाहुबली चली थी।
3: बिल्कुल, देखिए अब जब भी आप उस ट्रेंड की तरफ भागेंगे जो हम कहते हैं भेड़ चाल है, एक ने वो किया वो भी दूसरा भी सफल होगा ऐसा नहीं होगा। अब शोले फिल्म बनाई थी चुपकी साहब ने,
0: आपके आवाज में
3: दूसरी बागी सामने आई थी 1975 में, वो भी नहीं चली लेकिन बाद में इतनी सुपर हिट हुई। आवाज आ रही है?
0: जी जी,
3: मैं बात कर रहा था कि शोले फिल्म बनाई थी 1970, आ रही है आवाज?
0: जी बड़ी रुक रुक कर आ रही है, एक बार फिर से कहने की कोशिश करें जी।
3: मैं ये बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भीड़ चाल की तरफ जब भी भागते हैं तो उसके लिए निराशा ही हाथ लगती है। अब 1975 में शोले पिक्चर आई थी, सुपर डुपर साबित हुई, हालांकि शुरू में वो भी नहीं चली थी, और उसके ठीक सामने जय संतोषी माँ आई थी। तो जय संतोषी माँ ने जो बिजनेस किया, जो लोकप्रियता पाई, वो तो अद्भुत है। उस समय का तो नजारा बिल्कुल ही और होता था। मैंने उस दृश्य को देखा है कि हर सिनेमा के बाद जय संतोषी माँ की, संतोषी माता की फोटो लगी होती थी, गुरुचरे का प्रसाद दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब और लोगों ने उस तरह की फिल्में बनाई तो वो नहीं चल पाई। यहां तक कि शोले में भी जब इन्होंने रमेश सिप्पी ने कुछ साल बाद शान पिक्चर बनाई उसी ट्रेंड को लेकर, तो उनकी शान भी नहीं चली। तो इसलिए आप जब पीछे भागेंगे तो हर 10 साल बाद दौर बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 10 साल बाद कोई फिल्म आता
0: है, यानी ओरिजिनल कंटेंट हम जो अगर समझ पा रहे हैं, अभी सभी बातों का निचोड़ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ओरिजिनल कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, आध्यात्मिक लोग जो हैं वो कनेक्ट भी करते हैं, और वाकई इसको हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल मूवी नहीं कह सकते हैं, एक संत के ऊपर बनी ये मूवी है, लेकिन इसको जिस तरह से कैरेक्टर ने निभाया है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे हमने बात की थी, एक्टर है उनसे हमने बात की थी, इन्होंने कहा कि पूरे टाइम मतलब फिल्म पे नॉनवेज अलाउड ही नहीं था, उस सेट पर नॉनवेज अलाउड ही नहीं था, कई तरह के नियम इन लोगों ने खुद फॉलो किए थे इस पूरे मूवी को बनाने के दौरान। तो कई तरह की चीजें हैं, संतों का आशीर्वाद है जैसा कि आचार्य चंद्रांशु जी भी कह रहे थे, तमाम चीजों को मिलाकर आज ये मूवी 300 प्लस करोड़, ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है बॉक्स ऑफिस के लिए, उसे पार कर रही है। और जैसा कि नलिन ने कहा, वेंटिलेटर पर फिल्म है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी इंडस्ट्री या फिर तमाम जो ये फिल्म से जुड़ी इंडस्ट्री है वो वेंटिलेटर से बाहर निकले, उसका एक जरिया अगर ये हो सकती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: केवल मुंबई ही नहीं बल्कि गुजरात में भी गणेश उत्सव की रौनक देखने लायक है, खास करके सूरत और राजकोट में तो गणेश पंडाल हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ डालिया शेरी गणपति पंडाल गोल्डन गणेश लोगों पर शुभता का आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो वहीं पर राजकोट के जेके चौक राजा गणेश पंडाल को काशी विश्वनाथ की थीम पर सजाया गया है। बप्पा के इन दोनों ही पंडालों पर आस्था उमड़ी हुई है।

0: गणेशोत्सव में कहीं भव्य दिव्य पंडाल सजे हैं जिनमें बप्पा के अद्भुत स्वरूप विराजमान हैं, तो कहीं अनोखी थीम से गणपति उत्सव को खास बनाया गया है। गजानन एक हैं, मगर उनके रूप अनेक, जिनकी दिव्य आभा पूरे देश में इन दिनों बिखरी हुई है। ऐसे ही एक खूबसूरत गणपति पधारे हैं सूरत के महिधरपुरा में। मैसूर पैलेस की थीम पर बने इस डालिया शेरी गणपति पंडाल में ये गोल्डन गणेश हैं, जिनके सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं।
0: डालिया शेरी के गणपति बप्पा को सूरत के राजा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल करीब 25 से 30 किलो के सोना चांदी और अमेरिकी डायमंड से भगवान गजानन सजाए जाते हैं। बप्पा का मुकुट, हाथ, पैर, ये सभी सोने चांदी से बनाया गया है। यहाँ तक कि उनके नीचे लगाया गया गणपति महाराज का छोटा स्वरूप भी सोना चांदी और हीरे से तैयार किया गया है।
2: ये पिछले 30 साल से लगाए थे, ये जो संगार आप देख रहे हैं वो पिछले 30 साल से है, तो इसकी जो कीमत है वो आप अंदाज लगा सकते हैं, पिछले 30 साल से और इस साल बहुत कंपेयर हो सकता है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल करने की वजह से ही डालिया शेरी के बप्पा को गुजरात के सबसे महंगे यानी कीमती गणपति माना गया है। सूरत के इस फेमस गणपति पंडाल में देर रात भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हर कोई बप्पा के इस मनोहारी और सुनहरे स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हो रहा है।
1: यहाँ आप देखेंगे भक्त भी यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी फोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति भाव के साथ साथ फोटोबाजी भी यहाँ पे लोग करते हैं, जैसा कि हर जगह धार्मिक स्थलों पे होता है। और ये सूरत की तस्वीरें हैं जो आपको हम बता रहे थे। मैसूर जो महल है, मैसूर महल से उससे प्रेरणा लेकर के यहाँ पर गणेश पंडाल बनाया गया है और भगवान गणेश की मूर्ति को यहाँ पर ज्वेलरी से सजाया गया है।
0: कुछ ऐसे ही बप्पा के दर्शनों की आस लिए लोग पहुंच रहे हैं राजकोट के जेके चौक राजा गणेश पंडाल में, जिसे काशी विश्वनाथ की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की खूबसूरत प्रतिमा के साथ मुख्य आकर्षण उनके वाहन चूहे भी है, और ये सफेद चूहे असली है। मोदकों को खाते ये सफेद चूहे यहाँ आ रहे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
3: शिव शक्ति युवा ग्रुप द्वारा गणेश महोत्सव हम 18 साल से कर रहे हैं, ये हमारा 19वां साल है, और इस साल हमने काशी विश्वनाथ की एक पूरी थीम बनाई है, उसमें काशी विश्वनाथ का पूरा मंदिर बनाया है, और बनारस घाट जो देख सकते हैं आप, एक ही साथ 500 से 700 लोग बैठकर दादा का दर्शन कर सके, ये हमारा इस साल नया है। और हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेशोत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच भी रही है।
4: बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर साल अलग अलग होता है, और इस साल तो बहुत अच्छा है, बनारस के थीम ऊपर से है ये।
0: राजकोट हो या सूरत, शहर दर शहर, देश भर गणपति बप्पा के पंडाल सजे हैं। बप्पा एक हैं, लेकिन उनका रूप और अंदाज ऐसा कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस एक तक उनके मनोहारी रूप को देखते ही रह जा रहे हैं। राजकोट से रौनक योगेश कुमार मजीठिया और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से पीहू भोई ने हमें अपने गणपति की सुंदर तस्वीर शेयर की, श्वेत वस्त्र श्वेत मुकुट धारण किए गणपति बप्पा की अनुपम प्रतिमा बेहद मनमोहक है, चार भुजाओं वाले भगवान गजानन अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान के चूरू से खुशी वर्मा ने हमें भेजी है, खुशी ने हस्त निर्मित बप्पा की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया, शानदार रंगों से भगवान गजानन की प्रतिमा को रंगों और सुंदर पुष्प बप्पा पर चढ़ाए, मूसक के साथ अपने आसन पर विराजमान बप्पा के सिर में खूबसूरत मुकुट शोभायमान है, साथ ही मंगल मूर्ति को मोदक का प्रसाद चढ़ाया गया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। आपको बता दें आज सबसे पहले जो बात होने वाली है वो मौसम की होने वाली है, क्योंकि पहाड़ों की ठंड ने मैदानों का मौसम बदल दिया है। सितंबर में आपको बता दें पहाड़ों पर दिसंबर जैसा माहौल नजर आ रहा है, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होगी।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए आज बात गणपति उत्सव की भी हम करने जा रहे हैं और आपको हम लिए चलेंगे मुंबई के एक ऐसे पंडाल में जिसे देश का सबसे महंगा पंडाल जो है वो बताया जा रहा है। यहां बप्पा को सोने चांदी से विशेष तौर पर सजाया गया है, तो क्या है इस पंडाल की खास बात ये भी आपको बताएंगे।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए आज आईफोन के दीवानों की दिवाली है, आज से भारत में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू हो चुकी है। तो कैसी नजर आ रही है एप्पल स्टोर की रौनक, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
4: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी मां लक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडप, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों से की गई सजावट। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, मादा चीता केजीपी 12 ने चार शावकों को दिया जन्म, तस्वीरें आई सामने।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो चलिए अपनी खबरों की जो चर्चा है उसको हम शुरू करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद ही होगा, आप भी खबरें पढ़ी रही हैं कि कहीं पर बारिश हो रही थी, कहीं पर यू नो वाटर लॉगिंग हो रहा था, बर्फबारी की खबर हम सुनाने वाले हैं। मतलब मौसम कुछ अजीब सा
7: नहीं है? इंतजार था कब वो बारिश खत्म हो, कब बर्फबारी शुरू हो, कब मौसम बदले और कब घूमने जाया जाए।
4: रियली आप बर्फबारी वेट कर रहे थे,
7: सारे रास्ते बंद हो रहे थे, कभी लैंडस्लाइड हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन अब घूमने फिरने वाला मौसम शुरू हो रहा है तो इंतजार तो था।
5: पता नहीं श्रद्धा, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, क्या कह लीजिए, इस बार इतना अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी, इतने कांस्टेंट वेदर चेंजेस हो रहे हैं। अब फाइनली आप बता रहे हो फिर बर्फबारी हो रही
4: है। नहीं, सर्दी को लेकर मेरा जो रुख रहा है मैं फिर से नहीं उसको अभी से बोलना शुरू करूंगी, क्योंकि अभी तो सर्दी की शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें, देखिए मानसून की विदाई से पहले पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक मौसम ने अचानक करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है, तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी और ओलावृष्टि ने तापमान गिरा दिया है।
5: देखिए कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक और चंबा के साचपात से लेकर भरमौर तक मौसम की पहली बर्फ ने पहाड़ों का जो रंग है वो बदल करके रख दिया है। बर्फीली तस्वीरों के बीच पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मनाली आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। होटल कारोबारियों को भी पर्यटन सीजन के बेहतर होने की उम्मीद जग गई है। उत्तराखंड में भी मौसम ने अपना रंग बदला है। चमोली के रुद्रनाथ से लेकर सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब तक बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है।
8: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय दर्रों में सीजन का पहला हिमपात दर्ज किया गया है। हिमाचल के पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति का खूबसूरत नजारा सामने आया है। बर्फबारी से मनाली की पहाड़ियां बर्फ से चमक उठी हैं। अचानक हुई इस बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह है।
9: मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे मनाली में आया है और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है, क्योंकि हमारे माइंड में यही सेट था कि अक्टूबर मिड के आसपास में मतलब स्नोफॉल स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे आके स्नोफॉल को देखा और काफी सरप्राइजिंगली था हमारे लिए। और मैं और मेरा फ्रेंड मनाली से लद्दाख जा रहे हैं मतलब पैदल, तो हमारे माइंड में यही था कि अक्टूबर तक स्नोफॉल हो जाएगी, तो हमें ये जर्नी पहले ही स्टार्ट कर देनी है। बट यहाँ पे आके हमें पता चला कि मनाली में स्नोफॉल हो चुकी है और ये सीजन की पहली स्नोफॉल है।
8: बर्फबारी की खबरों के साथ ही मनाली में सैलानियों की आमद और होटल्स की ऑक्यूपेंसी तेजी से बढ़ने लगी है। पर्यटन कारोबारियों को अच्छा खासा कारोबार होने की उम्मीद है।
10: भगवान भी प्रसन्न है और आज प्रभु ने सब पहाड़ियों पर बर्फ गिराई हुई है और पहाड़ियां बिल्कुल सुंदर लग रही हैं, चांदी की तरह चमक रही हैं। और इन पहाड़ियों को देखते जैसे सोशल मीडिया और आप पत्रकारों के थ्रू जो है काफी एकदम से सारे पूरे पैन इंडिया में भी क्या बाहर देशों में भी खबर फैल जाती है, सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है। और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो वीकेंड भी आ रहा है आपका और जो नजदीक के हैं क्षेत्र जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये सब लोग जो है इमीडिएट मनाली का रुख कर रहे हैं।
8: हिमाचल में रोहतांग पास, शिंकुला, बारालाचाला और कुंजुम दर्रे में 4 से 6 इंच तक हिमपात हुआ है। कई जगह पर बारिश भी हुई है। हिमपात और बारिश के बीच तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और मनाली को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रों पर बर्फ जमने से फिसलने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय चालकों को ऊंचे दर्रों की ओर बेवजह यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। चंबा जिले को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण साच पास में बर्फबारी होने से इलाके का मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इस दर्रे में हुई ताजा बर्फबारी के बाद साच पास और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फ से ढके पहाड़ों और रास्तों का मनमोहक दृश्य क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो चमोली जिले में मौसम करवट ले चुका है। जिले के ऊंचाई वाले कई इलाकों में हल्की बर्फबारी और ओला गिरने से तापमान में गिरावट आई है। चमोली के चतुर्थ केदार रुद्रनाथ से तस्वीरें आई हैं। यह भगवान शिव का प्राचीन और पवित्र धाम है। यहाँ महादेव के मुख की पूजा की जाती है। बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालु धाम पहुँच रहे हैं। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब में इस सीजन की पहली बर्फबारी से रौनक लौट आई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हेमकुंड साहिब का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति ने मानो इस पवित्र धाम को अपने ही अंदाज में सजाकर श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी की हो। बर्फबारी के बीच यहाँ शब्द कीर्तन लगातार गूंज रहे हैं। बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पहुँचे श्रद्धालु उत्साह से भरे नजर आए। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर दर्शन किए और सीजन की पहली बर्फबारी का भी आनंद लिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र धार्मिक स्थल के दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का अवसर मिलना उनके लिए विशेष अनुभव है। बर्फ से ढकी चोटियां और गुरुद्वारा परिसर का नजारा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
4: तो देखिए मौसम का मिजाज तो आपने देख ही लिया, बर्फबारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। चलिए बात करते हैं गणपति उत्सव की।

0: तो देखिए, पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली और प्रयागराज तक गणपति उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सूरत में सोने और चांदी से सजे बप्पा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं मुंबई में हर गली, हर मोहल्ले और हर इलाके में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पंडालों की भव्यता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपको बता दें कि पुणे में गणपति उत्सव का नजारा बच्चों को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। यहाँ बप्पा के लिए तैयार किया गया एक खास बाल पंडाल, जहाँ बाल गणपति के लिए आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट तक तमाम चीजों से सजाया गया है। यानी कि बप्पा की भक्ति के साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ खास इंतजाम है, और यही वजह है कि इस बाल पंडाल में बच्चों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है।
2: तो देखिए, पंडाल तो आपने कहीं से देखे होंगे, लेकिन अब आपको देश के सबसे धनवान और महंगे गणपति भगवान के दर्शन हम करवा देते हैं। देखिए, मुंबई में जीएसबी सेवा मंडल महागणपति इस साल देश के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा बीमे वाले गणपति हैं। गणेश उत्सव के अवसर पर मंडल ने 703 करोड़ 27 लाख का रिकॉर्ड बीमा यानी इंश्योरेंस कवर लिया है।
0: और देखिए, महागणपति की प्रतिमा को 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी से सजाया गया है। सोने चांदी के गहने और रत्नों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। बाजार में सोना चांदी की कीमतें बढ़ने और परिसंपत्तियों के मूल्य विस्तार के कारण ये बीमा राशि पिछले साल के 474 करोड़ से बढ़कर 703 करोड़ से ज्यादा की हो गई है।
3: मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में, जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो है वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है। खास बात यह है कि मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी पंडालों में गणेश बप्पा को विराजमान किया गया है, उनका विसर्जन इस बार 12 दिनों बाद होने वाला है, लेकिन जीएसबी एकमात्र ऐसा मंडल है जिनका विसर्जन 5 दिन में ही कर दिया जाता है। बड़ी मिन्नतें हैं यहाँ, जो कोई भी आता है लोग मांगते हैं पूरा।

0: स्थापित किया जाता है और साउथ स्टाइल में इनकी पूजा होती है। बप्पा का दर्शन लेने के बाद तुरंत ही लोग भंडारे की तरफ निकलते हैं। भंडारा पास में ही होता है, प्रसाद के रूप में खाना खिलाए जाते हैं और थाली में वो पकवान सजाए जाते हैं जो साउथ इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें सांभर, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं।
1: बाबा के दर्शन किए और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है। यहाँ पे दर्शन ही नहीं लेकिन बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं।
2: बहुत टेस्टी था ये, मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम है यहाँ पे गणपति पंडाल में GBS वाले, एंड यहाँ आगे इतना पीसफुल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मन शांत हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, हमने जो प्रसाद खाया बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। एंड आई कैन सी इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, लोगों की इतनी श्रद्धा है, तो यह बहुत अच्छा लगा ये सब देख के।
0: मुंबई के GSB सेवा मंडल में, जिसे वाकई में देश का सबसे महंगा गणपति उत्सव पंडाल कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
3: तो मुंबई में गणपति उत्सव का रंग हर जगह अलग अलग अंदाज में नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हैं तो कहीं बप्पा के स्वागत का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। ऐसा ही एक अनोखा दरबार मुंबई में सजा है जहां गणपति बप्पा ऑटो रिक्शा में विराजमान है।
4: तो देखिए, असल में इस ऑटो की कहानी सिर्फ बप्पा की भक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, एक बेटे के अपने पिता के प्रति सम्मान और प्यार से भी जुड़ी हुई है। ऑटो चलाकर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाले पिता को उनके बेटे ने ये सम्मान दिया है।

0: मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बप्पा का दरबार बन गया है। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया है। बप्पा का यह अनोखा दरबार सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं है, इसके पीछे एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित भावुक कहानी भी है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया।
1: 2021 में जैसे हम लोग ने मुंबई लोकल ट्रेन बनाया था मिनिएचर कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद हर साल के जैसे मुंबई लोकल हुआ, बस ट्राम हुआ, फिर BST हो गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मुंबई के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूटिलाइज करके हम लोग गणपति को फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। तो ये साल मुझे कॉन्सेप्ट था कि ये साल मुझे डेकोरेशन मेरे डैडी को डेडिकेट करना है, तो मुंबई का जो रिक्शा है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये साल बापा को मैं मुंबई रिक्शा में बैठा था, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट उसमें बन सकता है।
0: बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया, ऑटो में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की। अब इस बेटे की कोशिश खूब सराही जा रही है।
2: यही खुशी है मेरे को आज, क्या यह हमारा बेटा इतना आगे आ गया, बस इससे बड़ा और कुछ नहीं, ये सब बप्पा की मेहरबानी।
0: बप्पा का ये पंडाल न केवल गणपति स्थापना की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि पिता पुत्र के बीच मजबूत रिश्ते की इमोशनल कहानी भी बयां कर रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा की झलक अब काशी में भी देखने को मिल रही है। शिव की नगरी में बप्पा का भव्य दरबार सज चुका है। फूलों से सजे इस पंडाल में आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है।
4: तो देखिए, काशी में लालबाग की दर्शन और आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 18 सालों से लगातार काशी में लालबाग के राजा की जैसी मूर्ति स्थापित की जा रही है। इस आयोजन में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव परंपरा की झलक भी दिखाई देती है।
5: शिव की नगरी काशी इन दिनों बापा की भक्ति के रंग में रंगी हुई है। यहाँ गणपति के भव्य दिव्य रंग बिरंगे पंडाल सजे हैं, फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा है। शिव की काशी में लाल बाग के राजा का दरबार भी सजा है, जहाँ बापा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
6: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं।
5: मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज

0: पर सजे इस भव्य दरबार में आस्था भी है, भव्यता भी है और बाप्पा के स्वागत का खास अंदाज भी।
1: देख सकते हैं हूबहू ये पूरी जो रिप्लिका है ये लालबाग के राजा की होती है। और माना जाता है, आस्थावानों में ऐसी मान्यता है कि जो पुण्य लालबाग के राजा के दर्शन से मिलता है तो वो पुण्य इनके यहाँ काशी में लालबाग के राजा के दर्शन से भी मिलता है। यही कारण है तमाम जो गणेश भक्त हैं वे यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं।
0: इस उत्सव की खास बात यह है कि यहाँ लालबाग के राजा की हूबहू प्रतिमा स्थापित की गई है जिनके सिर पर सुंदर मुकुट सजा है, चमकदार आभूषणों से भव्य श्रृंगार हुआ है।
2: हम लोग यहाँ शिवपुर से आए हैं यहाँ दर्शन करने, लालबाग के राजा का नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके।
0: काशी में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए वाराणसी के अलावा आसपास के शहरों से भी लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं।
3: यहाँ दर्शन के निमित्त जो है हम आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं कि बाबा लालबाग के रास्ते हैं। और काशी में ये चीज़ शुरू हो गई तो ये बहुत सुंदर है क्योंकि पिता का स्थान है, वहाँ पुत्र यहाँ विराज रहे हैं।
0: पिछले 18 सालों से लगातार काशी में लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जा रही है। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति की ओर से होने वाले इस आयोजन में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव परंपरा की झलक देखने को मिलती है।
4: ये लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति है, ये भी बॉम्बे से ही आई है और उधर से ही बन के आई है। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, हर रोज अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कभी मेहंदी प्रतियोगिता, कभी बच्चों का ड्राइंग का, फिर बाद में डांस कंपटीशन, उसके बाद जागरण, भंडारा।
0: लालबाग के राजा के इस दरबार में आस्था के साथ काशी की भक्ति का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तो लगता है कि अगर एक बार के लिए वाराणसी ना लिखा हो या ना बताया जाए तो ऐसा लगेगा महाराष्ट्र में मुंबई के लालबाग का राजा वहाँ
6: है, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा है। वो लगते भी बहुत भव्य है, सुंदर है, लेकिन बड़ा मन करता है कि कभी मुंबई जाओ, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है।
7: भीड़ बहुत ज्यादा होती है और मैं तो बोलूंगी कि इस बार जो क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है ना, जो लगातार हम खबरें भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर गोलगप्पे के शेल से जो है बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है, कहीं पे चॉकलेट और टॉफीज का इस्तेमाल करके बनाई गई है। मुझे कहना पड़ेगा कि इस वक्त इतनी ज्यादा रचनात्मकता देखने को मिल रही है।
6: पहले तो रोबोटिक गणपति बप्पा भी बनाए गए,
7: अच्छा मतलब वो नहीं देखा।
6: वैसे हर बार ही होता है, अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं, थीम्स होती हैं, हर बार कुछ ना कुछ,
5: हर बार थीम बेस्ड रहता है, अलग अलग रहता है। हमने अभी मुंबई में धर्मेंद्र में लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग पंडाल में, एक से एक आपको बता दें कि गणपति के पंडाल है। लेकिन अब आपको चलिए हम लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए गणपति पंडाल बनाया है। इस बार समिति ने गणेश पंडाल मन्नत मंदिर तारापीठ बंगाल की थीम पर तैयार किया है।
6: बिल्कुल, देखिए पंडाल में भगवान गणेश की 21 फीट बड़ी मूर्ति के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को माता तारा के चरणों के दर्शन करने को मिलते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आस्था के साथ साथ इस बार पंडाल में प्रकृति और पक्षियों की झलक भी देखने को मिल रही है, वो भी इको फ्रेंडली अंदाज में।

0: भिलाई के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा ये भव्य गणपति पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम भी लोगों को खासा पसंद आ रही है। इस पंडाल को न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने तैयार किया है, जो हर साल कुछ नया करने के लिए जानी जाती है। इस बार समिति ने गणेश पंडाल को मन्नत मंदिर तारापीठ बंगाल की थीम पर तैयार किया है। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को सबसे पहले माता तारा के चरणों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। फिर भक्त आगे बढ़कर भगवान गणेश की 21 फीट बड़ी मूर्ति के दर्शन करते हैं।
1: टू जो गणेश पंडाल है वो एक आधुनिक है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ थीम हर वर्ष करते हैं, और इन्होंने इस वक्त साल रखा है पश्चिम बंगाल का तारापीठ माँ का रखा है, और द्वार में जैसे घुसते ही उनका चरण और पूजा पाठ का रखा है, और यहाँ तक चुनरी और नारियल का रखा है।
0: पंडाल की सबसे बड़ी खूबी तो इसकी सजावट ही है। समिति ने इस बार पंडाल को प्रकृति और पक्षियों की थीम से भी जोड़ा है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल इसे सजाने के लिए किया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष प्रकार के बांस, मिट्टी की मटकियां, सूखे तालपत्र, बेल, फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हों।
2: देख सकते हैं कि इस वर्ष समिति द्वारा 500 घोंसलों का निर्माण भी किया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि ताड़ पत्तों से इसको बनाया गया है, अंदर मटकों का उपयोग किया गया है। इससे सोसाइटी को एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, और भिलाई विगत वर्षों से ही इस चीज़ में बहुत आतुर अपना सेवा दे रहा है कि इतने अच्छे पंडालों का आयोजन हो रहा है, मतलब हमको भी मजा आता है।
0: पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आई करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। समिति से जुड़े लोग कहते हैं कि इस बार गणेशोत्सव पर श्रद्धालुओं को सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन ही नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव मिले जिसे वो लंबे समय तक याद रखें, इसलिए ये थीम चुनी गई।
3: इनका 42वां वर्ष है और समिति हर वर्ष कुछ नया करने का सोचता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर सारे हिंदुस्तान के सारे तीर्थ स्थल बन चुके हैं। अब समिति विगत 4 वर्षों से थीम पे मतलब काम करना शुरू किया, ताकि पूजा के साथ साथ लोगों में एक हमको देश बचाना है तो हमको पर्यावरण बचाने के थीम पे काम कर रहा है। कारीगर पूरे वेस्ट बंगाल के कारीगर आए थे, इसमें 50 कारीगर आए थे बंगाल के और कुछ आए जबलपुर के आए थे, और विगत 3 माह से ये काम चल रहा है, क्योंकि अंदर का वर्क पूरा कलकत्ता से सामान आया है पूरा, जो पत्ता जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है आप देखेंगे लोग जो फेंक देते हैं उसी को ठीक करके मतलब पूरा पंडाल उससे बना हुआ है।
0: धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक कला को एक साथ जोड़ने की ये कोशिश इस बार के गणेशोत्सव को न सिर्फ खास बना दे रही है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी बयां कर रही है। भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो हम चाहते हैं कि आप भी जयंती के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप ऐसी 2 तस्वीरें देख सकते हैं, अभी हमें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे हमारे दर्शकों ने ही हमें भेजा है। पहली तस्वीर नासिक से है, नासिक से दीपक अमित राठौड़ ने अपने गणपति की तस्वीर हमें भेजी है। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान के कोटा से है, कोटा से आशीष पाटीदार ने अपने बप्पा की तस्वीर हमें खास तौर पर भेजी है। वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए आपको बता दें कि हमारा नंबर है 7303409922। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो हमें भेज रहे तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर साथ में मेंशन कर दें।
5: तो इतने प्यारे प्यारे गणपति देखकर ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल हमारे यहाँ हालांकि विदाई हो गई है जीएनटी में, लेकिन अभी भी मन जो है ऐसा लग रहा है भरा नहीं है, अभी कुछ और दिन रुकते हैं।
4: ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में हमने विसर्जन कर दिया। हाँ। अब लग रहा है कि थोड़े दिन और बप्पा को रुकना चाहिए था। आंखें जो है ना भर आती हैं अभी भी, ऐसा लगता है कि जो विघ्नहर्ता है ना हमारे जीवन में यूं ही बने रहे।
5: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम बात कर लेते हैं उसकी जिसके इंतजार में लोगों ने पता नहीं पलके बिछाए कब से वो बैठे हुए थे आईफोन के दीवानों के लिए, क्योंकि आज जो उनके लिए दिन है वो बेहद गुड न्यूज लेकर आया है। आज से भारत में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू हो गई है। दीपिका आईफोन पसंद आप करती है राइट?
6: मुझे लगता है हम तीनों को ही पसंद है, तीनों
4: तीनों के पास आईफोन है, लेकिन पता मैं आईफोन फैन नहीं हूँ, लेकिन
6: दीपिका मैं तो हूँ, मैं तो बिल्कुल हूँ। और अब जो मैं बर्गंडी कलर देख रही हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट सारे सेलिब्रिटीज बर्गंडी कलर ही खरीद रहे हैं उनके। आप इंस्टाग्राम पर देखिए, मेरा तो इंस्टाग्राम फीड ही उससे भर चुका है, हर कोई सेल्फी ले रहा है उससे। और जो ये भी मैंने देखा है, जो लड़कियां हैं वो बर्गंडी कलर ले रही हैं, जो लड़के हैं वो ग्लेशियर ब्लू कलर ले रहे हैं।
5: वाओ, लेकिन मतलब समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऑल्दो मुझे भी आईफोन बहुत पसंद है, मेरे पास भी है, लेकिन अब जो जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही है, मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में भी एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास।
4: सही बोल रहा हूं,
5: मैं आईफोन पसंद करने वालों में से हूँ, लेकिन हाँ इतना ज्यादा अमाउंट उस पर खर्च करना सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो देखिये भारत में आईफोन जो है वो अब आ चुका है, और 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की सेल शुरू हो गई है, और सेल शुरू होते ही एप्पल स्टोर के बाहर जो नजारा दिखा वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। और हर बार ऐसा होता है, दिल्ली के साकेत मॉल से लेकर मुंबई तक आईफोन खरीदने वालों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। और ये कई युवा, आपको बता दें कि रात से ही स्टोर के बाहर पहुंच गए थे, यानी कि फोन सुबह मिला था लेकिन इंतजार रात से शुरू हो गया था।
6: बिल्कुल, देखिए आईफोन की नई सीरीज का इंतजार उसके चाहने वालों के लिए सिर्फ एक नए फोन का इंतजार नहीं होता, ये उनके लिए एक इवेंट होता है, एक एक्साइटमेंट होती है। और कई लोगों के बीच इसे आईफोन लवर्स की दिवाली तक कहा जा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, लंबी कतारें बता रहे हैं कि आईफोन का क्रेज सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कुछ लोगों का सपना होता है कि वो एक आईफोन खरीद ले। और एप्पल के लिए कुछ लोगों की दीवानगी ऐसी ही नजर आई।

0: दीवानगी नहीं तो और क्या है। आईफोन लेकर ये लोगों का क्रेज नहीं तो और क्या है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, शहर अलग अलग, लेकिन सभी शहरों से आ रही तस्वीरें आईफोन लवर्स की दीवानगी को बयां कर रही थी। एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से देश में शुरू हो गई है, जिसे पहले पहल खरीदने की होड़ इस कदर लगी है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
1: कीमतों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया की खूबसूरत बात यही है कि आपको ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे आपको फुल कैश, इतने सारे फाइनेंसेस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक लोग इतना ज्यादा कंसर्न भी होंगे, वो सेंटिमेंट वही लेके आ रहे हैं कि मुझे तो आईफोन लेना ही लेना है। और कलर्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि उनको बर्गंडी कलर बहुत पसंद आ रहा है।
0: दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में देर शाम से ही ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। रात होते होते लोगों ने एप्पल स्टोर के बाहर कतार लगा ली। एप्पल स्टोर ने बाहर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम कर रखा था।
2: मेरे को फोनों में बहुत इंटरेस्ट है। हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं।
0: iPhone 18 के ये दोनों मॉडल लेटेस्ट जनरेशन A20 प्रो चिपसेट से लैस हैं और इनमें कंपनी का नया इनहाउस C2 मॉडेम भी है। इस बार के प्रो मॉडल्स में बेहतर बैटरी लाइफ भी देखने को मिल रही है, जहां iPhone 18 प्रो में इस बार 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, वहीं 18 प्रो मैक्स में 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। दोनों ही डिवाइस में गर्मी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नए वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे हैवी टास्क के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। ये दोनों फोन 4 कलर ऑप्शन डीप ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर ब्लू और बर्गेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किए गए हैं। दोनों ही डिवाइसेस 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध हैं। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू होती है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 रुपए से शुरू होती है। भारत में एप्पल आईफोन का क्रेज लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी तस्दीक दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु समेत भारत के तमाम शहरों से आ रही तस्वीरें कर रही हैं। भारत में एप्पल का रेवेन्यू पहली बार $10 बिलियन यानी करीब 96 करोड़ के आंकड़े के पार कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आईफोन की बिक्री का है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईफोन बाजार बन गया है, जहां प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल की वैल्यू शेयर हिस्सेदारी करीब 28% है। कल तक खास लोगों तक पहुंच रखने वाले आईफोन अब आम लोगों की जद में भी आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 70% से ज्यादा आईफोन आसान फाइनेंस और ईएमआई विकल्पों के जरिए खरीदे जाते हैं, जिससे आम लोग भी इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं। दिल्ली से अमित और साइरस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो आईफोन 18 की दीवानगी ऐसी है, सुबह हम खबरें दिखा रहे थे, लोग 2 बजे से ना लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं स्टोर के बाहर कि सुबह जब दुकान खुलेगी सबसे पहला आईफोन 18 हमें खरीदेंगे।
4: भाई वो मिस नहीं होने देना चाहते, कोई भी चांस नहीं लेना चाहते कि उन्हें ना मिले।
3: बिल्कुल, देखिए आम लोगों में ही नहीं बॉलीवुड में भी आईफोन 18 प्रो सीरीज का जबरदस्त क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है। रितेश देशमुख, जेनेलिया, विकी कौशल और नेहा धूपिया जैसे सितारों ने इस नए फोन के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
5: बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुरू होते ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एप्पल स्टोर पर फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस लॉन्च डे को और भी खास बनाया बॉलीवुड स्टार विकी कौशल ने, जो खुद अपना नया आईफोन लेने सीधे स्टोर पहुंच गए। बताइए, हम लोगों की बात कर रहे थे यहाँ, सेलेब्स का क्रेज देखिए आईफोन को लेकर। विकी कौशल की मौजूदगी ने एप्पल फैंस के उत्साह को दुगुना कर दिया। स्टोर में मौजूद लोग एक्टर और नए प्रो मॉडल्स की एक झलक पाने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए।
4: और देखिए, एक्टर रितेश देशमुख ने अपने नए आईफोन 18 प्रो मैक्स की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीर में वो नए ग्लेशियर ब्लू कलर वेरिएंट के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं। धमाल 4 स्टार ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मेरा वाला ब्लू। रितेश के इस पोस्ट पर फैंस और सेलिब्स के मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। जहां रितेश को ग्लेशियर ब्लू शेड पसंद आया, वहीं उनकी पत्नी जेनिलिया देशमुख का दिल इसके नए बर्गंडी वेरिएंट पर आया है। इस बार एप्पल का ये गहरा और प्रीमियम बर्गंडी शेड बी टाउन की पहली पसंद बनता हुआ नजर आ रहा है।
3: वहीं नेहा धूपिया ने बर्गंडी आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ अपनी तस्वीरें जो है वो शेयर कर दी है। वीडियो आप देख सकते हैं। नेहा धूपिया ने अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, हाथ में और साथ में, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये नया शेड तेजी से ट्रेंड कर रहा है और टेक लवर्स के बीच चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायुसेना को मिली त्रिशक्ति की ताकत का कमाल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंदल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री। 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी। 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री। जापान को 8 विकेट से दी मात। श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना। माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत। परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। देश की रक्षा से जुड़ी एक गुड न्यूज आपको बता दें, भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षमता बढ़ने जा रही है। स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी से पहले स्वदेशी ट्रेनर विमान एयर फोर्स को मिल गया है।
3: बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की ओर से वायुसेना को स्वदेशी ट्रेनर विमान सौंपे गए हैं, जिससे विदेशी विमानों पर निर्भरता घटेगी और आने वाले समय में अपने यहां बनने वाले लड़ाकू विमानों के लिए पायलटों की ट्रेनिंग भी आसान हो सकेगी।

0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाए गए ये वो ट्रेनर विमान है जो आने वाले वक्त में स्वदेशी तेजस Mach 1A लड़ाकू विमान की उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट्स को तैयार करेंगे। HAL की ओर से भारतीय वायुसेना को स्वदेशी HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान का पहला बैच सौंपा गया है। एयरफोर्स को लंबे वक्त से इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंतजार था। ये विमान वायुसेना के पायलट्स की शुरुआती ट्रेनिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
1: ये एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का लास्ट टू ट्रेनर है। थोड़ा हमारे थोड़ा ये डिलीवरी में भी थोड़ा डिले हुआ था, बट ट्रेनर पायलट्स का ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इज वाई दिस एज वेल एज दी HTT-40 वॉट वी आर गोइंग टू डिलीवर इज गोइंग टू ट्रेमेंडसली हेल्प देम इन गेटिंग देयर पायलट्स रेडी फॉर दी सिचुएशन विच इज गोइंग टू अराइज टुमारो।
0: HTT-40 की सप्लाई का मकसद फिलहाल वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे स्विट्जरलैंड में बने पिलाट्स PC MK2 ट्रेनर विमानों को चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करना है। HTT-40 ट्रेनर विमान कई खास खूबियों से लैस है। HTT-40 में आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। इसके अलावा इसमें 00 इजेक्शन सीट दी गई है जिसमें किसी भी ऊंचाई और गति पर पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने की सुविधा मिलती है। HAL की ओर से तैयार किया गया दूसरा प्लेटफॉर्म LCA-FOC ट्रेनर है। ये तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमानों का 2 सीटों वाला वर्जन है।
2: ये डबल सीटर जो लड़ाकू विमान आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेनर विमान है जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। ऐसे 40 ट्रेनर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है LCA लड़ाकू विमानों के साथ जो पायलट इन लड़ाकू विमानों को उड़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्योंकि अभी तक ये जो पायलट हैं वो एक तरह से कह सकते हैं दूसरे विमान और विदेशी विमान पर ट्रेनिंग के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन ये HAL द्वारा बनाया गया ट्रेनर विमान है जो आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में जिस तेजी के साथ LCA विमान शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग देगा।
0: जाहिर है इन ट्रेनर विमानों के आ जाने से भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग तेज हो सकेगी। अहम बात ये भी है कि अब जिन लड़ाकू विमानों और ट्रेनर विमानों का निर्माण किया जा रहा है उनमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे इस्तेमाल करने पर जोर है।
1: I think now around 60% around because engine is coming from outside, so the Indianness percentage is around there. Slowly we are increasing in the next coming 97 aircraft we are going to increase it to more than 65% to 70%.
0: फरवरी 2021 में भारतीय वायुसेना ने 46,898 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 83 तेजस MK-1A विमान का ऑर्डर दिया था। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी लेकिन इसमें देर हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि ये विमान जल्द ही वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। ट्रेनर विमानों की सप्लाई भी इसी से जुड़ी है।
2: देश और दुनिया में युद्ध के हालात के बीच भारतीय वायुसेना को तेजी के साथ जो लड़ाकू विमान है देश का बना हुआ LCA तेजस Mach 1 की दरकार है, और ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी के साथ इस लड़ाकू विमान पर जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग कर पाए उसके लिए LCA तेजस Mach 1 जो FOC ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो अब तेजी के साथ भारतीय वायुसेना का में शामिल हो रहे हैं। ऐसे 2 नए ट्रेनर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं और अब तक ऐसे कुल मिलाकर 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएंगे।
0: इसके साथ ही HAL की ओर से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सिविल सर्टिफाइड वर्जन भी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा गया है जो VVIP ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस सेवाओं और हेली तीर्थ यात्रा सहित अन्य भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है।
1: इसमें एक खासियत है कि इसका इसका मूवमेंट पीपल मूवमेंट VIP मूवमेंट हम इनसाइड का सीट के ऐसे ही चेंज करके उसका VIP मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सीट्स को निकाल के मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेचर लगा सकते हैं, कुछ भी हो ऐसा लगा सकते हैं। सो सिंस ध्रुव इज ए प्रूवन प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑल द सर्विसेज आर यूजिंग अवर ध्रुव हेलीकॉप्टर, सो दिस वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन द सिविल सेक्टर एज वेल।
0: विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तेजी से सप्लाई के लिए एचएएल की ओर से जोरों शोरों से काम किया जा रहा है और क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि लड़ाकू विमानों से लेकर सिविल एविएशन तक हर सेक्टर में स्वदेशी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का डंका बजे और देश आत्मनिर्भरता की राह पर उड़ान भरे। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए बात क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में केवल अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त नहीं दी है बल्कि दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 108 रन ठोक दिए हैं। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। वो T20 इंटरनेशनल के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं।
4: यही नहीं, ओवरऑल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भी अभिषेक ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब 10-10 T20 शतक हैं। कहा जा रहा है कि इस मैच से पहले युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को खास मैसेज भी दिया था। उन्होंने अभिषेक से हर गेंद को जबरदस्ती हिट नहीं करने और जरूरत पड़ने पर सिंगल लेने की बात कही थी। अगले दिन अभिषेक ने 30 गेंदों में शतक ठोक कर इतिहास रच दिया।
5: अरुण जेटली स्टेडियम पर कल अभिषेक शर्मा का दमदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान के सामने चुनौती थी कि किस तरह से अभिषेक का विकेट लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अंगद की तरह मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। अभिषेक ने कल शानदार पारी खेली जहां पर सिर्फ 30 गेंदों पर उन्होंने अब तक शतक पूरा कर लिया। ये भारत की तरफ से सबसे तेज शतक है। इससे पहले रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। अगर फुल मेंबर्स की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड भी अब अभिषेक शर्मा के नाम है। इससे पहले रिकॉर्ड सिकंदर रजा और फिन एलन के नाम था। लेकिन भारत के लिए ये सबसे बड़ी जीत, क्योंकि लगातार 3 मैचों में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की और इस सीरीज के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। अफगानिस्तान के खिलाफ या फिर किसी भी दूसरी टीम के खिलाफ अभिषेक शर्मा का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा।
3: और क्रिकेट के मैदान पर आपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वीरेंद्र सहवाग अब बिल्कुल अलग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सहवाग अब रियलिटी शो की दुनिया में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। राइज एंड फॉल सीजन 2 में वीरेंद्र सहवाग होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे।
6: और देखिए, सहवाग ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शो से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने यमराज के लुक में तस्वीरें शेयर की हैं। इससे पहले वो न्यूटन की तरह सेब गिराने का इंतजार करते हुए अपनी तस्वीर साझा कर चुके हैं। राइज एंड फॉल सीजन 2 26 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस शो में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर और शहजाद पूनावाल सहित कुल 15 कंटेस्टेंट शामिल होंगे।
7: चीज ऊपर जाती है, उसे नीचे आना ही पड़ता है। और क्या जिंदगी इतनी सीधी होती है?
3: और प्रोजेक्ट चीता के 4 साल पूरे होने के ठीक अगले दिन कोनो नेशनल पार्क से बेहद खुशी की खबर सामने आई है। भारत में जन्मी मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है और खास बात यह है कि ये मादा चीता खुद भी भारत में पैदा हुई है, यानी अब भारत में पैदा हुई एक मादा चीता खुद मां बनी है और उसने कोनो में चीतों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से इसे इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये दिखाता है कि चीते अब भारतीय जंगलों में सिर्फ रह ही नहीं रहे बल्कि यहां प्रजनन भी कर रहे हैं।
4: बिल्कुल, देखिए, इन 4 नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। वहीं कोनो नेशनल पार्क में अब कुल 53 चीते मौजूद हैं, जबकि 3 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में है। यानी कोनो अब सिर्फ चीतों को बसाने की जगह नहीं रह गया है बल्कि यहाँ चीतों की आबादी लगातार आगे भी बढ़ रही है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि अब भारत में जन्मे चीते भी आगे की पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, जो इस पूरे संरक्षण अभियान के लिए एक अहम पड़ाव है।
6: और देखिए, खास बात यह है कि मादा चीता KGP-12 भारत में ही जन्मी है और उसने 4 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की है। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक और खुशी का पल बताया और कूनो की पूरी टीम को बधाई दी। खास बात यह है कि भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद ये खुशखबरी सामने आई है और इस खुशी को 4 नन्हे शावकों ने और खास बना दिया है।
4: अच्छा, सोचिए कि क्लासरूम में बच्चे सवाल पूछे और सामने से जवाब मिले, लेकिन जवाब देने वाला शिक्षक इंसान नहीं बल्कि एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट हो। देखिए महाराष्ट्र के अकोला में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है।
3: अब शायद ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा हर जगह कि आप सवाल पूछे जवाब कोई और दे रहा है। एक्चुअली श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित रोबो शो 2026 में छात्रों के सामने एआई रोबोट टीचर आयरिस पेश किया गया। आयरिस ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए, उनसे बातचीत की और बहुभाषी संवाद के जरिए दिखाई शिक्षा के भविष्य की एक झलक। आप भी देखिए।
8: ये कोई फिल्मी किरदार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह सामने वाले की बात सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है और जवाब भी देता है। अकोला के रोबो शो 2026 में आयरिस एआई रोबोट टीचर छात्रों और शिक्षकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
9: एआई की वजह से एजुकेशन में काफी बेहतर पॉसिबिलिटीज आ रही है। पहले AI ट्यूटर्स जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं वो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ और इफेक्टिव बना देते हैं। इसके साथ AI अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स के थ्रू कंटेंट और पेस वो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेगा।
8: खास बात ये है कि आयरिस सिर्फ सवालों का जवाब देने तक सीमित नहीं है। AI बेस्ड तकनीक के जरिए ये छात्रों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा लचीला और रोचक बनाने में मदद कर सकती है। यानी क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाली बातचीत अब मशीन और इंसान के बीच भी संभव है।
9: AI बेस्ड टूल्स टाइम सेविंग होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, फॉर्मेटिव फीडबैक और लर्निंग एनालिटिक्स जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशन से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सेफ इंटरैक्टिव वे में समझ सकते हैं। AI बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म से पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवेज मिलती है जो एंगेजमेंट को बढ़ा।
6: तो चलिए हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मैक्सिको सिटी के जू में खास मेहमान की मुंह दिखाई।
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: दिल्ली में कला कनेक्ट आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है आज से लेकर 20 सितंबर तक। NSIC एग्जीबिशन सेंटर ओखला में ये उत्सव चलेगा। कला प्रेमियों के लिए ये खास मौका है, जहां एक ही जगह पे कला, संगीत और रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
7: इस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कलाकारों ने अपनी कल्पना और हुनर को अलग अलग कलाकृतियों के जरिए पेश किया है। आयोजन में प्रेरणादायक और अनोखी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें ऐसी पेंटिंग भी है जिसे ऐसे कलाकारों ने बनाया है जिनके हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने पैरों से पेंटिंग बनाई है।
8: कला कनेक्ट में आपको कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो सीधे आपके दिल से कनेक्ट होती हैं। मेरे साथ ऋतिक कोहली हैं, और ऋतिक को आप देख पा रहे हैं कि उनके दोनों हाथ नहीं है बचपन से, लेकिन यहाँ पर मेरे चारों तरफ जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं वो सब ऋतिक ने बनाई हैं। वो पैरों से पेंटिंग करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने उनका एक लाइव डेमो भी देखा कि कैसे वो पैरों से पेंटिंग बना रहे थे। जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो शिव की हो या दूसरी आर्ट फॉर्म हो, उन सब को ऋतिक ने खुद से तैयार किया है। सिर्फ 23 साल की उम्र है, बड़े बड़े एग्जीबिशन में जाते हैं और उनकी पेंटिंग्स सेल भी होती हैं। ऋतिक से हम बात कर रहे हैं। आप ऋतिक, कब से ये शुरू किया आपने कि चलो पेंटिंग बनाते हैं?
9: सर, जैसे हम 5वीं क्लास में थे, जब से ही हम स्कूल की तरफ से मतलब कॉम्पिटिशन में जाते रहते थे और हम पार्टिसिपेट करते रहे जगह जगह, मतलब जब से ही हमें लगा मतलब आर्टिस्ट बनना था।
8: अभी अभी अभी तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुके हो?
9: अभी तक कम से कम 100 पेंटिंग से ज़्यादा बना चुके हैं।
8: 100 से ज़्यादा?
9: जी।
8: जो पहली पेंटिंग बनाई थी वो किस चीज़ की बनाई थी?
9: पहली पेंटिंग बनाया था मिट्टी का डायनासोर बनाया था। जब से ही शौक हुआ मतलब आर्टिस्ट बनना है।
8: आप सब कुछ आपने पैरों से ही करते हो?
9: सब कुछ पैरों से ही।
8: कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में?
9: एक पेंटिंग बनाने में कम से कम 3 घंटे।
8: 3 घंटे में बन जाती है? जैसे ये जो हम देख रहे हैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी है, ये कितने घंटे बनी हुई?
9: ये मतलब 7-8 घंटे बनी थी सर। ये बड़ी है थोड़ा स्मार्ट। हाँ।
8: और ये भोलेनाथ?
9: ये 2 घंटे बन गए थे।
8: 2 घंटे
9: क्लास में? जी, क्लास में। अगर मेरी पेंटिंग आपको चाहिए लेनी है आपको, तो मेरा नंबर है 9220596319।
8: तो ऋतिक से कैसे कॉन्टेक्ट करना है आप समझ गए हैं, और अगर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को आपको अपने घर सजाना है और देखने वालों को ये बताना है कि ये हाथ से नहीं बल्कि किसी कलाकार ने अपने पैरों से बनाई है, तो वो अलग सौंदर्य होगा आपके घर के लिए भी और गर्व की बात होगी ऋतिक के लिए भी। कुल मिलाकर इस जगह पर बहुत सारे ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है जिन्हें शायद दुनिया कभी दूसरी नज़र से देखती थी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
0: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मचाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: मेक्सिको सिटी के मशहूर जू में मंगलवार को एक बेहद खास मेहमान ने दस्तक दी। बॉब कैट का ये नन्हा बच्चा सबके लिए चर्चा का विषय बना रहा। इसने पहली बार लोगों के सामने कदम रखा। खास बात ये है कि मेक्सिको सिटी के जू के इतिहास में पहली बार बॉब कैट के बच्चे का जन्म हुआ है। इस नन्हे बॉब कैट का जन्म जुलाई में हुआ था। इसके माता पिता दोनों 10 साल के हैं और दूसरे संरक्षण केंद्रों से यहाँ लाए गए थे। चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में आज फिलहाल हमारे साथ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे सोमवार शाम 5 बजे गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री। 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी। 99वें एकेडमी अवार्ड में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। HAL ने भारतीय वायुसेना को सौंपे LCA तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू रहे मौजूद। गणेश उत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना। माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत। परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेश उत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेश उत्सव का पांचवा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल जो है वो सज चुके हैं। बप्पा की एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट हैं, तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराजे हैं, तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्री राम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जागते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं एक पंडाल ऐसा भी है जहां बप्पा को दर्जनों किलो सोने और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से विशेष तौर पर सजाया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बापा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहाँ पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और तो और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम है, तप करते हनुमान है। ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इस दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश, कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए कह सकते हैं। कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बापा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बापा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बापा को एक राजा की तरह भी पूछते हैं। और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगते। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को गरेना से श्रृंगारित किया है।
0: बापा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बापा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें मांगूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट, बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट्स, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बाप्पा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहाँ आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
4: अच्छा, और बापा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला,
5: हाँ,
4: तो ये
5: हाँ, सब हाँ, सुंदर चॉकलेट सा बंगला।
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई।
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहां विराजे हैं देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीर्ति रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्य

0: प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
1: देखिए पप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी पप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति पप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर पप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बापा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बापा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
2: इस साल हम लोगों ने किया राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
1: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी
2: पूरा 95 ईयर से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कंप्लीट इको फ्रेंडली। और अभी आप देखेंगे ना, कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हाइट हो गई है।
0: पापा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
1: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
3: बहुत फन है एंड एकदम अमेजिंग।
1: आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
3: अच्छा,
1: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
3: बहुत अच्छा लगा।
1: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
3: तीन चार बार।
0: अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा, तस्वीरें पुणे के FC रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में, गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
1: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहां पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है, और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ

0: पर विराजमान है आम खास वीआईपी वीवीआईपी सभी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
1: मुंबई का राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं, तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ की सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है। इस गणपति पंडाल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सजावट है। पंडाल को इस बार प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा गया है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर इसे सजाया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हों। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर तो भक्त गदगद हैं ही, लेकिन यहां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं बाप्पा की मूर्ति पर बैठाए गए ये सफेद चूहे। ये कोई रोबोटिक मॉडल नहीं, बल्कि बाप्पा के अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली हैं, जीवित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
2: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति में बहुत है। मूषक हम आज से 6-7 साल पहले ले आए थे, हमारे पास भी है। दादा के पास 10 दिन 11 दिन रखते हैं और एक साल हम पूरी उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास ही रखते हैं।
1: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच रही है। राजकोट में काशी की झलक है, तो वहीं मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बाप्पा का दरबार बन गया है। मुंबई चा रिक्शा आणि बाप्पा ची सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बाप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बाप्पा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाट कोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बाप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बाप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुमुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बाप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहां स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं।
3: तो चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाई जा रही इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। अभी आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां पर आराध्या ने हमें गणेश उत्सव की शानदार तस्वीर भेजी है। आराध्या के घर बप्पा की विधिवत स्थापना की गई है। एक शानदार फूलों से सजे मंडप में पीली पगड़ी में भगवान गजानन की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। रंग बिरंगी लाइट से मंगल मूर्ति के दरबार को विशेष तौर पर सजाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर अमेरिका के डलास से सामने आई है, जहां से हमारे दर्शक नीरज सोनी गणेश उत्सव की तस्वीर हमें उन्होंने भेजी है। शानदार लाइटिंग के साथ बप्पा की अनुपम प्रतिमा मंदिर में सजाई गई है। वहां बैकग्राउंड में भगवान शिव की छाया नजर आ रही है और भगवान गजानन पिता महादेव की गोद में विराजमान नजर आ रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंदल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी 99वें एकेडमी अवार्ड में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। HAL ने भारतीय वायुसेना को सौंपे LCA तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। गणेश उत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडप, पंडाल में दिखे रामायण की भव्य झलक, राम कथा से जुड़े सामानों से की गई सजावट। आईफोन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई सामने, भारत में आज से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू, शहर शहर एप्पल स्टोर में लगी ग्राहकों की कतारें। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चरणी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज, देश को मिले नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दफ्तर में हुआ कार्यक्रम। सेनाओं को विमान सौंपने के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू हुए शामिल। वायुसेना को मिले LCA तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान, सैन्य पायलटों के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को मिलेगी इससे मजबूती। कार्यक्रम में पवन हंस लिमिटेड को सौंपे गए ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। विमानों और हेलीकॉप्टरों को सेना को सौंपने से पहले रक्षा मंत्री ने पूजा की, फिर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी देखा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा के साथ साथ महालक्ष्मी का हुआ आवागमन, पूरे विधि विधान से विराजमान की गई महालक्ष्मी। मल्लारपुर के विघ्नेश्वर परिवार में पूरी आस्था और भक्ति के साथ विराजमान की गई मां लक्ष्मी, 150 सालों से चली आ रही आस्था की परंपरा। महाराष्ट्र के परिवारों में ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी इन दोनों मायकों में आती हैं, बेटियों के मायके आने की तरह ही किया जाता है मां गौरी का स्वागत। मां के आगमन पर घर में सुख समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है, पूरे परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, बनाए जाते हैं पकवान, लगाया जाता है भोग। कई परिवारों में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भी होता है आयोजन, महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर देती हैं मंगल कामनाएं, भावनापूर्वक विदा की जाती है देवी मां। देशभर में गणपति बापा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है जनसैलाब, 5वें दिन लालबाग चौराहा के दर्शन की अनोखी छटा, दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें। लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी साथ, लिया बापा का आशीर्वाद। गणेश गली के मुंबई के राजा के दरबार में भी दर्शन, अभिलाषियों की भीड़, पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई है सजावट, इस बार अपना 99वां साल मना रहा है गणेश गली गणेशोत्सव मंडल। प्रदेश द्वार पर स्थापित किया गया है विशाल गरुड़, उनके ऊपर विराजमान है संत तुकाराम की प्रतिमा, वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है इस बार का पंडाल। मुंबई के किंग सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल में सजा बापा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है GSB सेवा मंडल। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए गजानन 703 करोड़ रुपए का कराया गया है बीमा। गणपति के दर्शनों के लिए लगे भक्तों की लंबी कतारें, बच्चे जगह जगह बना रहे हैं रंग बिरंगी रंगोली। गजानन के दर्शन के बाद भक्तों के लिए यहां भंडारे का भी किया गया है आयोजन। इस बार अपना 72वां साल मना रहा है यह मंडल। नवसा पावंदरा विज्वचार राजा के रूप में भी जाने जाते हैं ये महागणपति, भक्तों की हर मनोकामना करते हैं पूरे। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बना गजानन का भव्य पंडाल, गणेश मंडप में नव वानर थीम से रामायण की झलक। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण की कई पहलुओं का भी सुंदर प्रदर्शन, जिसमें भगवान राम, भगवान हनुमान और वानर सेना को भी शामिल किया गया है। इस मंडप को टीआरटी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने किया है डिजाइन, भगवान गणेश को राम अवतार में दिखाना मकसद। शानदार सजावट में राम सेतु, लंका और वानर सेना के साथ भगवान राम की सेवा का सुंदर चित्रण, पंडाल की भव्यता देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध। पंडाल की सजावट को तैयार करने में लगभग 50 से 70 कलाकार हुए शामिल, दिन रात मिलकर करीब 15 दिनों तक चला इस पर काम। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर सजा भव्य गणेश पंडाल, 25 से 30 किलो सोना चांदी से हुआ बापा का दिव्य श्रृंगार, जड़े हैं करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड्स। गुजरात के सबसे महंगे गणेश रूप में प्रसिद्ध है यहाँ के बप्पा, करीब 30 साल पुरानी है बप्पा को राजसी गहनों से सजाने की परंपरा, बप्पा को राजा की तरह पूछते हैं भक्त। आभूषणों की कुल कीमत करोड़ों में है, गोल्डन गणेश के दर्शन के लिए देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालु, हीरा नगरी सूरत में चारों तरफ छाई गणेश उत्सव की भव्य रौनक। पंडाल में रोजाना सुबह शाम हो रही है भव्य महाआरती, मन्नत पूरे होने पर भक्त ने बप्पा को अर्पित किए चांदी के मूषक, श्रद्धालु श्रद्धा से चढ़ा रहे चांदी के छत्र छोटे घर। महिधरपुरा का गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, पंडाल की नकाशी देती है मैसूर पैलेस की असली झलक, बप्पा के मुकुट, बाजूबंद और हार की कारीगरी बेहद खास और आकर्षक। जालना में सजा विघ्नहर्ता का भव्य दरबार, मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर जालना के राजा के स्वर्ण चरण दर्शन का अवसर। नवसाला पर्यावरण गणपति यानी मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में भी जालना के राजा की विशेष पहचान है, बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त। चंद्रपुर के एक पंडाल में सिर पर सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गम्बूट्स और हाथों में औजार लिए नजर आए बप्पा का रूप, कोयला खदान कामगार को समर्पित है ये पंडाल। वडगांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने कोयला खदान में होने वाले उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य किया है साकार, दे रहे रूप बिजली बचाने का खास संदेश। बप्पा के जनों के दरबार में भक्तों की उमड़ रही है भीड़, गणपति का अनोखा रूप बन रहा है आकर्षण का मुख्य केंद्र। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बने आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ धाम। 21 फीट ऊंची चंद्रपुर के राजा की सुंदर प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल। विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप किया गया है साकार, मंदिर की नकाशी सजावट और भव्यता भक्तों को कर रही है आकर्षित। भगवान गणेश की प्रतिमा के ठीक ऊपर बनाई गई है भगवान जगन्नाथ की झांकी, जबकि बप्पा के दोनों ओर भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का 52वां वर्ष, बप्पा की मनमोहक प्रतिमा और आकर्षक सजावट को देखने के लिए जुट रही भक्तों की अपार भीड़। भिलाई में भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा पंडाल, अनोखी थीम लोगों को कर रही अपनी ओर आकर्षित। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की खास पहल, तारापीठ के मन्नत मंदिर की थीम पर पंडाल सजाया गया है, 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है ये गणपति पंडाल। 21 फीट ऊंचे गणेश प्रतिमा बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्रकृति और पक्षियों पर आधारित की गई है सजावट, पर्यावरण के अनुकूल चीजों से सजा पंडाल, सूखे पत्तों और पेड़ों की छाल का किया गया है इस्तेमाल। बांस से भी की गई है खास सजावट, मिट्टी की मटकियों ने बढ़ाई पंडाल की खूबसूरती, सूखे तालपत्र और कमल से सजी दीवारें, बेल फल के खोल भी सजावट में शामिल। कोलकाता के 50 कारीगरों ने विशेष तौर पर तैयार किया है यह भव्य पंडाल, आध्यात्मिक अनुभव के साथ पर्यावरण का भी संदेश, भक्ति संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम। अमरावती में दिखा भव्य आध्यात्मिक नजारा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पे सजा गणपति पंडाल, रथ यात्रा की झांकी के दोनों ओर बनाई गई है मंदिर नुमा रचनाएं, एक मंदिर में गणपति बप्पा तो दूसरे में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित। भक्तों को एक ही जगह पर हो रहे हैं गणपति बाप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन, उस अनोखे पंडाल को देखने उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। पुणे के भक्तों और पर्यटकों का मन मोह रही है बप्पा की अनोखी मूर्ति, 21,000 पानीपुरी से हुआ है प्रतिमा का निर्माण। इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीर खींचने के लिए भक्तों की भीड़, इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति की श्रेणी में ये एक नायाब प्रयोग। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नवीन ने किए दर्शन, भस्म आरती में शामिल। तिरुपति पहुंचे राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तिरुमाला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रार्थना की। राज्यपाल ने ब्रह्मोत्सव के दौरान आयोजित प्रसिद्ध मुथुप्पु पंदरीवाहन सेवा में भी हिस्सा लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। अलवर में उज्जैन के महाराज, राजस्थान के लोक देवता बाबा मेला शुरू, आसपास के राज्य से आए लाखों श्रद्धालु। धार्मिक मेले के शुरू होते ही भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधाओं का खास ख्याल रख रहा है प्रशासन। मान्यता है कि अरावली की वादियों के बीच महाराजा ने की थी तपस्या और यहीं ली थी उन्होंने समाधि। कश्मीर के गांधरबल जिले में आज दो दिन ही हरमुख गंगबल यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार के लोगों को घर आने जाने में होगी इससे काफी आसानी। रेलवे का 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला। इन ट्रेनों से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की तरफ से यूपी बिहार आने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। रेलवे की तरफ से सैलानियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। IRCTC लॉन्च कर रहा है हिमालयन ब्लिस धर्मशाला खजियार विद गोल्डन टेम्पल हवाई टूर पैकेज। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा 6 रात और 7 दिन का एक खास पैकेज। 53,500 प्रति व्यक्ति से शुरू है इसकी कीमत। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी आई सामने। जनता के लिए खुला देश का पहला और दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड। 10,600 फीट पे खुला है ये ट्विन फ्लावर फील्ड। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है ये सुंदर गार्डन। गार्डन में दिखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार, जिसमें 24 लाख लिली और 1 लाख ग्लैडियोलस शामिल। रिकॉर्ड 2 महीने में तैयार किया गया है ये उद्यान। शोगल मसर में 16 जुलाई को शुरू हुआ ये पौधे लगाने का काम और सितंबर के पहले हफ्ते में पहली बार खिले फूल। फूलों की खेती के जरिए कृषि में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना है इस पहल का मुख्य उद्देश्य। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल की हुई शुरुआत। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लाइनें लगी। आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में सुबह एप्पल स्टोर खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजा के ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली नई NCR के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब का क्रेज देखने को मिला। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर भी सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी। लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का कर रहे इंतजार। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में भी देखने को मिले नए आईफोन के लिए दीवानगी। भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने भी किए थे खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से सामने आई गुड न्यूज। मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश में कल से नौकरियों का महाअभियान, 19 सितंबर से शुरू होगी 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कल बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है लक्ष्य। शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी। दिल्ली NCR की बिगड़ती हवा के बीच आज लखनऊ में बड़ी बैठक। केंद्र और यूपी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की करेगी समीक्षा। मेरठ के आसमान में 19 से 20 सितंबर को दिखेगा सूर्य किरण का रोमांच। 9 हॉक विमानों के साथ होगा एयर शो। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ के सफेद चादर। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की परत। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाइन घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। राजस्थान के 12 में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान। बरसाती नाले में फंसे 2 संतों का किया गया सफल रेस्क्यू। भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी। महाराष्ट्र बीड जिले में डेढ़ महीने के सूखे के बाद कड़कते बिजली के साथ बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। जूनागढ़ के खाड़िया रोड पर एक साथ 6 शेर सड़क पार करते हुए नजर आए, शेरों की इस चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन ने सेमीफाइनल में की एंट्री, जापान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में खत्म किया मैच। जापान के 57 रनों के जवाब में महज 5 ओवर में बनाए 59 रन, शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में खेली नाबाद 40 रनों की धुआंधार पारी। श्री चंडी ने झटके 4 विकेट, टॉस जीत गए भारत ने दिया था जापान को पहले बल्लेबाजी का न्योता। तीसरे T20 में अफगानिस्तान को 127 रन से हरा के टीम इंडिया ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जड़ा सबसे तेज शतक, 34 गेंदों में 108 रनों की खेली तूफानी पारी। संजू सैमसन ने भी खेली धमाकेदार अर्धशतकीय पारी बनाई शानदार 50 रन, अभिषेक संजू के बीच हुई 142 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज आई सामने, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% की बढ़ोतरी, 12.12 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुरू की नशा मुक्त पंजाब यात्रा। पंजाब में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये यात्रा, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है इसका मकसद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलुरु में सम्मान समारोह में की शिरकत, मुख्यमंत्री ने डीसी ऑफिस में पौधा भी लगाया। मराठी फिल्म गोंधल होगी 99वें अकेडमी अवार्ड में भारत की ऑफिशियल एंट्री, ऑस्कर में एंट्री की रेस में 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर रिलीज, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। फिल्म प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। लव रंजन की नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, 23 अक्टूबर को रिलीज हो गई है फिल्म। म्यूजिकल लव स्टोरी मैं ना रहा मेरा का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस डीवा 2022 रह चुकी नई कलाकार देविता राय आएंगी नजर। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार निभाएंगे रश्मिका मंदाना, भारतीय सिनेमा की महान सिंगर एमएस सुबुलक्ष्मी की बायोपिक में बनेंगी अम्मा। लंदन फैशन वीक में एग्रो स्टूडियो का जलवा, पहले दिन पेश हुआ ग्लास बॉडी कलेक्शन, कलेक्शन में देखा ग्लास का शानदार इस्तेमाल। रिफ्लेक्टेड लाइट ने बढ़ाई डिजाइन की चमक, कॉर्सेट और शॉर्ट सिल्हूट बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, ग्लास बॉडी को भूमिगत कंक्रीट स्पेस में दिखाया गया। चमकती लाइटों ने रनवे को खास बनाया, आर पार दिखने वाले पैनल रहे खास आकर्षण का केंद्र, 4 बालकनियों से कैटवॉक का दिखा नजारा। ईस्ट लंदन लेबल ने पेश किया नया अंदाज, कॉर्सेट से स्पोर्ट्स वियर तक दिखा फैशन का मेला, को एड कलेक्शन में पुरुष और महिला लुक शामिल। अर्बन मिलेनियम से मिली कलेक्शन को प्रेरणा, सॉफ्ट क्लब एरा का भी दिखा प्रभाव, ग्लास और रोशनी ने लुक बनाया अनोखा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: ईरानी राष्ट्रपति हुए सनातन के दीवाने, ईरान के राष्ट्रपति ने छुए धर्म गुरु के पैर, रोबोट हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, एआई रोबोट लैब से भागा, भक्ति की सबसे मासूम तस्वीर, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल, देखिए सरगम के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: जिन चीन की स्मार्टफोन कंपनियों का डंका पूरी दुनिया में बजता है, उसी चीन की राजधानी बीजिंग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे हुआई, ज़ियोमी और दूसरे घरेलू कंपनियों के स्मार्टफोन का दुनिया भर में दबदबा है। वहां एप्पल के नए आईफोन के लिए ऐसी दीवानगी देखने को मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कोई नए ग्लेशियर कलर का दीवाना नजर आया, तो कोई नए चिप की दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस कैमरा फीचर्स के चलते घंटों तक लाइन में खड़ा हुआ नजर आया।
2: जिस चीनी मोबाइल कंपनियों का दुनिया भर में बोलबाला है, उस चीन की राजधानी में ये लाइन आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए लगी है। किसी को नए फोन का ग्लेशियर कलर खींच लाया है, तो कोई नए फोन के डायनेमिक आइसलैंड का दीवाना है, तो वहीं कुछ लोग आईफोन 18 का कैमरा और वीडियो क्वालिटी के चलते यहाँ पहुँचे हैं। आज मैं खास तौर पर आईफोन 18 प्रो मैक्स का ग्लेशियर कलर खरीदने आया था। काफी समय से इसे लेने की कोशिश कर रहा था और आज आखिरकार मुझे मिल गया। पिछले मॉडल के मुकाबले इसमें कैमरा और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा सुधार हुआ है। जाहिर है दुनिया भर में आईफोन को लेकर केवल क्रेज ही नहीं है, बल्कि एप्पल के नए फीचर्स ने उसे चाहने वालों में काफी उम्मीद जगाई है। सोशल मीडिया पर आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के पॉजिटिव रिव्यू ने भी लोगों के क्रेज को कई गुना बढ़ाया है। चीन के इस स्टोर में पहुंचे यूजर्स का कहना है कि उन्होंने तमाम रिव्यूज के बाद ही नया आईफोन खरीदने का मन बनाया है। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे इस साल की नए आईफोन को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं था। इसका नया डिजाइन और वेरिएबल अपर्चर जैसे फीचर्स मेरे जैसे आम यूजर के लिए शायद ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं इसके रिव्यू देख रहा था, मुझे पता चला कि नए चिप की परफॉर्मेंस में काफी बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन सवाल है कि चीन में आईफोन की इतनी डिमांड आखिर क्यों है, वो भी तब जब चीन में घरेलू कंपनियां पहले से ही स्मार्टफोन बाजार में एप्पल को कड़ी टक्कर दे रही हैं। दरअसल भारत की तरह चीन में भी एक तबका आईफोन को प्रीमियम लाइफस्टाइल से जोड़कर देखता है। चीन के लोग एप्पल के आईओएस यूजर इंटरफेस और इसकी सिक्योरिटी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में लॉन्च के दिन एप्पल स्टोर के बाहर दिखी भीड़ इस बात का सबूत है कि प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल की ब्रांड अपील चीन में अब भी मजबूत है। यानी आईफोन 18 की लॉन्चिंग पर चीन में दिखा यह क्रेज सिर्फ नए फोन को लेकर उत्साह की तस्वीर भर नहीं है, बल्कि यह एप्पल के लिए चीन जैसे बेहद अहम बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती, कोशिश और सफलता की जीती जागती तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। देखिए, इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक जो हैं वो अपने वीडियोस भेज रहे हैं, तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। पहली तस्वीर मुंबई के जेबी नगर से है, जहां से रुद्रा सिंह ने गणेश उत्सव की शानदार तस्वीर हमें भेजी है। एक थीम के साथ सचा बप्पा का दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसमें ग्रामीण परिवेश को बड़े ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ ही क्रिकेट का बैट हाथों में थामे भगवान गजानन को स्थापित किया गया है। साथ ही मोदक का टोकरा सिर पर धारण किए मूषक को भी दिखाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है। यहां से अनीका ने उत्सव की मनमोहक तस्वीरें हमारे साथ शेयर की हैं। चार भुजाओं वाले भगवान गणेश भक्तों को अभय का वरदान देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बप्पा को खूबसूरत फूलों की माला भी पहनाई गई है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारीबाजी 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। एचएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडल, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों से की गई सजावट। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चर्नी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब।
2: मारुति
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और प्रयागराज तक गणपति उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है 66 किलो सोने से सजे बप्पा का 703 करोड़ का बीमा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में हर गली, हर मोहल्ले और हर इलाके में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पंडालों की भव्यता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं।

0: बप्पा का ये दिव्य स्वरूप ऐसा कि देखते ही नजरें ठहर जाएं। सोने की चमक, चांदी की भव्यता और ऐसी अलौकिक आभा कि हर कोई बस निहारता रह जाए। बप्पा के कान से लेकर चरण सोने से चमक रहे हैं, गले में हार से लेकर बप्पा का हाथ और मोदक सोने से बना है। ये तस्वीरें मुंबई के प्रतिष्ठित GSB गणपति की है, जहां हर साल की तरह इस बार भी बप्पा का दरबार भव्यता और आस्था का अद्भुत संगम बना हुआ है। GSB सेवा मंडल के गणपति को देश के सबसे महंगे गणेश मंडलों में माना जाता है। यहाँ बप्पा का श्रृंगार भी अपने आप में खास है। गणेश जी को 66 किलोग्राम से ज्यादा शुद्ध सोने और करीब 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। और खास बात है कि गणपति की प्रतिमा और आभूषणों का 703 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया है। यही वजह है कि GSB गणपति का नाम देश के सबसे चर्चित और सबसे महंगे गणेश उत्सवों में शुमार है।
1: ये देखिए, मैं मौजूद हूँ GSB सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: सोने में सजे बप्पा की ऐसी एक खूबसूरत तस्वीर सूरत के महिधरपुरा से आई है, जहाँ मैसूर पैलेस की थीम पर भव्य डालिया शेरी गणपति पंडाल तैयार किया गया है। ये गोल्डन गणेश है जिनके सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं।
2: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं।
0: डालिया शेरी के गणपति बप्पा को सूरत के राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल करीब 25 से 30 किलो के सोना, चांदी और अमेरिकी डायमंड से भगवान गजानन सजाए गए हैं। बप्पा का मुकुट, हाथ, पैर, ये सभी सोने चांदी से बनाया गया है। यहाँ तक कि उनके नीचे लगाई गई गणपति महाराज का छोटा स्वरूप भी सोना, चांदी और हीरे से तैयार किया गया है।
3: ये पिछले 30 साल से लगाए थे, ये जो श्रृंगार आप देख रहे हैं वो पिछले 30 साल से है, तो इसकी जो कीमत है वो आप अंदाज लगा सकते हैं। पिछले 30 साल से और इस साल बहुत कंपेयर हो सकता है।
0: इस साल महाराष्ट्र के जालना में लालबाग के राजा की तरह ही पहली बार गणपति बप्पा की मूर्ति पर स्वर्ण चरण स्थापित किए गए हैं। जालना और मराठवाड़ा के कई श्रद्धालु मुंबई जाकर लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को जालना में ही लालबाग के राजा की तर्ज पर स्वर्ण चरण दर्शन का लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है।
4: जालना से मुंबई के लिए लालबाग के राजा के लिए जो दर्शन होना पॉसिबल नहीं है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए अपन ने जालना के राजा, जालना के अंदर श्री जालना का राजा बजरंग गणेश मंडल के अंदर स्वर्ण चरण दर्शन 2026 में बनाया है, और इसका दर्शन का लाभ जानने कर ले रहे।
0: वैसे बप्पा केवल सोने चांदी से नहीं चमक रहे, बल्कि तकनीक की चमक भी पंडाल में देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में इन दिनों आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ बप्पा का पंडाल जगन्नाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ बप्पा को जगन्नाथ जैसे भव्य रथ में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। इस साल चंद्रपुर करों के आकर्षण का केंद्र बने हैं चंद्रपुर के राजा। बप्पा के दरबार में जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर में केवल ये ही नहीं, एक से बढ़कर एक पंडाल भव्य तौर पर सजाए सवारे जा रहे हैं। वडगांव में सजे गणपति पंडाल में इस बार बप्पा सिर्फ आशीर्वाद देते नजर नहीं आ रहे, बल्कि मेहनत, श्रम और संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। वडगांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का ऐसा दृश्य तैयार किया है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो श्रद्धालु खुद खदान के भीतर पहुंच गए हों। झांकी में भगवान गणेश को कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। कहीं बप्पा खदान में काम करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं कोयला निकालने की पूरी प्रक्रिया को बेहद आकर्षक अंदाज में दर्शाया गया है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, जालना से गौरव साली, अमरावती से धनंजय साबले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और उत्तरकाशी में माँ गंगा का मायका कहलाता है मुखबा गांव। ये गांव माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास भी है और इसी जगह पर सोमेश्वर देवता का पारंपरिक सेलकू मेला लगा हुआ है, जहां पर रात भर लोग गीतों की गूंज सुनाई देती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है माँ गंगा के मायके मुखबा में आस्था परंपरा का सेलकू पर्व। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मां गंगा के मायके मुखबा गांव में आस्था और परंपरा का सेलकू मेला लगता है। ये पर्व क्षेत्र की समृद्धि, लोक संस्कृति, आस्था और पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। भगवान सोमेश्वर देवता की अगुवाई में ग्रामीण मुख्यालय से ब्रह्म कमल, केदारपत्ती और भोजपत्र सहित पवित्र सामग्री लेकर आते हैं। इसके बाद सोमेश्वर देवता और माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना कर माँ गंगा के प्रांगण में भव्य धार्मिक आयोजन किया जाता है। इस दौरान ध्यानी समारोह भी बेहद धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजी ध्यानियों यानी कि विवाहित महिलाओं और पुरुषों ने रासो तांदी नृत्य कर मेले में पहाड़ी संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। तो वहीं इसी दौरान ग्रामीणों के साथ दूर दराज के गांव से पहुंचे लोगों ने देव डोलियों का भी स्वागत किया। प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में व्यापार करने के बाद जब ग्रामीण अपने गांव वापस लौटते थे, तब इस खुशी में छिलको यानी कि मशाल की रोशनी में पारंपरिक नृत्य ये पर्व मनाते थे। मुखबा समेत करीब 8 गांव हैं जिनमें रहने वाले लोगों का ये विश्वास है कि देवताओं की पूजा अर्चना और आशीर्वाद से क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली और नई फसल का आशीर्वाद मिलता है।
6: इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि जब यहाँ परिक्रमण हुआ था सीमा का, उस समय जो हमारे कुछ लोग गए थे और उन्होंने अपने भारत का जो हमारा गोर है वहाँ तक उनको उठाया, उन्हें सब लेट हो गई थी आते हैं। कुछ लोग यहाँ से गए कि अरे बहुत लेट हो गई और लोग आए नहीं, कोई उनके साथ ऐसी कोई घटना न घट जाए, समय सुचिता ने कहा सब ठीक होगा। तो जब लोग गए तो उनके पास जगह हुए झुलके थे हाथ में लेकर के, जब उन्हें सब लोग संपन्न मिले उसके बाद उन लोगों ने जो है उससे आग से खेलने लगे और आग के वो गोले बना करके उस दिन से वे घूमते परंपरा पड़ी है, ऐसा भी हमने सुना।
5: जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला में आज से हरमुख गंगबल यात्रा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शुरू हुई। 2 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। वो है हरमुख की गोद में बसी गंगबल झील के लिए यात्रा शुरू। आपको बता दें कि कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक बार फिर से आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ के गांदरबल जिले में हर साल होने वाली हरमुख गंगबल यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कंगन के नारनाग से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारनाग से निकलने के बाद श्रद्धालुओं का कारवा हरमुख पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। करीब 15 किलोमीटर का पहाड़ी ट्रैक तय कर भक्त गंगबल झील तक पहुंचेंगे। ये झील समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि कश्मीर की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का भी हिस्सा है। श्रद्धालु नारनाग मंदिर में छड़ी पूजा के बाद यात्रा शुरू करते हैं। गंगबल को कश्मीरी हिंदू परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है और इसे हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सालों से चली आ रही ये ऐतिहासिक यात्रा कश्मीरी पंडितों में बेहद लोकप्रिय है और इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग गांदरबल पहुंचते हैं।
7: 18th एनुअल गंगबल यात्रा थी जो तहसील कंगन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल नारनाग जो यहाँ जो प्राचीन मंदिर है जो किंग ललिता द्वितीय के टाइम से कारकोटा डायनेस्टी के टाइम से है, जो बेस के हरमुख गंगबल यात्रा का है जो कैलाश ऑफ कश्मीर है। आज ये 18वीं यात्रा जो करीबन 14,000 फीट के ऊपर चली जाएगी और कल 19 तारीख को गंगाष्टमी है जहाँ पिंडदान श्राद्ध करेंगे वहाँ पे, और इसकी महिमा इसकी गरिमा वही है जो हरिद्वार का है। तो जिसमें आज भारत के काफ़ी जो हिस्सों से जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं और इस यात्रा को हमने 2009 में रिवाइव किया था और इसका जो ऑर्गेनाइज करता हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट, तो हर साल करते और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया और IGP कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जो आर्मी और जो अपने किलो फोर्स के जो के कंट्रोल में है ये एरिया और किलो फोर्स और जो जम्मू कश्मीर पुलिस, तो उन्होंने यहाँ इसको फ्लैग ऑफ किया। सिक्योरिटी व्यवस्था और जो बाकी चीज़ें हैं पूरा बंदोबस्त है और खाने पीने का भी जो ट्रस्ट करता है अरेंजमेंट सारे बहुत अच्छे हैं और सुरक्षा भी कड़ी है और कल हमारी पूजा वहाँ है और 20 तारीख को हम नीचे आ जाएंगे।
5: गुजरात के सुरेंद्रनगर में तरनेतर मेले में एक लड्डू कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें कुल 28 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस दिलचस्प कंपटीशन में बलवंत भाई राघवानी ने 30 मिनट में 28 लड्डू खाकर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 30 मिनट में 28 लड्डू खाने का रिकॉर्ड। जी हाँ, झालावाड़ की लोक संस्कृति से जुड़े इस अनोखे लड्डू कॉम्पिटिशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस प्रतियोगिता में 25 से 75 साल के 28 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक सभी प्रतियोगियों को 30 मिनट में दाल और चीनी लगे बेसन के लड्डू खाने थे। शुरुआती 15 मिनट में कई प्रतियोगी एवरेज 15 लड्डू खाकर कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, जबकि आखिरी फेज में 5 प्रतियोगितों में

राघवानी ने 30 मिनट में 28 लड्डू खाकर पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक सिर्फ एक ही विजेता घोषित किया जा सका और उसे 2000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। लद्दाख के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच अब रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। लेह के चोगलमसर और स्टकना में करीब 40 एकड़ में तैयार किए गए दो फ्लावर गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा फूलों का बाग। जी हां, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस गार्डन का उद्घाटन किया। लगभग 10,600 फीट की ऊंचाई पर बने इस गार्डन में 25 लाख से अधिक फूल लगाए गए हैं, जिनमें 24 लाख से ज्यादा लिली और करीब 1 लाख ग्लैडियोरस शामिल हैं।

0: लद्दाख,
1: जहां आसमान छूते पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं हैं और प्रकृति की अनोखी दुनिया तो है ही। अब इसी लद्दाख की पहचान में फूलों के रंग भी जुड़ने जा रहे हैं। लेह के चोगल मसर और स्टकना में 10,600 फीट की ऊंचाई पर फूलों की घाटी तैयार की गई है। यहाँ 24 लाख लिलियम और करीब 1 लाख ग्लैडियोलस लगाए गए हैं, यानी 40 एकड़ में फैले इस फूलों के संसार में चारों तरफ रंग और खुशबू का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है।
2: लद्दाख को सर्द रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर बहुत कम फूल, फसल और सब्जियां उगती हैं, वो भी साल के मात्र 3 महीनों के दौरान। इस बीच लद्दाख प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। लद्दाख में लेह में पहला फ्लावर गार्डन जो है वो बनाया गया है।
1: लद्दाख के किसानों के लिए फूलों की खेती को कमाई का नया जरिया बनाने की तैयारी है। लिली जैसे हाई वैल्यू फूलों की बाजार में अच्छी मांग है। थोक बाजार में एक लिलियम स्टिक की कीमत करीब 60 से 70 रुपए तक होती है, यानी पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने का जरिया बन सकती है।
3: यहाँ चोगलमसर और स्टकना में 2 फ्लावर फील्ड्स को डेवलप किया गया है। लेह में इसमें लगभग 2.5 मिलियन फ्लावर बर्ड्स को लगाया गया है, यानी कि करीब 25 लाख फ्लावर बर्ड्स को लगाया गया है। और आज ये फ्लावर फील्ड्स तैयार हो गई हैं, यहाँ पर फूल खिलना शुरू हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब देश और विदेश के मार्केट में हमारे लद्दाख के फ्लावर्स जो है आपको दिखाई देने लगेंगे। हमने यहाँ पर लोकल कोऑपरेटिव को बनाया है, यहाँ के लोकल किसानों को ट्रेंड किया है जो फ्लोरिकल्चर में आगे आए हैं, और यही किसान इसकी मार्केटिंग भी करेंगे।
1: चोगल मसर का फ्लावर पार्क आगे चलकर डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर भी काम करेगा, जहाँ किसानों और युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती, आधुनिक तकनीक और फसल के बाद फूलों के बेहतर प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
2: इस फ्लावर गार्डन में वो फूल उगाए जा रहे हैं जो हाई आल्टीट्यूड में उग पाते हैं, और लद्दाख के शहर लेह में इस फ्लावर गार्डन ने न सिर्फ तस्वीर बदल दी है बल्कि आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण बन रहा है।
1: पहले साल कृषि विभाग फूलों के खेत को विकसित करेगा। फूल खिलने के समय से चयनित स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को सौंपा जाएगा, और आगे चलकर यही समूह व्यावसायिक स्तर पर फूलों की खेती, कटाई और वैल्यू एडिशन करेंगे। खास बात यह है कि लेह चोगल मसर में महज 2 महीने में फूलों का यह खेत तैयार किया गया। 16 जुलाई से यहां पौधारोपण शुरू हुआ और सितंबर के पहले हफ्ते में ही फूल खिलने लगे। वहीं स्टकना में करीब 14 लाख लिलियम लगाए गए हैं, जहां अक्टूबर के आखिर तक फूलों के खिलने की उम्मीद है। लेकिन यह पहल सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, ये उस बदलाव की कोशिश है जहां पहाड़ों की ऊंचाई के साथ किसानों के सपनों और कमाई को ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और आईफोन को लेकर देश में कितनी दीवानगी है, इसकी वानगी आज उस समय दिखाई दी जब बड़ी संख्या में लोग आईफोन के नए फोन खरीदने पहुंचे। आज से एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू हो गई है, और इस फोन को लेने के लिए

लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है एप्पल के फोन के लिए दीवानगी। जी हाँ, दिल्ली, नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का स्वागत किया।

0: दीवानगी नहीं तो और क्या है, आईफोन लेकर ये लोगों का क्रेज नहीं तो और क्या है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, शहर अलग अलग, लेकिन सभी शहरों से आ रही तस्वीरें आईफोन लवर्स की दीवानगी को बयां कर रही थी। एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से देश में शुरू हो गई है, जिसे पहले पहल खरीदने की होड़ इस कदर लगी है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
1: कीमतों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया की खूबसूरत बात यही है कि आपको ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे आपको फुल कैश, इतने सारे फाइनेंसेस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक लोग इतना ज्यादा कंसर्न भी होंगे, वो सेंटिमेंट वही लेके आ रहे हैं कि मुझे तो आईफोन लेना ही लेना है। और कलर्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि उनको बर्गंडी कलर बहुत पसंद आ रहा है।
0: दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में देर शाम से ही ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। रात होते होते लोगों ने एप्पल स्टोर के बाहर कतार लगा ली। एप्पल स्टोर ने बाहर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम कर रखा था।
2: मेरे को फोनों में बहुत इंटरेस्ट है, हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है जो 40,000 रूपए बढ़ाए हैं।
0: iPhone 18 के ये दोनों मॉडल लेटेस्ट जनरेशन A20 Pro चिपसेट से लैस हैं और इनमें कंपनी का नया इनहाउस C2 मॉडेम भी है। इस बार के प्रो मॉडल्स में बेहतर बैटरी लाइफ भी देखने को मिल रही है, जहां iPhone 18 Pro में इस बार 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, वहीं 18 Pro Max में 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। दोनों ही डिवाइस में गर्मी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नए वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे हैवी टास्क के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। iPhone 18 Pro में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है, जबकि iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। ये दोनों फोन 4 कलर ऑप्शन डीप ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर ब्लू और बर्गेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किए गए हैं। दोनों ही डिवाइसेस 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध हैं। iPhone 18 Pro की कीमत 1,64,900 रूपए से शुरू होती है, जबकि iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,79,900 रूपए से शुरू होती है। भारत में एप्पल आईफोन का क्रेज लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी तस्दीक दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु समेत भारत के तमाम शहरों से आ रही तस्वीरें कर रही हैं। कल तक खास लोगों तक पहुंच रखने वाले आईफोन अब आम लोगों की जद में भी आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 70% से ज्यादा आईफोन आसान फाइनेंस और ईएमआई विकल्पों के जरिए खरीदे जाते हैं, जिससे आम लोग भी इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं। दिल्ली से अमित और साइरस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दुनिया में युद्ध के हालात के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सौंप दिया है। इससे भारतीय पायलट देश में बने विमानों पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। ऐसे में आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है देश के पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट से IAF को ताकत। जी हाँ, HAL ने इसके अलावा प्राइवेट कंपनी पवन हंस को भी ध्रुव हेलीकॉप्टर की खेप सौंपी है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल VVIP ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस और हेली सेवाओं के लिए किया जाएगा।
4: भारत ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता की दिशा में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 3 स्वदेशी विमान तैयार किए हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना और पवन हंस को सौंपा गया है। इन विमानों के मिलने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होगा। HAL ने भारतीय वायुसेना को HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पहला बैच सौंप दिया है। इस बैच में कुल 3 विमान शामिल हैं। इनमें 2 विमान बेंगलुरु में और 1 विमान नासिक में तैयार किया गया है। ये विमान फिलहाल इस्तेमाल हो रहे स्विट्जरलैंड में बने पिलाटस ट्रेनर विमानों को चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करेगा।
5: भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब देश में बना स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 मिलने जा रहा है। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट का पहला बैच भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। और सबसे खास बात, अभी तक भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, लड़ाकू विमान पायलट हैं, उन्हें विदेशी विमान पिलाटस पर बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उन्हें जो लड़ाकू विमान है वो उड़ाने का मौका मिलता है। लेकिन अब ये पहला HAL ने तैयार किया है स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 जो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान पायलट हैं उन्हें ट्रेनिंग देगा।
4: HTT-40 की सप्लाई मार्च 2023 में हुए 6,838 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इस समझौते के तहत HAL को भारतीय वायुसेना के लिए कुल 70 HTT-40 विमान तैयार करने हैं। ये विमान वायुसेना के पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया है। HTT-40 में आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। इसके अलावा इसमें 00 इजेक्शन शीट दी गई है जो किसी भी ऊंचाई और गति पर पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने की सुविधा देती है।
6: ऑल द 3 डिविजन्स वी आर प्लानिंग, लाइक बेंगलोर में 8+8 दो डिविजन है, 8+8 नासिक में मे बी नेक्स्ट ईयर 8 हो जाएगा, सो 24 प्राइवेट वेंडर्स आर डूइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट सेंटर रेयर एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड, सो उधर भी मेरे को स्ट्रक्चर्स मिलेगा, सो वी शुड बी एबल टू डू मोर देन 24 पर ईयर फॉर मे बी आफ्टर 1.5 ईयर।
4: HAL का दूसरा विमान LCA-FOC ट्रेनर है। ये तेजस MQ-1 लड़ाकू विमान का 2 सीटों वाला ट्रेनर वर्जन है। इन विमानों को सौंपे जाने के साथ ही साल 2006 और 2010 में HAL को दिए गए कुल 40 तेजस MQ-1 विमानों का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। HAL के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सिविल सर्टिफाइड वर्जन ध्रुव NG को भी आज हैंडओवर किया गया है। हेलीकॉप्टर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से सर्टिफिकेशन मिल गया है। मुख्य रूप से सैन्य वेरिएंट पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सिविल हेलीकॉप्टर बाजार में ध्रुव NG हेलीकॉप्टर को पेश करना HAL की वापसी का प्रतीक है। ध्रुव NG को VVIP ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस और हेली सेवाओं सहित अन्य भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है।
5: इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो VIP मूवमेंट के लिए, यानी कि चुनाव रैली हो या बाकी जगह इस्तेमाल हो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दूर दराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही में इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके कॉकपिट को हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ये आधुनिक कॉकपिट है और कितने लोग इसमें आ सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये 11 पैसेंजर्स में एक बार में सवार हो सकते हैं। उसके अलावा 2 पायलट और को पायलट के लिए 2 सीटें अलग हैं।
4: ध्रुव के शामिल होने से उड़ान योजना के तहत देश में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और भारत के सिविल हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम को विकसित करने की पहल को भी मदद मिलेगी। मंजीत नेगी, बेंगलुरु, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सूरज लोधी ने हमें गणेश उत्सव की तस्वीरें भेजी है। यहां शानदार पंडाल में बापा की मनमोहक प्रतिमा को स्थापित किया गया है, फूलों से भगवान गजानन का श्रृंगार किया गया है और रंग बिरंगी लाइट्स भक्ति के इस माहौल का और भव्य बना रही है। वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा से वीना और दीपिका ने भेजी है। गणपति बप्पा अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं।
7: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंदल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन।
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
14: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक।
4: तो देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। इसका नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं और इन्हें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक धर्म गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और अस्पताल के एक लैब से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुए कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छू लिए। देखते ही देखते ये क्लिप हर जगह ट्रेंड करने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
14: सोशल मीडिया पर यह वीडियो स्क्रॉल करते ही सबकी नजरें थम गई। दावा था कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर है। ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के पैर छुए। रील्स और पोस्ट में से लेकर गजब का सस्पेंस बन गया। वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैरों के पास झुकते नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग सनातन धर्म की ताकत बताकर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैर के पास झुकते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के चरण स्पर्श किए। इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये समझ आया कि वीडियो को एक खास एंगल से ही दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में ईरानी राष्ट्रपति ने एक हिंदू धर्म गुरु का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। वीडियो में एक कागज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर मौजूद एक व्यक्ति इस कागज को ईरानी राष्ट्रपति को दे रहे हैं और हो सकता है इसी दौरान कुछ नीचे गिर गया है और उसे उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति झुके हैं। लेकिन कैमरे का एंगल ही ऐसा है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति आशीर्वाद लेने के लिए झुके हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति के साथ खड़े संत के बारे में हमने खोजबीन की। पड़ताल के दौरान ये पता चला कि ईरानी राष्ट्रपति जिस हिंदू गुरु के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं उनका नाम जगत गुरु स्वामी
8: सतीशाचार्य जी महाराज है और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित कल्याणपुर के प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ईरानी राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे थे। इसके बारे में हमने लगातार सर्च भी किया और इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि हाल ही में दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारतीय धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दौरान वहां स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो देखिए, हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए तो इसकी चर्चा जो है हर जगह क्यों नहीं हुई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों में जानकारी सामने क्यों नहीं आई। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर एक खास एंगल से शूट कर दिए वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा।
14: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर इस घटना से संबंधित वीडियो मिला। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू धर्म गुरु और ईरानी राष्ट्रपति दोनों को जमीन पर झुकते हुए देखा जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पुजारी का पैर छूने के लिए नहीं बल्कि एक पेन को उठाने के लिए नीचे झुके थे। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि पेन के जमीन पर गिरने के बाद पुजारी भी उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे। इस जानकारी के आधार पर गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने फेसबुक पेज पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया और कार्यक्रम को कवर कर रहे पत्रकार हुसैन मेहदी से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना याकूब अब्बास और आचार्य लोकेश मुनि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कुछ दस्तावेज दे रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने विनम्रता पूर्वक उन दस्तावेजों को झुककर उठा लिया। इसके बाद हमने आचार्य लोकेश मुनि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। इस दौरान हमें उनके फेसबुक पेज पर एक तस्वीर मिली जिसमें वे ईरान के राष्ट्रपति को एक दस्तावेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिल्ली ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ हुई बातचीत पर जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, दुनिया की नजरें भारत पर है। मैंने ईरान के राष्ट्रपति को ईरान में अपनी तरह का पहला शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नेताओं के तौर पर हमारा मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर मुद्दे को बातचीत, संवाद और शांति की कोशिशों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द धार्मिक नेता और दुनिया भर की शांति पसंद ताकतें एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हम बातचीत और चर्चा के जरिए दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आचार्य लोकेश मुनि से फोन पर संपर्क किया और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के पैर नहीं छुए थे। लोकेश मुनि ने बताया कि जब वे ईरानी राष्ट्रपति को पत्रिका और कुछ दस्तावेज दे रहे थे तो उनमें से एक दस्तावेज जमीन पर गिर गया जिसे ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मान पूर्वक नीचे झुककर उठाया था। हमारी जांच से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा हिंदू धर्म गुरु के पैर छूने का दावा बिल्कुल गलत है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे हैं कि एआई टेक्निक इंसानों पर ही भारी पड़ने लगी है। अमेरिका के एक अस्पताल की लैब से एआई टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखें।

0: क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर अपने फैसले खुद लेने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ह्यूमनाइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रोबोट के पीछे पुलिस के जवान को भी भागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया। इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी। अमेरिका के एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर। जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि AI टेक्निक इंसानों पर अब भारी पड़ने लगी है। अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बना रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगा। वीडियो में रोबोट डॉक्टर जैसी ड्रेस पहने अस्पताल से बाहर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोबोट लैब से बाहर कैसे निकला और क्या ये AI तकनीक से बढ़ते स्वायत्त फैसलों का संकेत है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहा दावा सही है या गलत ये जानना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है या फिर लोगों को दिखाया जाता है वो सही है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे परखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे दावे पर शक जरूर हुआ। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वीडियो में एक एम्बुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है रनलैंड। ये हमें काफी ज्यादा अटपटा लगा। इसके अलावा सड़क पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि रोबोट ने खुद फैसले लेते हुए अमेरिका के किसी अस्पताल के लैब से भागने का कदम उठाया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी मीडिया आउटलेट या फिर किसी स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? वीडियो में कई जगह फ्रेम मिसमैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। अचानक से एक पुलिस वाला रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर रोबोट के पीछे कुछ और पुलिस वाले दिखने लगते हैं, कि हमें गड़बड़ लगा। लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है?
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक टिकटॉक अकाउंट मिला जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है। वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था। यह इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है, यानी साफ है कि यह असली वीडियो नहीं है, इसे AI से बनाया गया है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते 2 महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए। अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान एंथ्रोपिक के माइथोस 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई चेन हमला करने की कोशिश की। AI एजेंट ने फेक ID बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे, लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया। इस साल जुलाई में भी खबर आई थी कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने हगिंग फेस नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेल लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। OpenAI ने इस घटना को एक सचेत करने वाली चेतावनी बताया और माना कि उनके मॉडल सब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है, इसे AI से बनाया गया है, लेकिन इसके जरिए जिस डर की बात की जा रही है उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए, वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
2: नन्ही बच्ची का बप्पा के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। नन्ही बच्ची बापा को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही। कभी वो गणपति जी की गालों को प्यार से सहलाती है तो कभी उनके माथे को चूमती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो बापा को अपने पास ही रोक लेना चाहती हो। जब वहाँ मौजूद लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी बच्ची उनका हाथ पकड़े रहती है। वो मूर्ति से अलग होने को तैयार ही नहीं होती। बच्चे की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके चेहरे पर बापा को विदा करने का दुख साफ नजर आ जाता है। बच्ची और गणपति बापा का ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। नजरें धुंधली और आवाज भी धीमी, लेकिन अम्बा की ममता आज भी बेशुमार है। बेटी के हाथ में 500 रुपए देखते हुए अम्मा ने जो प्यार दिखाया, उसी पल को देखकर परिवार की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की बातों में ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेटी को पैसे देती है, उस पे उनका स्नेह साफ महसूस हो जाता है। अम्मा का ये प्यार देखकर बेटी भी भावुक हो जाती है।
3: अपने रख ले 500,
4: बस इसी में रखे, अभी
3: बिल्कुल रख ले, रखे ले,
4: पता नहीं फिर।
2: कैमरे के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शायद उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। रिश्ते की ये मासूमियत और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है, साथ ही ये पल हर किसी को भावुक भी कर रहा है।
4: रख लिए 500 रख लिए मैंने।
5: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
2: आज के बच्चे इतने होशियार होते हैं, आपने कुछ कहा तो उनके जुबान पर उसका तुरंत जवाब सुनने को मिल जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। माँ बेटी के इस मजेदार बातचीत को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
5: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
6: कंचन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला।
2: अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाला 12 साल का सैमुअल हैंडरसन इन दिनों अपनी एक अनोखी कला की वजह से छाया हुआ है। सैमुअल पक्षियों की ऐसी सटीक आवाजें निकालता है कि इंसान तो क्या, चिड़िया की आवाज पहचानने वाला मोबाइल ऐप भी धोखा खा जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित ये बच्चा अब तक 130 से भी ज्यादा पक्षियों की बोलियों की नकल कर सकता है। ये छोटा बच्चा गधे की पीठ पर ऐसा बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जिम्नास्ट भी हैरान रह जाएं। आमतौर पर बच्चे जब जानवर की सवारी करते हैं तो धीरे से ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कुछ अलग ही प्रो लेवल तकनीक अपनाई है। बच्चा गधे के साइड में खड़ा होकर अपने सिर को नीचे करता है और हवा में टांगे लहराते हुए एक्रोबेटिक अंदाज में बैक रोल करता है। बच्चे के इस अनोखे स्टंट के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस गधे का रिएक्शन। बच्चा उसकी पीठ पर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और बैलेंस बनाता है, लेकिन गधा बिना हिले डुले बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बच्चे का ये अंदाज और जानवर का ऐसा संयम देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई लोग हैरान भी हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिल देव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाए। कपिल देव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करके लोगों को चौंका दिया।
7: देखा तो भैया इनके घर बना है आसमाने में, वही जा करती सीधे ब्रिज वाला पुल बनवाए दी।
2: पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इन तस्वीरों को देखकर इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आलिशान महल नुमा घर तक पहुंचने के लिए मालिक ने सीधे प्राइवेट ओवर ब्रिज बनवा दिया। ऊंचाई पर बने इस घर तक जाने के लिए कोई सामान्य सड़क नहीं थी, तो मालिक ने ये लक्जरी सॉल्यूशन निकाला। ये वीडियो किस जगह का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नेटिजन्स इसे पैसे का असली पावर और अल्टीमेट बता रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार, चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार, चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
11: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि 65 किलो सोना और 335 किलो चांदी से सजे मुंबई के बप्पा का 703 करोड़ रुपए का बीमा। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ अब और करीब, नमो भारत से 60 मिनट में 82 किलोमीटर की यात्रा का दावा। आईफोन 18 सीरीज की बिक्री, एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
14: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
11: ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री। 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडल, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों से की गई सजावट। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार एंट्री, जापान को 8 विकेट से दी मात, श्री चर्नी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात बप्पा की। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं, भव्य पंडालों में बप्पा की दिव्य प्रतिमाएं विराज रही हैं। आज हम आपको मुंबई और पुणे के कुछ अलग थीम वाले पंडालों और बप्पा की मूर्तियों के दर्शन कराने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि देश का सबसे महंगा गणेश पंडाल कहां और किस गणपति मंडल का है।

0: भक्तों को विघ्नहर्ता से है बड़ी आस, हर कोई पाना चाहता है उनका आशीर्वाद, और इसी के चलते पहुंच रहा है बप्पा के दरबार। गणेश उत्सव में लालबाग चराजा का दर्शन करने हर दिन बड़ी संख्या में आम से लेकर खास भक्त तक पहुंच रहे हैं। यह मंगल मूर्ति का वो दरबार है जो मनोकामना पूरी करने वाली मान्यता और भव्यता को लेकर प्रसिद्ध है। लालबाग के राजा के अलावा मुंबई में बड़ी संख्या में भव्य गणेश पंडाल है जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। उन्हीं में से एक GSB गणपति का पंडाल भी है जो देश का सबसे अधिक महंगा मंडल माना जाता है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरानी हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ GSB सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। खास बात यह है कि GSB मंडल जो है ये साउथ इंडियन लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है और साउथ स्टाइल में इनकी पूजा होती है। बप्पा का दर्शन लेने के बाद तुरंत ही लोग भंडारे की तरफ निकलते हैं। भंडारा पास में ही होता है, प्रसाद के रूप में खाना खिलाए जाते हैं और थाली में वो पकवान सजाए जाते हैं जो साउथ इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें सांभर, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं।
0: मुंबई के इस प्रतिष्ठित गणपति दरबार में विराजमान बप्पा की भव्य मूर्ति का दिव्य श्रृंगार किया गया है। इस प्रतिमा को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोना और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। साथ ही इस मंडल का 703 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है। इन सब के चलते ही GSB को सबसे महंगा गणपति पंडाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है जिसमें आम से लेकर खास तक सभी हैं। अब मुंबई के ही इस दिव्य पंडाल को देखिए। मुंबई का राजा यानी गणेश गली गणेश उत्सव के इस पंडाल को इस वर्ष संतों की कथा वाली थीम पर भव्य रूप से सजाया गया है जो वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है। यहाँ एक दिव्य गरुड़ भी विराजमान है जो पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन है।
1: संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है और कुछ इस तरह की थीम है। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं, वो सारी चीजें रखी गई हैं। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं।
0: गणेश गली गणेश उत्सव मंडल इस बार अपना 99वां वर्ष मना रहा है। संतों के योगदान की कथाओं से सज्जित इस पंडाल में बप्पा की भव्य मूर्ति विराजमान है। ये गणेश मंडल मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है। इसका नाम ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। विशेष बात यह है कि यहाँ विराजने वाले गणपति का 5 दिन में विसर्जन कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। अब पुणे के ही इस दिव्य गणपति पंडाल को देखिए, जिसे विशेष रूप से बच्चों को ध्यान में रखकर सजाया गया है।
2: पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चे हैं इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बप्पा जी हैं, किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आई है।
3: जहाँ बच्चे आके एंजॉय करे ऐसा कुछ करना था, तभी हमारे दिमाग में आया कि चॉकलेट और आइसक्रीम ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है, उसको लेके कुछ थीम बनाते हैं। तो लास्ट ईयर ही प्लानिंग चालू हो गया था ये थीम पे।
2: कितने दिन लगे इस सब बनाने में?
3: प्रैक्टिकली 3 महीने काम चला और थीम लास्ट ईयर डिसाइड हो गई थी, तो सबसे सब आइडियाज वगैरह प्लानिंग चल गए थे।
0: श्री कृष्ण गणपति मंडल के इस पंडाल में थर्माकोल की मदद से चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी और बिस्किट की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं, जो बच्चों को तो आकर्षित कर रही हैं, बड़ों को भी बचपन की याद दिला रही हैं।
4: मुझे बहुत अच्छा लगा।
5: अच्छा,
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
5: क्या क्या देखा आपने?
6: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ देखा मैंने।
5: और आपको क्या पसंद है?
6: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
0: पुणे में एक और गणपति पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पानीपुरी से बनाई गई बप्पा की भव्य प्रतिमा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: गोल गप्पे से बप्पा बनाई, यानी कि पानीपुरी से ये बप्पा बनाए हैं, और ये पहली बार पुणे में इस तरह की प्रतिमा बनाई गई है। 21,000 पूरियों से यहाँ पर बप्पा की प्रतिकृति बनाई गई है। मतलब बहुत दिनों से ये काम शुरू था और उसके बाद ये बनाया गया है, लेकिन पूरी नरम होनी नहीं चाहिए, इसकी वजह से मतलब यहाँ पर आप देखिए हैलोजन लगाया है, ऊपर भी लाइट लगाई है और इधर भी लाइट लगाई है। यहाँ पे एफसी रोड है और यहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ हो रही है कि पानीपुरी से किस प्रकार से गणपति जी की प्रतिमा बनाई है।
0: विशेष बात यह है कि पानीपुरी को इस तरह से सेट करके ये प्रतिमा तैयार की गई है, जिससे इसे लंबे समय तक सही रखा जा सके। इस पंडाल के पास से जो भी गुजरता है यहाँ ठहरे बिना नहीं रह पाता। पानीपुरी वाले बप्पा की इस प्रतिमा को देखकर हर किसी का चेहरा खिल उठता है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र की छटा बेहद निराली दिख रही है। इस दौरान भव्य पंडाल, दिव्य मूर्तियों के दर्शन के साथ ही भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात नमो भारत रेल की। इस सेवा की शुरुआत होने से लोग बहुत सारे महसूस कर रहे हैं राहत, क्योंकि इससे दिल्ली से मेरठ की यात्रा आसान हो गई है, समय की बहुत बचत हो रही है। नमो भारत में यात्रा करने वाले लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जानने के लिए जेएनटी संवाददाता मनीष चौरसिया ने इस ट्रेन में भी सफर किया।

0: नमो भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसने दिल्ली एनसीआर और मेरठ के बीच सफर की तस्वीर बदल दी है। 82 किलोमीटर का सफर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब एक घंटे से भी कम वक्त लगता है, जबकि पहले सफर के लिए घंटों का वक्त लग जाता था। नमो भारत रेल को तैयार करते वक्त यात्रियों की सुविधा के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि नमो भारत स्टेशन व आसपास के सभी ट्रांसपोर्ट के साधन से जुड़ा रहे।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं सराय काले खां के स्टेशन पर और यहाँ पर आप देखिए कि एक पूरी FOB तैयार की गई है फुटओवर ब्रिज। इसी FOB के जरिए नमो भारत रेल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ा गया है। मतलब आप नमो भारत रेल से यात्रा करते हुए आइए और वहाँ से उतरकर आप सीधे जा सकते हैं इस तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ, और अगर आपको वहाँ से उतरकर दिल्ली के दूसरे इलाकों में जाना है तो आप यहीं कहीं से एग्जिट करिए और सामने आपको ये मेट्रो स्टेशन दिखाई पड़ जाएगा। मतलब आपको कहीं भी अपनी कार लाने की जरूरत नहीं है।
0: दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए किस तरह के दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। अगर उनके साथ भारी सामान हो तो उसे भी उन्हें ले जाने में सहूलियत हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
1: ये FOB जिस तरह से तैयार किया गया है वो दिखाता है कि कैसे नमो भारत रेल ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि लोगों को एक कदम भी जब चलना पड़े तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। खास बात ये भी कि यहाँ आप देखिए कि किस तरह से जो ट्रेवलेटर्स हैं वो लगाए गए हैं। मतलब इस तरह की सुविधाएं आप अमूमन एयरपोर्ट्स पर देखते हैं, ये नहीं होता तो फिर बोरी वोरी लाने में कितनी दिक्कत होती है।
2: बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
1: कैसे लेके आते हो बोरी?
2: सर पे
1: रख के।
2: हाँ,
1: फिर पैदल चल के दौड़ना पड़ता है।
2: हाँ, दौड़ना पड़ता है।
1: अभी आ गए आराम से?
2: आराम से आ गए,
1: कोई दिक्कत तो नहीं?
2: कोई दिक्कत नहीं।
1: आप इतना सामान लेके आई, इस पे खड़ी हो गई आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
3: ना ना, ना दिक्कत नहीं।
1: ये नहीं होता तो कैसे आती?
3: तो भोगना पड़ता, जैसे आता उसे आते।
1: यात्री यहाँ आप देखेंगे तो काफी आसानी से ट्रेवल कर पा रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो या फिर कोई और हो। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, इस बात का ख्याल भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है।
0: नमो भारत रेल की यात्रा से नौकरी पेशा से लेकर स्टूडेंट, बिजनेसमैन, महिला, बुजुर्ग, हर किसी को समय की बचत का फायदा मिल रहा है।
1: यात्रियों की सुविधा के लिहाज से नमो भारत रेल ने क्या कुछ बदला है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम समझने निकले हैं कि कैसे नमो भारत रेल ने दिल्ली और मेरठ के बीच के पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है। वो लोग जो दिल्ली में नौकरी करते थे, मेरठ में रहते थे, पहले दिल्ली में प्रॉपर किराए पर घर लेकर नौकरी करते थे, लेकिन अब वो रोज अपने घर से ही दिल्ली की तरफ अप डाउन कर पाते हैं। कितना बदलाव आया है इस पूरे कॉरिडोर में ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने भी अपना टिकट ले लिया है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये विकास की यात्रा कितनी तेज दौड़ रही है।
0: पहले की अपेक्षा नमो भारत से यात्रा में बदलाव की हकीकत ट्रेन में यात्रा करने वाले से बेहतर भला कौन बता सकता है।
1: आज हम भी इसमें सफर कर रहे हैं, दिल्ली से हम चले थे गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और रास्ते में अब हम लोगों से बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि आखिर उनके जीवन में नमो भारत रेल के आने से क्या बदलाव हुए। इसमें एक बहुत बड़ा सर्विस क्लास है जो दिल्ली में जॉब करता था, मेरठ में, गाजियाबाद में रहता था, उनके लिए मजबूरी थी कि वो दिल्ली में आकर किराए का घर लें क्योंकि रोज़ सड़क के जरिए

0: चार घंटे लगते थे यहाँ दिल्ली से, तो अभी तो यहाँ जैसे 90 किलोमीटर है न्यू अशोक नगर से, तो 30 से 40 मिनट में पहुँच जाते हैं।
1: पहले कैसे यात्रा होती थी, पहले कैसे आप लोग आते जाते थे?
2: बस से।
1: बस से टाइम कितना लगता था?
2: बहुत टाइम लग जाए, पूरा दिन जाते।
1: अभी कितना बदल गया?
2: अब तो बहुत बदल गया।
3: अब तो 1.5 घंटे में तय हो जाना जाना, इतना बदल गया।
1: जो लोग कभी किराए का घर लेकर मेरठ या दिल्ली जाते थे, उनकी घर वापसी इस ट्रेन ने करवा दी।
4: नमो भारत की ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही वजह है कि दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा होना संभव है।
1: नमो भारत रेल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर एक ही जगह पर आपको नमो भारत रेल और मेट्रो चलती हुई दिखाई पड़ जाएगी। इस वक्त हम मेरठ के पास में ही हैं और ये बेगमपुर स्टेशन है, जो कि स्टेशन है ये उसका नमो भारत रेल का भी और ये मेट्रो का भी स्टेशन है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी आप देख रहे हैं कि ये मेट्रो गुजर रही है, इसके पहले नमो भारत रेल गई थी, मेट्रो जाने के बाद फिर से इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नमो भारत रेल भी आएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको नमो भारत रेल से अगर आपको शहर के भीतर जाना है, मेरठ के अंदर जाना है, तो आपको अलग से कहीं और किसी स्टेशन नहीं जाना है, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना है। आप यहीं उतरिए और मेट्रो का इंतज़ार करिए, मेट्रो आएगी, आप मेट्रो पर सवार हो जाइए। आपको मेट्रो के लिए अलग से कोई टिकट परचेज़ नहीं करना है। जब आप नमो भारत रेल का टिकट ले रहे हैं, उसी समय आप वहाँ पर जिक्र कर दीजिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको शहर के अंदर के मेट्रो स्टेशन का टिकट आपके उसी टिकट में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब अलग से आपको कोई और टिकट भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से यात्रियों की सुविधा के हिसाब से उसे तैयार किया गया है कनेक्टिविटी के लिहाज से, वो सब कुछ हमें नमो भारत रेल में दिखाई पड़ता है।
4: इसी साल 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था और अब कुछ ही महीनों में इस कॉरिडोर ने यात्रियों की संख्या के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। नमो भारत से हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। 28 अगस्त को एक दिन में 1,68,000 लोगों ने रिकॉर्ड यात्रा की थी और अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सफर कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि दिल्ली से मेरठ तक जुड़ते एक पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीर है। नमो भारत की कहानी अब सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि NCR में बदलती कनेक्टिविटी और रीजनल ग्रोथ की कहानी बनती जा रही है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात iPhone 18 सीरीज की, जिसकी बिक्री आज से देश के 5 महानगरों में शुरू हो चुकी है। iPhone के इस नए सीरीज की बिक्री को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि देश में कोई त्यौहार है। आज प्री बुकिंग वाले फोन लेने के लिए अलग अलग शहरों में मौजूद एप्पल के 6 रिटेल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। स्टोर खुलने से पहले लोग रात भर लाइन में लगे रहे और तब तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे जब तक उनके हाथ में चमचमाता आईफोन नहीं आ गया। एप्पल के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दोनों ही मॉडल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

0: दिल्ली हो या मुंबई, आईफोन की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। नई सीरीज की बिक्री शुरू होते ही आईफोन लवर्स दिन रात का फर्क और खाना पीना तक भूल जाते हैं। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे 5 महानगरों में एप्पल के 6 आधिकारिक रिटेल स्टोर हैं। आज सुबह 8 बजे से इन स्टोर से आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री शुरू हो चुकी है। 10 दिन पहले ही भारत में लॉन्च हुए आईफोन का युवा पीढ़ी को बेसब्री से इंतजार था, जिसकी वानगी मुंबई के मशहूर जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के बाहर आधी रात को दिखी। 3 साल पहले यहां एप्पल कंपनी का पहला आधिकारिक रिटेल स्टोर खुला है, जहां आज सूर्योदय से पहले एप्पल लवर्स ऐसे जमे जैसे कोई रोजगार मेला लगा हो। वहां लंबी लंबी कतार में खड़े हर शख्स की बस एक ही चाहत थी कि स्टोर का शटर उठे और उन्हें जल्द से जल्द नया आईफोन पकड़ने का मौका मिले। इसके लिए उन्हें प्री बुक्ड एप्पल के स्टोर के बाहर भी घंटों खड़े होने में कोई एतराज नहीं था। जिन ग्राहकों ने 12 सितंबर से फोन की प्री बुकिंग की थी, वो आज लॉन्च के दिन अपना फोन ले सकते हैं।
1: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आईफोन का फीवर

0: आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं। अब आईफोन का सेल क्योंकि इंडिया में शुरू हो चुका है, आईफोन 18 प्रो जो कि बर्गंडी, लाइट ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर में यहां पर उपलब्ध है, वो मार्केट में बेचने के लिए, बिक्री के लिए खुले हो चुके हैं।
1: मुंबई में आईफोन के दीवानों को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं हुई कि स्टोर खुलने के बाद भी उनको घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। घंटों के इंतजार के बाद भी चेहरे पर थकान की जगह खुशी नजर आई।
2: मैं एक घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे।
0: अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो और कौन सा खरीदना है?
2: मैं अभी 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, अभी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ 18 प्रो मैक्स पे।
0: क्यों?
2: क्योंकि उसके फीचर्स अभी जो आए वो काफी बढ़िया आए, तो कलर भी बढ़िया इस बार दिए है, तो मैंने इस बार ब्लैक कलर बुक किया है।
3: 18 प्रो मैक्स बुक किया हूँ मैंने, 1 TB बर्गंडी कलर।
0: कितना?
3: 1 TB।
0: प्राइस कितना है?
3: समवेंड 2.5 लाख के आसपास है।
0: 2.5 लाख में एक बढ़िया बाइक आ सकती है, अच्छे वेकेशन पर भी जा सकते हो।
3: शौक शौक की बात है, जब शौक रखेंगे आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
0: पहले भी आईफोन यूज करते?
4: यस मैं 17 प्रो यूज कर रहा हूँ, सो अभी इसको मैं बेसिकली अपग्रेड करने वाला हूँ 18 प्रो में।
0: हर नए आईफोन के साथ अपग्रेड करते हैं आप?
4: नहीं, एक्चुअली मैं 18 प्रो में एक बेसिक फीचर है जो उसमें जो वेरिएबल अपर्चर है कैमरा में, तो वो मुझे थोड़ा फीचर्स बहुत अच्छा लगा कंपैरेटिवली जो प्रीवियस आईफोन्स में नहीं थे।
1: 9 सितंबर को एप्पल कंपनी ने सालाना इवेंट आउट ड्रॉपिंग में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च की थी। इनमें आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डियो लॉन्च किया था। भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,65,000 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,80,000 रुपए रखी गई है। ब्लैक सिल्वर ग्लेशियर के अलावा आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स को नए कलर बरगंडी में भी लॉन्च किया गया है।
5: जो फीचर, मेन फीचर जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा, ये हम आपको दिखाएंगे, ये आईफोन प्रो मैक्स है। इसमें जो सबसे ज्यादा फीचर है वो कैमरे में है जो वो दिखा रहे हैं। सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, लेंस अपर्चर, फोकस, शटर स्पीड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वीडियो में एक नया फीचर आया है डुअल कैप्चर, जिसमें आप अपनी सेल्फी मोड के साथ सामने वाली पिक्चर क्वालिटी भी ले सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा जो एक फीचर है जो इंटरेस्ट कर रहा है लोगों को, वो ये है। साथ ही साथ यहाँ पे वेपर कूलिंग सिस्टम इनग्रेड कर चुके हैं, एम्बेडेड कर चुके हैं इस फोन के अंदर। पिछले साल थोड़ी कंप्लेन आ रही थी कि आईफोन 17 ओवरहीट हो रहा था, उसके लिए एक पूरा सोल्यूशन लेकर आई है आईफोन 18 की सीरीज। पूरा कूलिंग सिस्टम जो है वो इस बार इनग्रेव कर चुके हैं इसमें, तो आपका फोन जो है वो ओवरहीट नहीं होगा।
1: आईफोन की नई सीरीज चाहिए तो चाहिए वाला अंदाज दिल्ली NCR में भी दिखा। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल और नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में एप्पल स्टोर के बाहर एक ही तरह की तस्वीरें दिखी। दोनों ही जगहों पर हर उम्र के लोग तकलीफ झेलकर भी कतार में खड़े दिखे और प्री बुकिंग के तहत फोन मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जबकि पहले की तुलना में आईफोन के प्रो मॉडल्स की कीमत काफी बढ़ चुकी है, फिर भी लोगों में क्रेज कम नहीं हो रहा है।
6: कीमतें इस साल आईफोन प्रो जो मॉडल्स हैं उनके काफी ज्यादा बढ़ाकर एप्पल ने लॉन्च किया है। जो डिवाइसेज उनको 1,40,000 तक मिलती थी, इस साल 1,65,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा भी कम नहीं हुई है। अगर आईफोन 18 सीरीज लॉन्च हुआ होता, जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड लॉन्च होगा, तो शायद भीड़ और ज्यादा होती, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया गया है।
1: दूसरे देशों की तरह भारत में भी आईफोन को स्टेट सिंबल का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि जब कंपनी की तरफ से आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च किया जाता है तो 5 शहरों के 6 आधिकारिक एप्पल रिटेल स्टोर पर भीड़ का यूं उमड़ना हैरान नहीं करता। मुंबई से आस्था चोपड़ा, ऋत्विक भालेकर, दिल्ली से साइरस जॉन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज पथ।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार, चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार, चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। इसके अलावा 12 राशियों का राशिफल जानेंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है? देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल की ये स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। और मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने आपकी इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या हो सकता है? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन किए उसके बाद मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में आ गए हैं। जल की तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन जल की तीनों राशियों में ग्रह आ गए हैं। अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं और संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि से बन रहा है। राशि परिवर्तन के समय जल की तमाम राशियां प्रभावित हो गई हैं, इसीलिए ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया के अलग अलग जगह पर तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का तनाव है, अमेरिका ईरान का तनाव है। उसके अलावा कुछ और जगहों पर, अन्य जगहों पर भी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के इलाके और बंगाल के इलाके अशांत हो सकते हैं। यहां पर बेवजह के उपद्रव और अशांति फैल सकती है। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। बेवजह के विवाद भारत में दिख सकते हैं। इस समय जो बड़े पदों पर महिलाएं हैं, जो बड़े स्थान पर महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 12 नवंबर के पहले तक का समय महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खान पान में सावधानी रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। देश दुनिया के लिए समस्याओं की संभावना दिखा रहा है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि वालों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जल्दी का निर्णय इनको मुश्किल में डाल सकता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो वैसे कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। धनु राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन केवल चार राशियों के लिए अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ये जो राशि परिवर्तन है ये आठ राशियों के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें भी मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है ऐसे लोग इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करें। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग के कपड़े, जूते, पर्स, लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करेंगे। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बना रहता है, तो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए रोज सुबह और शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। साथ में कर्ज मुक्ति के लिए अपना प्रयास भी करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा। कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में अशुद्ध या बुरे विचार आते हों तो क्या करेंगे? स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धोकर पूजा करिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको शुद्ध मन दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा आपकी पवित्रता से और अच्छे मन से पूरी हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
9: HAL ने भारतीय वायुसेना को सौंपे LCA तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12,00,000 करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी मां लक्ष्मी की आराधना। माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। हैदराबाद में नव वानर थीम पर भव्य गणेश मंडप, पंडाल में दिखी रामायण की भव्य झलक, रामकथा से जुड़ी सामानों की गई सजावट। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री। 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी की भी।
10: कहीं पैर बने कलाकार के हाथ, कहीं कैनवास पर शिव और शक्ति की भावनाएं, और कहीं चेहरों के जरिए इंसानी मन के अलग अलग एहसास। एक ही जगह पर कला के इन अलग अलग रंगों की कहानी सजी है दिल्ली के NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड में, जहां देश भर के कलाकार अपनी कला और अपनी अलग सोच के साथ पहुंचे हैं। जहां कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी है जिन्हें देखकर आप कलाकार के हुनर के साथ साथ उसकी कहानी से भी जुड़ जाते हैं। 23 साल के ऋतिक कोहली के हाथ नहीं है, लेकिन हौसला इतना मजबूत है कि रंगों को कैनवास पर उतारने के लिए हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऋतिक अपने पैरों से पेंटिंग बनाते हैं और ये हैं रचना भाटी बैंसला। पिछले 16 साल से वो सिर्फ चेहरों के इर्द गिर्द पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन इन चेहरों की खासियत सिर्फ उनकी बनावट नहीं बल्कि इनके हाव भाव हैं। अलग अलग परिस्थितियों में इंसान के चेहरे पर आने वाले भाव, खुशी, चिंता, सोच, उलझन और कई अनकहे एहसास, रचना उन्हें अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश लोगों के लिए हीरों की सौगात लेकर आती है। ये भीड़ देखिए, रुंज नदी के किनारे बारिश के बाद अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिल जाता है। सिर्फ पन्ना से ही नहीं, लोग नदी में हीरा ढूंढने दूर दूर से पहुंचते हैं। बांदा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दमोह से भी बसों में आते हैं और वन विभाग को ऐसे ही लोगों से निपटना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो लोग यहां टेंट भी लगाकर बैठ जाते हैं कि कहीं मौका कोई और न ले जाए। हालांकि इस बार लोग थोड़े निराश हैं, बड़ा हीरा हाथ नहीं आया, छोटे हीरे ज्यादा काम नहीं आते। पन्ना की धरती हीरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि बारिश के बाद नदी नालों की चाल में हीरे मिलने की उम्मीद लोगों को यहां तक खींच लाती है। अंधेरी रात, नदी का तेज बहाव और आसमान से बरसती बूंदे, और इन सब के बीच चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन दो संतों का। तस्वीर राजस्थान के बाड़ा में केलवाड़ा इलाके की है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, और इसी की चपेट में आ गए उत्तराखंड के दो संत, संत बालका देवाचार्य और उनके सहयोगी राहुल। ये दोनों केलवाड़ा के पास सिलोरी धाम दर्शन करने आए थे। देर शाम करीब 7:15 बजे यहां से वापस लौट रहे थे, तभी पुलिया पार करते समय कार पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सकी और नीचे गिर गई, और फिर पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहाने लगी। इस दौरान दोनों संत कार में ही फंसे रहे। इस बीच ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, और फिर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत की बात ये रही कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद न सिर्फ दोनों संतों को बल्कि कार को भी बाहर निकाल लिया गया। आम लोग तो छोड़िए, आईफोन का क्रेज बॉलीवुड स्टार्स में भी कुछ कम नहीं है। ये तस्वीर देखिए, सुबह से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आज से ही आईफोन 18 प्रो की पहली सेल शुरू हुई है, और अभिनेता विकी कौशल सुबह सुबह ही मुंबई के बीकेसी में मौजूद एप्पल स्टोर पहुंच गए फोन खरीदने। उन्होंने लेटेस्ट आईफोन 18 प्रो मैक्स के स्पेशल कलर एडिशन में बरगंडी कलर खरीदा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फोन लेने के बाद उन्होंने स्टोर पर ही इनकी अनबॉक्सिंग की, कुछ देर इस्तेमाल करके देखा और फिर अपने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। हो सकता है विकी आईफोन 18 प्रो मैक्स का प्रमोशन कर रहे हों, लेकिन वो जिस तरह सुबह सुबह आईफोन लेने स्टोर पहुंचे, वो सुर्खियां बटोर रही है। पहाड़ में बर्फबारी का मौसम लौट आया है। पेड़ पौधे, घर, छत और सड़कें सब बर्फ में लिपटे मौसम का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा में साच पास की है। नजारा ऐसा मानो धरती और आसमान का फर्क बढ़ गया हो। हवाओं में सफेद धुंध है, जमीन पर रुई के फाहों से बिखरी बर्फ। हालांकि ये नजारा यातायात के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन पहाड़ों का यह सफेद श्रृंगार सैलानियों के चेहरे पर सुकून लाता है। साच पास चंबा से पांगी घाटी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पहाड़ी मार्ग है। यहां अचानक बर्फबारी की संभावना अक्सर बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
9: और अब बात करते हैं आत्मनिर्भर होते हुए भारत की अनोखी तस्वीर की। बेंगलुरु में आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्वदेशी 3 ट्रेनर विमान HTT-40 और 2 MK-1 ट्रेनर विमान सौंपे। इसके साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर का सिविल अवतार भी सौंपा गया। इन सब का निर्माण बेंगलुरु और नासिक में किया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। अब HAL तेजस के MK-1A फाइटर्स जेट्स की डिलीवरी के लिए तेजी से काम में लगे हुए हैं, क्योंकि सेना को 180 तेजस MK-1A विमानों की आपूर्ति करनी है।

0: भारत ने मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बड़ी उड़ान भरी है। भारत ने पहला स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 तैयार कर लिया है। गुड न्यूज ये है कि स्वदेशी HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान का पहला बैच वायुसेना को मिल गया है। साथ ही HAL ने भारतीय वायुसेना को LCA तेजस MK-1 के दो ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी सौंपे हैं। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिसीव किया।
1: आज से लगभग वन डिकेड बिफोर, एक दशक पहले की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स बहुत ही धीमी गति से चलाए जा रहे थे। ज्यादातर चीजों में हम इम्पोर्ट पर निर्भर हुआ करते थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेंस में हो, चाहे प्रोडक्ट के सेंस में हो। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र के साथ काम करना प्रारंभ किया है और हमने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिसे एक ओर तो हमारे पब्लिक सेक्टर के DPSUs को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहित किया है ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। और इसी का परिणाम है कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: वायुसेना को कुल 3 ट्रेनर विमान HTT-40 मिले हैं। इनमें 2 विमान बेंगलुरु में और 1 विमान नासिक में तैयार किया गया है। HTT-40 का वजन 2960 किलो है और इसकी लंबाई 10.06 मीटर है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन है। HAL का दावा है कि HTT-40 करीब 6000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड है 300 नोट्स और ये करीब 3 घंटे तक आसमान में रह सकता है। HTT-40 में आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। इसके अलावा इसमें 00 इजेक्शन सीट दी गई है जो किसी भी ऊंचाई और गति पर पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने की सुविधा देती है। अभी भारतीय फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग विदेशी पिलेट्स और हॉक एयरक्राफ्ट में की जाती है। यहां तक कि भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकिरण भी हॉक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब HTT-40 का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए HAL को कुल 40 HTT-40 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
2: अभी तक भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, लड़ाकू विमान पायलट हैं, उन्हें विदेशी विमान पिलेटस पर बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उन्हें जो लड़ाकू विमान है वो उड़ाने का मौका मिलता है। लेकिन अब ये पहला HAL ने तैयार किया है स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 जो भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू विमान पायलट हैं उन्हें ट्रेनिंग देगा और ऐसे 40 बेसिक ट्रेनर HTT-40 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे।
0: अब बात LCA तेजस MK-1 की। HAL की ओर से जो 2 LCA MK-1 ट्रेनर विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे गए हैं वो 40 विमानों के पुराने ऑर्डर की अंतिम खेप है। वायुसेना ने ये 40 विमान 2 चरणों में मार्च 2006 और दिसंबर 2010 में ऑर्डर किए थे। इनमें से 38 विमान पहले ही वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। अब अंतिम 2 ट्विन सीट ट्रेनर विमानों की डिलीवरी के साथ इस शुरुआती LCA MK-1 ऑर्डर की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। 2 सीट वाले इन विमानों का इस्तेमाल पायलट प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। एक तरफ MK-1 की डिलीवरी पूरी हो गई है तो दूसरी तरफ वायुसेना की तेजस MK-1A की पहली डिलीवरी का अभी भी इंतजार है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 46,898 करोड़ रुपए में 83 MK-1A विमानों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसमें 73 फाइटर और 10 ट्रेनर शामिल हैं। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 62,370 करोड़ रुपए में 97 और तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया था। इसमें 68 फाइटर और 29 ट्रेनर शामिल हैं। MK-1A में AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हवा में ईंधन भरने की क्षमता जैसे अहम अपग्रेड भी होने हैं। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन इंजन की कमी के चलते काफी देरी हो चुकी है। हालांकि अब इंजन की डिलीवरी शुरू हो गई है, इसकी वजह से अब जल्द से जल्द MK-1A विमानों की डिलीवरी शुरू हो सकती है।
3: हमारे पास अभी 3 लाइन है, सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू मीट द टाइमलाइंस व्हाट वी हैव कमिटेड विद ऑल दिस 3 लाइंस विद द सर्टिफिकेशन कंप्लीटिंग एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ द इंजन डिलीवरीज।
0: तेजस एम के वन विमानों को बनाने में जो अड़चने आ रही थी वो अब दूर हो गई हैं। ऐसे में एचएएल का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि लड़ाकू विमानों की डिलीवरी टाइमलाइन के मुताबिक हो।
2: 10 इंजन उनके पास आ चुके हैं तो उनकी कोशिश है कि भारतीय वायुसेना को जो 180 एलसीए तेजस मार्क वन की जो डिलीवरी होनी है वो टाइमलाइन के तहत वो कर पाएंगे।
0: मिलिट्री हेलीकॉप्टर ध्रुव भी अब नए अवतार में आ गया है। एचएएल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएलएच ध्रुव का सिविल सर्टिफाइड वर्जन भी आज के कार्यक्रम में पवन हंस कंपनी को सौंपा गया। एचएएल के सीएमडी रवि ने बताया कि हेलीकॉप्टर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है। इस हेलीकॉप्टर को पवन हंस में शामिल किया गया है। ध्रुव एनजी को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस सेवाओं और हेली तीर्थयात्रा सहित अन्य भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है।
3: इसमें एक खासियत है कि इसका इसका मूवमेंट पीपल मूवमेंट वन इज दैट वीआईपी मूवमेंट, हम इनसाइड का सीट के ऐसे ही चेंज करके उसका वीआईपी मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सीट्स को निकाल के मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेचर लगा सकते हैं, कुछ भी हो ऐसा लगा सकते हैं। सो सिंस ध्रुव इज ए प्रूवन प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑल द सर्विसेज आर यूजिंग अवर ध्रुव हेलीकॉप्टर, सो this we are confident that this is going to do very well in the civil sector as well.
0: भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल निर्मित ये हेलीकॉप्टर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डिजिटल और नागरिक मानकों के अनुरूप ग्लास कॉकपिट से लैस है जो पायलटों को बेहतर दृश्यता और नेविगेशन प्रदान करता है। इसमें आधुनिक कंपन नियंत्रण प्रणाली लगाई गई है जिससे उड़ान के दौरान केबिन में शोर और झटका बहुत कम होता है। ये वीआईपी यात्रियों और मरीजों के लिए एक स्मूथ राइड सुनिश्चित करता है। ये दो उच्च क्षमता वाले शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। यदि उड़ान के दौरान एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन सुरक्षित लैंडिंग कराने में सक्षम है।
2: इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो वीआईपी मूवमेंट के लिए यानी कि चुनाव रैली हो या बाकी जगह इस्तेमाल हो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दूरदराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही में इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके कॉकपिट को हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ये आधुनिक कॉकपिट है और कितने लोग इसमें आ सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये 11 पैसेंजर्स में एक बार में सवार हो सकते हैं। उसके अलावा दो पायलट और को पायलट के लिए दो सीटें अलग हैं, लेकिन ये 11 जो पीछे की 11 सीटें हैं ये वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से या फिर दूसरे इस्तेमाल से इनको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक सिविल हेलीकॉप्टर एचएएल ने तैयार किया है और क्योंकि इस वक्त भारत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविल क्षेत्र में चाहे यात्राओं के लिए हो, धार्मिक यात्राएं हो, चारधाम यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा, हर जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये एक बड़ी संभावना सिविल में ध्रुव हेलीकॉप्टर की हो सकती है।
0: देश में स्वदेशी विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश के विमानन और रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता सामने आएगी। ध्रुव हेलीकॉप्टर का सिविल सर्टिफाइड वर्जन भारत के घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार में विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता को कम करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: यूपी में कल से शुरू होगा 1,00,000 सरकारी नौकरी का महाअभियान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।

0: युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। MDL यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश के दुगाराजपट्टनम में एक विश्व स्तरीय ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बनाएगी। इसके लिए आज नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क और आंध्र प्रदेश ने एक MOU साइन किए हैं। ये समझौता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में हुआ। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 45,000 नौकरियां पैदा होंगी। प्रोजेक्ट चीता के 4 साल पूरा होने के ठीक एक दिन बाद आज 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से गुड न्यूज आई। कूनो नेशनल पार्क में 4 नई चीता शावकों का जन्म हुआ है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने इन शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही अब तक देश में जन्मे कुल चीतों की संख्या 32 हो गई है, जो इस प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर खुशी जताते हुए इसे उम्मीद और सफलता का प्रतीक बताया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के बाद अब मथुरा में उनकी प्रिया राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी है। कल यानी 19 सितंबर को सुबह 5 बजे राधा रानी के अभिषेक के साथ जन्मोत्सव शुरू होगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। श्री राधा जन्मोत्सव को लेकर बरसाना को 6 जोन और 16 सेक्टरों में बांटा गया है। इस बार एकल मार्ग के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ को राधा रानी मंदिर सुदामा चौक की सीढ़ियों से प्रवेश कराया जाएगा। वहीं जयपुर मंदिर मार्ग से श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था होगी। मुख्य कार्यक्रम बरसाना स्थित श्री लाडली जी मंदिर में होगा। कश्मीर के गांधरबल में आज से 2 दिवसीय हरमुख गंगबल यात्रा का शुभारंभ हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधरबल के नारनाग में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये धार्मिक यात्रा कश्मीरी पंडितों के बीच काफी लोकप्रिय है और अन्य राज्यों के तीर्थयात्री भी इसमें शामिल होते हैं।
1: और अब बात गणपति महोत्सव की। पूरे देश में गणपति उत्सव के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। 14 सितंबर से शुरू हुआ गणेशोत्सव की रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर इलाके में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पंडालों की भव्यता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई में हर गली हर मोहल्ले में बप्पा विराजमान है। उनके अलग अलग भव्य स्वरूप आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों की खूब चहल पहल देखने को भी मिल रही है।

0: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक है, पूरा देश बाबा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और दुर्ग तक गणपति उत्सव के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बाप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। सबसे पहले बात देश के सबसे महंगे गणपति की। मुंबई के प्रतिष्ठित जीएसबी सेवा मंडल के गणेश जी को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। साथ ही बप्पा की भव्यता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मंडल ने करीब 703 करोड़ रुपए का भारी भरकम बीमा कवर लिया है।
1: ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है। खास बात यह है कि मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी पंडालों में गणेश बप्पा को विराजमान किया गया है, उनका विसर्जन इस बार 12 दिनों बाद होने वाला है, लेकिन जीएसबी एकमात्र ऐसा मंडल है जिनका विसर्जन 5 दिन में ही कर दिया जाता है। बड़ी मिन्नतें हैं यहाँ, जो कोई भी आता है लोग मांगते हैं, पूरा हो जाता है। यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: इस पंडाल में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कुछ बप्पा के दर्शन की चाहत लिए आते हैं तो कुछ भक्त अनोखे गणपति को देखने उत्सुकतावश पहुँचते हैं।
2: यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है। यहाँ पे दर्शन ही नहीं लेकिन बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं और जीएसबी मंडल का एक बहुत अच्छा प्रसाद भी हमें मिला, जो एक साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा अनोखा प्रसाद। और रौनक है यहाँ पर, बाबा के भक्त है। मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ यहाँ पर आया।
0: जीएसबी पंडाल में भक्तों के लिए साउथ इंडियन डिशेज का प्रसाद दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ पर लगातार भंडारा चलता रहता है। हालांकि जीएसबी सेवा मंडल 5 दिन बाद ही गणपति का विसर्जन करता है। मुंबई का राजा यानी गणेश गली, गणेश

0: मंडल इस बार अपना 99वां साल मना रहा है। यहाँ पर संतों के योगदान की कथाओं वाली थीम है जो वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है। 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश विराजमान हैं। साथ ही भव्य गरुड़ पर संत तुकाराम विराजमान हैं। इस मंडल को मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है। लालबाग की तरह यहाँ भी रोजाना लाखों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंडल का नाम ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है।
1: सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है, इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहां पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। बाल रूप दिया गया है गणपति बप्पा को और भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहां पर विराजमान है। आम खास वीआईपी वीवीआईपी सभी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
0: मुंबई के गिरगांव के महाराजा गणपति का अनोखा स्वरूप सभी को आकर्षित कर रहा है। यहाँ के लंबोदर राजस्थान के भगवान श्रीनाथ के अवतार में पधारे हैं।
2: हमारा ये 95 इयर्स अभी चल रहा है। हमारे हर साल हमारे इधर कुछ ना कुछ अलग अलग देश, हमारे हम लोगों ने 1970 से लेकर 1991 में एक सब्जेक्ट लिया था, भारतीय संस्कृति और अनितिदा विस्तार, यानी देश विदेश के गणपति बनाए थे। यहाँ पे जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, जावा, ऐसे बहुत से अलग अलग देशों के हम लोगों ने मूर्तियाँ साकार की थी। और खाली मूर्तियाँ नहीं, उनकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। और उसके साथ जो काउंसिलेट है वहाँ, जब जापान के हो, श्रीलंका के हो, उन वो काउंसिलेट को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे उनको बुला के उनके हाथ से प्रतिष्ठापना भी की। और गए साल उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र दर्शन किया, जैसे हेटबी हो, वाई का गणपति, ढोला गणपति हो, ऐसे बहुत सारे। अभी उसके बाद हम लोगों ने गए साल किया था उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का, जय जगन्नाथ। वो भी हमारा सबसे हीवीएस्ट मूर्ति हो गई थी ऑल ओवर महाराष्ट्र की, वो कम से कम 12,000 किलो की वेट थी। और इस साल हम लोगों ने किया है राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की।
0: यहाँ के पंडाल में प्रवेश करने से पहले आपको अनोखे झूले से होकर गुजरना पड़ता है जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भगवान गणेश का एक अनोखा और प्रेरणादायी रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ के बप्पा भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। सिर पर सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गम्बूट्स और हाथों में औजार लिए बप्पा का अनोखा स्वरूप सबको भा रहा है। कहीं बप्पा खदान में काम करते नजर आ रहे हैं तो कहीं कोयला निकालते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश के अलग अलग रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को अलग पहचान देने की कोशिश की है।
3: हमारे चंद्रपुर को एक द ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है और हमारी चंद्रपुर शहर में काफी सारे भूमिगत खदान और ओपन कास्ट खदान है और उसके ऊपर निर्भर ये हमने थीम रखी हुई है। हमारा थीम का ये उद्देश्य यही है कि जो हम बिजली यूज करते हैं वो किस तरह जनरेट होती है या पैदा होती है। जो कामगार जो भूमिगत खान के नीचे सैकड़ों मीटर के नीचे काम करते हैं वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कष्ट करते हैं, कैसे परेशानियों से वो गुजरते हैं, वो कैसा कोयला निकालते हैं, फिर कोयला निकल के वो बाहर कैसे आता है, फिर वो थर्मल पावर स्टेशन तक कैसे जाता है और वहां से वो बिजली तैयार कैसी होती है, वो हमने इस थीम के अनुसार दिखाया है।
4: इट वॉज वेरी गुड, समथिंग न्यू, कुछ डिफरेंट था एंड वी गॉट टू नो कि कैसे लोगों का स्ट्रगल है इन दिस माइन एंड ऑल, सो इट्स वेरी गुड, समथिंग न्यू।
0: श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है जो मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहा है। इस संपूर्ण झांकी को तैयार करने में 3 महीने लगे हैं। महाराष्ट्र के जालना में बजरंग गणेश मंडल ने इस साल भगवान गणेश के स्वर्ण चरण दर्शन की विशेष व्यवस्था की है। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के तर्ज पर जालना में भी श्रद्धालुओं को जालना के राजा के स्वर्ण चरणों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। इस साल पहली बार गणपति बप्पा की मूर्ति पर स्वर्ण चरण स्थापित किए गए हैं। जालना और मराठवाड़ा के कई श्रद्धालु विभिन्न कारणों से मुंबई जाकर लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को जालना में ही लालबाग के राजा के तर्ज पर स्वर्ण चरण दर्शन का लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ गणपति के दर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में गणेश उत्सव में हर साल कुछ नया और अनोखा करने के लिए पहचान बना चुकी न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण केंद्र बनी है। इस बार मन्नत मंदिर तारापीठ बंगाल की थीम पर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के 21 फीट बड़ी प्रतिमा के दर्शन से पहले श्रद्धालु माता तारा का आशीर्वाद ले रहे हैं। यही नहीं, आस्था के साथ साथ इस बार पंडाल में प्रकृति और पक्षियों की झलक भी देखने को मिल रही है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष प्रकार के बांस जैसी सामग्रियों से सजावट की गई है। कुल मिलाकर पंडाल में प्रकृति संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की गई है। इस भव्य पंडाल की खास बात है 500 घोंसले, जो पक्षियों को बचाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से करीब 50 विशेषज्ञ कारीगरों की टीम के सदस्यों ने रात दिन काम कर इसे 45 दिनों में तैयार किया है। अब हैदराबाद के नव वानर पंडाल का दर्शन कीजिए। इस पंडाल का अनोखा थीम लोगों का ध्यान खींच रहा है। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण से जुड़े प्रसंग को भव्यता से शामिल किया गया है। इस मंडप को TRT यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने डिजाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान गणेश के साथ राम अवतार भी दिखाना है। आयोजकों का कहना है कि वे गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को केंद्र में रखते हुए भगवान राम की अयोध्या वापसी के जश्न को दिखाना चाहते थे। पंडाल की शानदार सजावट में भगवान राम से जुड़ी कई चीजें शामिल हैं, जैसे राम सेतु, लंका और भगवान राम की सेवा करते हनुमान और वानर सेना। इसे करीब 70 कलाकारों ने 15 दिन में पूरा किया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, जालना से गौरव साली, दुर्ग से रघुनंदन पांडा और हैदराबाद से अब्दुल वसीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 23,346 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 1600 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,56,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 5,000 रुपए की उछाल आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,47,000 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.91 रुपए हो गई।
5: फिल्म जय हिंद जय सिंध का पहला गाना जारी हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
0: गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय पहली बार फिल्म तुम मेरे हो में साथ नजर आएंगे। एक्शन, एडवेंचर और रोमांस से भरपूर ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ईशा मालवीय इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म का निर्देशन आशीष पांडा ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीन प्ले निरंजन अयंगर और पूर्वा नरेश ने लिखा है। फिल्म को रेवा क्रिएटिव हाउस और देवगुरु फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। आरतीएस और देवीना बनर्जी इसके निर्माता हैं, जबकि रोमांच मेहता और अमन रियास्ती को प्रोड्यूसर हैं। रिची मेहता की फिल्म फूलन का 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अमेजन MGM स्टूडियोज की यह हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म TIFF 2026 के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में दिखाई गई। रिची मेहता ने फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है। फिल्म स्नेहा कुमारी ने फूलन देवी की भूमिका निभाई है और कहानी उनकी जिंदगी के एक अहम 48 घंटे की घेराबंदी पर आधारित है। प्रीमियर में फिल्म से जुड़े कई कलाकार, निर्माता और इंडस्ट्री से जुड़े लोग मौजूद रहे। मशहूर गायिका MS सुभालक्ष्मी की बायोपिक आधिकारिक लॉन्च चेन्नई की प्रतिष्ठित म्यूजिक एकेडमी में हुआ। इस पैन इंडियन फिल्म में रश्मिका मंदाना MS सुभालक्ष्मी का किरदार निभाएंगी। फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्नानुरी करेंगे, जबकि अनिरुद्ध रविचंद्र इसका संगीत तैयार करेंगे। प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, बनीवास और रॉकलाइन वेंकटेश इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। MS सुभालक्ष्मी की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित लॉन्च में कमल हासन ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फिल्म के पहले शॉट के लिए क्लैप दिया।
5: न्यूज़ पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक, शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बापा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बप्पा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां उम्र छोटी है लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है। पिता का प्यार और जिम्मेदारी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। पिता ने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, पीठ पर टोकरी बांध कर उसमें बच्चे को सुरक्षित खड़ा किया और साथ साथ घर के काम भी करते रहे। उनके लिए बच्चे की देखभाल सबसे जरूरी है। पिता का ये अंदाज भले ही साधारण नजर आए, लेकिन इसमें अपने बच्चे के प्रति अपार प्यार, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई देती है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है, जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की ये मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती हैं। आखिरी T20I मैच के बाद स्टैंड्स में एक अफगानिस्तान फैन का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मैच खत्म होने के बाद जहां ज्यादातर लोग अपने अपने घर लौट गए, वहीं ये फैन दर्शकों द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करता नजर आया। खास बात ये रही कि वहां कोई कैमरा या दिखावे की कोशिश नहीं थी, उसने बस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सफाई की। इस छोटे से काम ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर उसकी खूब तारीफ हो रही है। चीन के टीचर का बच्चों को डांस सिखाने का अंदाज वाकई देखने लायक है। वो बच्चों को सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखा रही, बल्कि हर मूवमेंट के साथ भावनाओं को भी समझा रही है। उनके एक्सप्रेशन, धैर्य और बच्चों के साथ तालमेल ने इस पूरे वीडियो को खास बना दिया है। बच्चों को इतने प्यार और खूबसूरती से डांस सिखाते देख कर लोग भी हैरान हैं। सच कहा जाए तो डांस सिखाना सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझने की भी कला है।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी शाकाहारी खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पनीर की। देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, आगे कई बड़े त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे में पनीर की खपत बढ़ना तय है। लेकिन डिमांड के मुकाबले पनीर की सप्लाई करने के लिए बाजार में एनालॉग पनीर बेचा जाता है, जो कि असली दूध से नहीं बनता, इसलिए सेहत के लिए ये नकली पनीर खाना ठीक नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनालॉग पनीर को लेकर सख्त कदम उठा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फूड सेफ्टी अथॉरिटी सिंथेटिक पनीर सिंथेटिक तरीके से पनीर तैयार करने वाले एनालॉग पनीर को पूरे देश में बैन करने की तैयारी कर रही है। एनालॉग पनीर को लेकर कई राज्यों में पहले ही पाबंदी लग चुकी है, इनमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक शामिल है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ रजत पुनहानी के मुताबिक 24 सितंबर को एनालॉग पनीर के मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक में राज्यों से सहमति बनने के बाद देश भर में एनालॉग पनीर पर बैन लगाने का फैसला किया जा सकता है। एनालॉग पनीर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दिखने और इस्तेमाल करने में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन ये सिंथेटिक तरीके से तैयार होता है। एनालॉग पनीर बनाने में दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर और दूसरे सस्ते खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। असली पनीर खासतौर पर दूध से तैयार होता है, जो कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर देश भर में एनालॉग पनीर पर बैन लागू होता है तो ऐसे में रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग और दूसरे फूड बिजनेस को अपने पनीर की जांच करनी पड़ सकती है। रेस्टोरेंट को अपने पनीर के सप्लाई और सोर्स की जांच करनी होगी, मेन्यू में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सही जानकारी देनी होगी। आम लोग भी पनीर खरीदते समय पैकेट पर दिए गए विवरण को जरूर पढ़ें। एनालॉग या नॉन डेयरी जैसे शब्द दिखाई दें तो उसे असली दूध वाला पनीर ना समझें। इसके साथ ही खुले तौर पर बिकने वाले नकली और बेहद सस्ते पनीर को लेकर सावधानी बरतें। जाहिर है पनीर से बनी डिश काफी पसंद की जाती है, लेकिन इनमें सिंथेटिक तरीके से तैयार एनालॉग पनीर का ज्यादा इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप बता रहे एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी खाद्य सामग्री में, और मैं इसका विरोधी हूँ बस। और अगर इस पनीर को आप बैन कर रहे हैं तो हम जो नेचुरल चीज़ हैं, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना बहुत है, लेकिन उसकी गुणवत्ता की भी पहचान होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, जब फेस्टिवल आता है तब इक्का दुक्का जगह छापेमारी कर देते, उसके बाद धड़ल्ले से वही चीज़ मिलावट वाली बिकना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए।
8: जहाँ तक मैं मानता हूँ एनालॉग पनीर और हमारा जो नेचुरल पनीर है, सो उसके बीच में हम जो है एक पैसे को और अपनी हेल्थ को बीच में नहीं ला सकते। तो हम जो प्रेफर करेंगे, हमारे लिए पहले हेल्थ है, तो हम बैन कर रहे हैं उसको। अच्छा है क्योंकि हमारा सेहत के लिए सभी उससे सेहत अच्छी रहेगी, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि हमारा जो नेचुरल जो हमारा पनीर होता है वही बेस्ट रहेगा सेहत के लिए, और हम ये जो एनालॉग है और जो भी हम मिक्स अप करके जो बनाते हैं ये सेहत के लिए अनहेल्दी है, तो उसको हम अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा।
9: हमेशा हेल्थ को ही प्रेफर करेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पैसा तो वैसे भी लगना ही है। अब बीमार होने से अच्छा है कि खा के थोड़ा सा यूजफुल हो जाए हमारे लिए वो चीज़ है। मैं सोलो रहती हूँ यहाँ पर, तो मेरे साथ इशू ये होता है कि जब मुझे वेजिटेरियन खाना होता है तो प्रोटीन में मुझे बस पनीर खाना होता है। हम अमूल से ऑर्डर करते हैं या कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो हमें बहुत इश्यू होता है, क्योंकि वो पनीर का टेस्ट आता नहीं है। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि घर पे जाके दूध को गर्म करके उसको पनीर निकालें, तो हम टोटली डिपेंडेंट है बाहर के पनीरों पे, वही खा रहे हैं। और आज 3-4 साल बाहर रहने के बाद हमारा हेल्थ इश्यू इतना बढ़ गया है कि बता नहीं सकते हमारा सिचुएशन क्या है। घर पे रहना, फैमिली वालों के साथ रहने में ये इशू नहीं है, बट सोलो अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड मैं प्रेफर करूंगी कि हाँ होना चाहिए।
5: एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स से बिक्री आज से शुरू हो गई है। नए आईफोन की दीवानगी इस कदर छाई हुई है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। स्टोर खुलने के लिए लोगों को कई घंटे का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली, नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। यंग जनरेशन में इसका खासा क्रेज दिख रहा है।

0: परवानगी नहीं तो और क्या है, आईफोन लेकर ये लोगों का क्रेज नहीं तो और क्या है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, शहर अलग अलग, लेकिन सभी शहरों से आ रही तस्वीरें आईफोन लवर्स की दीवानगी को बयां कर रही थी। एप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री आज से देश में शुरू हो गई है, जिसे पहले पहल खरीदने की होड़ इस कदर लगी है कि लोग रात से ही स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
1: कीमतों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया की खूबसूरत बात यही है कि आपको EMI ऑप्शंस मिल जाते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे आपको फुल कैश, इतने सारे फाइनेंसेस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक लोग इतना ज्यादा कंसर्न भी होंगे, वो सेंटिमेंट वही लेके आ रहे हैं कि मुझे तो आईफोन लेना ही लेना है। और कलर्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि उनको बर्गंडी कलर बहुत पसंद आ रहा है।
0: दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में देर शाम से ही ग्राहकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। रात होते होते लोगों ने एप्पल स्टोर के बाहर कतार लगा ली। एप्पल स्टोर ने बाहर ग्राहकों के बैठने का इंतजाम कर रखा था।
2: मेरे को फोनों में बहुत इंटरेस्ट है, हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं।
0: iPhone 18 के ये दोनों मॉडल लेटेस्ट जनरेशन A20 Pro चिपसेट से लैस हैं और इनमें कंपनी का नया इनहाउस C2 मॉडेम भी है। इस बार के प्रो मॉडल्स में बेहतर बैटरी लाइफ भी देखने को मिल रही है, जहां iPhone 18 Pro में इस बार 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, वहीं 18 Pro Max में 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। दोनों ही डिवाइस में गर्मी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नए वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे हैवी टास्क के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। ये दोनों फोन 4 कलर ऑप्शन डी ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर ब्लू और बर्गेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किए गए हैं। दोनों ही डिवाइसेस 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध हैं। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए से शुरू होती है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 रुपए से शुरू होती है। भारत में एप्पल आईफोन का क्रेज लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी तस्दीक दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु समेत भारत के तमाम शहरों से आ रही तस्वीरें कर रही हैं। भारत में एप्पल का रेवेन्यू पहली बार $10 बिलियन यानी करीब 96 करोड़ के आंकड़े के पार कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आईफोन की बिक्री का है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईफोन बाजार बन गया है, जहां प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल की वैल्यू शेयर हिस्सेदारी करीब 28% है। कल तक खास लोगों तक पहुंच रखने वाले आईफोन अब आम लोगों की जद में भी आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 70% से ज्यादा आईफोन आसान फाइनेंस और EMI विकल्पों के जरिए खरीदे जाते हैं, जिससे आम लोग भी इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं। दिल्ली से अमित और साइरस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन की राजधानी में आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त क्रेज। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी चीजें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन की राजधानी बीजिंग में आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। एप्पल स्टोर के बाहर नए आईफोन को खरीदने के लिए लंबी कतारें नजर आई। किसी को आईफोन का नया ग्लेशियर कलर पसंद आया, तो कोई डायनामिक आइसलैंड और बेहतर कैमरा क्वालिटी को लेकर उत्साहित दिखा। स्टोर पहुंचे एक यूजर ने बताया कि वो खास तौर पर ग्लेशियर कलर लेने आया था और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे फोन मिल गया। यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर मिले पॉजिटिव रिव्यू के बाद उन्होंने नया आईफोन खरीदने का फैसला किया। पेरिस में मशहूर कलाकार केरी जेम्स मार्शल की कला का खास प्रदर्शन होने जा रहा है। द हिस्ट्रीज नाम की इस प्रदर्शनी में 4 दशक के करीब 70 कलाकृतियों को शामिल किया गया है। मार्शल की कला में अश्वेत किरदार और उनकी पहचान अहम विषय रहे हैं। बड़े आकार की पेंटिंग्स में अलग अलग काले शेड्स के साथ चमकीले रंगों और ग्लिटर का शानदार इस्तेमाल दिखाई देता है। प्रदर्शनी में इनविजिबल मैन भी शामिल है। फ्रांस में मार्शल की ये पहली प्रमुख प्रदर्शनी है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगी ये प्रदर्शनी 24 जनवरी 2027 तक चलेगी। दुबई का एक म्यूजिक स्कूल अब बच्चों और युवाओं के टैलेंट को ग्लोबल पहचान दिलाने का मंच बन रहा है। द म्यूजिक पाथ के जरिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं, जिससे उन्हें लाखों दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलता है। स्कूल के को फाउंडर पैट्रिक एब्डो स्टूडेंट्स को म्यूजिक की ट्रेनिंग देते हैं। कई कलाकारों के फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़े हैं। लेबनान से शुरू हुए इस स्कूल का 2022 में दुबई तक विस्तार हुआ। 7 साल की तालिया आयास भी इसकी खास मिसाल हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। चीन के इनर मंगोलिया में एक दंपत्ति ने ऊँटनी के दूध से ऐसा कारोबार खड़ा किया जो घाटे से निकलकर लाखों की बिक्री तक पहुंच गया। 2020 में सिर्फ 20 मादा ऊँटों से शुरू हुआ ये फार्म अब 670 से ज्यादा ऊँटों का घर है। यहाँ सुबह करीब 3 बजे से दूध निकालने का काम शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में कारोबार को 10 लाख युआन से ज्यादा का घाटा हुआ, लेकिन पुराने ऊँट पालकों से सीख लेकर दंपत्ति ने कारोबार को संभाला। पिछले साल बिक्री 60 लाख युआन पार रही, जबकि इस साल 90 लाख युआन का अनुमान है। लंदन फैशन वीक के पहले दिन ईस्ट लंदन के लेबल एग्रो स्टूडियो ने अपने ग्लास बॉडी कलेक्शन से खास छाप छोड़ी। भूमिगत कंक्रीट स्पेस में हुए शो में ग्लास और रोशनी का शानदार इस्तेमाल देखने को मिला। रिफ्रेक्टेड लाइट ने डिजाइन को अलग चमक दी। कॉर्सेट और शार्प सिल्हुट कलेक्शन के खास आकर्षण रहे। आर पार दिखने वाले पैनल और 4 बालकनियों से कैटवॉक का नजारा बेहद खास बना। कोएड कलेक्शन में पुरुषों और महिलाओं के लुक शामिल रहे। कॉर्सेट से लेकर स्पोर्ट्स वेयर तक फैशन का अनोखा मेल दिखाई दिया।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
3: भारतीय विमेंस टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
4: भारतीय विमेंस टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने आज क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराया। कोरोगे स्पोर्ट्स पार्क में जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने शेफाली वर्मा के नाबाद 40 रन की मदद से 58 रन का टारगेट 5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 2023 एशियन गेम्स का डिफेंडिंग चैंपियन है, टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अरुण सिंह धूमल एक बार फिर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं। हालांकि बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में अजीत अगरकर के कार्यकाल को बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ। अगरकर ने बीसीसीआई से अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की मांग की थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2026 तक है। पिछले साल उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। 48 साल के अगरकर जुलाई 2023 में सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अंडर 19 डेब्यू किया। गुजरात के राजकोट में खेले गए पहले यूथ वनडे में भारत अंडर 19 टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए उन्होंने 28 रन बनाकर भारत की जीत में अपना अहम योगदान दिया। आज भारत अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 7 रन से हरा दिया। बारिश के कारण मुकाबला 20-20 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 175 रन ही बना सकी।
3: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409-22। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409-22। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
1: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक, शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बरसाना में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुए एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और एचटीटी 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंदल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना,
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हर मनोकामना पूरी करने वाले गणपति की। बप्पा के आशीर्वाद से ही खुशियां मिलती हैं, मुश्किलें दूर होती है, इसलिए आभार जताने के लिए श्रद्धालु उनके पंडाल पहुंचते हैं। इसमें आम लोगों के साथ बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। आज आपको बप्पा के दरबार पहुंचे रणवीर सिंह और अंबानी परिवार की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद मुंबई के जाने माने पंडालों की भव्यता दिखाएंगे, साथ ही दर्शन कराएंगे देश भर में गणपति के अजब गजब पंडालों का। किसी पंडाल में बप्पा की प्रतिमा के पास जीवित सफेद मूषक प्रसाद खाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बप्पा बिजली बनाने वाले मजदूरों के रूप में मौजूद हैं। खूबसूरती ये है कि श्रद्धालुओं ने जहां बप्पा का पंडाल कैंडी और चॉकलेट से बनाया है, वहीं गोलगप्पे से गणपति की पूरी प्रतिमा बना दी है। आज आपको महाराष्ट्र और गुजरात के ऐसे ही भव्य पंडाल दिखाएंगे। शुरुआत मुंबई से, जहां बप्पा की भक्ति अपने चरम पर है। लालबाग चा राजा से लेकर मुंबई के राजा तक बड़े बड़े पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आम भक्त हों या देश के बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड के सितारे, बप्पा के दरबार में सभी सिर झुकाने और आभार जताने पहुंच रहे हैं। लालबाग चा राजा ही नहीं बल्कि गणेश गली में मौजूद मुंबई के राजा के पंडाल में भी जबरदस्त भीड़ है। इसके अलावा जीएसबी गणपति के पंडाल में भी धूम है, जहां 60 किलो से ज्यादा सोने से प्रतिमा की सजावट की गई है। देखिए ये रिपोर्ट।

बाप्पा के दरबार में न कोई छोटा न कोई बड़ा है, हर आदमी सिर झुकाए हाथ जोड़े दर्शन के लिए कतार में खड़ा है। चाहे वो देश के बड़े उद्योगपति हों या बॉलीवुड के धुरंधर, सब जानते हैं, सब मानते हैं कि गणपति के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाल बागचा के राजा में गहरी श्रद्धा है, इसलिए पंडाल में आम लोगों के साथ खास लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अंबानी परिवार बापा के दर्शन के लिए हर साल यहां आता है। इस साल भी एंटीलिया चाराजा की विदाई के बाद मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत और बहू राधिका के साथ बापा के दरबार पहुंचे। पारंपरिक कपड़े, देसी रंग और असली मास्क था। परिवार ने पूरे भक्तिभाव से गणपति का आशीर्वाद लिया।

0: इसी तरह एक्टर रणवीर सिंह भी लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे। फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी से लेकर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेगनेंसी तक रणवीर सिंह के लिए ये साल बेहद खास गुजरा है। स्वाभाविक है कि इसके लिए रणवीर ने गणपति के सामने आभार जताया। हाँ, इस दौरान फैंस से भी मिले, उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। लालबागचा राजा के बाद रणवीर ने पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ सिद्ध विनायक मंदिर में भी दर्शन किया। गणेशोत्सव की धूम में रणवीर और दीपिका को शामिल देख उनके फैंस खुशी से भर गए। असल में मुंबई के बड़े मंदिर हों या बड़े पंडाल, रोज बप्पा को देखने पूजने के लिए लाखों की तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं। चलिए लालबागचा राजा के बाद आपको मुंबई के राजा के दर्शन करवाते हैं। मुंबई के राजा यानी गणेश गली गणेश उत्सव मंडल इस बार अपना 99वां साल मना रहा है और हर साल की तरह इस बार भी पंडाल भव्य बनाया गया है। संतों की थीम पर पंडाल बनाया गया है जिसे देखकर श्रद्धालु गदगद हैं।
1: सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है, इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ इस तरह की थीम है। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है, जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं, वो सारी चीजें रखी गई हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, ये गूंज सिर्फ गणेश गली में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मुंबई के हर उस गणेश पंडाल में देखने को मिल रहा है जहां पर गणपति बप्पा विराजमान हैं। सीधे भीतर की तरफ चलते हैं, आप देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। बाल रूप दिया गया है गणपति बप्पा को और भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास VIP VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: और जहाँ तक बात है बप्पा की प्रतिमा की तो वो अद्भुत है। 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश की प्रतिमा अपनी भव्यता और संतुलन के लिहाज से बेजोड़ है, लेकिन बप्पा की सवारी मूषक महाराज की कल्पना तो हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र के अंदाज में धोती कुर्ता और सफेद टोपी, लेकिन उस पर भगवा गमछा और हाथ में सनातन का झंडा। क्या गजब का स्वरूप है, क्या गजब की भावभंगिमा।
1: आप देखें कि लोगों ने अपने मोबाइल चालू कर रखे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं और क्वालिटी टाइम जो है वो बिता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हर कोई चाह रहा है कि एक बार बप्पा को निहार लें, एक बार कम से कम बप्पा को देख लें। जैसा कि मैंने बताया, संतों की तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है, खुद संत बन करके बड़े ही विशाल रूप से यहाँ पर ये खड़े हैं। सभी कार्यकर्ता हैं और लगातार बप्पा के लिए सेवा देते हैं। थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मनोज।
1: अच्छा, ये बताइए कि बाल रूप है बप्पा का, क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं।
2: ये साल का हम लोग का 99 ईयर्स है मंडल का, और ये टाइम हम लोग ने महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है उसको दिखाने का मंडल का प्रयास है, और उसी रूप में हम लोग ने भगवान गणेश का रूप दिया है, जो अष्टभुजाधारी बाल रूप गणेश के रूप में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान की मूर्ति है। तो ये बहुत ही प्यारी मूर्ति हमारे जो मूर्तिकार है आकाश तिरमल, उन्होंने बनाई है।
3: नहीं, महाराष्ट्र के संत वारकरी संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। मतलब ये जितने भी संत हैं महाराष्ट्र में, उनकी जो लीलाएं हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है।
0: मुंबई के राजा का दरबार है तो स्वाभाविक है कि भव्य है, विशाल है। संतों की प्रतिमाओं के अलावा पूरा सेट गरिमा से परिपूर्ण है। इस मंडल को मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है और लालबाग की तरह यहाँ भी रोजाना लाखों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई के राजा के बाद आपको देश के सबसे महंगे गणपति के दर्शन करवाते हैं, और वो है मुंबई GSP गणपति। जैसी प्रतिष्ठा वैसी ही भव्यता, बप्पा का दरबार यहाँ भी क्या खूब सजा है। लेकिन इसकी असली खूबी आपको बताते हैं। बप्पा को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। साथ ही 703 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरानी हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए मैं मौजूद हूं जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है। खास बात यह है कि मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी पंडालों में गणेश बप्पा को विराजमान किया गया है, उनका विसर्जन इस बार 12 दिनों बाद होने वाला है, लेकिन जीएसबी एकमात्र ऐसा मंडल है जिनका विसर्जन 5 दिन में ही कर दिया जाता है। बड़ी मिन्नतें हैं यहाँ, जो कोई भी आता है लोग मांगते हैं, पूरा हो जाता है। यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दरबार में पहुंच जाता है और सिर्फ एक बार उन्हें निहारना चाहता है।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं गिरगांव के राजा का पंडाल, जो बच्चों को खूब पसंद आ रहा है और उसकी वजह भी है।
1: जीएसबी मंडल जो है ये साउथ इंडियन लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है और साउथ स्टाइल में इनकी पूजा होती है। बप्पा का दर्शन लेने के बाद तुरंत ही लोग भंडारे की तरफ निकलते हैं। भंडारा पास में ही होता है, प्रसाद के रूप में खाना खिलाए जाते हैं और थाली में वो पकवान सजाए जाते हैं जो साउथ इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें सांभर, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं। बड़े ही मजे में खुश होकर के लोग वो खाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से दिव्यांग भी यहाँ पर आते हैं, बकायदा दर्शन करते हैं। खास बात ये है कि मंडल के जो यहाँ पे सेवाकार हैं वो सभी इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और बकायदा गणपति बप्पा का आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। मैं मौजूद हूँ इस बड़े मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल में, जिसे वाकई में देश का

0: सेलिब्रिटी भी फिल्मी दुनिया से आते हैं। इस समय हमारे साथ में बॉलीवुड एक्टर युवराज मौजूद हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। तो फाइनली आप भी जीएसबी बाबा के पंडाल में पहुंच चुके हैं, क्या मनाया, कैसा यहाँ पर क्या कुछ देखा और क्या कहना चाहेंगे?
1: गणपति बप्पा मोरिया,
0: मंगल
1: मूर्ति मोरिया। सौभाग्य है हमारा, हम जीएसबी गणेश मंडल में है, अभी बाबा के दर्शन किए और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है। यहाँ पे दर्शन ही नहीं लेकिन बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और जीएसबी मंडल का एक बहुत अच्छा प्रसाद भी हमें मिला, जो एक साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा अनोखा प्रसाद, और रौनक है यहाँ पर, बाबा के भक्त है। मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ।
2: बप्पा की ऐसी खास प्रतिमाएं और पंडालों के दर्शन के लिए हर उम्र हर तबके के लोग पहुंच रहे हैं और वातावरण में एक ही जय घोष गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के दरबार इस बार सिर्फ भक्ति का रंग नहीं दिखा रहे बल्कि अलग अलग संदेश और परंपराओं की झलक भी दे रहे हैं। कहीं खदान में मजदूर बनकर बप्पा सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं तो कहीं गणना राय के दरबार में जगन्नाथपुरी की दिव्यता नजर आ रही है। कहीं बप्पा के स्वर्ण चरण भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं पंडाल में रथ यात्रा का अद्भुत संसार सजा है। तस्वीरें अलग हैं लेकिन हर जगह गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया। देखिए ये रिपोर्ट।

0: पप्पा ने थामा है खदान का औजार, सर पर सजा है सुरक्षा हेलमेट, कहीं गणराय के दरबार में जगन्नाथ धाम का दिव्य स्वरूप है तो कहीं स्वर्ण चरणों के दर्शन श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव के पंडाल सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भक्ति के साथ संदेश, परंपरा के साथ कल्पना और आस्था के साथ सामाजिक सरोकार की अनोखी तस्वीर पेश कर रहे हैं। चंद्रपुर में वटगांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 10वें साल को खास अंदाज में मनाया है। अंधेरी भूमिगत कोयला खदान, सुरंगों के बीच काम करते मजदूर और उन्हीं के बीच अलग अलग रूपों में विराजमान विघ्नहर्ता, कहीं बप्पा खदान के भीतर जाते दिखाई देते हैं तो कहीं काम की जगह यानी वर्किंग फेस पर कोयला निकालते नजर आते हैं।
1: इस वक्त हम चंद्रपुर के शिव छत्रपति सार्वजनिक गणेश मंडल में हैं। यहाँ पर इस बार बेहद ही खास झांकियां तैयार की गई है। बप्पा को यहाँ पर खान कामगार के तौर पर दिखाया गया है। ये देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ बप्पा को एक कामगार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खास बात यह है कि चंद्रपुर को जो है, चंद्रपुर में कई प्रकार की कोयले की खाने हैं, जिसके इसलिए चंद्रपुर को कोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर बिजली निर्माण भी बड़े पैमाने पर होती है और इस मंडल की तरफ से एक बेहद खास संदेश दिया जा रहा है कि बिजली कैसे बचाई जाती है और बिजली निर्माण के लिए लगने वाला कोयला कैसे निकलता है, यहाँ बप्पा के माध्यम से यहाँ दिखाने का इस मंडल का प्रयास है।
0: ड्रिल मशीन से छेद करने की प्रक्रिया हो, सुरंग में ब्लास्टिंग की तैयारी हो या फिर SDL लोडर से कोयले को कोल टब्स में भरने का काम, पूरी माइनिंग प्रक्रिया को झांकी के जरिए जीवंत किया गया है। सिर पर हेलमेट, पैरों में गम्बूट्स और हाथों में काम के औजार, गणपति का ये रूप उन मजदूरों के समर्पण को सलाम करता है जो जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे जाकर देश के लिए ऊर्जा जुटाते हैं।
2: गणपति बाप्पा होरिया, मंगल मूर्ति होरिया।
3: मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं काम किया हूँ थर्मल पावर स्टेशन में, पर आज मुझे एक्चुअली पता चला है कि कोयला बाहर कैसे निकलता है, उसमें क्या प्रोसीजर सब होती है, और उसी माध्यम से मेरे को भगवान के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।
4: अपने चंद्रपुर में इतना सारा माइंस चलता है, लोगों को इतना पता है कि माइंस चलता है लेकिन एक्चुअल में वर्क क्या होता है, कैसे होता है और सेफ्टी के लिए क्या क्या प्राविधान करते हैं, वो सब आज लोगों को या इसके ये गणेश मंडल के माध्यम से मालूम हो रहा है।
0: 3 महीने की मेहनत से तैयार इस प्रस्तुति में सम्मान के साथ एक चेतावनी भी छिपी है, यानी ईंधन हो या बिजली, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल और बचत दोनों जरूरी है।
5: चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं और हमारे चंद्रपुर को एक द ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है और हमारी चंद्रपुर शहर में काफी सारे भूमिगत खदान और ओपन कास्ट खदान है और उसके ऊपर निर्भर ये हमने थीम

0: रखी हुई है। हमारा थीम का ये उद्देश्य यही है कि जो हम बिजली यूज करते हैं वो किस तरह जनरेट होती है या पैदा होती है। जो कामगार जो भूमिगत खान के नीचे सैकड़ों मीटर के नीचे काम करते हैं वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कष्ट करते हैं, कैसे परेशानियों से वो गुजरते हैं, वो कैसा कोयला निकालते हैं, फिर कोयला निकल के वो बाहर कैसे आता है, फिर वो थर्मल पावर स्टेशन तक कैसे जाता है और वहाँ से वो बिजली तैयार कैसी होती है, वो हमने इस थीम के अनुसार दिखाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा बिजली मत खर्च करो, जब यूज है तभी उसका वापर करो, क्योंकि आज अपन अगर हम बिजली का बचत करेंगे तो वो आगे हमको और हमारी पीढ़ियों को काम आएगा।
1: वहीं चंद्रपुर में एक और भव्य दरबार है जो देखते ही बन रहा है। जटपुरा गेट के पास सजे चंद्रपुर के राजा के पंडाल में इस बार गणपति उत्सव के साथ जगन्नाथपुरी की झलक दिखाई दे रही है।
2: हर साल एक बड़ा दर्शन चंद्रपुर के और चंद्रपुर जिले के जो भक्तों को चंद्रपुर के राजा की तरफ से सादर करते हैं। इस साल चंद्रपुर के राजा को 52 वर्ष पूर्ण हो रहे और इस साल की थीम है जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर की 110 फीट की भव्य प्रतिकृति मंदिर की निर्माण की है और जगन्नाथ महाप्रभु का भी दर्शन बापा के साथ में चंद्रपुर के राजा के साथ में हो रहा है।
1: 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के ठीक ऊपर भगवान जगन्नाथ का स्वरूप और दोनों तरफ बलभद्र तथा माता सुभद्रा, सामने करीब 110 फीट ऊंचे मंदिर जैसा विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशी और सजावट ऐसी कि कुछ पल के लिए ओडिशा के जगन्नाथ धाम का एहसास होने लगता है। बप्पा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल उनकी भव्यता को और बढ़ा रहा है। 52 वर्ष में पहुंचा ये आयोजन श्रद्धालुओं को गणेश भक्ति के साथ जगन्नाथ आस्था से जोड़ रहा है।
3: हर साल की तरह इस साल भी चंद्रपुर के राजा का आकर्षण जो है लगातार बना हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ जो है हर साल इसी तरीके से मंडल में पूरी तैयारी के साथ में बप्पा विराजमान होते हैं और भव्य मूर्ति यहाँ चंद्रपुर के राजा की यहाँ पे स्थापना की जाती है। 21 फुट की मूर्ति है और ये जो यहाँ मंदिर जो साकार आ गया है, ये मंदिर पूरा 110 फीट ऊंचाई का है और बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। करीब 3 से 4 महीने का समय इस पूरे यहाँ पर पंडाल को बनाने में लगा हुआ है और खास बात यह है कि इस पंडाल में यहाँ पर जगन्नाथपुरी की झांकी यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ जगन्नाथपुरी की प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है।
1: लेकिन दूसरी ओर जालना में बजरंग गणेश मंडल ने श्रद्धालुओं के लिए पहली बार स्वर्ण चरण दर्शन की व्यवस्था की है। जालना के राजा के नाम से पहचाने जाने वाले इस दरबार में इस साल बप्पा के चरणों को सोने से सजाया गया है। मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर तैयार इस व्यवस्था का मकसद उन भक्तों को यहीं दर्शन का अवसर देना है जो किसी वजह से मुंबई नहीं जा पाते। अमरावती में भी आस्था का रंग कुछ ऐसा ही अनोखा है। नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल के भीतर जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा को साकार किया है।
4: गणेश पंडाल जो है अलग अलग तरह की झांकियां करने के लिए जो है प्रसिद्ध है। हम फिलहाल है अमरावती के जो है नीलकंठ गणेश मंडल में, जहां पर जो है यहां पर इस वक्त जो है वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का महोत्सव यहां पर उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो है भगवान जगन्नाथ जी है, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन जो है यहां पर आपको दिखाई दे रही है और गणपति की जो इस ओर जो है गणपति बप्पा की प्रतिमा जो है वो यहां पर जो है जगन्नाथपुरी जैसे रथ को यहां पर तैयार कर यहां पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की है और इस वक्त जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी जैसा माहौल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हर कोई जो है भक्त हाथ जोड़कर अपने मोबाइल में जो है फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है।
1: रथ पर भगवान जगन्नाथ साथ में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दोनों और मंदिर नुमा संरचनाएं, एक तरफ गणपति बप्पा तो दूसरी ओर बजरंगबली। करीब 85 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं का ऐसा माहौल देने की कोशिश की है जिससे पूरी गए बिना ही रथ यात्रा की अनुभूति हो सके।
5: 80 से 85 साल पुराना मंडल है और यहाँ पहले अखाड़ा था, पहलवान निकी करते थे, उससे फिर यह मंडल तैयार हुआ और अभी संस्था बन गई है, शिक्षण संस्था। बलनन ने अष्टविनायक धार्मिक परंपरा के अनुसार काम करते हैं, अष्टविनायक दर्शन, जगन्नाथ खाटू श्याम, इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कर रहे हैं।
1: जिन भक्तों ने अब तक जगन्नाथ धाम की यात्रा नहीं की, उनके लिए झांकी श्रद्धा और कल्पना का खूबसूरत संगम बन गई है। महाराष्ट्र के इन गणेश दरबारों में तस्वीरें अलग हैं, रूप अलग है, सजावट के अंदाज अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है, बप्पा के दर्शन का। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, जालना से गौरव साली, अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देश में हर तरफ बप्पा की भक्ति के इंद्रधनुषी रंग बिखरे हैं और इसमें चार चांद लगा रही है गणपति की अनोखी प्रतिमाएं। पंडालों की अद्भुत सजावट भी हैरान करने वाली है। आपको हम तीन तस्वीरें दिखाते हैं। राजकोट के पंडाल में श्रद्धालुओं को गणपति बप्पा की विशेष प्रतिमा के साथ साथ सफेद जीवित मूषकों के भी दर्शन हो रहे हैं। गणपति बप्पा के हाथ में रखे मोदक खाते हुए मूषकों को देखकर भक्त अभिभूत हैं। इसी तरह सूरत के एक पंडाल को मैसूर पैलेस की भव्य थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल में विराजित प्रतिमा को गुजरात के सबसे महंगे गणेश जी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बप्पा के मुकुट, बाजूबन, हार और आभूषणों को तैयार करने में लगभग 25 से 30 किलोग्राम सोने और चांदी का उपयोग हुआ है। आभूषणों की चमक बढ़ाने के लिए इनमें करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड जड़े गए हैं। अब जरा पुणे की तस्वीर देखिए, जहां गणपति बप्पा चॉकलेट से नहीं बल्कि पानीपुरी यानी कि गोलगप्पे से बनाए गए। बप्पा की इतनी खूबसूरत और अनोखी छवि देखकर हर कोई हैरान है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: बरसाना सहित पूरे ब्रज मंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक, शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में डीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों की 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और एचटीटी 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: कृष्णगिरी मथुरा के बरसाना में भव्य दिव्य राधाष्टमी का उल्लास, राधाष्टमी के लिए राधा रानी मंदिर की गई सजावट। महाराधा के जन्मोत्सव के रंग में डूबी कृष्ण नगरी मथुरा, आधी रात से शुरू होगा जन्मोत्सव, सुबह 5 बजे किया जाएगा राधा रानी का अभिषेक। राधा अष्टमी पर देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान, श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पुलिस ने लगाए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन की भी तैनाती। राधाष्टमी की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक, श्रद्धालुओं के साथ अच्छे से पेश आने के दिए निर्देश। राधाष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए करीब 16 घंटे तक खुला रहेगा राधा रानी का मंदिर, मंदिर की वेबसाइट पर जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण भी होगा। देशभर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहा जनसैलाब, 5वें दिन लालबाग चौराजा के दर्शन के लिए अनोखी छटा, दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार। लालबाग चौराजा के दरबार में पहुंचे मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मोचन भी साथ लिया बप्पा का आशीर्वाद। गणेश गली के मुंबई का राजा के दरबार में भी दर्शन अभिलाषियों की भीड़, पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई है सजावट, इस बार अपना 99वां साल मना रहा है गणेश गली गणेश उत्सव मंडल। प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है विशाल गरुड़, उसके ऊपर विराजमान है संत तुकाराम की प्रतिमा, वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है इस बार का पंडाल। मुंबई के किंग्स सर्कल स्थित जीएसबी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है जीएसबी सेवा मंडल। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानन, 703 करोड़ रुपए का कराया गया है बीमा। गणपति के दर्शनों के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़, बच्चे जगह जगह बना रहे रंग बिरंगी रंगोली। गजानन के दर्शनों के बाद भक्तों के लिए यहां भंडारे की भी व्यवस्था, इस बार अपना 72वां साल मना रहा है ये मंडल। नवसा पावंदरा विश्वचार राजा के रूप में भी जाने जाते हैं ये महागणपति, भक्तों की हर मनोकामना करते हैं पूरी। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बना गजानन का भव्य पंडाल, गणेश मंडप में नववानर थीम से रामायण की झलक। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण के कई पहलुओं का भी सुंदर प्रदर्शन, इसमें भगवान राम, भगवान हनुमान और वानर सेना को भी किया गया शामिल। इस मंडप को टीआरटी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने किया गया है डिजाइन, भगवान गणेश को राम अवतार में दिखाना मकसद। शानदार सजावट में राम सेतु, लंका और वानर सेना के साथ भगवान राम की सेवा का सुंदर चित्रण, पंडाल की भव्यता देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध। पंडाल की सजावट को तैयार करने में लगभग 50 से 70 कलाकार हुए शामिल, दिन रात मिलकर करीब 15 दिनों तक चला काम। वाराणसी की सड़कों पर दिखी मिनी महाराष्ट्र की तस्वीर, मुंबई के लालबागचा राजा की तर्ज पर वाराणसी में विराजे गणपति बप्पा को धूमधाम से किया गया विदा। वाराणसी में 5 दिन के बप्पा की विदाई में मुंबई की तर्ज पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जुलूस में ढोल ताशे की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने बांधा समा। बप्पा के विसर्जन जुलूस में भूसावल से आए 80 कलाकार हुए शामिल, बुलानाला से निकली शोभा यात्रा का लक्सा लक्ष्मी कुंड में प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भी दिखी गणपति उत्सव की उमंग, धूमधाम से की गई 5 दिन के बापा की विदाई, गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हुआ त्यौहार। बापा की विदाई से पहले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने वेसू केपी कॉलोनी से संगम तक 11 किलोमीटर का निकाला जुलूस, जश्न में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के जालना में विराजे 108 किलो चांदी से बने बप्पा, श्री अनोखा गणेश मंडल में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। गणपति बप्पा की इस अनोखी मूर्ति के निर्माण में करीब आधे किलो गोल्ड की चढ़ाई गई परत करीब 5.5 फीट ऊंची है बप्पा की ये प्रतिमा। बप्पा की मूर्ति निर्माण में करीब 4 करोड़ की चांदी का हुआ इस्तेमाल, सुरक्षा के लिए पंडाल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। राजस्थान के फतेहपुर में भी गणपति उत्सव की उमंग, बप्पा को चढ़ाए गए 56 भोग, गणपति पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। शाम को गजानन की आरती में उमड़ रही भक्तों की भीड़, आरती कर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु, बप्पा को देखने बच्चे भी पहुंच रहे पंडाल। जालना में सजा विघ्नहर्ता का भव्य दरबार, मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर जालना के राजा के स्वर्ण चरण दर्शन का अवसर। नवसाला पावनारा गणपति यानी कि मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में जालना के राजा की विशेष पहचान, बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। चंद्रपुर के एक पंडाल में सिर पर सुरक्षा हेलमेट, पैरों में मजबूत गम्बूट्स और हाथों में औजार लिए नजर आया बप्पा का रूप, कोयला खदान कामगार को समर्पित पंडाल। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने कोयला खदान में होने वाले उत्पाद का जीवंत और आकर्षक दृश्य किया है साकार, दे रहे रूप बिजली बचाने का खास संदेश। बप्पा के इस अनोखे दरबार में भक्तों की भीड़, गणपति का यह अनोखा रूप बना आकर्षक अंकित। चंद्रपुर के राजा की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर के राजा के पंडाल में साकार हुआ पुरी का जगन्नाथ धाम। 21 फीट ऊंची चंद्रपुर के राजा की सुंदर प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल। विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप किया गया है साकार, मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता भक्तों को करा रही जगन्नाथ धाम का एहसास। भगवान गणेश की प्रतिमा के ठीक ऊपर बनाई गई है भगवान जगन्नाथ की झांकी, जबकि बप्पा के दोनों ओर भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां वर्ष बप्पा की मनमोहक प्रतिमा और आकर्षक सजावट को देखने के लिए जुट रही भक्तों की भीड़। अमरावती में दिखा भव्य आध्यात्मिक नजारा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। रथ यात्रा की झांकी के दोनों ओर बनाई गई है मंदिर नुमा रचनाएं, एक मंदिर में गणपति बप्पा तो दूसरे में बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित। भक्तों को एक ही जगह पर हो रहे हैं गणपति बप्पा के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन, उस अनोखे पंडाल को देखने के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। पुणे के भक्तों और पर्यटकों का मन मोह रही है बापा की अनोखी मूर्ति। 21,000 पानीपुरी से हुआ है प्रतिमा का निर्माण। इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीर खींचने के लिए भक्तों की भीड़। इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति की श्रेणी में ये एक नायाब प्रयोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा के साथ साथ मां महालक्ष्मी का हुआ आगमन। पूरे विधि विधान से विराजमान की गई मां महालक्ष्मी। बल्लारपुर के विघ्नेश्वर परिवार में पूरी आस्था और भक्ति के साथ विराजमान की गई मां लक्ष्मी। 150 सालों से चली आ रही आस्था की परंपरा। महाराष्ट्र के परिवारों में ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ और कनिष्ठ गौरी इन दिनों मायके आती हैं। बेटियों के मायके आने की तरह ही किया जाता है मां गौरी का स्वागत। मां के आगमन पर घर में सुख समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से की जाती है पूजा। बनाए जाते हैं पकवान, लगता है भोग। कई परिवारों में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भी होता है आयोजन। महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मंगल कामनाएं देती हैं। भावपूर्ण विदा की जाती है देवी मां। उज्जैन के महाकालेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किए दर्शन। भस्म आरती में हुए शामिल। तिरुपति पहुंचे राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तिरुमला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रार्थना की। राज्यपाल ने ब्रह्मोत्सव के दौरान आयोजित प्रसिद्ध मुथ्यपू पंदीरी वाहन सेवा में लिया हिस्सा। भगवान का लिया आशीर्वाद। अलवर में उज्जैन के महाराज और राजस्थान के लोक देवता भद्री हरि बाबा मेला शुरू। आसपास के राज्य से आए लाखों श्रद्धालु। धार्मिक मेले के शुरू होते ही भीड़ नियंत्रण और भक्तों के सुविधाओं का ख्याल रख रहा है प्रशासन। मान्यता है कि अरावली की वादियों के बीच महाराज भर्तृहरि हरि ने की थी तपस्या और यहां ली थी समाधि। कश्मीर के गांधरबल जिले में आज 2 दिन की हरमुख गंगबल यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार के लोगों को घर आने जाने में होगी आसानी। रेलवे का 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला। इन ट्रेनों से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की तरफ से यूपी बिहार आने वाले यात्रियों को सहूलियत। रेलवे की तरफ से सैलानियों के लिए गुड न्यूज। IRCTC लॉन्च कर रहा है हिमालयन ब्लिस धर्मशाला खजियार विद गोल्डन टेंपल हवाई टूर पैकेज। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा 6 रात और 7 दिन का ये पैकेज। 53,500 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू है कीमत। लद्दाख घूमने वालों के लिए खुशखबरी। जनता के लिए खुला देश का पहला और दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन फ्लावर फील्ड। 10,600 फीट पर खुला है ये ट्विन फ्लावर फील्ड। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है यह सुंदर गार्डन। गार्डन में देखेगी 25 लाख से ज्यादा फूलों की बहार, जिनमें 24 लाख लिली और 1 लाख ग्लाडियोस शामिल। रिकॉर्ड 2 महीने में तैयार किया गया है ये उद्यान। 16 जुलाई को शुरू हुआ पौधे लगाने का काम और सितंबर के पहले हफ्ते में पहली बार खिले फूल। फूलों की खेती के जरिए कृषि में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। भारत में आज से एप्पल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लाइन। आईफोन के शौकीनों में हर उम्र के लोग शामिल। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में सुबह एप्पल स्टोर्स खुलते ही ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा। आईफोन स्टोर्स के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर ग्राहकों का किया स्वागत। दिल्ली ही नहीं, NCR के दूसरे इलाकों में भी आईफोन का गजब क्रेज। नोएडा में भी नए आईफोन की बिक्री पर एप्पल स्टोर में जश्न जैसा माहौल। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव एप्पल स्टोर पर भी सुबह से ही ग्राहकों की भीड़। लोग मॉल के बाहर अपनी बारी का कर रहे इंतजार। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में भी देखने को मिली नए आईफोन की दीवानगी। भीड़ को संभालने के लिए एप्पल स्टोर ने भी किए थे खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आए गुड न्यूज। मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को दिया जन्म। तस्वीरें आई सामने। यूपी में कल से नौकरियों का महाअभियान 19 सितंबर से शुरू होगी। 1,00,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया। लखनऊ में सीएम योगी कल बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस और राजस्व विभाग में भी भर्तियों की तैयारी। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवा के बीच आज लखनऊ में बड़ी बैठक। केंद्र और यूपी सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की करेगी समीक्षा। मेरठ के आसमान में 19-20 सितंबर को दिखेगा सूर्य किरण का रोमांच। 9 हॉक विमानों के साथ होगा यह शो। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री मेला। करीब 40,00,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान। शक्तिपीठ अंबाजी में 7 दिन तक चलेगा भादरवी महामेला। अंबाजी में हर साल 7 दिन तक लगता है भादरवी मेला। पैदल चलकर शक्तिपीठ पहुंचते हैं श्रद्धालु। भादरवी महामेला शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते की टीम ने मंदिर की जांच की। टीम ने मंदिर के मुख्य गेट से मंदिर के हर इलाके की जांच की। इस साल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा भादरवी पूनम का महामेला। गुजरात राजस्थान सीमा पर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है अंबाजी धाम। अंबाजी मंदिर के शिखर पर लगे हैं सोने के 358 कलश। सोने का बना है आधा मंदिर। अंबाजी धाम में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था। दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाने वाली गुड न्यूज। देश को मिले नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के दफ्तर में हुआ कार्यक्रम। सेनाओं को विमान सौंपने के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू हुए शामिल। वायुसेना को मिले एलएसी तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान। सैन्य पायलटों के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती। कार्यक्रम में प्रवन हंस लिमिटेड को सौंपे गए ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। विमानों और हेलीकॉप्टर्स को सेना को सौंपने से पहले रक्षा मंत्री ने पूजा की। फिर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी देखा। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों से हटाई जा रही बर्फ की परत। मणिपुर जिले के गुरेज में तुलाई घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान। बरसाती नाले में फंसे दो संतों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश से अचानक बढ़ गया था नाले का पानी। महाराष्ट्र के बीड जिले में 1.5 महीने के सूखे के बाद कड़कती बिजली के साथ बारिश। किसानों ने ली राहत की सांस। जूनागढ़ के खाड़िया रोड पर एक साथ 6 शेर सड़क पार करते हुए आए नजर। शेरों के इस चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% की हुई बढ़ोतरी। 12.12 लाख करोड़ रुपए हुआ कलेक्शन। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुरू की नशा मुक्ति पंजाब यात्रा। पंजाब में 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना मकसद। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलुरु में सम्मान समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने डीसी ऑफिस में पौधा भी लगाया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हम लोग श्योर है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
8: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई। बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 अकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
1: जी। नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है और इसका देश और दुनिया पर और तमाम राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। क्या कुछ समाधान हो सकते हैं ये भी पंडित जी बताएंगे इस शो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बना रहता है, तो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए रोज सुबह और शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। साथ में कर्ज मुक्ति के लिए अपना प्रयास भी करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा।
0: तो चलिए शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं 19 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, इससे पहले कि जाने कि इसका क्या कुछ प्रभाव होगा, सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या होती है।
1: जी, हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है? देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल की ये स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। और मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले दैनिक राशि फल के बारे में।
1: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है।
1: देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या हो सकता है? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन किए उसके बाद मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में आ गए हैं। जल की तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, जल की तीनों राशियों में ग्रह आ गए हैं। अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं और संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि से बन रहा है। राशि परिवर्तन के समय जल की तमाम राशियां प्रभावित हो गई हैं, इसीलिए ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया के अलग अलग जगह पर तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का तनाव है, अमेरिका ईरान का तनाव है, उसके अलावा कुछ और जगहों पर, अन्य जगहों पर भी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के इलाके और बंगाल के इलाके अशांत हो सकते हैं। यहां पर बेवजह के उपद्रव और अशांति फैल सकती है। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। बेवजह के विवाद भारत में दिख सकते हैं। इस समय जो बड़े पदों पर महिलाएं हैं, जो बड़े स्थान पर महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 12 नवंबर के पहले तक का समय महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक हो सकता है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क सिंह और कन्या राशि वाले लोगों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न समीक्षा ने लिखा है, हमें नागपुर से लिखती हैं। 24 जुलाई 2005 का जन्म है, 3:30 AM नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और दवाई से भी किसी तरह का लाभ नहीं हो पा रहा है, मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा? समीक्षा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पेट की और मानसिक समस्या है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। आपका स्वास्थ्य अभी जून 2027 तक बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा।
1: जी, अगला प्रश्न दीपांशी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, 8 नवंबर 2009 का जन्म है, 5 बजे शाम को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहिए और मेरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। दीपांशी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, मेरे हिसाब से या तो बीएड करके टीचिंग जॉब में जाइए या मैनेजमेंट की पढ़ाई करके अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आपकी उम्र कुल मिला के 17 साल हुई है,

अपने बालक के साथ। लेकिन जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, सोच समझकर विवाह का निर्णय लेना बेहतर होगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में,

0: परिवर्तन का आपकी तमाम राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है?
1: देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। देश दुनिया के लिए समस्याओं की संभावना दिखा रहा है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि वालों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जल्दी का निर्णय इनको मुश्किल में डाल सकता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो वैसे कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है।
0: और आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
1: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना

सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो मंगल की राशि परिवर्तन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है देश दुनिया पर, क्या कुछ असर पड़ने वाला है आपकी राशियों पर, ये तो हमने जान लिया। अब वक्त हो चला है ये जानने का कि राशि परिवर्तन अनुकूल अगर नहीं है तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
0: अब देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन केवल 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ये जो राशि परिवर्तन है ये 8 राशियों के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें भी मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है ऐसे लोग इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करें। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग के कपड़े, जूते, पर्स, लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करेंगे।
1: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: की धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आपका तीसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप भी अगर पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है, उस पर मेल कीजिए, पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। अब आगे बढ़े, पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न डॉक्टर अर्चना शर्मा ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 30 जून 2000, 12:25 दोपहर में, नागपुर महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। अभी आपके पुत्र की कुल उम्र 26 वर्ष हुई है, लगभग 28 साल पूरा करने के बाद 2028 के अंत में या 29 के आरंभ में इनके विवाह होने का योग बन रहा है। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके विवाह का निर्णय सोच समझ कर लिया जाए तो बेहतर होगा। किसी नौकरी करने वाली लड़की से विवाह होगा और अगर कुंडली मिलाकर सोच समझ कर निर्णय लिया जाए तो वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाएं, सुबह और शाम दोनों समय इनको नमः शिवाय का 108 बार जप करने को कहें, अच्छा होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं कि चौथा सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न शिवराम जी ने हमें लिखा है, रांची से लिखते हैं, 25 मार्च 1973 का जन्म है, 11:10 प्रातः, धनबाद झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और बेवजह की चिंताएं मुझे होती रहती हैं, मैं क्या करूं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो। शिवराम जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। फरवरी 2027 तक अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। फरवरी 2027 तक आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की दिक्कतें दिख रही हैं, इसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। हड्डियों की समस्या, पेट की दिक्कत और मस्कुलर प्रॉब्लम मसल्स से संबंधित समस्या की संभावना बन रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह के समय मंगल मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, और हर मंगलवार को गुड़ का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 19 सितंबर को है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, दूर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा क्या है इस बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग के खंडित हो जाने के बावजूद भी उसकी पूजा की जा सकती है। देखिए, शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है, इसके खंडित होने पर भी इसकी ऊर्जा पर असर नहीं पड़ता। इसीलिए शिवलिंग के खंडित होने के बावजूद भी इसकी पूजा की जा सकती है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि 19 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो मंत्र का जप करिएगा। शिव जी का मंत्र जपें तो और भी बेहतर होगा। आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए आगे बढ़ें और अब वक्त हो चला है पंडित जी से ये जान लेने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। आपको पूजा में नियमित रूप से जल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा।
1: चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है जिसे करके आप अपने जीवन की तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में अशुद्ध या बुरे विचार आते हों तो क्या करेंगे। स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धोकर पूजा करिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको शुद्ध मन दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा आपकी पवित्रता से और अच्छे मन से पूरी हो जाएगी।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बात बप्पा की। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। भव्य पंडालों में बप्पा की दिव्य प्रतिमाएं विराज रही हैं। आज हम आपको मुंबई और पुणे के कुछ अलग थीम वाले पंडालों और बप्पा की मूर्तियों के दर्शन कराने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि देश का सबसे महंगा गणेश पंडाल कहां और किस गणपति मंडल का है।

0: भक्तों को विघ्नहर्ता से है बड़ी आस, हर कोई पाना चाहता है उनका आशीर्वाद, और इसी के चलते पहुंच रहा है बप्पा के दरबार। गणेश उत्सव में लालबाग चराजा का दर्शन करने हर दिन बड़ी संख्या में आम से लेकर खास भक्त तक पहुंच रहे हैं। यह मंगल मूर्ति का वो दरबार है जो मनोकामना पूरी करने वाली मान्यता और भव्यता को लेकर प्रसिद्ध है। लालबाग के राजा के अलावा मुंबई में बड़ी संख्या में भव्य गणेश पंडाल है जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। उन्हीं में से एक GSB गणपति का पंडाल भी है जो देश का सबसे अधिक महंगा मंडल माना जाता है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरानी हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए मैं मौजूद हूँ GSB सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। खास बात यह है कि GSB मंडल जो है ये साउथ इंडियन लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है और साउथ स्टाइल में इनकी पूजा होती है। बप्पा का दर्शन लेने के बाद तुरंत ही लोग भंडारे की तरफ निकलते हैं। भंडारा पास में ही होता है, प्रसाद के रूप में खाना खिलाए जाते हैं और थाली में वो पकवान सजाए जाते हैं जो साउथ इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें सांभर, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं।
0: मुंबई के इस प्रतिष्ठित गणपति दरबार में विराजमान बप्पा की भव्य मूर्ति का दिव्य श्रृंगार किया गया है। इस प्रतिमा को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोना और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है। साथ ही इस मंडल का 703 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है। इन सब के चलते ही GSB को सबसे महंगा गणपति पंडाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है जिसमें आम से लेकर खास तक सभी हैं। अब मुंबई के ही इस दिव्य पंडाल को देखिए। मुंबई का राजा यानी गणेश गली गणेश उत्सव के इस पंडाल को इस वर्ष संतों की कथा वाली थीम पर भव्य रूप से सजाया गया है जो वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है। यहाँ एक दिव्य गरुड़ भी विराजमान है जो पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन है।
1: संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है और कुछ इस तरह की थीम है। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है, जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं, वो सारी चीजें रखी गई हैं। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं।
0: गणेश गली गणेश उत्सव मंडल इस बार अपना 99वां वर्ष मना रहा है। संतों के योगदान की कथाओं से सज्जित इस पंडाल में बप्पा की भव्य मूर्ति विराजमान है। ये गणेश मंडल मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है। इसका नाम ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। विशेष बात यह है कि यहाँ विराजने वाले गणपति का 5 दिन में विसर्जन कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। अब पुणे के ही इस दिव्य गणपति पंडाल को देखिए, जिसे विशेष रूप से बच्चों को ध्यान में रखकर सजाया गया है।
2: पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चे हैं इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बाप्पा जी हैं, किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आई है।
3: जहाँ बच्चे आके एंजॉय करे ऐसा कुछ करना था, तभी हमारे दिमाग में आया कि चॉकलेट और आइसक्रीम ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है, उसको लेके कुछ थीम बनाते हैं। तो लास्ट ईयर ही प्लानिंग चालू हो गया था ये थीम पे।
2: कितने दिन लगे इस सब बनाने में?
3: प्रैक्टिकली 3 महीने काम चला और थीम लास्ट ईयर डिसाइड हो गई थी, तो सब आइडियाज वगैरह प्लानिंग चल गए थे।
0: श्री कृष्ण गणपति मंडल के इस पंडाल में थर्माकोल की मदद से चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी और बिस्किट की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं, जो बच्चों को तो आकर्षित कर रही हैं, बड़ों को भी बचपन की याद दिला रही हैं।
4: मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: अच्छा,
4: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
2: क्या क्या देखा आपने?
5: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ देखा मैंने।
2: और आपको क्या पसंद है?
5: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
0: पुणे में एक और गणपति पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पानीपुरी से बनाई गई बप्पा की भव्य प्रतिमा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: गोल गप्पे से बप्पा बनाए, यानी कि पानीपुरी से ये बप्पा बनाए हैं और ये पहली बार पुणे में इस तरह की प्रतिमा बनाई गई है। 21,000 पूरियों से यहाँ पर बप्पा की प्रतिकृति बनाई गई है। मतलब बहुत दिनों से ये काम शुरू था और उसके बाद ये बनाया गया है, लेकिन पूरी नरम होनी नहीं चाहिए, इसकी वजह से मतलब यहाँ पर आप देखिए हैलोजन लगाया है, ऊपर भी लाइट लगाई है और इधर भी लाइट लगाई है। यहाँ पे एफसी रोड है और यही पर आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ हो रही है कि पानीपुरी से किस प्रकार से गणपति जी की प्रतिमा बनाई है।
0: विशेष बात यह है कि पानीपुरी को इस तरह से सेट करके ये प्रतिमा तैयार की गई है, जिससे इसे लंबे समय तक सही रखा जा सके। इस पंडाल के पास से जो भी गुजरता है यहाँ ठहरे बिना नहीं रह पाता। पानीपुरी वाले बप्पा की इस प्रतिमा को देखकर हर किसी का चेहरा खिल उठता है। गणेश उत्सव के दौरान पूरे महाराष्ट्र की छटा बेहद निराली दिख रही है। इस दौरान भव्य पंडाल, दिव्य मूर्तियों के दर्शन के साथ ही भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात नमो भारत रेल की। इस सेवा की शुरुआत होने से लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे दिल्ली से मेरठ की यात्रा आसान हो गई है, समय की बहुत बचत हो रही है। नमो भारत में यात्रा करने वाले लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जानने के लिए जीएनटी संवाददाता मनीष चौरसिया ने इस ट्रेन में सफर किया।

0: नमो भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसने दिल्ली NCR और मेरठ के बीच सफर की तस्वीर बदल दी है। 82 किलोमीटर का सफर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब एक घंटे से भी कम वक्त लगता है, जबकि पहले सफर के लिए घंटों का वक्त लग जाता था। नमो भारत रेल को तैयार करते वक्त यात्रियों की सुविधा के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि नमो भारत स्टेशन व आसपास के सभी ट्रांसपोर्ट के साधन से जुड़ा रहे।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं सराय काले खां के स्टेशन पर, और यहाँ पर आप देखिए कि पूरी FOB तैयार की गई है फुटवर ब्रिज। इसी FOB के जरिए नमो भारत रेल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ा गया है। मतलब आप नमो भारत रेल से यात्रा करते हुए आइए और वहाँ से उतर कर आप सीधे जा सकते हैं इस तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ, और अगर आपको वहाँ से उतर कर दिल्ली के दूसरे इलाकों में जाना है तो आप यहीं कहीं से एग्जिट करिए और सामने आपको ये मेट्रो स्टेशन दिखाई पड़ जाएगा। मतलब आपको कहीं भी अपनी कार लाने की जरूरत नहीं है।
0: दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए किस तरह के दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। अगर उनके साथ भारी सामान हो तो उसे भी उन्हें ले जाने में सहूलियत हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
1: ये FOB जिस तरह से तैयार किया गया है वो दिखाता है कि कैसे नमो भारत रेल ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि लोगों को एक कदम भी जब चलना पड़े तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। खास बात ये भी कि यहाँ आप देखिए कि किस तरह से जो ट्रेवलेटर्स हैं वो लगाए गए हैं। मतलब इस तरह की सुविधाएं आप अमूमन एयरपोर्ट्स पर देखते हैं, ये नहीं होता तो फिर बोरी वोरी लाने में कितनी दिक्कत होती है।
2: बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
1: कैसे लेके आते हो बोरी?
2: सर पे
1: रख के। फिर पैदल चल के दौड़ना पड़ता है।
2: दौड़ना पड़ता है।
1: अभी आ गए आराम से
2: आ गए,
1: कोई दिक्कत तो नहीं?
2: कोई दिक्कत नहीं।
1: आप इतना सामान लेके आई, इस पे खड़ी हो गई आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
3: ना ना दिक्कत नहीं।
1: ये नहीं होता तो कैसे आती?
3: तो भोगना पड़ता, जैसे आता उसे आते।
1: यात्री यहाँ आप देखेंगे तो काफी आसानी से ट्रेवल कर पा रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो या फिर कोई और हो। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, इस बात का ख्याल भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है।
0: नमो भारत रेल की यात्रा से नौकरी पेशा से लेकर स्टूडेंट, बिजनेसमैन, महिला, बुजुर्ग, हर किसी को समय की बचत का फायदा मिल रहा है।
1: यात्रियों की सुविधा के लिहाज से नमो भारत रेल ने क्या कुछ बदला है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम समझने निकले हैं कि कैसे नमो भारत रेल ने दिल्ली और मेरठ के बीच के पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है। वो लोग जो दिल्ली में नौकरी करते थे, मेरठ में रहते थे, पहले दिल्ली में प्रॉपर किराए पर घर लेकर नौकरी करते थे, लेकिन अब वो रोज़ अपने घर से ही दिल्ली की तरफ अप डाउन कर पाते हैं। कितना बदलाव आया है इस पूरे कॉरिडोर में ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने भी अपना टिकट ले लिया है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये विकास की यात्रा कितनी तेज़ दौड़ रही है।
0: पहले की अपेक्षा नमो भारत से यात्रा में बदलाव की हकीकत ट्रेन में यात्रा करने वाले से बेहतर भला कौन बता सकता है।
1: आज हम भी इसमें सफर कर रहे हैं, दिल्ली से हम चले थे, गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और रास्ते में अब हम लोगों से बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि आखिर उनके जीवन में नमो भारत रेल के आने से क्या बदलाव हुए। इसमें एक बहुत बड़ा सर्विस क्लास है जो दिल्ली में जॉब करता था, मेरठ में, गाजियाबाद में रहता था, उनके लिए मजबूरी थी कि वो दिल्ली में आकर किराए का घर लें, क्योंकि रोज सड़क के जरिए यात्रा करना आसान नहीं होता था। इस यात्रा को आसान बनाया है नमो भारत रेल ने।
4: पहले तो पूरा ही दिन लगता था, जाम लगता था काफी लंबा, सुबह आते थे 4 बजे और रात को 9-10 बज जाते थे घर पहुंचने में।
5: मेरठ जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते थे यहाँ दिल्ली से, तो अभी तो यहाँ जैसे 90 किलोमीटर है न्यू अशोक नगर से, तो 30-40 मिनट में पहुँच जाते हैं।
1: पहले कैसे यात्रा होती थी, पहले कैसे आप लोग आते जाते थे?
6: बस से।
1: टाइम कितना लगता था?
6: बहुत टाइम लग जाए, पूरा दिन जाए।
1: अभी कितना बदल गया है?
6: अब तो बहुत बदल गया।
7: अब तो 1.5 घंटे में तय हो जाना जाना, इतना बदल गया।
1: जो लोग कभी किराए का घर लेकर मेरठ या दिल्ली जाते थे उनकी घर वापसी इस ट्रेन ने करवा दी।
0: नमो भारत की ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि इसके डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही वजह है कि दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा होना संभव है।
1: नमो भारत रेल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर एक ही जगह पर आपको नमो भारत रेल और मेट्रो चलती हुई दिखाई पड़ जाएगी। इस वक्त हम मेरठ के पास में ही हैं और ये बेगम पुल स्टेशन है, जो कि स्टेशन है ये उसका नव भारत रेल का भी और ये मेट्रो का भी स्टेशन है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी आप देख रहे हैं कि ये मेट्रो गुजर रही है, इसके पहले नमो भारत रेल गई थी, मेट्रो जाने के बाद फिर से इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नमो भारत रेल भी आएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको नमो भारत रेल से अगर आपको शहर के भीतर जाना है, मेरठ के अंदर जाना है, तो आपको अलग से कहीं और किसी स्टेशन नहीं जाना है, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना है, आप यहीं उतरिए और मेट्रो का इंतज़ार करिए, मेट्रो आएगी, आप मेट्रो पर सवार हो जाइए। आपको मेट्रो के लिए अलग से कोई टिकट परचेज नहीं करना है। जब आप नमो भारत रेल का टिकट ले रहे हैं उसी समय आप वहाँ पर जिक्र कर दीजिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको शहर के अंदर के मेट्रो स्टेशन का टिकट आपके उसी टिकट में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब अलग से आपको कोई और टिकट भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से यात्रियों की सुविधा के हिसाब से उसे तैयार किया गया है कनेक्टिविटी के लिहाज से, वो सब कुछ हमें नमो भारत रेल में दिखाई पड़ता है।
0: इसी साल 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था और अब कुछ ही महीनों में इस कॉरिडोर ने यात्रियों की संख्या के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। नमो भारत से हर दिन 1,00,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। 28 अगस्त को एक दिन में 1,68,000 लोगों ने रिकॉर्ड यात्रा की थी और अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सफर कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि दिल्ली से मेरठ तक जुड़ते एक पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीर है। नमो भारत की कहानी अब सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि NCR में बदलती कनेक्टिविटी और रीजनल ग्रोथ की कहानी बनती जा रही है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: सोचिए, क्लासरूम में बच्चे सवाल पूछे और सामने से जवाब मिले, लेकिन जवाब देने वाला शिक्षक इंसान नहीं बल्कि एक AI ह्यूमनाइड रोबोट हो। महाराष्ट्र के अकोला में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित रोबो शो 2026 में छात्रों के सामने AI रोबोट टीचर आयरिस पेश किया गया। आयरिस ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए, उनसे बातचीत की और बहुभाषी संवाद के जरिए दिखाई शिक्षा के भविष्य की एक झलक। देखिए।
9: ये कोई फिल्मी किरदार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंसानों की तरह सामने वाले की बात सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है और जवाब भी देता है। अकोला के रोबो शो 2026 में आयरिस AI रोबोट टीचर छात्रों और शिक्षकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
10: AI की वजह से एजुकेशन में काफी बेहतर पॉसिबिलिटीज आ रही है। पहले AI ट्यूटर्स जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं वो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ और इफेक्टिव बना देते हैं। इसके साथ AI अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स के थ्रू कंटेंट और पेस वो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेगा।
9: खास बात ये है कि आयरिस सिर्फ सवालों का जवाब देने तक सीमित नहीं है। AI बेस्ड तकनीक के जरिए ये छात्रों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा लचीला और रोचक बनाने में मदद कर सकती है। यानी क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाली बातचीत अब मशीन और इंसान के बीच भी संभव है।
10: AI बेस्ड टूल्स टाइम सेविंग होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, फॉर्मेटिव फीडबैक और लर्निंग एनालिटिक्स जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशन से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सेफ इंटरैक्टिव वे में समझ सकते हैं। AI बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म से पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवेज मिलती है जो एंगेजमेंट को बढ़ाता है।
9: आयरिस की एक बड़ी खासियत है इसका इंटरैक्टिव नेचर। छात्र सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं और रोबोट फौरन प्रतिक्रिया देकर बातचीत को आगे बढ़ाता है। इससे बच्चों के लिए सीखने का अनुभव सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रहता बल्कि तकनीक के साथ एक लाइव इंटरेक्शन में तब्दील हो जाता है।
11: हमें अगर आगे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स करने हैं तो AI टीचर सबसे ज्यादा नेसेसरी है। अगर हमको AI नहीं आता तो हमारा कोई भविष्य ही नहीं है। आगे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन्स में AI नेसेसिटी है ही।
9: बहुभाषी संवाद इसकी एक और खासियत है, यानी भाषा की दीवार को कम करते हुए अलग भाषाओं में छात्रों से बातचीत करने की क्षमता। शिक्षा के क्षेत्र में यही तकनीक आगे चलकर उन बच्चों के लिए भी मददगार हो सकती है जिन्हें पारंपरिक तरीके से किसी विषय को समझने में मुश्किल होती है। रोबो शो में आयरिस ने सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि एक सवाल भी सामने रखा। क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स क्लासरूम का हिस्सा बन सकते हैं? फिलहाल आयरिस को इंसानी शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि शिक्षा में तकनीकी सहयोग की एक संभावित दिशा के तौर पर ही देखा जा रहा है।
12: और ये भारतीय बनावट का टीचर, ये रोल मॉडल, ये हमारे बच्चों के सामने रखा है ताकि आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक बड़ी मजल हासिल करेंगे।
9: कल तक जिस AI को हम सिर्फ स्क्रीन के अंदर देखते थे, अब वही AI इंसानी शक्ल में हमारे सामने खड़ा है, बातचीत कर रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है। अकोला का ये रोबो शो शायद भविष्य की उस क्लास का ट्रेलर है जहां किताब, शिक्षक और तकनीक तीनों मिलकर सीखने का एक नया अनुभव तैयार करेंगे। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेश उत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेश उत्सव का पांचवा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट नजर आ रहे हैं तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराजे हैं तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्रीराम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जागते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा बढ़ा रहा है। वहीं एक पंडाल ऐसा भी है जहां बप्पा को दर्जनों किलो सोना और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से विशेष तौर पर सजा दिया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बाप्पा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बाप्पा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहाँ पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और तो और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम हैं, तप करते हनुमान हैं। ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इसे दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश। कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए कह सकते हैं। कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बापा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बापा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बापा को एक राजा की तरह भी पूछते हैं। और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगते। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को गहना से श्रृंगारित किया है।
0: बापा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बापा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें मांगूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बापा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बापा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बापा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहां आस्था के साथ साथ बापा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत तोती देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चोकोबार।
4: अच्छा, और बापा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला,
5: हाँ, तो ये सब सुंदर चॉकलेट का बंगला।
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई।
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहां विराजे हैं देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्यता को और बढ़ा रहा है। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक पीछे ऊपर की ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति स्थापित की गई है, तो वहीं गणपति के दोनों ओर बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार बाप्पा के दरबार की भव्यता को भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम की विशाल प्रतिकृति ने और खास बनाया है। इस पंडाल में विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे हैं। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
8: देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बाप्पा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बाप्पा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
9: इस साल हम लोगों ने किया राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
8: प्लास्टिक
9: से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कम्प्लीट इको फ्रेंडली। और अभी यहाँ देखेंगे ना कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हाइट हो गई है।
0: पापा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
8: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
10: बहुत फन है, एकदम अमेजिंग।
8: आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
10: अच्छा,
8: मजा आया? हाँ। आपको कैसा लगा भाई?
10: अच्छा लगा।
8: आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
10: बहुत अच्छा लगा।
8: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
10: तीन चार
8: बार।
0: अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा, तस्वीरें पुणे के FC रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में, गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
7: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास, VIP, VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: मुंबई चा राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा

0: नैनीताल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कवल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुँचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हों। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर तो भक्त गदगद हैं ही, लेकिन यहां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं बाप्पा की मूर्ति पर बैठाए गए ये सफेद चूहे। ये कोई रोबोटिक मॉडल नहीं, बल्कि बाप्पा के अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली हैं, जीवित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
1: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है। मूषक हम आज से 6-7 साल पहले ले आए थे, हमारे पास भी है। दादा के पास 10 दिन 11 दिन रखते है, और एक साल हम पूरी उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास ही रखते है।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच रही है। राजकोट में काशी की झलक है तो वहीं मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बाप्पा का दरबार बन गया है। मुंबई चा रिक्शा आणि बाप्पा ची सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है, और इसमें बाप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बाप्पा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाट कोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बाप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है, और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बाप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुमुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और

0: पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहाँ स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत है।
1: तो चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
3: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बाप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुँच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई। बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना। माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत। परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल। गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा। 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री। 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी। 99 अकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो देखिए सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं और इन्हें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक धर्म गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और अस्पताल के एक लैब से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुए कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छू लिए। देखते ही देखते एक क्लिप हर जगह ट्रेंड करने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो स्क्रॉल करते ही सबकी नजरें थम गई। दावा था कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर है। ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के पैर छुए। रील्स और पोस्ट्स में से लेकर गजब का सस्पेंस बन गया। वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैरों के पास झुकते नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग सनातन धर्म की ताकत बताकर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैर के पास झुकते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये समझ आया कि वीडियो को एक खास एंगल से ही दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में ईरानी राष्ट्रपति ने एक हिंदू धर्म गुरु का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। वीडियो में एक कागज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर मौजूद एक व्यक्ति इस कागज को ईरानी राष्ट्रपति को दे रहे हैं और हो सकता है इसी दौरान कुछ नीचे गिर गया है और उसे उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति झुके हैं। लेकिन कैमरे का एंगल ही ऐसा है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति आशीर्वाद लेने के लिए झुके हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति के साथ खड़े संत के बारे में हमने खोजबीन की। पड़ताल के दौरान ये पता चला कि ईरानी राष्ट्रपति जिस हिंदू गुरु के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं उनका नाम जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज है और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित कल्याणपुर के प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ईरानी राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे थे। इसके बारे में हमने लगातार सर्च भी किया और इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि हाल ही में दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारतीय धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दौरान वहां स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो देखिए, हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए तो इसकी चर्चा जो है हर जगह क्यों नहीं हुई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों में जानकारी सामने क्यों नहीं आई। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर एक खास एंगल से शूट कर दिए वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर इस घटना से संबंधित वीडियो मिला। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू धर्म गुरु और ईरानी राष्ट्रपति दोनों को जमीन पर झुकते हुए देखा जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पुजारी का पैर छूने के लिए नहीं बल्कि एक पेन को उठाने के लिए नीचे झुके थे। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि पेन के जमीन पर गिरने के बाद पुजारी भी उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे। इस जानकारी के आधार पर गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने फेसबुक पेज पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया और कार्यक्रम को कवर कर रहे पत्रकार हुसैन मेहदी से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना याकूब अब्बास और आचार्य लोकेश मुनि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को कुछ दस्तावेज दे रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने विनम्रता पूर्वक उन दस्तावेजों को झुककर उठा लिया। इसके बाद हमने आचार्य लोकेश मुनि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। इस दौरान हमें उनके फेसबुक पेज पर एक तस्वीर मिली जिसमें वे ईरान के राष्ट्रपति को एक दस्तावेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिल्ली ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ हुई बातचीत पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, दुनिया की नजरें भारत पर है। मैंने ईरान के राष्ट्रपति को ईरान में अपनी तरह का पहला शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नेताओं के तौर पर हमारा मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर मुद्दे को बातचीत, संवाद और शांति की कोशिशों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द धार्मिक नेता और दुनिया भर की शांति पसंद ताकतें एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हम बातचीत और चर्चा के जरिए दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आचार्य लोकेश मुनि से फोन पर संपर्क किया और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के पैर नहीं छुए थे। लोकेश मुनि ने बताया कि जब वे ईरानी राष्ट्रपति को पत्रिका और कुछ दस्तावेज दे रहे थे तो उनमें से एक दस्तावेज जमीन पर गिर गया जिसे ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मान पूर्वक नीचे झुककर उठाया था। हमारी जांच से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान द्वारा हिंदू धर्म गुरु के पैर छूने का दावा बिल्कुल गलत है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे हैं कि एआई टेक्निक इंसानों पर ही भारी पड़ने लगी है। अमेरिका के एक अस्पताल की लैब से एआई टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखें।

0: क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर अपने फैसले खुद लेने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ह्यूमनाइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रोबोट के पीछे पुलिस के जवान को भी भागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया। इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी। अमेरिका के एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर। जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि AI टेक्निक इंसानों पर अब भारी पड़ने लगी है। अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बना रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगा। वीडियो में रोबोट डॉक्टर जैसी ड्रेस पहने अस्पताल से बाहर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोबोट लैब से बाहर कैसे निकला और क्या ये AI तकनीक से बढ़ते स्वायत्त फैसलों का संकेत है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहा दावा सही है या गलत ये जानना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है या फिर लोगों को दिखाया जाता है वो सही है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे परखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे दावे पर शक जरूर हुआ। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वीडियो में एक एम्बुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है रनलैंस। ये हमें काफी ज्यादा अटपटा लगा। इसके अलावा सड़क पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि रोबोट ने खुद फैसले लेते हुए अमेरिका के किसी अस्पताल के लैब से भागने का कदम उठाया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? वीडियो में कई जगह फ्रेम मिसमैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। अचानक से एक पुलिस वाला रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर रोबोट के पीछे कुछ और पुलिस वाले दिखने लगते हैं, कि हमें गड़बड़ लगा। लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है?
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक टिकटॉक अकाउंट मिला जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है। वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है, जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था। यह इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है, यानी साफ है कि यह असली वीडियो नहीं है, इसे AI से बनाया गया है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते 2 महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए। अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान एंथ्रोपिक के माइथॉस 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई चेन हमला करने की कोशिश की। AI एजेंट ने फेक ID बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे, लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया। इस साल जुलाई में भी खबर आई थी कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने हगिंग फेस नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेल लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। OpenAI ने इस घटना को एक सचेत करने वाली चेतावनी बताया और माना कि उनके मॉडल सब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है, इसे AI से बनाया गया है, लेकिन इसके जरिए जिस डर की बात की जा रही है उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
3: नन्ही बच्ची का बप्पा के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। नन्ही बच्ची बापा को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही। कभी वो गणपति जी की गालों को प्यार से सहलाती है तो कभी उनके माथे को चूमती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो बापा को अपने पास ही रोक लेना चाहती हो। जब वहाँ मौजूद लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश करते हैं तब भी बच्ची उनका हाथ पकड़े रहती है। वो मूर्ति से अलग होने को तैयार ही नहीं होती। बच्चे की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके चेहरे पर बापा को विदा करने का दुख साफ नजर आ जाता है। बच्ची और गणपति बापा का ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। नजरें धुंधली और आवाज भी धीमी, लेकिन अम्बा की ममता आज भी बेशुमार है। बेटी के हाथ में 500 रुपए देखते हुए अम्मा ने जो प्यार दिखाया उसी पल को देखकर परिवार की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की बातों में ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेटी को पैसे देती है उस पे उनका स्नेह साफ महसूस हो जाता है। अम्मा का ये प्यार देखकर बेटी भी भावुक हो जाती है।
4: अपने रख ले 500,
5: बस इसी में रखे, अभी
6: बिल्कुल रख ले,
4: रखे ले,
6: पता नहीं फिर।
3: कैमरे के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शायद उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। रिश्ते की ये मासूमियत और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है, साथ ही ये पल हर किसी को भावुक भी कर रहा है।
5: रख लिए 500 रख लिए मैंने।
7: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
3: आज के बच्चे इतने होशियार होते हैं, आपने कुछ कहा तो उनके जुबान पर उसका तुरंत जवाब सुनने को मिल जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। माँ बेटी के इस मजेदार बातचीत को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
7: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
8: टेंशन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला।
3: अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाला 12 साल का सैमुअल हैंडरसन इन दिनों अपनी एक अनोखी कला की वजह से छाया हुआ है। सैमुअल पक्षियों की ऐसी सटीक आवाजें निकालता है कि इंसान तो क्या, चिड़िया की आवाज पहचानने वाला मोबाइल ऐप भी धोखा खा जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित ये बच्चा अब तक 130 से भी ज्यादा पक्षियों की बोलियों की नकल कर सकता है। ये ये छोटा बच्चा गधे की पीठ पर ऐसा बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जिम्नास्ट भी हैरान रह जाएं। आमतौर पर बच्चे जब जानवर की सवारी करते हैं तो धीरे से ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कुछ अलग ही प्रो लेवल तकनीक अपनाई है। बच्चा गधे के साइड में खड़ा होकर अपने सिर को नीचे करता है और हवा में टांगे लहराते हुए एक्रोबेटिक अंदाज में बैक रोल करता है। बच्चे के इस अनोखे स्टंट के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस गधे का रिएक्शन। बच्चा उसकी पीठ पर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और बैलेंस बनाता है, लेकिन गधा बिना हिले डुले बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बच्चे का ये अंदाज और जानवर का ऐसा संयम देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई लोग हैरान भी हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिल देव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाए। कपिल देव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करके लोगों को चौंका दिया।
6: देखा तो भैया इनके घर बना है आसमाने में, वही जा करती सीधे ब्रिज वाला पुल बनवाए दी।
3: पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इन तस्वीरों को देखकर इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आलिशान महल नुमा घर तक पहुंचने के लिए मालिक ने सीधे प्राइवेट ओवर ब्रिज बनवा दिया। ऊंचाई पर बने इस घर तक जाने के लिए कोई सामान्य सड़क नहीं थी तो मालिक ने ये लक्जरी सॉल्यूशन निकाला। ये वीडियो किस जगह का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नेटिजन्स इसे पैसे का असली पावर और अल्टीमेट बता रहे हैं।

0: भाग दौड़ की इस जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है।
1: ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: पार्क की बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है।
1: नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: नया टैडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठा लिया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बिताने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई। असम के इस फुटबॉलर गजराज का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगी धला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मगन थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूसरी पार जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह से पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल यहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
5: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच बप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का यह अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 एकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेश उत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेश उत्सव का पांचवा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट नजर आ रहे हैं तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराज हैं तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्रीराम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जागते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा बढ़ा रहा है। वहीं एक पंडाल ऐसा भी है जहां बप्पा को दर्जनों किलो सोना और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से विशेष तौर पर सजा दिया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बाप्पा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बाप्पा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहाँ पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और तो और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम हैं, तप करते हनुमान हैं, ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इस दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर यह भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश, कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए, कह सकते हैं कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बापा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बापा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बापा को एक राजा की तरह भी पूछते हैं, और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगते। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को गहने से श्रृंगारित किया है।
0: बापा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बापा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें दूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट, बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट्स, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बाप्पा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहां आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
4: अच्छा, और बापा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं, आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला,
5: हाँ,
4: तो ये
5: सब सुंदर चॉकलेट सा बंगला।
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई।
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहां विराजे हैं देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है, इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्यता को और बढ़ा रहा है। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक पीछे ऊपर की ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति स्थापित की गई है, तो वहीं गणपति के दोनों ओर बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार बाप्पा के दरबार की भव्यता को भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम की विशाल प्रतिकृति ने और खास बनाया है। इस पंडाल में विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
2: देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बाप्पा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बाप्पा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
8: इस साल हम लोगों ने किया है राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
2: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी
8: पूरा 95 ईयर से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कंप्लीट इको फ्रेंडली। और अभी आप देखेंगे ना कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हाइट हो गई है।
0: बाप्पा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
2: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
9: बहुत फन है एंड एकदम अमेजिंग।
2: आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
9: अच्छा,
2: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई? अच्छा, आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
9: अच्छा लगा।
2: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
9: तीन चार
2: बार।
0: अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा, तस्वीरें पुणे के एफसी रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में, गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
7: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है, और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें, संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास, VIP, VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: मुंबई चा राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं, तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है। इस गणपति पंडाल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सजावट है। पंडाल को इस बार प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा गया है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर इसे सजाया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हो। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। बाप्पा का एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ

0: अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली हैं, जीवित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
1: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिण है जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है। मूषक हम आज से 6-7 साल पहले ले आए थे, हमारे पास भी है। दादा के पास 10-11 दिन रखते हैं और 1 साल हम पूरी उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास ही रखते हैं।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच रही है। राजकोट में काशी की झलक है तो वही मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बाप्पा का दरबार बन गया है। मुंबई चा रिक्शा आणि बाप्पा ची सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बाप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बाप्पा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाटकोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बाप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बाप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुमुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बाप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहां स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है।

0: करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत है।
1: तो चलिए इसी के साथ जीएनबी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
7: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
8: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई। बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 अकादमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो देखिए सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं और इन्हें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक धर्म गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और अस्पताल के एक लैब से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुए कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छू लिए। देखते ही देखते ये क्लिप हर जगह ट्रेंड करने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो स्क्रॉल करते ही सबकी नजरें थम गई। दावा था कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर है। ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के पैर छुए। रील्स और पोस्ट में से लेकर गजब का सस्पेंस बन गया। वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैरों के पास झुकते नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग सनातन धर्म की ताकत बताकर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैर के पास झुकते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था। लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये समझ आया कि वीडियो को एक खास एंगल से ही दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में ईरानी राष्ट्रपति ने एक हिंदू धर्म गुरु का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। वीडियो में एक कागज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर मौजूद एक व्यक्ति इस कागज को ईरानी राष्ट्रपति को दे रहे हैं और हो सकता है इसी दौरान कुछ नीचे गिर गया है और उसे उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति झुके हैं। लेकिन कैमरे का एंगल ही ऐसा है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति आशीर्वाद लेने के लिए झुके हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति के साथ खड़े संत के बारे में हमने खोजबीन की। पड़ताल के दौरान ये पता चला कि ईरानी राष्ट्रपति जिस हिंदू गुरु के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं उनका नाम जगत गुरु स्वामी
2: सतीशाचार्य जी महाराज है और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित कल्याणपुर के प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ईरानी राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे थे। इसके बारे में हमने लगातार सर्च भी किया और इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि हाल ही में दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारतीय धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दौरान वहां स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो देखिए, हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए तो इसकी चर्चा जो है हर जगह क्यों नहीं हुई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों में जानकारी सामने क्यों नहीं आई। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर एक खास एंगल से शूट कर दिए वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर इस घटना से संबंधित वीडियो मिला। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू धर्म गुरु और ईरानी राष्ट्रपति दोनों को जमीन पर झुकते हुए देखा जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पुजारी का पैर छूने के लिए नहीं बल्कि एक पेन को उठाने के लिए नीचे झुके थे। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि पेन के जमीन पर गिरने के बाद पुजारी भी उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे। इस जानकारी के आधार पर गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने फेसबुक पेज पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया और कार्यक्रम को कवर कर रहे पत्रकार हुसैन मेहदी से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना याकूब अब्बास और आचार्य लोकेश मुनि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कुछ दस्तावेज दे रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने विनम्रता पूर्वक उन दस्तावेजों को झुककर उठा लिया। इसके बाद हमने आचार्य लोकेश मुनि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। इस दौरान हमें उनके फेसबुक पेज पर एक तस्वीर मिली जिसमें वे ईरान के राष्ट्रपति को एक दस्तावेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिल्ली ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ हुई बातचीत पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, दुनिया की नजरें भारत पर है। मैंने ईरान के राष्ट्रपति को ईरान में अपनी तरह का पहला शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नेताओं के तौर पर हमारा मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर मुद्दे को बातचीत, संवाद और शांति की कोशिशों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द धार्मिक नेता और दुनिया भर की शांति पसंद ताकतें एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हम बातचीत और चर्चा के जरिए दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आचार्य लोकेश मुनि से फोन पर संपर्क किया और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के पैर नहीं छुए थे। लोकेश मुनि ने बताया कि जब वे ईरानी राष्ट्रपति को पत्रिका और कुछ दस्तावेज दे रहे थे तो उनमें से एक दस्तावेज जमीन पर गिर गया जिसे ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मान पूर्वक नीचे झुककर उठाया था। हमारी जांच से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा हिंदू धर्म गुरु के पैर छूने का दावा बिल्कुल गलत है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे हैं कि एआई टेक्निक इंसानों पर ही भारी पड़ने लगी है। अमेरिका के एक अस्पताल की लैब से एआई टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर अपने फैसले खुद लेने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ह्यूमनाइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रोबोट के पीछे पुलिस के जवान को भी भागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया। इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी। अमेरिका के एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर। जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि AI टेक्निक इंसानों पर अब भारी पड़ने लगी है। अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बना रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगा। वीडियो में रोबोट डॉक्टर जैसी ड्रेस पहने अस्पताल से बाहर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोबोट लैब से बाहर कैसे निकला और क्या ये AI तकनीक से बढ़ते स्वायत्त फैसलों का संकेत है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहा दावा सही है या गलत ये जानना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है या फिर लोगों को दिखाया जाता है वो सही है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे परखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे दावे पर शक जरूर हुआ। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वीडियो में एक एम्बुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है रन लैंस। ये हमें काफी ज्यादा अटपटा लगा। इसके अलावा सड़क पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि रोबोट ने खुद फैसले लेते हुए अमेरिका के किसी अस्पताल के लैब से भागने का कदम उठाया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? वीडियो में कई जगह फ्रेम मिसमैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। अचानक से एक पुलिस वाला रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर रोबोट के पीछे कुछ और पुलिस वाले दिखने लगते हैं, कि हमें गड़बड़ लगा। लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है?
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक टिकटॉक अकाउंट मिला जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है। वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है, जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था। यह इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है, यानी साफ है कि यह असली वीडियो नहीं है, इसे AI से बनाया गया है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते 2 महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए। अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान एंथ्रोपिक के माइथोस 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई चेन हमला करने की कोशिश की। AI एजेंट ने फेक ID बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे, लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया। इस साल जुलाई में भी खबर आई थी कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने हगिंग फेस नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेल लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। OpenAI ने इस घटना को एक सचेत करने वाली चेतावनी बताया और माना कि उनके मॉडल सब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है, इसे AI से बनाया गया है, लेकिन इसके जरिए जिस डर की बात की जा रही है उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
5: नन्ही बच्ची का बप्पा के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। नन्ही बच्ची बापा को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही। कभी वो गणपति जी की गालों को प्यार से सहलाती है तो कभी उनके माथे को चूमती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो बापा को अपने पास ही रोक लेना चाहती हो। जब वहाँ मौजूद लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी बच्ची उनका हाथ पकड़े रहती है। वो मूर्ति से अलग होने को तैयार ही नहीं होती। बच्चे की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके चेहरे पर बापा को विदा करने का दुख साफ नजर आ जाता है। बच्ची और गणपति बापा का ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। नजरें धुंधली और आवाज भी धीमी, लेकिन अम्बा की ममता आज भी बेशुमार है। बेटी के हाथ में 500 रुपए देखते हुए अम्मा ने जो प्यार दिखाया, उसी पल को देखकर परिवार की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की बातों में ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेटी को पैसे देती है उसपे उनका स्नेह साफ महसूस हो जाता है। अम्मा का ये प्यार देखकर बेटी भी भावुक हो जाती है।
6: अपने रख ले 500,
7: बस इसी में रखे, अभी
6: डिप्पू रख ले, रखे ले,
7: पता नहीं फिर।
5: कैमरे के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शायद उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। रिश्ते की ये मासूमियत और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है, साथ ही ये पल हर किसी को भावुक भी कर रहा है।
7: रख लिए, 500 रख लिए मैंने।
8: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
9: कंचन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला है।
5: आज के बच्चे इतने होशियार होते हैं, आपने कुछ कहा तो उनके जुबान पर उसका तुरंत जवाब सुनने को मिल जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। माँ बेटी के इस मजेदार बातचीत को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
8: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
9: कंचन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला है।
5: अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाला 12 साल का सैमुअल हैंडरसन इन दिनों अपनी एक अनोखी कला की वजह से छाया हुआ है। सैमुअल पक्षियों की ऐसी सटीक आवाजें निकालता है कि इंसान तो क्या, चिड़िया की आवाज पहचानने वाला मोबाइल ऐप भी धोखा खा जाता है।
10: सैंडो फ्रेंड kitten house. Great horn owl.
5: ऑटिज्म से पीड़ित ये बच्चा अब तक 130 से भी ज्यादा पक्षियों की बोलियों की नकल कर सकता है। ये छोटा बच्चा गधे की पीठ पर ऐसा बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जिम्नास्ट भी हैरान रह जाएं। आमतौर पर बच्चे जब जानवर की सवारी करते हैं तो धीरे से ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कुछ अलग ही प्रो लेवल तकनीक अपनाई है। बच्चा गधे के साइड में खड़ा होकर अपने सिर को नीचे करता है और हवा में टांगे लहराते हुए एक्रोबेटिक अंदाज में बैक रोल करता है। बच्चे के इस अनोखे स्टंट के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस गधे का रिएक्शन। बच्चा उसकी पीठ पर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और बैलेंस बनाता है, लेकिन गधा बिना हिले डुले बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बच्चे का ये अंदाज और जानवर का ऐसा संयम देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई लोग हैरान भी हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिल देव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाए। कपिल देव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करके लोगों को चौंका दिया।
11: देखा तो भैया इनके घर बना है आसमाने में, वही जा करती सीधे ब्रिज वाला पुल बनवाए दी।
5: पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इन तस्वीरों को देखकर इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आलिशान महल नुमा घर तक पहुंचने के लिए मालिक ने सीधे प्राइवेट ओवर ब्रिज बनवा दिया। ऊंचाई पर बने इस घर तक जाने के लिए कोई सामान्य सड़क नहीं थी तो मालिक ने ये लक्जरी सॉल्यूशन निकाला। ये वीडियो किस जगह का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नेटिजन्स इसे पैसे का असली पावर और अल्टीमेट बता रहे हैं।

0: भाग दौड़ की इस जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है।
1: ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: पार्क की बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है।
1: नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: नया टेडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठा लिया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बिताने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई। असम के इस फुटबॉलर गजराज का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीधला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मगन थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूसरी पार जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह से पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल यहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
5: आज तक ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पापा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच बप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाए, एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बरसाना सहित पूरे टीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई। बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना। माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा। 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और एचटीटी 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पवन हंस को मिले चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी। 99 अकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेश उत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेश उत्सव का पांचवा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट नजर आ रहे हैं, तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराज हैं, तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्रीराम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जागते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा बढ़ा रहा है। वहीं एक पंडाल ऐसा भी है जहां बप्पा को दर्जनों किलो सोना और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से विशेष तौर पर सजा दिया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बाप्पा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बाप्पा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहाँ पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और तो और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम है, तप करते हनुमान है। ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इस दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश, कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए कह सकते हैं। कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बापा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बापा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बापा को एक राजा की तरह भी पूछते हैं। और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगते। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को गरेणा से श्रृंगारित किया है।
0: बापा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बापा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें दूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट्स, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बाप्पा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहां आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत तोती देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
4: अच्छा, और बापा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला, हाँ, तो ये
5: सब सुंदर चॉकलेट सा बंगला।
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई।
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहां विराजे हैं देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीर्ति रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्यता को और बढ़ा रहा है। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक पीछे ऊपर की ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति स्थापित की गई है, तो वहीं गणपति के दोनों ओर बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार बाप्पा के दरबार की भव्यता को भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम की विशाल प्रतिकृति ने और खास बनाया है। इस पंडाल में विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
8: देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बाप्पा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बाप्पा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
9: इस साल हम लोगों ने किया है राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
8: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी
9: पूरा 95 ईयर से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कंप्लीट इको फ्रेंडली। और अभी आप देखेंगे ना, कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हाइट हो गई है।
0: पापा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
8: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
10: बहुत फन है, एकदम अमेजिंग।
8: आ जाओ आप लोग, आ जाओ। कैसा लगा?
10: अच्छा,
8: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
10: बहुत अच्छा लगा।
8: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
10: तीन चार
8: बार।
0: अब आपको यादों लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा तस्वीरें पुणे के FC रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
7: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है, और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें, संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास, VIP, VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: मुंबई चा राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है। इस गणपति पंडाल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सजावट है। पंडाल को इस बार प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा गया है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर इसे सजाया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हो। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। बाप्पा का एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर तो भक्त गदगद हैं ही, लेकिन यहां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं बाप्पा की मूर्ति पर बैठाए गए ये सफेद चूहे। ये कोई रोबोटिक मॉडल नहीं, बल्कि बाप्पा के अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली हैं, जीवित हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
11: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है। मूषक हम आज से

0: गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच रही है। राजकोट में काशी की झलक है तो वहीं मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बाप्पा का दरबार बन गया है। मुंबई चा रिक्शा आणि बाप्पा ची सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बाप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बाप्पा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाट कोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बाप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बाप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुबुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बाप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहां स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
4: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पापा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पापा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बाप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुँच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया, कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 अकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक।
3: तो देखिए सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। इसका नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं और इन्हें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक धर्म गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और अस्पताल के एक लैब से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुए कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छू लिए। देखते ही देखते ये क्लिप हर जगह ट्रेंड करने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर यह वीडियो स्क्रॉल करते ही सबकी नजरें थम गई। दावा था कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर है। ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के पैर छुए। रील्स और पोस्ट में से लेकर गजब का सस्पेंस बन गया। वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैरों के पास झुकते नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग सनातन धर्म की ताकत बताकर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैर के पास झुकते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था। लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये समझ आया कि वीडियो को एक खास एंगल से ही दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में ईरानी राष्ट्रपति ने एक हिंदू धर्म गुरु का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। वीडियो में एक कागज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर मौजूद एक व्यक्ति इस कागज को ईरानी राष्ट्रपति को दे रहे हैं और हो सकता है इसी दौरान कुछ नीचे गिर गया है और उसे उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति झुके हैं। लेकिन कैमरे का एंगल ही ऐसा है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति आशीर्वाद लेने के लिए झुके हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति के साथ खड़े संत के बारे में हमने खोजबीन की। पड़ताल के दौरान ये पता चला कि ईरानी राष्ट्रपति जिस हिंदू गुरु के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं उनका नाम जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज है और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित कल्याणपुर के प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ईरानी राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे थे। इसके बारे में हमने लगातार सर्च भी किया और इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि हाल ही में दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भारतीय धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दौरान वहां स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो देखिए, हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए तो इसकी चर्चा जो है हर जगह क्यों नहीं हुई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों में जानकारी सामने क्यों नहीं आई। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर एक खास एंगल से शूट कर दिए वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर इस घटना से संबंधित वीडियो मिला। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू धर्म गुरु और ईरानी राष्ट्रपति दोनों को जमीन पर झुकते हुए देखा जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पुजारी का पैर छूने के लिए नहीं बल्कि एक पेन को उठाने के लिए नीचे झुके थे। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि पेन के जमीन पर गिरने के बाद पुजारी भी उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे। इस जानकारी के आधार पर गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने फेसबुक पेज पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया और कार्यक्रम को कवर कर रहे पत्रकार हुसैन मेहदी से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना याकूब अब्बास और आचार्य लोकेश मुनि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कुछ दस्तावेज दे रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने विनम्रता पूर्वक उन दस्तावेजों को झुककर उठा लिया। इसके बाद हमने आचार्य लोकेश मुनि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। इस दौरान हमें उनके फेसबुक पेज पर एक तस्वीर मिली जिसमें वे ईरान के राष्ट्रपति को एक दस्तावेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिल्ली ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ हुई बातचीत पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, दुनिया की नजरें भारत पर हैं। मैंने ईरान के राष्ट्रपति को ईरान में अपनी तरह का पहला शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नेताओं के तौर पर हमारा मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर मुद्दे को बातचीत, संवाद और शांति की कोशिशों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द धार्मिक नेता और दुनिया भर की शांति पसंद ताकतें एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हम बातचीत और चर्चा के जरिए दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आचार्य लोकेश मुनि से फोन पर संपर्क किया और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के पैर नहीं छुए थे। लोकेश मुनि ने बताया कि जब वे ईरानी राष्ट्रपति को पत्रिका और कुछ दस्तावेज दे रहे थे तो उनमें से एक दस्तावेज जमीन पर गिर गया जिसे ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मान पूर्वक नीचे झुककर उठाया था। हमारी जांच से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा हिंदू धर्म गुरु के पैर छूने का दावा बिल्कुल गलत है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे हैं कि एआई टेक्निक इंसानों पर ही भारी पड़ने लगी है। अमेरिका के एक अस्पताल की लैब से एआई टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखें।

0: क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर अपने फैसले खुद लेने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ह्यूमनाइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रोबोट के पीछे पुलिस के जवान को भी भागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया। इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी। अमेरिका के एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर। जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि AI टेक्निक इंसानों पर अब भारी पड़ने लगी है। अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बना रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगा। वीडियो में रोबोट डॉक्टर जैसी ड्रेस पहने अस्पताल से बाहर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोबोट लैब से बाहर कैसे निकला और क्या ये AI तकनीक से बढ़ते स्वायत्त फैसलों का संकेत है? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहा दावा सही है या गलत ये जानना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है या फिर लोगों को दिखाया जाता है वो सही है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे परखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे दावे पर शक जरूर हुआ। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वीडियो में एक एम्बुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है रनलैंड। ये हमें काफी ज्यादा अटपटा लगा। इसके अलावा सड़क पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि रोबोट ने खुद फैसले लेते हुए अमेरिका के किसी अस्पताल के लैब से भागने का कदम उठाया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? वीडियो में कई जगह फ्रेम मिसमैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। अचानक से एक पुलिस वाला रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर रोबोट के पीछे कुछ और पुलिस वाले दिखने लगते हैं, कि हमें गड़बड़ लगा। लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है?
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक टिकटॉक अकाउंट मिला जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है। वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था। यह इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है, यानी साफ है कि यह असली वीडियो नहीं है, इसे AI से बनाया गया है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते 2 महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए। अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान एंथ्रोपिक के माइथॉस 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई चेन हमला करने की कोशिश की। AI एजेंट ने फेक ID बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे, लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया। इस साल जुलाई में भी खबर आई थी कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने हगिंग फेस नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेल लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। OpenAI ने इस घटना को एक सचेत करने वाली चेतावनी बताया और माना कि उनके मॉडल सब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है, इसे AI से बनाया गया है, लेकिन इसके जरिए जिस डर की बात की जा रही है उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
9: नन्ही बच्ची का बप्पा के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। नन्ही बच्ची बापा को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही। कभी वो गणपति जी की गानों को प्यार से सहलाती है, तो कभी उनके माथे को चूमती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो बापा को अपने पास ही रोक लेना चाहती हो। जब वहाँ मौजूद लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी बच्ची उनका हाथ पकड़े रहती है। वो मूर्ति से अलग होने को तैयार ही नहीं होती। बच्चे की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके चेहरे पर बापा को विदा करने का दुख साफ नजर आ जाता है। बच्ची और गणपति बापा का ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। नजरें धुंधली और आवाज भी धीमी, लेकिन अम्बा की ममता आज भी बेशुमार है। बेटी के हाथ में 500 रुपए देखते हुए अम्मा ने जो प्यार दिखाया, उसी पल को देखकर परिवार की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की बातों में ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेटी को पैसे देती है, उस पे उनका स्नेह साफ महसूस हो जाता है। अम्मा का ये प्यार देखकर बेटी भी भावुक हो जाती है।
10: अपने रख ले 500,
11: बस इसी में रखे, अभी
12: डिप्पू रख ले,
10: रखे ले,
12: पता नहीं फिर।
9: कैमरे के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शायद उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। रिश्ते की ये मासूमियत और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है, साथ ही ये पल हर किसी को भावुक भी कर रहा है।
11: रख लिए 500 रख लिए मैंने।
13: मम्मी,
14: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उसे।
9: आज के बच्चे इतने होशियार होते हैं, आपने कुछ कहा तो उनके जुबान पर उसका तुरंत जवाब सुनने को मिल जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। माँ बेटी के इस मजेदार बातचीत को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
14: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उसे।
13: कंचन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला।
9: अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाला 12 साल का सैमुअल हैंडरसन इन दिनों अपनी एक अनोखी कला की वजह से छाया हुआ है। सैमुअल पक्षियों की ऐसी सटीक आवाजें निकालता है कि इंसान तो क्या, चिड़िया की आवाज पहचानने वाला मोबाइल ऐप भी धोखा खा जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित ये बच्चा अब तक 130 से भी ज्यादा पक्षियों की बोलियों की नकल कर सकता है। ये छोटा बच्चा गधे की पीठ पर ऐसा बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जिम्नास्ट भी हैरान रह जाएं। आमतौर पर बच्चे जब जानवर की सवारी करते हैं तो धीरे से ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कुछ अलग ही प्रो लेवल तकनीक अपनाई है। बच्चा गधे के साइड में खड़ा होकर अपने सिर को नीचे करता है और हवा में टांगे लहराते हुए एक्रोबेटिक अंदाज में बैक रोल करता है। बच्चे के इस अनोखे स्टंट के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस गधे का रिएक्शन। बच्चा उसकी पीठ पर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और बैलेंस बनाता है, लेकिन गधा बिना हिले डुले बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बच्चे का ये अंदाज और जानवर का ऐसा संयम देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई लोग हैरान भी हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिल देव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाए। कपिल देव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करके लोगों को चौंका दिया।
8: देखा तो भैया इनके घर बना है आसमान में, वही जाए करती सीधे ब्रिज वाला पुल बनवाए दी।
9: पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इन तस्वीरों को देखकर इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आलिशान महल नुमा घर तक पहुंचने के लिए मालिक ने सीधे प्राइवेट ओवर ब्रिज बनवा दिया। ऊंचाई पर बने इस घर तक जाने के लिए कोई सामान्य सड़क नहीं थी तो मालिक ने ये लग्जरी सॉल्यूशन निकाला। ये वीडियो किस जगह का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नेटिजन्स इसे पैसे का असली पावर और अल्टीमेट बता रहे हैं।

0: भाग दौड़ की इस जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है।
1: ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: पार्क की बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है।
1: नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
0: नया टेडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठा लिया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बिताने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई। असम के इस फुटबॉलर गजराज का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगी धला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मगन थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूसरी पार जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह से पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की ये मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल यहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
5: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बाप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुँच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधाष्टमी की रौनक, शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग की राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई, बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंधल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 अकेडमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेश उत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेश उत्सव का पांचवा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट नजर आ रहे हैं तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराज हैं तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्रीराम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जागते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा बढ़ा रहा है। वहीं एक पंडाल ऐसा भी है जहां बप्पा को दर्जनों किलो सोना और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से विशेष तौर पर सजा दिया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे में आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बापा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहां पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और तो और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम हैं, तप करते हनुमान हैं, ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इस दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश, कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए कह सकते हैं। कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बाप्पा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बाप्पा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बाप्पा को एक राजा की तरह भी पूछते है और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगता। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को गरेना से संगारित किया है।
0: बाप्पा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बाप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें दूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट, बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट्स, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बाप्पा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहाँ आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
4: अच्छा, और बाप्पा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं, आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रही थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला, हाँ, तो ये सब
5: सुंदर चॉकलेट सा बंगला।
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई।
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहाँ विराजे है देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीर्ति रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरानी हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए, मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है, इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्यता को और बढ़ा रहा है। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक पीछे ऊपर की ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति स्थापित की गई है, तो वहीं गणपति के दोनों ओर बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार बाप्पा के दरबार की भव्यता को भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम की विशाल प्रतिकृति ने और खास बनाया है। इस पंडाल में विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे हैं। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
8: देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बाप्पा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बाप्पा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
9: इस साल हम लोगों ने किया राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे ना तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
8: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी
9: पूरा 95 ईयर से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कंप्लीट इको फ्रेंडली। और अभी आप देखेंगे ना कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हो गई है।
0: बप्पा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
8: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
10: बहुत फन है, एकदम अमेजिंग।
8: आ जाओ आप लोग, आ जाओ। कैसा लगा?
10: अच्छा,
8: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
10: बहुत अच्छा लगा।
8: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
10: तीन चार
8: बार।
0: अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा, तस्वीरें पुणे के FC रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में, गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
7: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है, और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें, संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास, VIP, VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: मुंबई चा राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं, तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है। इस गणपति पंडाल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सजावट है। पंडाल को इस बार प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा गया है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर इसे सजाया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हों। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। बाप्पा का एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर तो भक्त गदगद हैं ही, लेकिन यहां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं बाप्पा की मूर्ति पर बैठाए गए ये सफेद चूहे। ये कोई रोबोटिक मॉडल नहीं, बल्कि बाप्पा के अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली है, जीवित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
11: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिण है जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति पे बहुत है। मूषक हम आज से 6-7 साल पहले ले आए थे, हमारे पास भी है, दादा के पास 10-11 दिन रखते हैं और 1 साल हम पूरी उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास ही रखते हैं।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरी पुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर

0: सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बापा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बापा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाट कोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बापा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुबुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बाप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहां स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं।
1: तो चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
3: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच पप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: बरसाना सहित पूरे ब्रजमंडल में श्री राधा अष्टमी की रौनक शानदार लाइटिंग के साथ खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से दी गई विदाई। बनारस में दिखा मिनी मुंबई सा नजारा। गणेशोत्सव के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धूमधाम से गौरी महालक्ष्मी की आराधना, माता के मायके पधारने पर होता है भव्य स्वागत, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। यूपी में आपदा नियंत्रण के लिए मेगा मॉक ड्रिल, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में एनडीआरएफ ने आग और भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा, 35 जिलों के 157 तहसीलों में हुई एक्सरसाइज। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एलसीए तेजस और एचटीटी 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, पवन हंस को मिले चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू रहे मौजूद। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, इस साल अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा, 12 लाख करोड़ ज्यादा हुआ टैक्स कलेक्शन। ऑस्कर 2027 में मराठी थ्रिलर गोंदल बनी भारत की ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों को पीछे छोड़ मारी बाजी, 99 अकादमी अवार्ड्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानना शुरू कर देते हैं और इन्हें शेयर करना भी शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान सनातन धर्म के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने एक धर्म गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया और अस्पताल के एक लैब से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुए कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छू लिए। देखते ही देखते ये क्लिप हर जगह ट्रेंड करने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो स्क्रॉल करते ही सबकी नजरें थम गई। दावा था कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर है। ब्रिक्स सम्मेलन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के पैर छुए। रील्स और पोस्ट में से लेकर गजब का सस्पेंस बन गया। वीडियो में ईरानी राष्ट्रपति अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैरों के पास झुकते नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने एक हिंदू धर्मगुरु के चरण स्पर्श किए। वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग सनातन धर्म की ताकत बताकर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान अपने पास इकट्ठा हुए कई लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु के पैर के पास झुकते हुए नजर आते हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के चरण स्पर्श किए। इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ये समझ आया कि वीडियो को एक खास एंगल से ही दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में ईरानी राष्ट्रपति ने एक हिंदू धर्म गुरु का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। वीडियो में एक कागज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पर मौजूद एक व्यक्ति इस कागज को ईरानी राष्ट्रपति को दे रहे हैं और हो सकता है इसी दौरान कुछ नीचे गिर गया है और उसे उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति झुके हैं। लेकिन कैमरे का एंगल ही ऐसा है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति आशीर्वाद लेने के लिए झुके हैं। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति के साथ खड़े संत के बारे में हमने खोजबीन की। पड़ताल के दौरान ये पता चला कि ईरानी राष्ट्रपति जिस हिंदू गुरु के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं उनका नाम जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज है और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित कल्याणपुर के प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ईरानी राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे थे। इसके बारे में हमने लगातार सर्च भी किया और इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि हाल ही में दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान भारतीय धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दौरान वहां स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो देखिए, हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिजश्कियान ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए तो इसकी चर्चा जो है हर जगह क्यों नहीं हुई। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों में जानकारी सामने क्यों नहीं आई? और देखिए दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एक खास एंगल से शूट कर दिए वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा?
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर इस घटना से संबंधित वीडियो मिला। करीब 55 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू धर्म गुरु और ईरानी राष्ट्रपति दोनों को जमीन पर झुकते हुए देखा जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पुजारी का पैर छूने के लिए नहीं बल्कि एक पेन को उठाने के लिए नीचे झुके थे। पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि पेन के जमीन पर गिरने के बाद पुजारी भी उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे। इस जानकारी के आधार पर गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने फेसबुक पेज पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया और कार्यक्रम को कवर कर रहे पत्रकार हुसैन मेहदी से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौलाना याकूब अब्बास और आचार्य लोकेश मुनि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को कुछ दस्तावेज दे रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने विनम्रता पूर्वक उन दस्तावेजों को झुककर उठा लिया। इसके बाद हमने आचार्य लोकेश मुनि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला। इस दौरान हमें उनके फेसबुक पेज पर एक तस्वीर मिली जिसमें वे ईरान के राष्ट्रपति को एक दस्तावेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिल्ली ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के साथ हुई बातचीत पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, दुनिया की नजरें भारत पर हैं। मैंने ईरान के राष्ट्रपति को ईरान में अपनी तरह का पहला शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नेताओं के तौर पर हमारा मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर मुद्दे को बातचीत, संवाद और शांति की कोशिशों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुशी खुशी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द धार्मिक नेता और दुनिया भर की शांति पसंद ताकतें एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हम बातचीत और चर्चा के जरिए दुनिया में शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने आचार्य लोकेश मुनि से फोन पर संपर्क किया और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। वे उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज के पैर नहीं छुए थे। लोकेश मुनि ने बताया कि जब वे ईरानी राष्ट्रपति को पत्रिका और कुछ दस्तावेज दे रहे थे तो उनमें से एक दस्तावेज जमीन पर गिर गया जिसे ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मान पूर्वक नीचे झुककर उठाया था। हमारी जांच से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान द्वारा हिंदू धर्म गुरु के पैर छूने का दावा बिल्कुल गलत है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक रोबोट का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा करने लगे हैं कि एआई टेक्निक इंसानों पर ही भारी पड़ने लगी है। अमेरिका के एक अस्पताल की लैब से एआई टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखें।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।

0: क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के काबू से बाहर होकर अपने फैसले खुद लेने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ह्यूमनाइड रोबोट ट्रैफिक के बीच दौड़ते हुए नजर आ रहा है। रोबोट के पीछे पुलिस के जवान को भी भागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस रोबोट ने खुद ही अस्पताल से भाग जाने का फैसला कर लिया। इसे शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये संकेत है कि आने वाले वक्त में AI कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, AI टेक्निक इंसानों पर पड़ने लगी भारी। अमेरिका के एक लैब से AI टेक्निक से बनी रोबोट बिना किसी कमांड के निकल भागी सड़क पर। जब रोबोट खुद सोचकर फैसला लेने लगे तो क्या इंसानों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि AI टेक्निक इंसानों पर अब भारी पड़ने लगी है। अमेरिका की एक लैब से AI टेक्निक से बना रोबोट बिना किसी कमांड के सड़क पर दौड़ने लगा। वीडियो में रोबोट डॉक्टर जैसी ड्रेस पहने अस्पताल से बाहर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोबोट लैब से बाहर कैसे निकला और क्या ये AI तकनीक से बढ़ते स्वायत्त फैसलों का संकेत है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहा दावा सही है या गलत ये जानना काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है या फिर लोगों को दिखाया जाता है वो सही है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे में हमने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे परखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे दावे पर शक जरूर हुआ। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वीडियो में एक एम्बुलेंस गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी पर स्पेलिंग लिखी है रनलैंस। ये हमें काफी ज्यादा अटपटा लगा। इसके अलावा सड़क पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि रोबोट ने खुद फैसले लेते हुए अमेरिका के किसी अस्पताल के लैब से भागने का कदम उठाया। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है? वीडियो में कई जगह फ्रेम मिसमैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। अचानक से एक पुलिस वाला रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर रोबोट के पीछे कुछ और पुलिस वाले दिखने लगते हैं, कि हमें गड़बड़ लगा। लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है?
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक टिकटॉक अकाउंट मिला जो अक्सर ह्यूमनॉइड रोबोट के ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता है। वायरल क्लिप भी इस अकाउंट पर मौजूद है, जिसे 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था। यह इस वीडियो पर साफ तौर पर AI का लेबल लगा हुआ है, यानी साफ है कि यह असली वीडियो नहीं है, इसे AI से बनाया गया है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन बीते 2 महीनों में दुनिया की 2 बड़ी AI कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की है कि उनके AI एजेंट्स ने इंसानी इजाजत के बिना ही खुद से कुछ काम कर दिए। अगस्त में ब्रिटेन के AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि एक रूटीन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान एंथ्रोपिक के माइथॉस 5 मॉडल पर बने एक AI एजेंट ने एक असली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर सप्लाई चेन हमला करने की कोशिश की। AI एजेंट ने फेक ID बनाकर एक डेवलपर को झांसा दिया ताकि वो उस कोड को मंजूरी दे दे, लेकिन एक रिव्यूअर को शक हो गया और ये पकड़ा गया। इस साल जुलाई में भी खबर आई थी कि OpenAI के AI एजेंट्स ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, आपस में बातचीत के लिए अपना खुद का मैसेज का एक तरीका निकाला और बिना इजाजत इंटरनेट का एक्सेस हासिल कर लिया। उन्होंने हगिंग फेस नाम के एक बड़े AI कोड प्लेटफॉर्म में सेल लगाई, पासवर्ड और जरूरी डेटा चुराया और एडमिन लेवल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। OpenAI ने इस घटना को एक सचेत करने वाली चेतावनी बताया और माना कि उनके मॉडल सब बिना किसी के कहे भी असल दुनिया की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साबित हो गया कि ये वीडियो असली नहीं है, इसे AI से बनाया गया है, लेकिन इसके जरिए जिस डर की बात की जा रही है उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। हाल ही में हुई कुछ असली घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे AI सिस्टम इंसानी इजाजत के बिना भी काम कर सकते हैं। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
1: तो चलिए, वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
2: नन्ही बच्ची का बप्पा के प्रति ऐसा लगाव देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। नन्ही बच्ची बापा को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही। कभी वो गणपति जी की गालों को प्यार से सहलाती है तो कभी उनके माथे को चूमती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो बापा को अपने पास ही रोक लेना चाहती हो। जब वहाँ मौजूद लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी बच्ची उनका हाथ पकड़े रहती है। वो मूर्ति से अलग होने को तैयार ही नहीं होती। बच्चे की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके चेहरे पर बापा को विदा करने का दुख साफ नजर आ जाता है। बच्ची और गणपति बापा का ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। नजरें धुंधली और आवाज भी धीमी, लेकिन अम्बा की ममता आज भी पेशवार है। बेटी के हाथ में 500 रुपए देखते हुए अम्मा ने जो प्यार दिखाया, उसी पल को देखकर परिवार की आंखें भी नम हो गई। अम्मा की बातों में ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो बेटी को पैसे देती है, उस पे उनका स्नेह साफ महसूस हो जाता है। अम्मा का ये प्यार देखकर बेटी भी भावुक हो जाती है।
3: अपने रख ले,
4: बस इसी में रखे, अभी बिल्कुल रख ले,
3: रखे ले,
4: पता नहीं फिर।
2: कैमरे के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शायद उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। रिश्ते की ये मासूमियत और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है, साथ ही ये पल हर किसी को भावुक भी कर रहा है।
4: रख लिए, 500 रख लिए मैंने।
5: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
2: आज के बच्चे इतने होशियार होते हैं, आपने कुछ कहा तो उनके जुबान पर उसका तुरंत जवाब सुनने को मिल जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। माँ बेटी के इस मजेदार बातचीत को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
5: मम्मी मत बोल मुझे, नाराज मत उससे।
6: कंचन दो कप चाय बना दो, तुम्हारे पति ने बोला।
2: अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाला 12 साल का सैमुअल हैंडरसन इन दिनों अपनी एक अनोखी कला की वजह से छाया हुआ है। सैमुअल पक्षियों की ऐसी सटीक आवाजें निकालता है कि इंसान तो क्या, चिड़िया की आवाज पहचानने वाला मोबाइल ऐप भी धोखा खा जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित ये बच्चा अब तक 130 से भी ज्यादा पक्षियों की बोलियों की नकल कर सकता है। ये छोटा बच्चा गधे की पीठ पर ऐसा बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जिम्नास्ट भी हैरान रह जाएं। आमतौर पर बच्चे जब जानवर की सवारी करते हैं तो धीरे से ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कुछ अलग ही प्रो लेवल तकनीक अपनाई है। बच्चा गधे के साइड में खड़ा होकर अपने सिर को नीचे करता है और हवा में टांगे लहराते हुए एक्रोबेटिक अंदाज में बैक रोल करता है। बच्चे के इस अनोखे स्टंट के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस गधे का रिएक्शन। बच्चा उसकी पीठ पर पूरी तरह उल्टा हो जाता है और बैलेंस बनाता है, लेकिन गधा बिना हिले डुले बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बच्चे का ये अंदाज और जानवर का ऐसा संयम देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही कई लोग हैरान भी हो रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिल देव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाए। कपिल देव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24,000 फीट की ऊंचाई से पैरा ग्लाइडिंग करके लोगों को चौंका दिया।
3: देखा तो भैया इनके घर बना है आसमाने में, वही जाए करती सीधे ब्रिज वाला पुल बनवाए दी।
2: पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इन तस्वीरों को देखकर इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आलिशान महल नुमा घर तक पहुंचने के लिए मालिक ने सीधे प्राइवेट ओवर ब्रिज बनवा दिया। ऊंचाई पर बने इस घर तक जाने के लिए कोई सामान्य सड़क नहीं थी, तो मालिक ने ये लग्जरी सॉल्यूशन निकाला। ये वीडियो किस जगह का है इसकी जानकारी।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
9: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच बप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का यह अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।